ये लोग कहते हैं हमारी पहली मौत के सिवा और कुछ नहीं, उसके बाद हम दोबारा उठाए जाने वाले नहीं हैं। अगर तुम सच्चे हो तो उठा लाओ हमारे बाप दादा को। ये बेहतर हैं या तुब्बा की कौम और उससे पहले के लोग? हमने उनको इसी बिना पर तबाह किया कि वो मुजरिम हो गए थे। ये आसमान और जमीन और इनके दरमियान की चीजें हमने कुछ खेल के तौर पर नहीं बना दी हैं, इनको हमने बरहक पैदा किया है, मगर इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं हैं। इन सब के उठाए जाने के लिए तयशुदा वक्त फैसले का दिन है, वो दिन जब कोई अजीज करीब अपने किसी अजीज करीब के कुछ भी काम ना आएगा और न कहीं से उन्हें कोई मदद पहुंचेगी सिवाय इसके कि अल्लाह ही किसी पर रहम करे। वो जबरदस्त और रहीम है। जकूम का दरख्त गुनाहगार का खाजा होगा, तेल की तलछट जैसा। पेट में वो इस तरह जोश खाएगा जैसे खौलता हुआ पानी जोश खाता है। पकड़ो इसे और रगेड़ते हुए ले जाओ इसको जहन्नुम के बीचों बीच और उंडेल दो इसके सर पर खौलते हुए पानी का आजाब। चख इसका मजा, बड़ा जबरदस्त इज्जतदार आदमी है तू। ये वही चीज है जिसके आने में तुम लोग शक रखते थे। खुदा तरस लोग अमन की जगह में होंगे, बागों और चश्मों में हरीर और दीबा के लिबास पहने हुए आमने सामने बैठे होंगे। ये होगी उनकी शान और हम गोरी गोरी आहू चश्म औरतें उनसे ब्याह देंगे। वहां वो इत्मीनान से हर तरह की लजीज चीजें तलब करेंगे। वहां मौत का मजा वो कभी न चखेंगे।

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: इस दुनिया के अंदर जितने भी रिश्ते नाते हैं उन सब में अजीम रिश्ता माँ बाप का है। अगर आप 70 साल तक खाना काबा का तवाफ करके उसकी नेकियां माँ बाप को हदिया करते रहे, तब भी आप आंसू के उस कतरे का बोझ हल्का नहीं कर सकते जो आपकी बदसलूकी की वजह से आपके माँ बाप की आंख से गिरा था। अपने माँ बाप की कदर कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए और उनकी दुआएं दीजिए, आपकी दुनिया और आखिरत दोनों सवर जाएंगे।
1: पैगाम ऑन FM 107।
3: FM 107 पर रेडियो कतर की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। समीन, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछें तो मैं तो उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। इसलिए उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पा लें। सामीन, मौलाना इदरीस अबकर साहब दुआगो हैं अल्लाह ताला के हुजूर। आइए हम भी इन दुआओं में शरीक हो जाएं। ऐ अल्लाह, तू हमारी सब दुआएं कबूल फरमा ले।

أهديك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे दिल की सेहत के बारे में। क्या आप जानते हैं कि दिल की बीमारी दुनिया में सबसे बड़ी वजह हो रही है मौत की, मगर सही खुराक और छोटी छोटी आदत से हम इस खतरे को बहुत कम कर सकते हैं। तभी आपने सोचा कि आज हमने क्या खाया, या ये कि हमारे खाने में सब्जियां और फल शामिल थे या ज्यादा तली हुई और प्रोसेस्ड चीजें शामिल थी। ये सवाल जब हमसे किया जाता है तो फिर हमनी अपनी खुराक पर गौर करने पर मजबूर हो जाते हैं कि आज हमने क्या खाया है, क्या हमने किस तरह से खाया है। और जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमारे दिल के लिए मुफीद हैं, जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, उनमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट से वो भरपूर होते हैं, तो उन्हें लेना हमारे दिल के लिए बहुत बेहतरीन है। इसी तरह से नट्स हैं, जैसे कि गिरीदार मेवे और जो सीड्स हैं वो भी हमारे लिए बेहतरीन हैं। उससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, यानी अगर कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो फिर हमारा जो दिल है वो ज़्यादा सेहतमंद रहेगा। इसी तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो दिल के लिए बेहद मुफीद हैं, और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो फिश है उसमें पाए जाते हैं और बेहतरीन प्रोटीन भी हैं। मगर ये भी कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो नुकसानदेह हैं और हमें उन्हें कुछ दूर रखना है अपनी खुराक से। इससे बहुत ज़्यादा नमक जो है वो तली हुई चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं या फास्ट फूड हैं, और इस तरह से जो बहुत ज़्यादा नमक वाली अशिया हों और जो बहुत ज़्यादा फ्राइड हों उनसे आपको दूर रहना है। एक शख्स रोज़ाना बर्गर और फ्राई चिप्स जो हैं वो खाता था।

0: एक दिन वो डॉक्टर के पास गया तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर था, कोलेस्ट्रॉल की भी वार्निंग उन्हें उसे मिली। तो फिर उस शख्स ने सब्जियां, फिश और नट्स अपनी खुराक में शामिल किए गए। 3 महीने के बाद जब दोबारा उसका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल चेक किया गया तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी थी। दिल की जो दोस्त गिज़ाएँ हैं, यानी दिल को जो पसंद हैं बहुत, उसमें दालें हैं, दलिया है, ब्राउन राइस है, हरी सब्जियां हैं, फल और ऑलिव ऑयल उसमें शामिल है। छोटी छोटी जो बातें हैं वो किस तरह से हम अपनाएं कि अपने दिल को सेहतमंद रख सकें। हर खाने में एक जो वेजिटेबल है वो ज़रूर शामिल कर लीजिए। हफ्ते में 2 से 3 बार आप फिश अपने खाने में शामिल कीजिए। नमक और चीनी कम कीजिए। बहुत ज़्यादा जो फ्राइड चीज़ें हैं और प्रोसेस्ड चीज़ें हैं वो कम खाइए। रोज़ाना 30 मिनट वॉक या फिर जो लाइट एक्सरसाइज है वो कीजिए, क्योंकि सेहतमंद दिल लंबी जिंदगी और तवानाई की जमानत है। आज से हम अपनी खुराक का ख्याल रखेंगे। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी। आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: प्यारे बच्चों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ, जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी।
1: दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक भेड़िया रहता था, यानी वुल्फ। वो बहुत ताकतवर और चालबाज था, लेकिन एक दिन वो एक रीछ के साथ लड़ते हुए जख्मी हो गया। वो इतना कमजोर हो चुका था कि ना खुद शिकार कर सकता था और ना ही पानी पी सकता था। उसकी हालत बहुत खराब थी और उसे अपनी जिंदगी बचाने के लिए मदद की जरूरत थी। एक दिन जब वो जंगल के किनारे एक दरख्त के नीचे पड़ा हुआ था, एक भेड़ उसके करीब से गुजरी। भेड़िए ने उसे देखकर फौरन आवाज दी, अरे भेड़, तुम आ गई हो, तुम्हारी मदद की मुझे सख्त जरूरत है। मैं बहुत कमजोर हूँ और जंगल में पानी भी नहीं मिल रहा। बराए करम तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ कहीं से, ताकि मैं कुछ ताकत हासिल कर सकूं और फिर खुद शिकार कर सकूं। जब भेड़िए ने ये बात कही तो वो बहुत लंगड़ा रहा था और उसकी आवाज में बहुत बेबसी थी। भेड़ उसकी हालत देखकर थोड़ी देर के लिए रुक गई और गौर से उसे सुनने लगी। वो जानती थी कि जंगल में ऐसे बहुत से चालबाज और खतरनाक जानवर थे जो उसे फंसाने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन भेड़िए की हालत देखकर उसके दिल में कोई शक ना आया कि भेड़िए की मदद करना उसका सही फैसला था। तहम भेड़िए की आवाज में कुछ अजीब सी बात थी। वो खुद को इतना कमजोर और बेबस दिखा रहा था कि जैसे उसे वाकई मदद की जरूरत हो, लेकिन भेड़, जो कि बहुत समझदार थी, फौरन समझ गई कि दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तुम कह रहे हो कि तुम्हें पानी चाहिए ताकि तुम दोबारा ताकत हासिल कर सको, भेड़ ने पूछा, लेकिन मुझे ये लगता है कि तुम्हें पानी की नहीं बल्कि गोश्त की जरूरत है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मुझे सिर्फ पानी चाहिए ताकि मैं दोबारा ताकत हासिल कर सकूं, फिर मैं शिकार करके अपना खाना खुद ले सकूंगा। तुम सिर्फ मेरे लिए पानी लाकर दे दो, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। भेड़ इसकी बातों से कुछ समझ नहीं पाई। उसने अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम मुझे पानी नहीं बल्कि अपने शिकार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो, ताकि तुम मुझे

ये खा जाओ, जाओ जाओ, मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगी। ये सुनकर भेड़िया बहुत गुस्से में आ गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके जिस्म में इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो भेड़ को पकड़ पाता, इसलिए वो खामोश रहा और दिल ही दिल में अपने गहरे इरादों को सोचता रहा। लेकिन वो जानता था कि वो भेड़ को अब कुछ नहीं कर सकता था और उसे उसकी अकल पर हार माननी पड़ गई। अच्छा ठीक है भाई, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, भेड़िये ने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा। लेकिन याद रखो, एक दिन तुम्हें भी मेरी तरह मुश्किलात का सामना करना होगा और तुम्हारे पास कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। भेड़ ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और फौरन वहाँ से रवाना हो गई। वो जानती थी कि अगर उसने भेड़िये की बातों में आकर पानी पिलाने की कोशिश की होती तो वो ना सिर्फ खुद को खतरे में डालना था बल्कि उसकी मदद की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं था। तो साथियों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, बाज़ औक़ात लोग हमें अपनी जरूरत के बहाने नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और अगर हम होशियारी से काम ना लें तो हम इनके जाल में फंस सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए दूसरों की बातों को सुनना चाहिए और उनकी हकीकत को पहचानना चाहिए।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है. कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद. और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से. तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए. प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी. हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी. दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.
3: दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है. याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है. रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए. रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है. और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए, क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है. सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं. वजारत दाखिला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है. सेफ रहें और खुश रहें.
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
3: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है. एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता. सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है. किस तरह इकॉनमी, बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है. इकॉनमी के बुनियादी तस्वुरात और वैल्यूज से मुताल्लिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समाप्त कीजिए इस

0: स्पेशल सेगमेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नाजिया एफएम 107 से एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, मैं आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी को मजबूत करने की मैंने तो कसम ही खा रखी है। रोज एक नई टर्म, रोज तो नहीं कहूंगी, हर हफ्ते एक नई टर्म मैं लेकर आती हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि उस टर्म के बारे में जितनी मुकम्मल मालूमात है वो आप तक पहुंचाई जाए। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि धीरे धीरे आपकी जो फाइनेंशियल नॉलेज है, जो फाइनेंस को लेकर या फिर इकोनॉमिक्स को लेकर, जो टर्म्स को लेकर आप कन्फ्यूज रहते हो, वो कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाए। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज एक और नए इकोनॉमिक टर्म की बात करते हैं और ये टर्म है इलास्टिसिटी। प्लास्टिक ना समझिएगा इसे। अच्छा, इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी एक अहम कॉन्सेप्ट है जो किसी चीज की डिमांड या फिर सप्लाई के तब्दील होने की सलाहियत को दिखाता है जब उसकी प्राइस या किसी और फैक्टर में तब्दीली होती है। इलास्टिसिटी से हम ये समझते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड या सप्लाई किस हद तक प्राइस या किसी और फैक्टर के तब्दील होने पर तब्दील होती है। Well, पहले तो इलास्टिसिटी की मतलब क्या है इस पर बात करते हैं। इलास्टिसिटी के असल मायने हैं किसी चीज की तब्दीली के लिए जवाब देने की सलाहियत। जी हाँ, ये तब्दील क्यों हुआ इसकी जवाबदेही बनती है। इसे आम तौर पर दो तरीकों से समझा जाता है। पहला तरीका है PED, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और दूसरा तरीका है PES, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई, इसी के बीच हमारी इलास्टिसिटी का पूरा फंक्शन जो है वॉल्व होता है। दोस्तों, डिमांड की इलास्टिसिटी, यहाँ पर अगर हम बात करें PED की, तो ये डिमांड की इलास्टिसिटी को दिखाता है, यानी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड किस हद तक प्राइस के तब्दील होने पर बदलती है। अगर डिमांड ज्यादा तब्दील होती है तो उसे इलास्टिक कहा जाता है, और अगर डिमांड कम तब्दील होती है तो उसे इनइलास्टिक कहा जाता है। वहीं अगर PES की बात करूं तो यहाँ ये सप्लाई की इलास्टिसिटी को दिखाते हैं। ऊपर डिमांड था, नीचे है सप्लाई, यानी किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई किस हद तक प्राइस के तब्दील होने पर बदलती है। अगर सप्लाई ज्यादा तब्दील होती है तो उसे इलास्टिक कहा जाता है, और अगर सप्लाई कम तब्दील होती है तो उसे इनइलास्टिक कहा जाता है। चलिए इसके इस्तेमाल पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, इलास्टिसिटी का इस्तेमाल मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये डिमांड और सप्लाई के एनालिसिस में इस्तेमाल होती है। वेल, इकोनॉमिस्ट इलास्टिसिटी का इस्तेमाल मार्केट बिहेवियर, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज और गवर्नमेंट पॉलिसीज समझने के लिए करते हैं, और इसका इम्पैक्ट भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इलास्टिसिटी का असर किसी भी मार्केट या इकोनॉमी पर बहुत गहरा होता है। जैसे प्राइसिंग स्ट्रेटजी, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है तो कंपनीज को अपनी प्राइसेस को समझदारी से सेट करना पड़ेगा। अगर वो प्राइस बढ़ाते हैं तो डिमांड गिर सकती है, और अगर वो प्राइस कम करते हैं तो डिमांड बढ़ सकती है। इसलिए कंपनीज को इलास्टिसिटी की समझ होनी चाहिए ताकि वो अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को बेहतर बना सकें। एवे प्राइसेस डिसाइड नहीं होती, इसके पीछे बकायदा स्ट्रेटजी होती है। वहीं पर दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है रेवेन्यू जेनरेशन। दोस्तों, इलास्टिसिटी का असर किसी कंपनी के रेवेन्यू पर भी होता है। अगर डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस बढ़ने से रेवेन्यू गिर सकता है, लेकिन अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो प्राइस बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ सकता है। इसलिए कंपनीज को इलास्टिसिटी का पता होना चाहिए ताकि वो अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सके। वहीं पर पॉलिसी मेकिंग भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। या गवर्नमेंट्स भी इलास्टिसिटी का इस्तेमाल अपनी पॉलिसीज बनाते वक्त करते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है तो गवर्नमेंट टैक्सेस लगाने से ज्यादा रेवेन्यू हासिल कर सकती है, लेकिन अगर डिमांड इलास्टिक है तो टैक्सेस लगाने से डिमांड जो है वो गिर सकती है, जो कि कहीं ना कहीं ओवरऑल इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। चलिए एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पहला एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको PE।

ईडी के हवाले से, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मिसाल के तौर पर अगर एक रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए, आपने मेन्यू की एक पॉपुलर डिश, उस रेस्टोरेंट की एक बहुत ही पॉपुलर डिश है, उसकी प्राइस में 20% की बढ़त देखी और इससे डिश की डिमांड जो है वो आप समझ सकते हो कि 30% तक गिर गई। क्योंकि जब आपने जो डिश आपको बहुत ज्यादा पसंद थी, जब आपने देखा कि उसी सेम डिश की अब प्राइस जो है वो 20% बढ़ गई है, तो शायद आपने उस डिश को खाने का इरादा मुलतवी किया, यानी ड्रॉप कर दिया और उसकी जगह कोई दूसरी जो थोड़ी सी अफोर्डेबल डिश थी उसे जो है वो ऑर्डर कर दिया। तो इस तरह से आपकी सोच और बहुत सारे और कस्टमर्स की सोच भी प्राइस के बढ़ने से मुतासर होती, जिसकी वजह से उस डिश की डिमांड 30% तक मान लीजिए गिर जाती है। तो इस डिश की डिमांड इलास्टिक हुई है ना। इसका मतलब ये है कि लोगों ने इस डिश को खरीदना बंद कर दिया जब प्राइस बढ़ गई। इस तरह की इलास्टिसिटी को समझकर रेस्टोरेंट अपनी प्राइसिंग डिसीशंस लेते हैं, जो कि लेना जरूरी भी होता है। वहीं पर अब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं और ये टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। दोस्तों, मिसाल के तौर पर अगर एक फ्रूट वेंडर अपने फ्रूट्स की प्राइस को 15% बढ़ा देता है और इससे उनकी सप्लाई 25% बढ़ जाती है, तो इस फ्रूट की सप्लाई इलास्टिक है, समझे? इसका मतलब ये है कि वेंडर ने प्राइस बढ़ाने पर ज्यादा फ्रूट मार्केट में फराहम किए। इस इलास्टिसिटी को समझकर वेंडर अपने सप्लाई डिसीजंस लेता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वहीं पर एक और फैक्टर जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है नेसेसिटी वर्सेस लग्जरी, यानी किस चीज की हमें जरूरत है, कौन सी चीज हमारी लाइफ के लिए लग्जरी है। नेसेसिटी यानी जरूरियात की डिमांड अक्सर इन इलास्टिक होती है। मिसाल के तौर पे अगर रोटी की प्राइस बढ़ जाए तो लोग इसे खरीदना नहीं बंद करते, क्योंकि ये इनकी जरूरत है। लेकिन अगर कोई लग्जरी आइटम, जैसे मान लीजिए डिजाइनर हैंडबैग, इसकी प्राइस बढ़ जाए तो लोग इसे खरीदना बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये इनकी नेसेसिटी या जरूरत नहीं है, रेदर ये इनकी लग्जरी है जिसे बंद किया जा सकता है। तो इस तरह से लग्जरी की डिमांड इलास्टिक होती है। वहीं एक और फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। अगर किसी भी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स यानी उसके बदले दूसरा वैसा प्रोडक्ट अगर आपको अवेलेबल है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक होती है। मिसाल के तौर पे अगर कोला की प्राइस बढ़ जाए फॉर एग्जांपल, तो लोग पेप्सी या फिर किसी और सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ चले जाते हैं। इस वजह से कोला की डिमांड इलास्टिक होती है। इसके मुकाबले अगर किसी प्रोडक्ट के कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। रिया, मिसाल के तौर पे जैसे मान लेते हैं प्रिंटर की प्राइस बढ़ गई तो इंक की डिमांड भी गिर सकती है, लेकिन लोग प्रिंटर खरीदना नहीं बंद करेंगे, लिहाजा दूसरी डिमांड भी अफेक्ट नहीं होगी। तो समझे आप, यहाँ पर जो है वो डिमांड किसी ना किसी तरह से इलास्टिक है। वेल, इलास्टिसिटी का एक अहम कॉन्सेप्ट ये समझना है कि डिमांड और सप्लाई के तब्दील होने की सलाहियत और ये सलाहियत किस तरह से लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, कौन इसकी तब्दीली का असल जिम्मेदार है, कौन से फैक्टर्स एक्चुअली इसकी तब्दीली के असल जिम्मेदार है। I'm talking about demand and supply. इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये मार्केट बिहेवियर और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इलास्टिसिटी का असर किसी भी मार्केट या इकोनॉमी पर गहरा होता है और ये प्राइसिंग स्ट्रेटजीज रेवेन्यू जनरेशन और पॉलिसी मेकिंग पर असर डालते हैं। इसलिए इकोनॉमिस्ट और बिजनेसेस को इलास्टिसिटी की समझ होनी चाहिए ताकि वो डिसीजंस बेहतर

0: और कंपनी की ग्रोथ में इजाफा हो जो कंट्रीब्यूट करे ओवरऑल ग्रोथ को। वेल, मैं उम्मीद कर रही हूँ दोस्तों कि कुछ हद तक मैं इलास्टिसिटी टर्म आपको समझाने में कामयाब रही हूँ। वेल, आप अपने फीडबैक्स हमेशा हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22107। फिलहाल के लिए वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। इंशाल्लाह एक और नए इकोनॉमिक टर्म के साथ मैं वापस हाजिर होंगी। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्ला।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युति अर्रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामने के नाम रूह परवर सुन्नतों में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन सुन्नतों की याद दिलाते हैं जो हमारे दिलों को नरम और घरों को मोहब्बत से रोशन करती हैं। रहमत और शफकत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के नुमाया और साफ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ बड़ों

है स्पोर्ट्स हाइलाइट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लेजेंड की जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक एरा है। पेले फुटबॉल के इस बादशाह का असल नाम था एडसन आरंटेस डो नासिमेंटो, लेकिन दुनिया उन्हें सिर्फ पेले कहती है। पेले का जन्म 23 अक्टूबर 1940 को ब्राजील के एक गरीब इलाके में हुआ। उनकी फैमिली के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन पेले के पास एक ख्वाब था फुटबॉल के जरिए दुनिया जीतने का। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने सैंटोस फुटबॉल क्लब के लिए खेलना शुरू किया और 16 साल की उम्र में अपना पहला इंटरनेशनल गोल स्कोर किया। पेले ने अपने फुटबॉल करियर में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने ब्राजील के लिए 92 मैचेस खेले और 77 गोल स्कोर किए। उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 3 मरतबा जीता 1958, 1962 और 1970 में, जो एक रिकॉर्ड है। 1958 के फीफा वर्ल्ड कप में सिर्फ 17 साल का एक लड़का जब दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेज पर आया तो सब उसके स्किल्स देखकर हैरान रह गए। पेले ने उस टूर्नामेंट में 6 गोल स्कोर किए और ब्राजील को पहला वर्ल्ड कप दिलवाया। पेले सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकन बन गए। उनकी स्पीड, स्किल और गोल स्कोरिंग एबिलिटी ने फुटबॉल को एक नई पहचान दी। उन्होंने दुनिया भर के फुटबॉल फैंस का दिल जीते और उन्हें किंग ऑफ फुटबॉल कहा जाता है। पेले ने सिर्फ खेल के फील्ड पर नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी इंसानियत का पैगाम दिया। उन्होंने यूनिसेफ के लिए काम किया और फुटबॉल को दुनिया भर में प्रमोट किया। 2022 में दुनिया ने पेले को खो दिया, लेकिन उनकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी। पेले ने हमें सिखाया कि अगर आपके पास टैलेंट और पैशन हो तो कुछ भी मुमकिन है। पेले फुटबॉल के बादशाह थे और हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। ये थी पेले की कहानी, एक लेजेंड, एक इंस्पिरेशन और एक मिसाल। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज और सुनते रहिए स्पोर्ट्स हाइलाइट्स।

अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Aap sun rahe hain Life Hacks apni A4 Amita ke saath. Only on FM 107. Dil se desi. अस्सलाम वालेकुम, मरहबा मरहबा, मैं हूँ आपके परमीता और आज के मजेदार लाइफ हैक्स आपके लिए। तो जनाब, आज से सीन चेंज करते हैं। कैसे? मतलब एक ही जगह एक ही चेयर पर बैठे बैठे ना कभी कभी दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है या यूं कहें जंग पकड़ लेती है। तो क्या करना है? अपने रूम से निकलकर बालकनी में जाना है। अगर घर पे मजा नहीं आ रहा तो कैफे में बैठो या पार्क की किसी बेंच में बैठकर काम करो। इससे क्या होगा, नया नजारा होगा, नया आइडिया मिलेगा एंड डेफिनेटली गारंटीड आपको अच्छा लगेगा। दूसरा हैक है, बोर होने से मत डरो। यस, आजकल हम हर खाली सेकंड ना फोन से भर देते हैं। रॉन्ग, नेक्स्ट टाइम बस खाली बैठो, कुछ मत करो। लेट योर माइंड वांडर एंड खाली दिमाग शैतान का नहीं क्रिएटर का घर भी होता है बॉस। सो बेस्ट आइडियाज जो होते हैं ना वो अक्सर बोर्डम की कोक से पैदा होते हैं। तो ये भी ट्राई करके देख सकते हो और ये लाइफ हैक्स ट्राई करो तो हमें जरूर बताना। फॉर मोर लाइफ हैक्स टिप्स Stay tuned to FM 107, Dil Se Desi.
2: हवा के झोंके आज मौसमों से उठ गए।
3: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ, संडे से थर्सडे, ओनली ऑन FM 107।

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए, फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रेवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर्स यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
1: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
2: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: कानून हमें तहफ्फुज देता है और वजारत दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
4: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
5: आप सुन रहे हैं FM 107,
6: दिल से देसी।

0: FM 107. Time check. Time check.
1: जी हाँ जी, वेलकम बैक, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 6:01, और मैं वापस आ चुकी हूँ.
2: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स आरजे नाजिया के साथ, सिर्फ FM 107.

सीरियसली बोलिए ना, तो ये वाली जो म्यूजिक है ना, वो मुझे इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है. सुबह सुबह से फील आ रही होती है कि आप जो है किसी वेडिंग में आए हैं, या फिर अभी बारात जो है वो निकलने वाली है, या फिर अभी तैयारियां चली, समथिंग कुछ तो है जो इस धुन के साथ. मैं कहूँगी कि मैं एटलीस्ट आई डोंट नो इन व्हाट वेज आई टू फील कनेक्टेड, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं इसे सुबह सुबह सुनती हूँ. सो दोस्तों, मैं अब आ चुकी हूँ, पूरे 3 घंटे आपके साथ रहूँगी. और आज की जो सुबह है ना, उसका हम आगाज़ करेंगे बहुत ही खूबसूरती से और एक बहुत ही प्यारे वर्ड के साथ, और वो वर्ड है उम्मीद. जी हाँ, उम्मीद मैं कहूँगी कि

0: वो रोशनी है जो अंधेरों में भी हमें रास्ता दिखाती है. जब जिंदगी हमें और आपको ऐसे ही लगे कि यू नो कितनी मुश्किल हो गई है, हमारे जो ख्वाब हैं वो हमसे कितने दूर हो गए हैं, तब उम्मीद हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का हौसला देती है. वैसे जब रात वाकई अंधेरी हो जाती है और रास्ते कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, तो दिल में एक छोटी सी उम्मीद, यही रोशनी हमें जलाए रखनी है और इस रोशनी को हमें हवा देते रहना है, क्योंकि हर नई सुबह हमें और आपको ये सिखाती है कि जी आज आपके पास मौका है कल से बेहतर खुद को करने का या कल से बेहतर अपने दिन को बनाने का. तो बस आज भी अपने दिन की शुरुआत एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे कीजिए, हंस के मुस्कुरा के और हसल बसल में नहीं, ठहर के थोड़ा सा वक्त लेके अपने बड़ों के जो हैं वो प्रेयर्स लेके एंड ऑफ कोर्स प्रेयर्स करके. तो खैर आज उम्मीद पे तो बात नहीं होगी, लेकिन आज हम शो में जो बातें करने वाले हैं वो काफ़ी इंस्पिरेशनल होंगी, रोल मॉडल्स की होंगी और उन लोगों की भी होंगी जो हमें बेहतर इंसान बनाने में हमारी जो है वो मदद करते हैं या हमें कहीं ना कहीं हिम्मत देते हैं. तो बस आपका मेरा साथ जो है वो 3 घंटे का है और ये 3 घंटे कहाँ चले जाते वाकई मुझे नहीं पता चलता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे साथ जुड़ते हैं, अपना हालचाल मुझे बताते हैं और आप मुझे बताते हैं कि यस आप मुझे यहाँ से सुन रहे हैं. चाहूँगी कि गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस आप मुझे ज़रूर भेजिए, नंबर इज 666-22-107. और लेटर ऑन जब आप हमें कॉल करना चाहेंगे, जब थोड़ी देर बाद हमारा टॉपिक भी हम रिवील कर देंगे, तो कॉल करने के लिए नंबर होंगे 4434377. और फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के उस पार.
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है. इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं. इरशादे खुदावंदी है, वज़कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो. और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर.

0: Hi guys, welcome back. A very very good morning. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूँ नाजिया आपके साथ. It's 6:19 on the clock. और चलिए कुछ हमारे पास प्यारे प्यारे मैसेजेस जो हैं वो आ चुके हैं, तो इन्हें शामिल कर लेते हैं. सबसे पहले हमें मैसेज यहाँ पर भेजा है यूसुफ जी ने. सलाम कहते हैं और पूरी टीम को भी आपने सलाम कहा है. सो वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर दिस लवली मैसेज. और हमें मैसेज है तौफीक जी का. सलाम कहते हैं अलवकरा से. वालेकुम अस्सलाम. इसके साथ हमें बहुत प्यारा सा मैसेज किया है हमजा जी ने. अ वेरी गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग आपको. कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहे हैं आप भी खैरियत होंगे. इसके अलावा हमें सुन रहे हैं हुसैन जी. उन्होंने कहा है कि अलगोर से आपको सुन रहे हैं. थैंक यू. इसके साथ हमें मैसेज किया है, इनका नाम चेक कर लेते हैं. ऑलराइट, सुल्तान इनका नाम है. सुल्तान मोहम्मद जी, वेरी गुड मॉर्निंग. उम्मीद कर रहे हैं आप भी खैरियत से होंगी. जाबर जी, आपको भी वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर दिस मैसेज. अहमद जी हमारे साथ जुड़ते हुए, वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग आपको. यहाँ पर शकील जी हमारे साथ हैं और शायद उन्होंने कुछ पूछ तो सभी लोग रहे हैं, हम क्या ही आपको बताएं. अच्छा, थैंक यू सो मच. इसके साथ हमारे पास एक और भी मैसेज है. ये हुसैन जी का तो हमने मैसेज शामिल कर लिया. इसके नाम इनका नहीं है बट बहुत ही प्यारा सा मैसेज. थैंक यू सो मच. और हमें यहाँ शाह जी हमारे साथ जुड़ते हुए, गुड मॉर्निंग कहते हुए और कहते हैं कि मैडम हम जो हैं वकरा से आ रहे हैं. ऑलराइट, चलिए बड़ी अच्छी बात है कि आप सब लोग जो हैं वो अब अपनी ड्यूटीज़ पर या तो जा रहे हैं या जाने की तैयारी में हैं, या तो पहुँच चुके हैं या पहुँचने वाले हैं. मेरा भी SMS शामिल कीजिए, कहते हैं नूर मोहम्मद जी. सो वालेकुम अस्सलाम. देखिए जैसे ही आपने भेजा मैंने शामिल कर लिया. इसके अलावा हमें सलाम कहा है और ये आई थिंक सऊदी का नंबर है. ये कहाँ का नंबर? हाँ, +96. सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, बट इनका नाम अभी हमें नहीं पता चल रहा है क्योंकि ये शायद इनका फर्स्ट है या सेकेंड मैसेज है. आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ हमें नाम इनका नहीं पता चल रहा. चलिए जैसे ही हमें इनका नाम समझ आएगा वो भी मेंशन करेंगे. बट थैंक यू. कैसा मौसम है सऊदी में हमें बताइए थोड़ा. इसके साथ किसी ने हमें गाने की रिक्वेस्ट भी जो है वो सेंड कर दी है. देखिए गाने जो हैं वो आपकी पसंद के चलेंगे, ज़रूर चलेंगे, लेकिन एक ख़ास शो भी है जहाँ तो चलने ही चलने हैं, कोई उसमें डाउट नहीं है. और हर हाल में फजील भाई को वो गाने प्ले करने ही करने, एंड दैट इज़ कॉल्ड द रिक्वेस्ट शो. तो आपको ज़रूर मौका मिलता है, 4 से 5 कनेक्ट होइए और वो आप वहाँ पर अपने जो फेवरेट सॉन्ग उनकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ पर जो है वो जिस सॉन्ग की रिक्वेस्ट है शायद वो नहीं चल पाए क्योंकि वो काफ़ी पुराना सॉन्ग है, तो आपने रिक्वेस्ट की है. अच्छा, यहाँ एक और प्यारा सा मैसेज है. ये वॉइस नोट मुझे भेजा है और इनका भी नाम मुझे नहीं पता, सिर्फ S और B लिखा हुआ है. बट वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, अभी आपका वॉइस नोट भी मैं सुनती हूँ. चलिए, हमने आपका हाल चाल लिया, मेरा हाल चाल मैंने आपका बता दिया और अब आ जाते हैं मौसम के हाल चाल पर.
1: मौसम का हाल चाल.
0: तो आज है 23 जुलाई और आज मौसम कैसा रहेगा? आज मौसम जो है वो गर्म और धूप वाला ही रहने वाला है. दोहा और ज़्यादातर इलाकों में जो है वो आसमान बिल्कुल साफ रहेगा. इट्स कंप्लीट सनी डे. और अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो मैक्सिमम टेम्परेचर है 48 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस, बट यू विल फील लाइक 53 डिग्री सेल्सियस. और अगर ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो ह्यूमिडिटी जो है वो है तकरीबन 42%. और सुबह और जितना कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पर थोड़ा सा नमी ज़्यादा महसूस होगी आपको. इसके अलावा अगर मैं विंड्स की बात करूँ, हवा की बात करूँ, तो हवा ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट से जो है वो चलने की तवक्को है, इस तरह की तवक्को है. वहीं पर विंड स्पीड जो है वह तकरीबन 9 से लेकर 13 किलोमीटर पर आवर रहेगी. अगर मैं यूवी इंडेक्स की बात करूँ तो यूवी लेवल जो है वो बहुत हाई है, इसीलिए 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, मतलब इस बीच में, इस स्लॉट में आप डायरेक्ट धूप से बचने की भरपूर कोशिश कीजिए. वहीं पर अगर सनराइज़ और सनसेट की बात की जाए तो सनराइज़ जो है वो हुआ 4:56 AM और सनसेट हुआ 6:24 PM. तो ऑल टुगेदर जो कतर का मौसम है वो गर्म है, धूप वाला है, लेकिन हाँ हम सब जो हैं वो कहाँ चैन और सुकून से बैठने वाले हैं. जस्ट बिकॉज आज तो वीकेंड है, तो अगर आपने प्लान कर रखा है फैंटास्टिक। और अगर प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं कुछ करना है, तो आउटडोर एक्टिविटीज़ अगर प्लान करना ही करना है तो आई वुड रिकमेंड या तो बहुत जल्दी सुबह सुबह कुछ प्लान कर सकते हैं, अभी तो आज की तो सुबह निकल गई यानी फ्राइडेज़ की, और शाम में या फिर आप जो है वो शाम के टाइम बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सभी लिसनर्स को इस बात का खास ख्याल रखना है कि गर्मी से बचना है, हाइड्रेटेड रहना है। ये हम हर बार आपको याद दिलाते रहते हैं, तो थोड़ा सा ये चीज़ आपको जहन में रखनी ही रखनी है। अच्छा चलिए, मौसम के हाल चाल के बाद अब बात कर लेते हैं 23 जुलाई की। आज बड़े अच्छे अच्छे दिन ऑब्जर्व किए जाते हैं, मुझे तो पता ही नहीं होता कि ये दिन जो है इनको ऑब्ज़र्व करने के पीछे क्या पर्पस है, बट चलिए लगता है कि शायद इसी बहाने हम उस दिन पर्टिकुलरली उन चीज़ों को याद कर लेते हैं और कहीं ना कहीं एक कनेक्शन मिलता हो, शायद थोड़ा सूदिंग इफ़ेक्ट आता होगा। तो खैर, आज है नेशनल रिफ्रेशमेंट डे, तो आज का दिन हमें याद दिलाता है कि जब आप इतना बिजी हैं अपने रूटीन में, तो उसमें से थोड़ा सा ब्रेक जो है वो लीजिए, हल्का सा आप जो है वो रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा फ्रेश फील कीजिए और अपनी एनर्जी को वापस से रिस्टोर और रिचार्ज कीजिए। तो इसीलिए नेशनल रिफ्रेशमेंट डे। अब आप कैसे रिफ्रेशमेंट, किस तरह से आप अपने आप को जो है चार्ज कर पाते हैं, ये तो आपको मुझे बताना। अच्छा, एक और दिन है और अभी समझ में बैक टू बैक मैंने नोटिस किया कि बड़े सारे आइसक्रीम डे हो रहे हैं, लेकिन हाँ आज पर्टिकुलरली फ्लेवर वाला आइसक्रीम डे है, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल वेनिला आइसक्रीम डे। वैसे मुझे बताइए कि वेनिला जो है वो आप में से कितने लोगों का जो है वो फेवरेट वाला फ्लेवर है। गर्मी का मौसम है, लोगों को आइसक्रीम खाना तो बहुत अच्छा लगता है और एक तरह से एक ट्रीट हो जाती है कि कोई आपको इनवाइट करे। विंटर्स में तो कहते हैं कि लोग चलिए लेट्स हैव कॉफ़ी, लेट्स हैव टी, बट यहाँ पर समर्स में एक अच्छा सा ट्रेंड होता है, लोग कहते हैं लेट्स हैव आइसक्रीम, है ना। तो बस आज अपने लव्ड वंस के साथ आप वेनिला आइसक्रीम भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आज एक और दिन भी है, आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ निकल गई, मैं जो हूँ वो देख रही थी ये एक्चुअली है क्या चीज़। अच्छा, आज जो है वो है वर्ल्ड शोग्रेन। ये अभी मैंने जस्ट देखा, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो आज ये बेसिकली इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है जिससे कि इस ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में लोगों को बताया जा सके, उनको सिखाया जा सके, उन्हें समझाया जा सके और वो लोग जो इस कंडीशन के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको भी एक सपोर्ट मिले। तो ये भी आज दिन है। इसके बाद है इंटरनेशनल यादर डे। ये एक बड़ा ही फन ऑब्जर्वेंस है जो कहीं ना कहीं एक किसी तरह की स्टोरी टेलिंग को सेलिब्रेट करता है। पहले एक ज़माना हुआ करता था, बकायदा लोग बैठ कर कहानी सुनाते थे और कितने सारे लोग जमा हो जाते थे कहानी सुनने के लिए। अभी आज तो इतना टाइम नहीं है, हम जो है फ़ोन और मोबाइल से इसी से काम चलाते हैं, लेकिन हाँ आज अपने दोस्तों या फिर फैमिली के साथ अच्छी बातें तो शेयर कर सकते हैं। कोई अच्छा किस्सा उनके साथ शेयर करना भी स्टोरी टेलिंग जैसा ही है, ऐसा किस्सा जहाँ से उन्हें किसी तरह से पार्शली या इम्पार्शली कहीं मतलब कहीं ना किसी तरह की कोई एक इंस्पिरेशन मिले, कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई मोटिवेशन मिले। तो बस आज का दिन दोस्तों जो है वो कहीं ना कहीं हमें और आपको ये याद दिलाता है कि ज़िंदगी में थोड़ा सा रिफ़्रेश होना, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करना, थोड़ा सा वक्त निकाल के पॉज लेना और दूसरों के लिए अवेयरनेस फैलाना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आज अपने लिए कुछ वक्त निकालिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए और इस खूबसूरत से दिन को इन्जॉय भी कीजिए, क्योंकि आज वीकेंड है तो आई एम श्योर आपने ज़रूर कुछ ना कुछ प्लान किया होगा। वापस आऊँगी तो कुछ और अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगी, बताऊँगी कि अगर आपने प्लान नहीं किया है तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कौन कौन से प्लान्स आप कर सकते हैं। बट बिफोर दैट हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए शो समर मॉर्निंग्स। आई विल बी राइट बैक।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। दोस्तों समंदरी सफर के दौरान ऑयल प्लेटफॉर्म से दूर रहना कानून की पाबंदी और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आवाम को याद दिलाती है कि वो समंदर में मौजूद ऑयल प्लेटफॉर्म्स चाहे वो बड़े हों या छोटे उनके करीब जाने से परहेज करें ताकि आप किसी भी कानूनी कार्रवाई का शिकार ना हों। 2004 के कानून नंबर 8 के तहत जो कि मैरीटाइम पेट्रोलियम और गैस इंस्टॉलेशंस की हिफाजत से मुताल्लिक हैं, आर्टिकल नंबर 3 के मुताबिक कोई भी अनऑथराइज्ड शख्स किसी भी समुद्री फैसिलिटी के 500 मीटर के दायरे के अंदर नहीं जा सकता है। और इसी कानून के आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है समुद्री फैसिलिटीज के 500 मीटर के अंदर मछलियां पकड़ना या फिशिंग गियर छोड़ना मना है। मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में वाजे किया है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त जुर्माने और कैद की सजाएं दी जा सकती हैं। आपका ऑफशोर पेट्रोलियम इंस्टॉलेशंस के मुख्तलिफ ऑक्सिलरी यूनिट्स के करीब ना जाना आपको कानूनी कार्रवाइयों से महफूज रखता है। FM 107 आपसे कहता है कि अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए हमेशा होशियार रहिए। दोस्तों मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
5: FM 107.
3: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
6: Hello, all movie buffs. Attention. आप सुन रहे हैं FM 107 और मैं हूँ आपकी अमिता, आपकी अपनी फिल्मी गाइड।
7: फिल्मी गाइड
6: जहाँ मैं आपको लेकर चलूंगी हर हफ्ते सिनेमा की दुनिया के एक रोमांचक सफर में। नई रिलीज का जलवा हो या पुरानी फिल्मों का जादू, हम देंगे आपको हर फिल्म का पूरा रिव्यू।
8: रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
5: FM 107.
3: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
9: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
1: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
9: तुम इस मत कीजिए, प्रोग्राम कतर बिजनेस 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
1: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107
9: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
7: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी। याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।

0: Right guys, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नासिया आपके साथ 6:34 ऑन द क्लॉक। और चलिए कुछ आपके साथ जो है वो लोकल अपडेट्स शेयर करते हैं।
1: लोकल न्यूज।
0: तो आज की जो लोकल न्यूज है, तो सबसे पहली न्यूज इज कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने मिथराश ऐप में एक नई सर्विस ऐड कर दी है। अब आपको बताएं कि यूजर्स जो है वो क्वेरी सेक्शन के जरिए अपने सवालात इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनरल डायरेक्टरेट ऑफ कोस्ट एंड बॉर्डर सिक्योरिटी को भेज सकते हैं। जी हाँ, यूजर्स जो है वो कम्युनिकेट विद अस ऑप्शन को यूज करके इस डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी जो भी आपकी इंक्वायरी है या क्वेश्चन है उसे सबमिट किया जा सकता है। जो आपको बताया कि अभी इस आपको ऐप को किस तरह से आप यूज़ करें, तो मिथराश ऐप में क्वेरी करना या सबमिट करना, उसके लिए सबसे पहले तो आपको मिथराश ऐप जो है वो लॉगिन करनी होगी। सेकंड, व्हाट यू हैव टू डू इज़ कम्युनिकेट विद अस, ये ऑप्शन आपको नज़र आएगा तो यहाँ इसे सेलेक्ट कीजिए और फिर क्वेरीज पर क्लिक कीजिए। इसके बाद जो है वो रेलिवेंट डिपार्टमेंट आप पिक कर सकते हैं। इसके अलावा अपना सवाल है या फिर जो भी आपकी क्वेरी है उसे आप जो है वहाँ पे टाइप कीजिए। देन व्हाट यू हैव टू डू इज डेटा की एक्यूरेसी को कंफर्म भी आपको करना है। उस कंफर्मेशन के बाद एक और आपको बटन नजर आएगा और वो है नेक्स्ट। जी हाँ, नेक्स्ट बटन प्रेस करके रिक्वेस्ट आप सबमिट कर सकते हैं। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो लगातार मिथराश ऐप में नए फीचर्स को ऐड कर रही है ताकि जितने भी सिटीजन्स हैं या फिर जो रेजिडेंट्स हैं वो अपने मसाइल हैं या फिर जो सर्विसेज हैं उन्हें आसानी से सबमिट कर सके और ये कह सकते हैं कि सर्विस तक आसानी से रसाई हासिल कर सके। जी हाँ, याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि मिथराश ने पहले भी अपडेट्स में जो था वो एक्सपैट्स के लिए नई फैसिलिटी ऐड की थी जिसके जरिए वो ओवरसीज़ यानी ओवरसीज़ का जो कतर वीज़ा सेंटर है उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन फीस ऐप के थ्रू पे और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि दोस्तों, जो टेक्नोलॉजी है ना वो हमारी ज़िंदगी को रोज़ बरोज आसान बना रही है और मिथराश ऐप की इस नई सर्विस के ज़रिए अब जो है वो कोस्ट्स और बॉर्डर सिक्योरिटी से राबता करना और अपने सवालात भेजना पहले से ज़्यादा इजी हो गया है। और अगर आपको किसी बॉर्डर या फिर कोस्टल सिक्योरिटी के मुतालिक इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो ये काम अब बस एक छोटे से क्लिक के साथ शुरू होगा और ये कम्प्लीट भी हो जाएगा। तो ये बड़ी कमाल धमाल की अपडेट आपके साथ जो मैंने शेयर की। और अब कुछ और प्यारे प्यारे प्यारे मैसेजेस जो हमें यहाँ पर आप भेज रहे हैं, तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, थोड़ी देर तो खेलना बनता ही बनता है, तो ज़रूर मुझे भेजिए आप कहाँ कहाँ से हमें सुन रहे हैं। एक हमें मैसेज आया है और इनका नाम जो है बहुत ही प्यारी बात है कि नाम हमें बहुत सारे लोग जो हैं जावेद जी गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, कुछ ऐसा उन्होंने लिख दिया, मेरे गले में फंस गई कुछ बात, लेकिन चलिए अच्छा ठीक है, बहुत ही अच्छा। ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो ना हमसे वही क्वेरी कर रहे हैं, वही सवाल कर रहे हैं, कुछ लोगों को उनका प्राइस मनी अभी तक नहीं मिला है, तो आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो जायज़ भी हैं, हम समझते हैं। फयाज जी हमें गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हमारे साथ तूबा जुड़ गई हैं, गुड मॉर्निंग कहती हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इसके अलावा हमें तबस्सुम ने गुड मॉर्निंग कहा है, वेरी गुड मॉर्निंग। और हमें सुन रहे हैं आसिफ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, आपने जो है वो अपने दिन का आगाज़ कर लिया होगा, ऑफिस पहुँच चुके हैं कि नहीं पहुँचे हैं ये भी मुझे बताइए। नेशनल लेमन डे भी है आज, अच्छा ये मुझे मैसेज किया है यूसुफ जी ने, ये भी है, वाह भाई वाह, चलो तो फिर तो ये एक अच्छी बात है कि इतनी सारी चीज़ों के साथ नेशनल लेमन डे भी है, तो ये मैंने मिस कर दिया, बट चलिए आपने मुझे थैंकफुली याद दिला दिया। वैसे क्या करने वाले हैं लेमन के साथ, शिकंजी बनाएंगे या फिर बस यूं ही लेमन जो है वो सैलड्स में ही आपको अच्छा लगता है? अच्छा, कुछ लोग मैंने देखा ना बाय द वे दाल वगैरह में भी लेमन स्क्वीज करके खाते हैं। एक तो हद हो गई, मैंने एक बंदे को देखा कि वो जो है वो कोरमा था और वहाँ भी उन्होंने उसको लेमन को स्क्वीज किया और वहाँ लेमन डाल के खाया, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो खैर, हर आदमी की, हर इंसान की अपनी अपनी चॉइसेस हैं, जिसको जिसके साथ खाना जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन कई बार आप थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि भाई लेमन कौन ऐसे स्क्वीज करके कोरमे में खाता है। ठीक है, बिरयानी में तो ऑलरेडी लोग डालते ही डालते हैं, लेकिन मुझे कोरबे में थोड़ा सा अजीब सा लगा. निहारी वगैरह में तो मैंने सुना है कि लोग लेमन स्क्वीज करके डाल के खाते हैं, बट कभी मैंने ऐसा नहीं सुना कि वो कोरबे में भी डाल के खा रहा है. बट एक हमारी बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं, उनके साथ ऐसा उनको ऐसा करते हमने देखा तो हमें अच्छा भी लगा. अच्छा, यहाँ पे शहजादा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं. हैप्पी हैप्पी वीकेंड कहते हैं. वालेकुम अस्सलाम शहजादा जी, कैसे हैं आप? उम्मीद कर रही हूँ आप भी खैरियत से होंगे. एंड एक और भी प्यारा सा मैसेज. हाँ ओके, तो ये भी बहुत सारे लोग जो हैं वो लगातार हमसे सवाल कर रहे हैं, उन लोगों के पैसे उन तक नहीं पहुँचे हैं. तो प्लीज़ भाई थोड़ा और सब्र रखिए. कुछ लोगों को तो मिल गए हैं, और जिनको मिल गए थोड़ा सा वो आइए उन्हें बताइए ज़रा कि हाँ हमें मिल गए, और कितने टाइम बाद आपको भी मिले. तो खैर मिलेंगे आपको, परेशान ना हो. आगे पीछे मिलना तो 100% इंशाल्लाह चाहिए. हाँ लेकिन थोड़ा सा लेट हो रहा है अब, वो क्या ही बता सकते हैं, क्योंकि हम भी जब एडमिन टीम से जाके ना पूछते हैं तो वो भी हमें यही बता रही होती है कि ऊपर से जैसे हमें आए गए ऑर्डर्स हम स्टार्ट कर देंगे. तो लाइक वी आर स्टिल वेटिंग, सो लेट्स होप एंड प्रे कि इंशाल्लाह इस महीने में तो अब तो कुछ ही दिन रह गए, लेकिन जस्ट होप इंशाल्लाह आपको मिल जाए, इस साल मिल जाए इंशाल्लाह, अभी तो ये कहना पड़ेगा. अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है मुजाहिद जी का, हमें सलाम कहते हैं. इकराम जी हमारे साथ यहाँ जुड़ते हुए, एंड वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को. तो चलिए गुड मॉर्निंग तो हमने कर ली. अब से थोड़ी देर बाद मैं जो हूँ वो आज का हमारा जो टॉपिक है उसे भी मैं डेफिनेटली रिवील करने वाली हूँ. रईस जी ने एक बहुत ही प्यारी सी दुआ भी भेजी है, थैंक यू सो मच फॉर दिस. तो अब से थोड़ी देर बाद आज का जो टॉपिक है उसे रिवील करेंगे, उस पर बात करेंगे और हमारा आपका डिस्कशन होगा. लेकिन उसके पहले आपको हमारा नंबर लिखना होगा जिस नंबर पे आप मुझे कॉल करेंगे. नंबर है 4434377, आई रिपीट 4434377. ये हमारा नंबर रहेगा जहाँ आप और हम मिलकर इस टॉपिक को भरपूर तरीके से जो है वो एक्सप्लोर करेंगे. अच्छा, एक्सप्लोर तो करना ही करना है, और एक कॉलर भी मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, तो चलिए पहले इनसे बात कर लेते हैं. हेलो,
1: अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कैसे हैं शहजादा जी आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, हैप्पी वीकेंड.
0: हैप्पी वीकेंड आपको भी हैप्पी वीकेंड. तो आज कुछ खास प्लान किया है? अभी तो समर्स की वजह से लोग ऐसा कुछ प्लान ही नहीं कर रहे हैं. आपने कुछ किया है क्या?
1: हमारा तो आज जाएगी जमात, जाएगी एक दिन वाली.
0: अच्छा,
1: मस्जिद पे तो आज रात को जाएंगे, स्टे करेंगे, फिर कल सारा दिन वहीं रहते हैं.
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पे वगैरह होती है, बयानात होते हैं और सीखने मिलते हैं. हाँ, उसके बाद खाना वगैरह भी वहीं रहता है, फिर इशा पढ़ के वहाँ से आ जाते हैं. क्योंकि मैचेस तो बंद है वहाँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्मी है ना, तो कोई भी निकलने के लिए थोड़ा सा गुरेज करता है, तो बहुत तो इसके लिए बंद है. तो फिर वो एक दिन एक्सपेंड कर देते हैं उसमें जमात में जाके. तबलीग की जमात चलती है ना इधर, बहुत बड़ा मरकज है. एक पेपर्स ये होता है हर एक एरिया के हिसाब से, तो फिर वहाँ पे मशवरा में फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो फिर हमारे अमीर के हाथ में यहाँ की मस्जिद आई सनैया की, क्लोज में ही है, हम लोग भी सनैया में ही है.
0: अच्छा,
1: तो फिर आज आपको जाएंगे. हाँ, सब हम लोग लेके जाते हैं अपना, यानी सारा कुछ इसमें अपना ही है ना, जान माल पैसा सारा कुछ अपना ही है ना, किसी पे कुछ डिपेंड नहीं. तो हमारे खुद के अपने है ना, गैस सिलेंडर है, बर्तन है, और हम एक जगह देख कर है ना अप्रूवल लेकर तो कुकिंग करते हैं. हाँ, और उसमें खिदमत में बंदे रहते हैं, खिदमत करते हैं, और कोई उसमें रहते हैं ऐसे, मतलब पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर एक का, जो जो अमल होता है ना उस हिसाब से.
0: अच्छा, आप क्या करते हैं? आपका कोई काम होता है? आपको भी कोई टास्क दिया गया कि आपको ये काम पर्टिकुलरली देखना है?
1: देते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर लेता हूँ खिदमत में लेता हूँ, मैं कुकिंग उसमें खाना वगैरह बना के देना ना, बांटना.
0: अच्छा,
1: उसमें लेता हूँ.
0: अरे चलिए, आप खाना अच्छा बना लेते हैं, इसका मतलब. हाँ
1: हाँ हाँ हाँ तो बोलते ना ये चले जाओ वहाँ पर है ना, उसके बाद पूरा वो कंप्लीट होने के बाद फजर से हम लोग लग जाते हैं नमाज के बाद. ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट की भी तैयारी होती है, अंडे की भुर्जी वगैरह ये सब बनती है. उसके बाद फिर दोपहर का क्या रहेगा लंच में, और उसी को फिर हम लोग मतलब डिनर तक उसको ये कर देते हैं, मतलब कुछ सालन वगैरह है ना इस तरह का, जैसे गोश वगैरह हो गया, फिर राइस हो गया, तो उस तरह से फिर 3 बजे असर के बाद फिर अपना तालीम होती है, उसके बाद फिर ये होता है चाय का है ना, चाय का इंतजाम होता है, सारा कुछ मतलब एक बहुत अच्छा शेड्यूल के हिसाब से मतलब पूरा परफेक्ट होता है वो एक दिन, है ना, इस तरह निकालते हैं।
0: अच्छा कोई भी जा सकता है या फिर होता है कि बस यही लोग जा सकते हैं? कोई भी जा सकता है ऐसे?
1: कोई भी अपना नाम बताए कोई भी जा सकता है, लेकिन सारा कुछ अपना, इसमें टाइम हुआ जान माल सारा कुछ अपना, कोई किसी पे डिपेंड नहीं, क्योंकि अभी करने निकले हो ना अल्लाह की राह में ना, तो इस तरह से हाँ उलमा सब रहते हैं बड़े बड़े, सब सिखाते हैं बताते हैं ना सारा कुछ, बोले अपने टाइम पे तो इतना आसान है, इतना टाइम है सारा कुछ उसी दिन, लेकिन एक दौर ऐसा था अंबियाओं के जमाने में बताते कि वो सिर्फ निकल गए ना तो फिर उनको पता नहीं था कब घर लौटना है, कि फिर कई लोग वहीं मतलब फोत हो गए ना तो फिर वहीं रह गए, शाम गए रात गए कहाँ कहाँ गए ना इस तरह से। तो बोले हमारे लिए तो मतलब ये ना फैसिलिटीज है, तो फिर भी लोग निकालते हैं, फिर कभी यहाँ तीन दिन का भी होता है, एक दिन तीन दिन, फिर हमारे मुल्कों में चले जाते हैं तो वैकेशन पे वो 40 days होता है, फिर उसके बाद होता है 4 months कंटिन्यू, 4 months के बाद आप परफेक्ट एक मतलब अच्छे मतलब वो वहां से सीख के आते हो ना, तो फिर आप उसको फिर आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, फिर बैरी मुल्क भी जाती है ना यहाँ से कतर से, अभी यहाँ से बहुत बैच जा रहे हैं अपना इटाली के लिए जा रहे हैं और इंग्लैंड के लिए जा रहे हैं, जापान के लिए जा रहे हैं।
0: अरे वाह, अच्छा।
1: हाँ हाँ, तो हमारे जो अमीर है ना बड़े बड़े जो उन्होंने इतना वक्त लगाया है ना काफी टाइम से, तो काफी है ना, तो वैसे सब लोग जाते हैं उसमें ऐसा रहता है। हाँ
0: शहर शहर भी जाते थे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, ऐसे पहले भी हमने देखा था, हमारे अब्बा बताते थे कि जमात आई हुई है तो मस्जिदों में, तो खैर बड़ा अच्छा लगा कि आउट ऑफ कंट्री भी लोग जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और इस तरह से जो है वो फैला रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, बहुत
1: और अंदरूनी मुल्क भी सब जगह जहाँ जहाँ पर सब इस तरह से ये मतलब सिलसिला चल रहा है। और हम भी ये लोग बताते उलमा वगैरह बताते, ये पहले नबियों वाला काम था, अभी वो तो अभी है चले गए, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको आगे लेके चले, तो आप लोग इसमें जुड़े तो फायदा ही होगा, और जहाँ पर इसका मतलब एक तरतीब बनती है ना तो उसके लिए बताते हैं कि स्पेशली से ना फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाते हैं उनकी मतलब हर चीज के लिए।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छे तरीके से आप अपना वीकेंड जो है वो स्पेंड करने वाले हो और कर भी रहे हैं, पहले भी आपने एक शायद बात बताई थी मुझे, तो बहुत अच्छा, इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी ऐसा कुछ बहुत कुछ करने के लिए भी नहीं है, तो ये चीजों को आपने टॉप प्रायोरिटी पे रखा है, वेरी नाइस, फैंटास्टिक।

0: नहीं, बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह के काम आप करते हैं, इन कामों के साथ आप जुड़ते हैं, तो एक अंदर से एक सुकून आपको मिलता है। वैसे काम करके आपको खुशी मिल जाए, लेकिन इस तरह के जब आप दीन के काम के साथ जुड़ते हैं या कुछ करते हैं या दीन फैलाने का काम करते हैं, तो बड़ा एक अंदर से सुकून मिल रहा होता है। और वो कुछ भी कर लीजिए आप, आपको सुकून नहीं मिलेगा, वो आपको यहीं पर मिलेगा। ये बात तो सच है
1: जी। और फिर कितने ना नॉलेज है ना, बहुत बोलते हैं ना इसमें,
0: हाँ, जो हम नहीं कर पाते,
1: कई तरह की दुआएं, फिर वजू के चार फर्ज, पानी पीने के फर्ज, सुन्नत, कितनी ना खाना खाने से पहले की सुन्नत, बाद की सुन्नत, ये सारी चीजें ना हमको नहीं पता है ना, हाँ। तो ये सब बड़ी बारीकी सी छोटी छोटी, इसका जो असर बहुत बड़ा है ना, तो उस पे सबका ना फोकस होता है ज्यादातर, इनके अमीरों का और उलमाए कराम जितने भी है ना, तो उस पे, यानी आप एक परफेक्ट मतलब है ना, उसमें उतर जाए तो आप एक कामयाब हो जाओगे आखिरत के लक्ष्य, उनका ये फोकस रहता है।
0: हाँ। बहुत ही अच्छी बात, बड़ी खूबसूरत बात आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की। थैंक यू सो मच शहजादा जी, क्योंकि आप ही हमारे फर्स्ट कॉलर हैं, तो आपसे ही आज के हम जो कन्वर्सेशन है, जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, उसका आगाज करते हैं। आज बेसिकली कुछ कंट्रीज में जो है वो नेशनल रोल मॉडल डे सेलिब्रेट किया जाता है, कि मतलब आप अपने किसी को भी अपनी लाइफ का रोल मॉडल डिक्लेयर करें, फिर उनके लिए आप अपना जो लव है या जो आपकी फीलिंग्स हैं उसे एक्सप्रेस करें, तो ये तो उनका तरीका है। मैंने सोचा कि इसी पे सवाल करते हैं आज, लेकिन हम कुछ दूसरे अंदाज में आपसे पूछेंगे। जब हम किसी को अपना रोल मॉडल बनाते हैं, तो आपके हिसाब से क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्या उसको शोहरत हो उसके पास तो आपको लगता है कि उसे मैं रोल मॉडल अपना बनाऊं, या फिर वो एक उसूली शख्स हो तो फिर मैं उसे अपना रोल मॉडल बनाऊं, या फिर कौन कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जिन्हें देखकर आप किसी को भी अपनी लाइफ का रोल मॉडल पिक करते हैं?
1: जी जी जी, उससे पहला तो ये कि आपको जब खुद एक रोल मॉडल अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो ना, आप एक खुद एक रोल मॉडल हो, तो आपने किसको फॉलो किया था पहले?
0: ये तो अच्छी बात
1: है। आप
0: मुझे बताइए, आपने किसे किया?
1: मैंने तो अभी तक तो किसको भी नहीं किया, हालांकि मेरे अब्बू का तो ऐसी था कि उन्होंने मुझ पे मतलब मेरे पे छोड़ा था ना, उन्होंने कुछ मेरे लिए एक कोई टारगेट कुछ ये नहीं किया था स्पेशलिस्ट, ना उनका पढ़ाई पे ये था कि सब पढ़ ले, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया, उसका उलट हो गया।
0: तो आप नहीं, लेकिन मुझे लगता है आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत सारे शायद पढ़े लिखे लोग भी नहीं कर पाते। एक तो एक अच्छा इंसान बनना जिंदगी में बहुत बड़ी बात है, अगर आपके फादर साहब, अगर आपके वालिद जो हैं वो अगर हयात हैं, तो वो आपको वाकई दिल ही दिल में बहुत वो खुश होते होंगे, बड़ा प्राउड फील करते होंगे, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, जितना भी हम आपको जानते हैं, जितनी भी बात होती है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा चलिए इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं, लेट्स कीप रोल मॉडल असाइड, और फेम, शोहरत या फिर वैल्यूज, आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है और क्यों?
1: वैल्यूज
0: आपको लगता है ज्यादा इम्पोर्टेंट है?
1: क्योंकि अच्छा। हाँ, वैल्यू
0: पर कुछ लोग कहते हैं जो बहुत ज्यादा उसूल पसंद शख्स होता है तो वो बड़ा ही ज्यादा रिजिड भी होता है, ऑर्थोडॉक्स हो जाता है, वो लोग उसे मतलब उस तरह से पसंद नहीं करते। कोई है आपके जहन में ऐसा जो अपनी मतलब बात पे, अपने उसूलों पे एकदम डटा रहे?
1: एक्चुअली अपना नाजमन क्या है ना, जिंदगी की असल खूबसूरती ये तो नहीं ना कि खुद कितना ज्यादा खुश हो जिंदगी से, जिंदगी तो उससे ज्यादा सब खूबसूरत है दूसरे तुम्हारे से कितना खुश है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही, जबरदस्त।
1: तो हाँ, तो जो हम मतलब एक अपनी छाप छोड़ जाए, एक अपना कुछ ऐसा छोड़ जाए ना, जहाँ आपके ना रहने पर आपकी कमी महसूस हो, और कुछ काम मतलब अधूरा रह जाए, पेंडिंग रह जाए, कि और कोई वो नहीं कर पाए, वो रोल मॉडल नहीं बन पाए जो एक ने करके गया था, एक ने पूरा मतलब प्रूफ किया था, रिजल्ट दिया था बाकायदा एकदम बेहतरीन रिजल्ट, तो जैसे नहीं मतलब वो चीज के लिए फिर नहीं हो पाएगा ना। तो अभी मिसाल के तौर पर आप ये प्रोग्राम पे आप हो मॉर्निंग में ना, तो सारे लिस्टनर से ना स्पेशलिस्ट हो आप, क्योंकि यानी हमको एक मतलब वो होती है दिल से कि आज नाजिया में हमें प्रोग्राम सुनना है, और मतलब जल्दी से जल्दी जल्दी काम फारिग करके रेडियो ऑन करना है किसी का, क्योंकि नाजिया में हमें है ना, और कितने ऐसे लीजेंड जो बेहतरीन से बेहतरीन आरजे है ना, चाहे

0: रहमान जो इन इस्लाम का प्रोग्राम करते ना, उनकी एक तरह से उनकी एक आवाज़ उबैद ताहिर का एक स्टेटमेंट होता है, पुलिस आवाम का हर तरह से और भी बहुत से मतलब अच्छे अच्छे हैं, तो उनको एक एक सीखने की एक तड़प और चाहत होती है, एक मोहब्बत होती है ना कि भाई ये एक मतलब मतलब अगर उसको नहीं सुना उस दिन ना तो थोड़ा सा एकदम अपसेट जैसा रहता एकदम से, यानी एक इतनी दिली मोहब्बत और इतना सारा कुछ होता है क्योंकि वो एक बेहतरीन रोल मॉडल है ना। तो हम क्या ना कि सीख के अपने आप को मतलब है ना वो मोटिवेट कर सकते हैं, ना कि मतलब है ना हाँ आप जहाँ पर हो वहाँ पर आप अपनी जगह, आप अपनी कंपनी से हो, आप अपना जॉब से हो और आपकी जो स्किल्स हो और आपका जो यानी एक मतलब एग्जांपल आप स्पोर्ट्समैन हो, आप क्रिकेट की टीम हो, तो आप एक बेहतरीन मतलब रोल मॉडल है ना। क्या यार प्लेयर है यार, वो क्या छोड़ता ही नहीं हो तो क्या क्या छूटना बोले तो नामुमकिन है। तो वो मतलब हाँ टैलेंट पे है, तो अपने आपका एक टैलेंट ही है ना, वो एक रोल मॉडल है।
1: बहुत ही अच्छा कहा कि मतलब सबसे पहले हमें ये मतलब उसे आप कह रहे हैं कि रोल मॉडल मैं समझता हूँ जिससे मुझे कुछ सीखने को मिलता है ना, उसके एक्शंस उसके वैल्यू से हम कुछ सीखते हैं और बेहतर बनते हैं, तो वो हमारे लिए रोल मॉडल है। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा जवाब।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और फायदा भी होता है और कई चीजें हैं, हर हर हर एक इंसान है ना 100% है ना अपनी जगह है ना पूरा परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कई चीज उसको कहीं से मिल जाती है वो 100% कवर करने के लिए ना, तो फिर वो कंपनी 100% होता है।
1: बहुत सही, बहुत सही।
0: वो एक रोल मॉडल है यार,
1: वो है आपकी लाइफ का रोल मॉडल। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा, जबरदस्त। थैंक यू शहजादा जी, थैंक यू फॉर दिस लवली कॉल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और जैसे हैं हमेशा ऐसे ही रहिए, इससे और बेहतर हो सकते हैं।
0: कल आपने वीडियो देखी जावेद साहब की?
1: हाँ मैंने देखी, मैंने देखी जावेद जी,
0: मेरे पास भी आई थी ना, मुझे भी भेजा था उन्होंने, तो वाकई में उन्होंने इतना अच्छा कबूतरों का आशियाना बनाया है, तो मतलब क्या बेहतर मतलब यानी कितने उनके दोस्त इतने सारे और आ जाते हैं और फिर वो अपना उन्होंने डेरा नहीं छोड़ा है, वो कहीं भी जाएंगे लेकिन जावेद साहब के पास ही रहेंगे लास्ट में आके।
1: ये तो है, वो पर्शियन की खासियत भी है कि कहीं भी चले जाएं फिर वो कितने किलोमीटर्स जो है वो ट्रैवल करके वापस अपने घर आ जाते हैं। और भी हमारे लिसनर्स ये बात बताएं तो ये और इंटेलिजेंट।
0: मैंने देखा ना वीडियो, बड़ी अच्छी लगी मेरे को, बहुत जबरदस्त उन्होंने इस तरह से मैनेज किया हुआ है, तो
1: यहाँ पर आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, इट्स ऑल अबाउट रोल मॉडल्स। हमारे जो बच्चे हैं वो किसी को भी अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, मतलब उनके हिसाब से ये बंदा इसके पास शोहरत है, बड़ी गाड़ी है, बहुत फेम है, बहुत पैसा है, तो ये हमारा रोल मॉडल है। अब हम ऐसा जो बच्चों को समझा भी नहीं सकते, मैं तो इसलिए बता रही हूँ कि मैंने भी चीज़ें देखी हाल फिलहाल में, तो मुझे लगा कि मुझे पूछना ज़रूर चाहिए आप लोगों से भी कि हर इंसान की वैसे ज़िंदगी में ना कोई रोल मॉडल ज़रूर होता है, और हम भी अपने बचपन में किसी ना किसी को रोल मॉडल बनाते थे और वो की मतलब वो चेंज भी होता रहता था, आज ये है कल दूसरा है परसों कोई और है। ठीक है, रोल मॉडल्स होते हैं, चेंज भी होने चाहिए, चेंज होते रहने चाहिए अगर इस तरह की सोच है आपकी, लेकिन फिर भी कौन बेहतर रोल मॉडल है? चलिए एक चॉइस देते हैं आपको, सेलेब्स या फिर स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, आपके हिसाब से इन दोनों में ज़्यादा बेहतर रोल मॉडल कौन है और क्यों है? वैसे तो अलग अलग तरीके की डेफिनेशन है, इसके अलावा भी कुछ ऐड करना चाहते हैं देन फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। 443-443-77 इज आवर नंबर। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। हेलो,
2: सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहु। रईस जी कैसे हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, और सुनाएं आप लोग खैरियत?
1: अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। कैसी जा रही है आपकी सुबह?
2: गर्मी की शिद्दत तो भाई नहीं करके गाड़ी से ऑफिस से फिर घर यही रहता है। हाला हम लोग को भी इतना मतलब बाहर आउटडोर, लेकिन फिर भी आप लोगों से तो ज्यादा ही अच्छा पड़ता है भाई।
1: जाहिर है आपके ट्रैवलिंग हो ही जाती है अच्छी खासी, और गर्मी तो है, तो जैसे हम बार बार कह रहे हैं पानी वानी पीते रहिए।
2: मतलब फीलिंग कल मतलब 49 तक दिखा था, 47 से ऊपर जाके 49-50 के उस पर अभी तो टेम्परेचर,
1: और आज भी आपको है ना फील लाइक 53, तो अच्छी खासी जो है वो जैसे कहा भी मैंने 10 बजे से 4 बजे के बीच अच्छी खासी

0: धूप रहेगी और गर्मी का भरपूर एहसास होगा।
1: वेदर का तो मैंने अभी अभी अभी मैंने अपडेट नहीं किया, अभी नहीं देखा मैं, मतलब हाल आप इतना थोड़ा सा गाड़ी में रहते हैं, एसी रहता है तो थोड़ा सुकून रहता है।
0: हाँ,
1: लोग बड़ी गाड़ी चलाते हैं, हैवी गाड़ी।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो थोड़ा सा लाइट गाड़ी में तो भाई और ज्यादा कूलिंग रहता है, लेकिन हैवी गाड़ी में थोड़ा सा, लेकिन फिर भी गुजारा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक।
0: चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में भी खुश होना चाहिए।
1: आउटडोर जो काम करते हैं उनके ऊपर देख के ये होता है कि यार हम लोग इतना देर तक ये बंदा खड़ा हुआ है और काम कर रहा है, तो इसका हम कैसे कर पाते नहीं, लेकिन अपने सर पे पड़ता है तो वो भी निभाना पड़ता है, वो आ जाता है, वो मतलब है, ऐसा दूसरे को देख। पहले हम लोग अपने फार्मर थे, किस तरीके से घर का मतलब है जो खेत का और ये सब काम जो करते थे, अभी के बच्चे, हमारे बच्चे बिल्कुल सही तौर पे कदम रखना नहीं चाहते हैं कि मतलब हाँ किसान के घर में, हम लोग को समझ लो फार्मर हैं, तो भाई थोड़ा सा मजदूरों के साथ भी थोड़ा सा चले जाओ, देख लो कैसे क्या हो रहा है, उतना तक करने के लिए तैयार नहीं है बस उनकी अपनी, तो ये थोड़ा सा मतलब गलत है थोड़ा सा भाई उनके उसमें। अगर आदमी भूखा रहोगे तो भूखे की कदर को जानोगे, और अगर तुम तुम्हारा पेट भरा हुआ है तो फिर तुम्हें कैसे एहसास होगा कि उसको ये तकलीफ और ये सब सारी चीजें।
0: बिल्कुल,
1: तो अल्लाह तबारक ताला ने ऐसे ही हमारे लिए रमजान का ये भी कि भाई इंसान के अपने अंदर की वो भी मतलब ये आदमी को एहसास दिलाना है अल्लाह ताला को, अल्लाह का फरमान है कि ताकि तुम्हें समझ आ जाए, ताकि तुम इबादत मतलब गुजार हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, लाल्लकुम ताकिरून, लाल्लकुम तूमिनून, लाल्लकुम तहतदून। अल्लाह ताला कोई भी ये करने से पहले और फिर उसको ये नहीं कि मतलब उसे उसको तुम्हारी हमारी जरूरत, तुम्हारे इबादत की जरूरत है, क्योंकि फरिश्तों ने तो पहले कह दिया था कि अल्लाह इनको क्यों पैदा कर रहा है, ये तो बहुत फसाद करने वाले, मतलब ये लोग आपस में एक फसाद करेंगे, खूनबाजी करेंगे, हम तो तेरी इबादत के लिए बहुत ज्यादा मतलब ये है। तो अल्लाह ने कहा कि मतलब मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते हो, तो भाई इंसान को अशरफुल मखलूक इसे कि मतलब तमाम जो हालात और सिचुएशन के उसमें भी वो बंदा अपने हिसाब से ये करके और फिर फैसला लेता है कि मतलब उसके सामने दोनों चीजें एक की जाती हैं, की गई हैं, कि अगर तुम चाहो तो चाहो तो शुक्रगुजार बनो, चाहो तो तुम कुफर के मतलब बुराई की तरफ जाओ। तो हमें चूस दिया है, प्रीविल दिया गया है कि मतलब तुम्हें चूस करना है कि इसमें तुमको क्या फैसला करना है। तो ये भी चीजें बहुत बड़ी, तो हर आदमी अपने आसानी को और बुराई में आसानी उसको नजर आता है सबसे ज्यादा, और थोड़ा सा जो अच्छाई की तरफ ये है
0: इसमें थोड़ी
1: तो उसमें थोड़ा मेहनत मशक्कत और थोड़ा सा अपने वक्त का कदर सारी चीजें उसके ऊपर मतलब अप्लाई होती है। उसका एक क्राइटेरिया है कि उसको उस बाउंड्री को फलांग नहीं सकते हैं हम। अब जिस तरीके से गाड़ी हम चला रहे हैं तो गाड़ी का एक रूल है कि उस ट्रैफिक का कि भाई इस उससे आप बाहर नहीं जा सकते हो, नहीं तो हर चीज अपने मन मर्जी से जो जिधर चाहे वो गाड़ी का स्टेयरिंग मोड़े और जो जहाँ चाहे पार्किंग करे, जो जहाँ चाहे ये करे, तो फिर वो मसले खड़े हो जाएंगे ना। इंसान अगर इसी पे गौर व फिक्र कर ले दुनियावी मिसाल के ऊपर, तो अल्लाह की कुदरत के उस बहुत ज्यादा उसके समझ में आ जाएगी कि अल्लाह ने ऐसे यूं ही नहीं हमें दुनिया में भेजा है कि बस जाओ जैसे पाओ जैसे जिंदगी जी लो और उसके बाद में फिर ये करके बस चले जाओ, फिर हम कैसे मतलब उससे ये दुनिया अल्लाह ने भेजा इसलिए कि हमें और आपको कि इसमें पहले बता दिया कि तुम्हें आजमाऊ कि इसमें से नेक अमल कौन करता है, और पैम्मा शाकिर पैम्मा कपूरा कि मतलब इसमें शुक्रगुजार और दोनों के लिए हमें ये कर दिया गया है। तो आजमाना है अल्लाह ने कि मतलब हमें अब इस तरीके से कि भाई हम स्कूल में एक दिन भी ना जाएं और सोचें कि मतलब हमारा नंबर 100 का 100 मिले, तो ये कहाँ से होएगा भाई। इसके लिए बंदे को इम्तिहान से पहले तैयारी करना पड़ता है सारी चीजें, उसका रिजल्ट आने से पहले हमें मेहनत करना पड़ता है कि हम किस तरीके से अपने आप को ये करें पढ़ाई के लिए और जो जो चीजें सवालात आएंगे उसके ऊपर। तो ऐसे कुदरत का भी एक कानून बनाया गया है कि कुछ वक्त के लिए हमें और आपको मौका दिया है दुनिया में कि हम उसको किस तरीके से अपनी जिंदगी को ये करें, ये बहुत जरूरी है हमें। और ये दुनिया के भी मसाइल में देखो जो बुराई चीज है ना, अगर आदमी उस हिसाब से चलेगा तो दुनिया में भी उसे सारी चीजें उसको तहजीब मिल जाएंगी। हर चीज का एक कदर वक्त से लेके और हर चीज का वो फजूल खर्ची से लेके और सारी चीजों का उसके अंदर मतलब ये फायदा हो जाएगा कि यार ये करेंगे तो फिर आगे फ्यूचर में हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हर चीज का अगर वो अपने ऊपर इस्लाम का और दीन का अगर वो और कोई धर्म किसी को बुराई की तरफ, आज लोग अपनी मनमर्जी से जो बदल दिए हैं सिस्टम को, यही चीज उनके लिए जाने उबाल बन जाता है। सिस्टम को
0: बस इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। दैट्स राइट, बहुत ही अच्छी बात कही और हमेशा ही आप अच्छी बात करते हैं। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह कि आप टाइम निकालते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं। थैंक यू फॉर योर कॉल, बहुत शुक्रिया। हाँ नहीं, कुछ ना कुछ आपसे सीखने के लिए हमेशा हर रोज़ ही है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि
1: आपने जो मतलब ये किया, हमें ये भी देखना चाहिए कि कौन बंदा ये कोई एकदम परमानेंटली भाई पर हमारे तो रोल मॉडल हैं, उसको कहने की जरूरत नहीं। अगर हम दिन के उसमें ये रहेंगे तो हमारे बहुत से नीचे से ऊपर तक आप चले जाएंगे तो सारे रोल मॉडल हैं, लेकिन दुनिया के मिसाल में खुद आप हम देखें तो भाई जो बंदा बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत संघर्ष करके जो अपने आप को तैयार करता है, फिर उसका इखलाक कैसा है मुश्किल घड़ी में, मुश्किल घड़ी में वो अपने आप को कितना ये करके रखता है, उसके अंदर पेशेंस कितना रहता है, सब्र कितना रहता है, उस हिसाब से अगर हम उसको अपना रोल मॉडल बनाएं तो वो तकरीबन शायद है कि हमें भी वो चीज हमारे ऊपर अप्लाई हो और फिर हम भी मतलब वक्त के साथ में अपने उसको जज्बात को और उसको कंट्रोल करके लड़ना सीखें और हालात से मतलब हम ये करें।
0: और मुझे लगता है आज के टाइम में वही आपका रोल मॉडल है जो आपकी हक की आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाए।
1: जी बिल्कुल, ये नहीं मतलब परमानेंटली कि मतलब हम उसको देखें कि मतलब हर आदमी बहुत से ये हो जाते हैं मतलब बदल जाते हैं, देखें दुनिया के मतलब किस तरीके से वो बंदा हक के साथ खड़ा है सही से अगर ये कर रहा है, तो कोई भी धर्म का हो कोई भी उसका हो ये मतलब नहीं है, अगर वो सच्चाई पे और उसको मतलब साथ दे रहा है तो भाई उसको दाद देना हमारा ये मतलब ये है बिल्कुल
0: हमारा हक बनता है। कितने ऐसे जो है कैरेक्टर्स हैं जो आर्टिस्ट हैं हमारे जो बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले कर रहे होते हैं ऑन स्क्रीन, लेकिन आप देखिए रियल लाइफ में वो कितने अच्छे हीरोज हैं, वो एक्चुअल हीरोज हैं। और जो हमारे हीरोज हैं वो कई बार जो है एकदम किसी तरह का कुछ हाँ मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई सपोर्ट में नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, तो हम ऐसे तो उन्हें बहुत ज्यादा अपने रोल मॉडल्स मानते हैं, पर जब जरूरत पड़ती है तो कहीं हमें नजर नहीं आता कि वो एज अ रोल मॉडल हमारे कहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनका। तो ये चीज आपने बहुत अच्छी कही। वैसे तो दीन के एतबार से देखा जाए हमारे हैं रोल मॉडल, उसमें तो कुछ है ही नहीं।
1: लोग नाजिया ये भी है कि नाजिया बोलते हैं यार जाने दो, हमारी जिंदगी सेटल है ना, हम चल रहे हैं ना, हमारा हमें हमारे ऊपर कोई उल्टा है तो ये हमें क्या लेना देना, ये बहुत गलत सोच, बहुत बड़ी गलती है उनकी। फिर ऐसे तो इनकलाब नहीं आया दुनिया में ना, ये बड़े लोगों ने बड़े मशक्कत और बहुत तकलीफें झेली हैं
0: और हर कोई अपने बारे में ही सोचता तो शायद नहीं हो पाती इस तरह के चेंजेस दुनिया में।
1: वो अगर पिछले हिस्ट्री में ही देख ले, अभी हमारे इंडिया से लेके और हमारे जो दीन के उसमें जो बड़े बड़े मशक्कत, हम लोग इस्लाम तो एकदम हम तो मुसलमान के घर में पैदा हुए और हम सियासत से ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये इसमें सही भी नहीं है, सियासत हम अपने दीन के उसमें ही ले लें कि हमें इस्लाम कितने आसानी से मिला, कितना मतलब कि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, हमें मुसलमान ये करके, लेकिन हम किस तरीके दूसरे को जज करने से पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें किस तरीके से किस तरफ हमें मतलब रहनुमाई की गई है, हम उसपे क्या क्या मतलब हम उसपे कर। तो सबसे पहले अगर बंदे को अपने आप पे सही करे और सही करने के बाद में अल्लाह ने फिर कुरान में कहा कि अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को पहले तुम सीधा करो, सबसे ज्यादा करीब के जो रिश्ते के हैं उनको मतलब उनको ये करके बना के रखो, उनको अपना रोल मॉडल बनाओ। ये नहीं कि मतलब आप हमारे सोचने के हिसाब से कि 100 to 100 कोई नहीं मिलेगा, हर एक के अंदर इंसान है, तो उसकी कमियों को छोड़ दो, उसकी जो अच्छाइयां हैं उसको अपने ऊपर ले लो, मतलब ये करके उसकी कमियों को बहुत ज्यादा जज नहीं करना चाहिए। और हाँ अगर कहीं मौका मिले तो लोगों के बीच में ना करके उसको बल्कि अकेले में थोड़ा सा उसका रहनुमाई करें कि भाई वो वहाँ पे फला जगह पे आपने मतलब ऐसा किया था, तो वो और चार लोगों के बीच में अगर हम उसको ये करना शुरू कर देंगे तो शायद वो फिर नफरत के उसमें बदल जाए, एंगल पे वो चला जाएगा। तो मेरा ये कोशिश है कि मतलब रोल मॉडल के उसमें पूरी भरी हुई है, मतलब अगर उसके ऊपर हम देखें और आजकल जो बड़े बड़े जिस तरीके से इंडिया के उसमें गांधी ने, भाई भले वो हमारे धर्म से और उससे अलग थे लेकिन उन्होंने बड़ी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके और बहुत ज्यादा लोगों को मतलब उस पर अवेयर करके गए हैं आज के जवानों के, मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भले जो भी थे वो, जो मतलब मिसाइल मैन थे जो भी, लेकिन उनकी जो संघर्ष अपने तालीम से लेके और दुनिया को जो वो देखे गए हैं, हम उससे मतलब तो यार इतना बड़ा हमें कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं अपने तालीम के लिए, और वो बंदा मतलब एक माइनॉरिटी के उसमें रह के और किस तरीके से कहाँ से कहाँ अपने आप को ले जाके खड़ा किया, और वो मशक्कत परेशानी, और वो उसके अंदर गुरूर नहीं था कि मतलब वो बड़े मतलब म्याना रवि था उसके अंदर, जितने भी परेशानियां आई लेकिन कभी वो बंदा घबराया नहीं और ना घबरा के, बल्कि वो लोगों को एक रोल मॉडल मतलब आइडल बन के मतलब गया अपने आप को, भी लोग याद करेंगे।
0: ये रोल मॉडल्स हैं जिन्होंने इस तरह से खुद को जो है वो निखारा उभारा, जैसे दूसरों का भी यानी सोसाइटी का कम्युनिटी का भी फायदा हो, ये चीज इम्पोर्टेंट, खुद के लिए नहीं औरों के लिए भी किया।
1: हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लोगों ने नहीं छोड़ा उस वक्त के लोगों ने, तो भाई ये बुरे लोगों बुरा कहने वाले तो ये तो दुनिया के तो है, लेकिन हमें उस पे गौर करना कि मतलब ये इसमें सच्चाई क्या है, हमें खाली उसके पीछे नहीं जाना चाहिए कि यार चार लोग उसका बुराई कर रहे हैं। अभी कमेंट बॉक्स में आप जाए कोई भी अच्छी बातों को ये करता शेयर करता, उसमें दो चार तुमको निगेटिव कमेंट मिलेंगे, ये ऐसा नहीं है कि सारे पॉजिटिव आपके उस पर मतलब एक्सीलेंट करके आपको गुड वेरी गुड वेरी नाइस करके सारे नहीं मिलेंगे, उसमें कुछ ना कुछ हंसने वाले भी इमोजी उसमें डाल देते हैं तुम्हारे उस पर मजाक उड़ाने वाला। ये चीजें दुनिया में भी अगर आप गौरव फिक्र करें तो सीखने को मिल, तो उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। हम अगर हक के ऊपर ये आवाज उठाए, हम देखें कि अगर कोई कमियां रह गई तो सुधार कर ले उसको, सही है, अगर वो आए हमारे उस पे ये कर रहा है तो देखें वो मतलब उस पे हमारा कोई अगर गलती है तो उसको फिर से सुधार करें, ना कि मतलब कोई हमारे मजाक उड़ा रहा है तो छोड़ो भैया, मजाक उड़ाने वाले को तो बड़े बड़े लोगों को लोगों ने नहीं छोड़ा, तो हमारी क्या हैसियत है, हम उस पर अपने उस पर कायम रहे।
0: बहुत ही अच्छी बात कही, जबरदस्त, जजाकल्ला, थैंक यू सो मच रईस जी, थैंक यू,
1: बहुत अच्छे से आपने
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: हमारे जो लिसनर है खासकर हमारे शहजादा सलीम साहब और जावेद साहब, सारे लोगों को हम मिस करते हैं कि वो फोन करते हैं तो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और हमको उन लोगों का इंतजार रहता है। हाँ ओके, सारे लोगों को जितने हमारे दोस्त हैं सुनने वाले सबको सलाम आदाब,
0: वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों यहाँ पर बढ़ रहे हैं छोटे से मैंडेटरी ब्रेक की तरफ।

0: FM 107. Time check. Time check. Right guys, 7:12 on the clock. Welcome back. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूँ नाजिया आपके साथ.
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स आरजे नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी. नसीला नसीला तेरा नैना.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: अब तो forever ever इतना खूबसूरत सा ट्रैक आपने एंजॉय किया के श्रेया घोषाल विशाल की आवाज में एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स.
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स आरजे नाजिया के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी.
0: तो आज जिस टॉपिक पे बात हो रही है वो है आपके और हमारे प्यारे वाले रोल मॉडल्स. कौन बेहतर रोल मॉडल है आपकी नज़र में? क्या एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को आप बेहतर रोल मॉडल समझते हैं, या फिर आपके हिसाब से बेहतर रोल मॉडल्स जो हैं वो हैं स्पोर्ट्स पर्सनालिटी? आप अपनी लाइफ में किसी को रोल मॉडल मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वैसे मैं एक चीज़ तो समझती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को अपना रोल मॉडल मानते ही मानते हैं. लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपके पेरेंट्स आपके लिए रोल मॉडल हैं, लेकिन अगर

0: वो पेरेंट्स कुछ ऐसा है जो अच्छा नहीं कर रहे हैं या सही नहीं कर रहे हैं, तो क्या कभी हिकमत से आप उन्हें समझाते हैं या समझा पाए? इस तरह की कोई सिचुएशन को आपने लाइफ में इनकाउंटर किया है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कीजिए, एंड ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे बताइए कि जब पेरेंट्स को समझाना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, तो किस तरह की स्ट्रैटेजी आप अडॉप्ट करते हैं, कैसे आप उन्हें समझा पाते हैं, क्या समझा पाते हैं कि नहीं समझा पाते हैं? क्योंकि ये मैंने देखा है बहुत सारे घरों में इशू है, कहीं ना कहीं जो सोच है वो पेरेंट्स की अलग है, हमारी अलग हो जाती है, उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया एकदम अलग होता है, हमारा बिल्कुल अलग हो जाता है। अब हम जो है फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार होते हैं और शायद हम उस तरह से समझा नहीं पाते या समझाना चाहते हैं वो नहीं समझ पाते। कुछ तो ऐसा है जो हमारे और उनके बीच इस गैप को थोड़ा सा और बढ़ा देता है या थोड़ा सा और स्ट्रेच कर देता है। मैं नहीं चाहती कि किसी के पेरेंट्स के साथ किसी का भी जो है वो एक लंबा गैप हो जाए या उस तरह की कन्वर्सेशन ना हो या उस तरह से उनका इंटरेक्शन ना हो। इसलिए हम और आप जब अपने रोल मॉडल्स पिक करते हैं तो हमें ये राइट भी है कि हम अपने रोल मॉडल्स को मॉनिटर करें क्लोजली, और कोई ऐसी चीज़ है जो हमें उनके, हो सकता है उनके थॉट्स के हवाले से, हो सकता है उनकी पर्सनालिटी के हवाले से, हो सकता है कोई उनका कोई उनकी क्वालिटी है उसके हवाले से कोई चीज़ हमें नहीं अच्छी लग रही है, तो हमें इतना हक होना ही चाहिए कि एटलीस्ट हम उसे रेक्टिफाई कर सकें। क्योंकि ये पेरेंट्स तो फिर आपके अप्रोच में है, बाकी अगर हम किसी एक्टर या एक्ट्रेस को बहुत एडमायर करते हैं, उन्हें कॉपी करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, तो फिर वहाँ तक हमारी अप्रोच नहीं होती। या फिर द सेम गोज विद स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, ऐसे होते हैं लोग, उनके साथ भी हमारी जो है वो डेफिनेटली वहाँ तक हमारी जो है वो अप्रोच ही नहीं है। लेकिन अपनी लाइफ में किसी ना किसी को रोल मॉडल बनाना चाहिए। अच्छा, ये भी समझना ज़रूरी है कि रोल मॉडल्स होते कौन हैं। देखिए, सबसे पहले ये चीज़ हम समझें कि रोल मॉडल्स वो हैं, वो शख्स होते हैं या वो होते, हो सकता है ज़्यादा हो, आपके एक से ज़्यादा रोल मॉडल हों, जिनके जो एक्शंस हैं या फिर उनके जो वैल्यूज़ हैं उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और हम बेहतर इंसान जो है वो बनने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो हम अपने लिए लाइफ में रोल मॉडल्स पिक करते हैं ना, कि हम उनसे सीखें और उनसे बेहतर बनने की कोशिश करें। रोल मॉडल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से फेमस होना इज़ नॉट लाइक अ सिंपल वन मेयर क्राइटेरिया, नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका जो कैरेक्टर है वो भी बहुत इम्पैक्टफुल हो और जिस तरह का इन्फ्लुएंस वो सोसाइटी पर डाल रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। अब आजकल के बच्चे आप जानते ही हैं, जितने भी एक्टर्स हैं या और जो सेलेब्स हैं या सिंगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर और जो पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को चलो भी साइड में रखते हैं, इन सारे लोगों की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो दुनिया भर के लोगों तक आसानी से पहुँच भी जाती है। एंड सो फॉर द रीज़न लोग ऑटोमेटिकली चाह के या ना चाह के इन्हें एडमायर करने लगते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता उनकी तरह से उठना, बैठना, बोलना, यू नो, ड्रेसिंग करना, सारी चीज़ें हम चाह के ना चाह के कॉपी करना शुरू कर देते हैं बिल्कुल ब्लाइंडली। तो ये कहाँ तक ठीक है? फिलहाल मेरे साथ एक कॉल नहीं, आज जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
1: सलाम वालेकुम नाज़िया, कैसी हैं आप?
0: वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे हैं आप शिमोन?
1: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अल्हम्दुलिल्लाह, एंड कैसी जा रही है आपकी मॉर्निंग?
1: Mornings is always very good, alhamdulillah, no complaint.
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, आज मैं जो हूँ वो पूछ ये रही हूँ कि कौन बेहतर रोल मॉडल्स हैं हमारे और आपके लिए? क्या कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस यानी सेलेब्स को आप समझते हैं, या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, या फिर कोई और तीसरा जिसे आप ऐड करना चाहते हैं और क्यों?
1: मैंने अभी अभी जस्ट आपका यूनियन करा था, उसका तो आप जिक्र कर रही थी कि पेरेंट्स के ताल्लुक से।
0: हाँ हाँ, पेरेंट्स को बहुत सारे लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं।
1: बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इश्यू है वो।
0: तो कभी ऐसा होता है कि समझाना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि हम उन्हें रोल मॉडल्स मानते ही मानते, वो है ही हमारे।
1: नहीं, आप देखिए, एक बात ये है कि है वो रोल मॉडल, दूसरा आप चाहे उन्हें माने या ना माने, रोल मॉडल से है वेरी वेरी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो उसमें अच्छा, फिर जब आप साथ तो लोग होते हैं या जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, और फिर वहाँ पर जो है वो कहीं जो है ना वो फ्रिक्शन होता है समझ को लेकर, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एट सर्टेन टाइम्स। आप हमारे जैसे मेरे और मेरे पेरेंट्स के उसमें जो है ना, हम लोगों के में जनरेशन गैप जो है वो बहुत ज्यादा है यार। और मुझसे मेरे बच्चों में जो है वो जनरेशन गैप

0: नहीं है, मतलब हमने जो है वो एक हमारी जो एक मेरी जो जनरेशन है वो एक ब्रिजिंग जनरेशन टाइप से है, तो हमने वो पीछे भी देखा है, वो सब कुछ देखा है और ये सब कुछ देखा है। हमसे पीछे वालों ने जो है पीछे पीछे का देखा, आगे का उनकी इतनी बात समझ में नहीं आती
1: है। सही बात है।
0: हमसे आगे वालों ने आगे का देखा है, पीछे वालों की कोई भी बात नहीं समझ में नहीं आती। वी आर द लकी और फॉर्चुनेट वंस, वी विच इज अ ब्रिजिंग जनरेशन काइंड ऑफ अ थिंग। तो इसमें पेरेंट्स को लेकर जो है वो कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है, मुश्किल इन द सेंस कि आप उन्हें कोई बात बताना चाहते हैं और डेफिनेटली वो को नहीं समझते हैं। देन आई डोंट थिंक देयर इज, आई मीन फॉर मी देयर इज नो वन सेट रूल कि मैं ऐसे ही करता हूँ या ऐसे।
1: तो समझा पाते हैं कौन सरेंडर करता है, आप करते हैं कि पेरेंट्स करते हैं?
0: नहीं, आई डोंट थिंक किसी, अगर अगर सच्ची बात तो ये है कि अगर अगर मैं बिल्कुल ये सरेंडर की सिचुएशन आ जाए, फॉर इंस्टेंस पहले तो कोशिश करते हैं कि ना आए, बट फिर भी अगर आ ही जाए देन आई बैक आउट।
1: अच्छा, यू आर द वन। ओके,
0: यस, आई ऑलवेज बैक आउट बिकॉज़ सी ठीक है ना कि उनके पेरेंट्स की एज में, अब आप उनकी एज में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू चेंज देयर बिहेवियर।
1: ये बात,
0: या आप बहुत सी चीजें जो है वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप वो इस एज में वो चेंज कर लें। इवन फॉर मी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज सर्टेन थिंग्स एट माय एज।
1: ट्रू।
0: और अब उसमें फिर मैं अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो ये एक्सपेक्ट करूं तो वो नहीं। इसमें हम मैं जो पर्टिकुलरली मैं जो स्ट्रेटेजी करता हूं वो ये है कि जो जो चीजें उन लोगों को पसंद है तो उससे ट्रेड ऑफ करने की कोशिश करते हैं। पहले आपने जो है जैसे किसी को खाना पसंद है या कपड़े पसंद है या कहीं बाहर जाना पसंद है, तो आपने वहां से बात शुरू करी, यू ट्राई टू ईज द सिचुएशन। तो पहले आपने वहां से बात शुरू करी, बात शुरू करते करते हल्के हल्के फिर जो है आप वो उस तरफ लेकर आए जो बात आप कहना या बताना या समझाना चाहते हैं। तो वो उसमें फिर पॉजिटिवली आपने अपनी बात रखी, अगर वो मान गए तो ठीक है, अदरवाइज आई बैक आउट। दिस इज व्हाट आई डू।
1: ये अच्छी बात है, कम से कम आप जो है एहतराम करते हैं और आप हट जाते हैं। ये नहीं कि आप एकदम एक्सट्रीमली रिजिड होके उनके साथ हार्श हो या कोई ऐसी बात कहें जिससे उनका दिल दुखे, वो नहीं कहते, बट कोशिश आप करते हैं। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, मेरी कोशिश रहती है कि मैं समझाऊं।
0: नहीं, असल में क्या होता था ना, जब पहले ऐसा ही होता था कि पहले ना हम अपनी बात कहते थे और क्योंकि हमें लगता था ये बात सही है तो हमें ये लगता था कि ये क्यों नहीं मान रहे, इन्हें मानना चाहिए पेरेंट्स को ये बात।
1: सही बात है, बिल्कुल।
0: तो हम फिर रिजिड हो जाते थे एक्चुअली। कुछ दिनों के लिए ना देयर यूज्ड टू बी अ काइंड ऑफ नेगेटिविटी इन द होल एनवायरनमेंट। अब आप जो है वो नहीं देना चाहते हैं इस एज में उनको। मैं दिस इज व्हाट आई रियलाइज लेटर ऑन, यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मतलब ठीक है उन्हें करना है, सपोज उनको ये बात माननी है या नहीं करनी है, और फिर जो है वो तो उन्होंने करी नहीं, उसके अलावा और उनका दिल जो है वो हो गया।
1: सही बात है, मानना
0: तो बेटर ये है। हाँ, माना भी नहीं और कोई फायदा, मतलब आप जबरदस्ती का आपने परेशान कर तो कोई फायदा नहीं। तो देन आई रियलाइज कि इट इज बेटर कि भाई आप अपनी बात कह दें, आप बस समझाने की कोशिश करें, उनको हद तक कर सकते हैं आप अच्छे माहौल के अंदर। अगर वो कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं देन यू एक्सेप्ट एज इट इज।
1: You accepted. ये बहुत अच्छा है। ये नहीं कि आप उनसे बहस कर रहे हैं और फिर एक माहौल खराब कर रहे हैं घर का। आपको एहतराम करना ही करना है। That's what you are saying, कि ultimately आप ही हटते हैं। आप ये नहीं चाहते कि आपके पेरेंट्स हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल ऐसा ही होता है कि मान जाते हैं जो जिस हद तक मैं कोशिश करता हूँ अच्छे तरीके से समझाने की। अच्छी बात है अगर वो समझ मान जाते हैं, नहीं मानते हैं देन आई बैक आउट, नो प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी विद दैट। उसके साथ भी मैं खुश हूँ।
1: ये बात होनी चाहिए कि खुश होना चाहिए, डिसहार्टेंट नहीं होके कि नहीं नहीं मान रहे, ये तो ऐसे ही हो गए, इनको तो एज में जाके कुछ समझ में नहीं आता ना, ऑल दैट। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं और मैंने देखा अपने पेरेंट्स की सबके सामने भी इंसल्ट कर देते हैं। तो इस सारी चीजें जो है मतलब मजाक कह के कह रहे हैं तो मजाक है, दिस इज नॉट मजाक, लाइक आप सबके सामने इंसल्ट कर रहे हो, उन्हें भी एम्बैरेसिंग लग रहा है, तो इस चीज का

0: अपना ख्याल रखना जरूरी है ठीक है हमारी सोच अलग है सबकी सोच अलग है लेकिन खूबसूरती ये है कि हम जो है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ओपिनियन और सोच के साथ एक छत के नीचे रहते हैं वो भी प्यार से ये चीज इंपॉर्टेंट है ना यही तो घर बनता है हर आदमी एक जैसे सोच का हो गया तो फिर है ही क्या लाइफ में
1: आप ये देखिए ना दो भाई चार भाई बहन है पांच भाई बहन है वो भी एक सोच के नहीं हो सकते जबकि एक ही माँ के पेट से हैं
0: जी जी देखिए ना बिल्कुल
1: तो फिर आप सब... ये तो एक बड़ी मतलब ये, अच्छा ये खूबसूरती भी इसी में ही है कि वो सब एक सोच के ना हो ये भी
0: खूबसूरत
1: अगर एक ही सोच के हो जाएंगे फिर दुनिया बड़ी बेरंगीन हो जाएगी
0: वही ना बिल्कुल मसाला खत्म हो जाएगा
1: मसाला खत्म हो जाएगा और जहाँ तक मेरे रोल मॉडल की जो बात है तो मेरे लिए मतलब जो रोल मॉडल है वो अल्लामा इकबाल है मेरे लिए मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ और बहुत एडमायर करता हूँ एडमायर करता हूँ पसंद तो आई थिंक इट इज अ वेरी अंडररेटेड वर्ड आई गेस जिस तरीके का काम उन्होंने करा जितनी कम उम्र में उन्होंने वो काम करा अल्लाह ताला ने जिस सलाहियत से नवाजा उससे और जिस तरीके से काम किया अमेजिंग मतलब बहुत कमी से कोई मिसाल मिलती है ऐसी कोई
0: बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा रोल मॉडल एक तो क्लियर होना कि कौन मेरी लाइफ का रोल मॉडल है और फिर क्यों है क्यों मैंने इसे बनाया ये क्लियर होना बड़ा इम्पोर्टेंट है
1: ये कब और ये भी रोल मॉडल्स का भी हमारे मेरे ख्याल से लाइफ में ये रहते हैं फेजेस रहते हैं अलग अलग फेजेस में यू नो कीप ऑन चेंजिंग दोस रोल मॉडल्स
0: जी जी जी जी
1: तो अभी आई यू कैन नॉट एक्सपेक्ट यू नो अ 20 ईयर गाय टू मोस्टली मोस्टली या अ टीनेजर यू नो कि भाई वो ऐसा होगा अब जब हमारी टीनेज थी या हम यंग जनरेशन में थे उसमें थे तब लाइक यू नो वी हैड रोल मॉडल्स लाइक जो क्रिकेटर्स वगैरह होते थे वो सब होते थे वो होते थे बट स्लोली एज यू ग्रो अप एंड यू मैच्योर स्टार्ट सीइंग थिंग्स वेरी डिफरेंटली
0: राइट कीप्स ऑन चेंजिंग लेकिन अच्छी बात है कि कोई ना कोई हमारी लाइफ का रोल मॉडल होता है और वो शख्स होता है जिसके वैल्यूज़ को उसके एक्शंस को हम अप्रिशिएट करते हैं एडमायर करते हैं और उनसे सीखते हैं और ख़ुद को बेहतर बनाते हैं ये इम्पोर्टेंट है एग्जैक्टली
1: बड़ा मतलब बहुत बहुत ज़बरदस्त काम अल्लामा ने किया मतलब अमेजिंग मतलब मैं हालांकि मैं उनका जो अशार है या उनका जो वर्क है उसको बहुत ज्यादा याद नहीं कर पाता हूँ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कीप रिमेम्बरिंग बट जब पढ़ता हूँ उसको और समझता हूँ तो काफी मतलब हमें मतलब बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन आई गेस फॉर मी
0: बिल्कुल पहले इतनी चीजें थी भी नहीं और जिस तरह की सोच उन्होंने माशरे में जो है इवॉल्व की वो मुझे लगता है बड़ा जरूरी थी उस वक्त उस टाइम में तो बहुत इम्पोर्टेंट थी नाइस यस यस एब्सोल्युटली चलिए बहुत ही अमेजिंग कॉल हमेशा ही आपके साथ कुछ ना कुछ जो है वो एडिशनली एक्स्ट्रा कुछ सीखने के लिए मिलता है और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आते हैं थैंक यू सो मच कि आप टाइम निकालते हैं और जुड़ते हैं इस शो में Thank you.
1: Thanks, Nadia. Have a good day. Enjoy yourself.
0: Take you care. Too. Take care. Enjoy your weekend. Allah Hafiz. लाफिस और राइट और आज यहाँ पर रोल मॉडल्स की बात चल रही है वैसे डिफरेंट डिफरेंट रोल मॉडल्स की डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को हम कोशिश करेंगे कि उन्हें थोड़ा सा डिटेल में बात करें जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों के लिए उनकी लाइफ में उनके पेरेंट्स जो हैं वो रोल मॉडल्स होते ही होते हैं और अगर ऐसा हो कि आपके पेरेंट्स आपके रोल मॉडल हैं और फिर आपने देखा महसूस किया कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं या इस तरह का उनका एटीट्यूड है जो आपको लगता है कि वो सही नहीं है तो फिर आप इस सिचुएशन में क्या करते हैं क्या हिकमत से उन्हें समझाते हैं समझा पाते हैं कौन सी स्ट्रैटेजी आप बेसिकली जो है वो अडॉप्ट करते हैं वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए और इस वक्त एक कॉलर जुड़ रहे हैं हेलो
2: हाँ जी
0: हाय गुड मॉर्निंग कैसे हैं गाबा जी
2: गुड मॉर्निंग जी
0: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूंगी कि कल आपने मुझे कहा कि आवारापन मूवी का वो आप सीन देखे पिजन वाला वो मैंने जाके देखा और वो वाकई बहुत अच्छा सीन था मतलब वो जो छोटा सा सीन था और वाकई कितना अच्छा खूबसूरत सीन था जहाँ पर ये बताया गया कि अगर आप किसी को आज़ाद करते हैं तो आप कितना बड़ा काम करते हैं
2: और बिल्कुल मैडम
0: हाँ वो मैंने जाके देखा स्पेशली और मुझे बहुत अच्छा लगा सो थैंक यू आप एक तो रिलेट कर पाते हैं ऑन स्पॉट ही आपका टैलेंट है बड़ी बात है इस तरह की चीज़ें इमीजिएटली आप रिकॉल कर पाओ जो कि आसान नहीं होता बट आपने रिकॉल किया और फिर थैंकफुली आपने मुझे भी सजेस्ट किया कि मैं देखूँ
2: जी शुक्रिया मैडम आपका भी शुक्रिया क्योंकि आप लोग ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हो ना हमको मैडम
0: हमें बड़ा मजा आता है
2: जो एक हफ्ता अपना चैनल बंद था ना मैडम जैसे कोविड में बहुत सारी चीजों के बारे में हमें पता चला ना भाई, उनके बिना हम लोग नहीं रह सकते, वैसे ही एफएम के बारे में पता चला, स्पेशली 107 एफएम के बारे में.
0: सो नाइस, कितना अच्छा लग रहा है सुन के. चलिए बड़ी खुशी होती
2: है. एक्चुअली क्या है मैडम, एक वीक बंद था ना, तो मैंने क्या किया, मैं गया दुबई वाले स्टूडियोज पे, दुबई वाले चैनल्स पे, तो वो भी मैडम डिस्टरबेंस के साथ चल रहे थे. मगर वो बात नहीं है मैडम, जो अपने 107 एफएम में बात है ना, बंदा खुल के अपनी बात रख सकता है, डायरेक्टली इंटरेक्शन है मैडम.
0: हाँ, ये एक यहाँ पे एडवांटेज है जो कि आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा कि ऐसे लाइव कॉल्स कोई भी कहीं भी नहीं लेता, बट या एफएम 107 पे ये है.
2: जी बिल्कुल मैडम,
0: बिल्कुल. और हमसे कहा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करें कॉलर्स के साथ.
2: शुक्रिया मैडम जी, बहुत बहुत थैंक यू.
0: तो आज कुछ कहना चाहेंगे?
2: जी बिल्कुल बिल्कुल मैडम. मैडम ये जो आपने दो कैटेगरीज चूज की हैं, शायद आपके दिमाग में यही आई होंगी, सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स या स्पोर्ट्समैन. तो मेरे ख्याल से मैडम एक तीसरी कैटेगरी भी हो सकती है ना, साइंटिस्टों की.
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे तो बहुत सारी हैं, साइंटिस्ट हैं, रिवॉल्यूशनिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, हो सकता है ऑथर्स हों. और लेकिन मेरे एक जहन में आए पेरेंट्स भी, आपके माँ बाप जो होते हैं ना, आपके माता पिता जो होते हैं, वो भी हम सब के रोल मॉडल होते ही होते हैं. लेकिन फिर एक एंगल भी मैंने ऐड किया कि जब हम देखते हैं कि हमारा रोल मॉडल जो है, जिन्हें हम इतना एडमायर कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सही नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है. अब जो स्लेब्स हैं या जो स्पोर्ट्स पर्सन, उन तक तो हमारी अप्रोच है ही नहीं, हम उन्हें क्या सुधारेंगे, हम उनसे क्या इंटरेक्ट करेंगे. लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल पेरेंट्स को मानते हैं और हम देखते हैं कि वो कुछ ऐसा सही नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप उन्हें समझा पाते हैं, या लगता है कि क्या उन्हें समझाना चाहिए? इस तरह की कभी सिचुएशन आपने फेस की लाइफ में?
2: मैडम एक्चुअली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको.
0: हाँ जी,
2: अपने और अपने रिलेटिव्स का, नोन्स का. देखिए मैडम, माता पिता समझ जाते हैं जब तक आपकी शादी नहीं होती. टू बी वेरी
0: ऑनेस्ट. ऐसा क्यों है, ये मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों?
2: जब आपकी मैडम शादी हो जाती है ना, आप उनको समझाओगे ना, तो आप उनको लगता है ये एक ह्यूमन साइकी है मैडम.
0: हाँ.
2: भाई ये जो मेरा बेटा कोई बात कर रहा है ना, वो उसको शक की निगाह से देखते हैं मैडम.
0: हाँ, पता नहीं क्यों. सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात की. इनफैक्ट ये बात है, ऐसा
2: तो
0: क्यों है?
2: सॉरी नादिया जी, मेरे को कोई जरूरी कॉल आ गई, मैं फिर बाद में करता हूँ.
0: चलिए ठीक है, फिर आप मुझे जरूर कॉल कीजिएगा. ओके बाय. यहाँ पे कितनी अच्छी बात काबा जी ने जो है वो की, कि कई बार ऐसा होता है जब पेरेंट्स से हम, मतलब पेरेंट्स के हवाले से बात करते हैं, तो पहले तो शायद वो शायद टू सम एक्सटेंड हमें समझ पाते, लेकिन एक बार शादी हो जाती है फिर वाकई एक अलग ही सिचुएशन, एक अलग ही तरह की टोन या अलग ही तरह का परसेप्शन जो है वो देखने सुने एक्सपीरियंस को मिलता है. तो ऐसा क्यों होता है, ये भी कोई भाई कोई बहुत ही अच्छी तरीके से बता सके तो प्लीज जरूर आके बताइए. हेलो, गुड मॉर्निंग.
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आरिफ जी आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ. और आप बताइए, आपकी मॉर्निंग कैसी जा रही है?
3: मॉर्निंग अच्छी जा रही है, पराठा खा लिया है, चाय लिया है.
0: आज तो आपने जल्दी पराठा खा लिया.
3: नहीं, आज तो हो गया टाइम पे, 5-10 मिनट का इधर उधर होता है कभी.
0: अच्छा चलिए जी, बढ़िया, ब्रेकफास्ट हो गया आपका, आप तो पूरी तरह से सेट हैं. तो आज का वीकेंड का कुछ प्लान किया है आपने? कल भी आपकी ड्यूटी है?
3: हमारी 24 बोल रहा हूँ, 36 ड्यूटी होता है हम लोग का.
0: Oh, is it? एक भी दिन की छुट्टी नहीं है?
3: नहीं.
0: हाँ. चलिए फिर तो भाई आपको सल्यूट करना चाहिए, आप एक पराठा क्यों खाते दो है.
3: एक पराठा से थोड़ा चार्ज हो जाता हूँ 3-4 घंटे के लिए, फिर उसके बाद एक थोड़ा
0: इतनी टफ जॉब है, एक पराठे से नहीं गुजारा होगा आपका. पर और खाया कीजिए, खाते रहिए.
3: कंपनी खाना देती है, फिर भी वो ऐसे टाइम पे काम खलास करके जाना पड़ता है रूम. अब 4-5 बजे खाओगे तो रात का खाना नहीं खा सकते ना दोबारा. तो खाना इसी टाइम से मिलता है, 2-3 बजे हम लोगों का काम खत्म होता है.
0: ऐसे आपने के बात कही, मुझे याद आ गई आरिफ जी, सर्वर भाई. सर्वर भाई का क्या होता है, उन्हें 4 बजे आपने उन्हें खाना दिया, फिर हाँ. वो 6 बजे वो खा सकते हैं, फिर आपने उन्हें 6 बजे खिलाया तो फिर वो 8 बजे
3: मैं भी सकता हूँ. हाँ तो मैं भी सकता हूँ, कंपनी जो खाना देती है ना वो कोई नहीं खा सकता.
0: अच्छा, तो आप लोग क्यों नहीं कहते थोड़ा सा बेहतर करें खाना?
3: मैं मेरे को इस कंपनी में 10-11 महीने हो गया था तकरीबन, मैं 10-11 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ। जो 20 साल से 15 साल से आए वो एक बार भी कंप्लेंट नहीं किया, तो वो मेरा नहीं सुनेगा ना, वो तो उन्हीं लोगों का सुनेगा।
0: हाँ, वो सोचेगा अभी आपको एक साल भी नहीं हुआ है ठीक तरीके से और इतनी कंप्लेन आपने कर दी।
3: वैसे सबको मालूम है कि खाना अच्छा नहीं है, सबको पता है, सब बोलेंगे किचन में जब हम लोग खाने जाएंगे तो सब बोलते हैं खाना कैसा था, और कोई जाके ऊपर नहीं ये बोलेगा।
0: यही चीज खराब है कि लोग जो है ना वो डर के चक्कर में अपनी आवाज नहीं उठाते, हक की बात नहीं कह पाते।
3: अब मैं ऐसा एक बात बता रहा हूँ, कंपनी में ऐसे आदमी भी है ना, वो लोग बोलते हैं कि मेरे को नमक और रोटी भी देगा ना तो मैं खा के काम करूंगा, सैलरी ना दे चलेगा, पर मैं वो नमक से एक दो होते हैं, हर एक कंपनी में लगभग ऐसे होते हैं।
0: मुझे लगता है बेचारों की कितनी मजबूरी होगी जो इस तरह से कह रहे होंगे।
3: वो मजबूरी नहीं, वो अब मैं नहीं बोल सकता यार, छोड़िए अच्छा। फिर वो अलग ही मसला हो जाएगा।
0: अच्छा चलिए चलिए, इनको साइड में करते हैं, अपने रोल मॉडल्स की तरफ आ जाते हैं। अच्छा आप मुझे बताइए, पहले तो है कोई आपके पेरेंट्स को आप अपना रोल मॉडल मानते हैं अपने?
3: मैं अपने बाबा को मानता हूँ।
0: मानते हैं, अच्छा अच्छा, मान लीजिए आप उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं, फिर आपने ऐसा देखा जो कोई ऐसी आदत या कोई ऐसी चीज जो आपको उनके हवाले से अच्छी नहीं लगती, अब आप क्या करेंगे?
3: उनकी एक जो एक होता है ना मर्द का ईगो,
0: अच्छा।
3: बहुत बड़ी चीज है, पर वो उसको त्यागना चाहिए अगर आपको रिलेशन बचाना है या कोई। मेरे बाबा के पास ईगो थोड़ा ज्यादा है तो मैं मानूंगा, पर ओवरऑल बहुत अच्छे है, क्योंकि मेरे को अभी तक मैंने जो भी बोला है या मैंने सपने देखे थे उन्होंने उसको पूरा करने की कोशिश की है। और मैं अपने माँ को भी एक रोल मॉडल की तरह ही देखता हूँ। आप तो एक तो हम लोग गाँव से है,
0: अच्छा।
3: और गांव में जो रोज की पाने और वो किचकिच होता है ना, उन सब के बीच में अपने बच्चे को उस तरह से करना, और मैं सैल्यूट करता हूँ। क्यों अब जितना गांव में आपको मुश्किल से अपने बच्चे को पालना होता है उतना शायद सिटी में ना हो, प्यार होता है सबको अपने बच्चे से प्यार है, पर जो जो एक्स्ट्रा इफोर्ट लगता है गांव के औरतों में और वो शायद सिटी में ना होगा। 10-12-15 आदमी का ज्वाइंट फैमिली, उसका ऊपर अपने बच्चे को भी देखो अकेला और वो पूरा काम करके, तो वो थोड़ा होता है ना, मैंने देखा है सब बचपन से। मेरे बाबा भी लगभग 15-16 बरस की उम्र से वो बाहर ही कमा रहे हैं, और कतर में वो बहुत ही यंग एज में आ गए थे, जैसे 17-18 का उम्र था, और अभी भी इधर ही है। पर अभी मैं तो 4 साल हो गया मेरे को भी आगे, मैं बोलता हूँ बाबा चले जाओ इधर से, मैं अभी हूँ, भाई भी है, और वो बोलते हैं घर जाके मैं क्या करूँगा, काम करने वाले इंसान ऐसे है ना कि वो बैठ नहीं सकता।
0: बताओ अभी इस उम्र में भी वो काम करते ही रहना चाहते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है।
3: हाँ वो है, क्यों वो उन्होंने उनको भी एक है, मैं एक बात बोलूंगा, उनके एक दोस्त थे अभी वो घर गए थे,
0: हाँ।
3: वो कैंसिल चले गए, सेम कंपनी में थे बाबा के साथ, उसका उनका लड़का इधर आया,
0: अच्छा।
3: और वो घर चले गए कि लड़का मेरा काम कर रहा है, फिर लड़के ने इधर से पैसा भेजा बंद कर दिया। अब घर तो घर चलाने के लिए पैसा चाहिए ना,
0: हाँ जी बिल्कुल, अभी तो बच्चे को क्यों बंद किया,
3: लड़के का शादी भी नहीं हुआ, फिर अभी बंद कर दिया उसने पैसा देना, तो बाबा को एक वो डर रहता है। मैं बोल रहा मैंने बाबा को बोल रखा है बाबा आप उस टेंशन नहीं लो, जो 100 में से 100 आदमी एक जैसा नहीं होता है।
0: और क्या, फिर उन्हें अपनी तरबियत पे यकीन होना चाहिए। तो आप जब उस बच्चे जब उनसे अली से कांटेक्ट में है तो आप क्यों नहीं कहते उनको कि आपके पेरेंट्स इतना परेशान है, क्यों नहीं आप उनका ख्याल रखते हैं?
3: मैं उनको अब वो लड़का ही वैसा है, थोड़ा होता है ना कोई आदमी डिफरेंट,
0: उन्हें कोई नहीं समझा सकता,
3: वो थोड़ा होते हैं, उनको एक दो आदमी होते हैं ना उनको समझाने जाओ तो वो उल्टा ही ज्ञान देने लगते हैं, बोलते हैं मेरे को नहीं सिखाओ चलो यहां से।
0: अफसोस है, ऐसे लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, बस यही कहा जा सकता है, क्या कर सकते हैं। चलिए अच्छी बात है, आपने
3: जी मैं मानता हूं कि मैं बचपन से सीखते आ रहा हूं, मेरे को मेरे कोई चीज मैंने सुनी और वो एक दो बार मुंह से निकला हो और उन्होंने वो पूरा करके दिया है मेरे अभी तक।
0: ये भी बड़ी बात है कि आपके मुंह से कोई चीज़ ऐसी बात निकले और आपके पेरेंट्स की इतनी कैपेसिटी हो कि वो उसे पूरा कर सकें, तो कर पाते हैं, बहुत से बेचारे नहीं भी कर पाते फिर भी कोशिश करते हैं, ये बड़ी है।
3: एक किस्सा मैं बताऊंगा आपको, एक इसमें ऐसा भी था, उस टाइम हम लोग अभी घर बनाया था, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली का, तो आपको मालूम

0: तो उस टाइम जिद कर दिया, शाम का टाइम था, उस टाइम एकदम पैसे खलास हो गए थे, अभी अभी घर खरीद किया था हम लोगों ने। तो बाबा बोले अभी रात छोड़ दो, कल खा लेना, कल खरीद के लेके आऊंगा। अब मेरे को भी मालूम नहीं है क्या था दिमाग में, नहीं था उस टाइम लगभग मैं वो 10-11 साल का हूँ, बहुत जिद था। तो उस टाइम इतनी मार पड़ी ना कि वो मार फिर याद है, उसके बाद मैंने जिद करना भी छोड़
1: दिया। ये तो
0: वो एक अलग ही किस्सा, वो भूलता ही नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये भूल जाऊँ पर वो दिमाग से जाता ही नहीं।
1: चलिए, अब आप अपने बच्चे अगर कभी जिद करें रात के 9 बजे भी कोई मिठाई की फरमाइश करें, आप जरूर ला के दीजिएगा उन्हें। जैसे उनके जहन में इस तरह का कोई भी किस्सा नहीं रहना चाहिए, ये है। लेकिन कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, वरना तो इस तरह
0: से मालूम है, बाबा ने बोला है, मैंने भी वो अभी भी बोलते हैं कि मैंने कभी तुम लोगों को मारा होगा, खाने के लिए भी मारा होगा, पर उस टाइम पैसे नहीं था वो, तो मैं क्या करता। अभी वो बोलते हैं अभी तुमको क्या खाना है, तुमको क्या चाहिए, तुम बोलो।
1: बच्चा तो फिर बेचारा बच्चा ही है। लेकिन चलिए, मुझे लगता है उस मार का फायदा ही होता है। आप जो है आपने सिद्ध छोड़ी,
0: कोई भी पैरेंट की मार हो ना तो वो उसमें कुछ छुपा होता है, सीखी छुपी होती है,
1: इसमें कोई ना कोई सीख होती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। चलिए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आरिफ जी, थैंक यू फॉर योर कॉल, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, और बहुत अच्छे से आपने इस बात मतलब टॉपिक को बहुत अच्छे से एड्रेस किया, थैंक यू वंस अगेन। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कुछ लोग बेचारे ऐसे हैं, हम लोग जब हैप्पी वीकेंड, पहले मैं हमेशा बोलती थी पता है, आते ही हैप्पी वीकेंड और थर्सडेज है एंड ऑल दैट हाइप एंड ऑल। अब धीरे धीरे मुझे पता चला कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका ऑफ नहीं होता, तो फिर मैंने अब इसको बोलना कहना थोड़ा सा छोड़ दिया। मुझे नहीं अच्छा लगता कि हम तो इतना उसको जो है ना इतना प्रोपोगेट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो काम ही कर रहे होते हैं। तो भाई, जो चीज़ है उसमें आप शुक्र कीजिए और चुप रहिए थोड़ा सा। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं, चलिए बात करते हैं। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं नूर जी, आप खैरियत से?
2: मैं ठीक हूँ, आशा अल्लाह से राजी हूँ। बड़े अरसे के बाद दोबारा राबिता कर रहा हूँ।
1: अरे करीम शाह जी हैं, मुझे लगा नूर जी हैं। अरे हाँ, अभी पहचाना मैंने, बहुत टाइम के बाद आपसे मेरी बात हो रही है। देखिए, पूरा ये वीक निकल ही गया, थैंकफुली आज थर्सडे था, आपने कॉल कर ली, वरना तो मैं कहती कि पूरा वीक आप कहाँ गए थे।
2: बिल्कुल नहीं, मैं काफी अरसे से राबिता नहीं हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई एक बार फिर आप लोगों से राबिते में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। मैं अभी रेडियो ऑन करके, बस हालात कुछ ऐसे है ना, बिजी हो जाता है, मसले मसाइल, तो टाइमिंग शॉर्ट हो जाता है, चाहते हुए भी बंदा काम नहीं कर सकता।
1: हाँ, नहीं,
2: और इसके अलावा कुछ ऐसा मसला नहीं है।
1: हाँ नहीं, सही बात है। नहीं, प्लीज पहले आपके लिए आपका काम है, उसको पूरा ध्यान तवज्जो टाइम सब कुछ दीजिए, और फिर बाद में हम।
2: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज कोई मौजू कुछ
1: है करीम शाह जी, आज हम बात कर रहे थे रोल मॉडल्स की, और हमने एक पर्टिकुलरली एंगल जो है इसमें ऐड किया है कि बहुत सारे लोगों के लिए उनके रोल मॉडल्स जो हैं वो उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके जो वालदैन हैं वो उनके लिए रोल मॉडल होते हैं। अब सिचुएशन ऐसी है कि आपको पता चलता है कि आपके वालदैन जिन्हें आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, इतना एडमायर करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनकी जो सही नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे या क्या करते हैं, या कभी हुआ ऐसा आपके साथ?
2: जी बिल्कुल, बातें बड़ा बेहतरीन सवाल है, लेकिन ये वो जो ये इज्तिमाही है कि हर किसी की लाइफ के साथ ये कनेक्ट है, यानी कोई किस तरह। असल मसला ये है कि एक तो मैं शायद इस चीज पे हम बात कर चुके हैं कि मैं बचपन से ही काम करता आ रहा हूँ।
1: आपने बताया,
2: तो मुझे अपनी उम्र में सबसे ज्यादा, जो मैं अपनी उम्र को अगर मैं देखा जाए, तो मैंने अपनी उम्र की 90.9% जो मेरी जिंदगी है मैंने बाहर गुजारी है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ काश मुझे इतना मौका मिलता कि मैं अपने माँ बाप के साथ बैठ के बात करता। बहरहाल उसकी जो कुछ आदतें हैं वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा। लेकिन वो उसकी उस वो मेरे माँ बाप तक मौजूद है, उसका मुझे कोई फायदा नहीं पहुंच रहा ना। कि अगर एक बंदा दीनदार है, नमाजी है, ये उसका अपना फायदा है। ऐसा कुछ जो लाइफ में है, जो बच्चे माँ बाप के

0: साथ उन्होंने जिंदगी गुजारी है तो जाहिर है वो इस चीज पे बात कर सकते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बाहर गुजारी, जो मैं मेरे लिए जो कुछ भी है मैंने दुनिया से सीखी है, जो कुछ मैंने सीखा है ना आपसे लेकर आप तक, जो रोल मॉडल है मेरे लिए। लेकिन माँ बाप मेरे लिए काफी कदरदान है, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरे दिल के करीब भी हैं। लेकिन मेरा जो रोल मॉडल है वो ये बाहर जो मैंने जिंदगी गुजारी है पूरी जिंदगी, और आज अभी तक जो मैं अभी बात बता रहा हूँ अभी तक मैं दुनिया से मैंने सब कुछ बाहर सीखा है, मुख्तलिफ कंट्री के लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से, यानी मैं डेली कोई ना कोई चीज हम फेस कर रहे हैं तो उन चीज से हम सीख रहे हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं खुद के लिए खुद रोल मॉडल हूँ तो भी मेरे ख्याल में 95% ये बात सच है। और बाकी ऐसे काफी सारे हैं, मेरे भाइयों में भी हैं, कजन में भी हैं, दोस्तों में भी हैं, जो 25-25 साल अपने माँ बाप के साथ रहे हैं, उनको हर चीज रेडी मिला है कपड़ों से लेके खाने तक। तो और रोल मॉडल तो है ही माँ बाप औलाद के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। आप कहीं भी उसको यूनिवर्सिटी में भेजो, किसी मदरसे में भेजो, लेकिन वो घर के जो माँ बाप है ये बच्चा हमेशा हमेशा उनको देखता रहता है। लेकिन मैं यकीन जानो, मैं 6 साल से, जब मुझे इतना भी याद है कि जब मैं 6 साल का था मैं कमा रहा था बाहर जाके, तो इसीलिए जितना मैं देख रहा हूँ खुद को,
1: बाहर कमाने के लिए आपके पेरेंट्स ने आपको ज्यादा कहा कि यू नो आपको कमाना है इस उम्र से?
0: हालात जो थे ना, अच्छा, हालात जो हमारे घर के जो हालात थे वो ऐसे थे कि वो हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे ये काम करना पड़ा। और उसमें सबसे ज्यादा रोल मॉडल जो थे वो मेरे माँ बाप थे, क्योंकि जाहिर है या तो उस टाइम इलम की कमी थी या तालीम की कमी थी, या ये पुरानी बात है, ये मेरे ख्याल कोई 85-86 की बात मैं कर रहा हूँ। तो वहां से अगर आप देखें तो कम से कम 40 साल हो रहे हैं,
1: बताइए।
0: तो 40 साल पहले और अभी का काफी जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, यानी मैं अगर स्कूल नहीं गया मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ, कमा रहा हूँ। लेकिन अगर बात रोल मॉडल की हो तो मैं ये तो ठोकर खा खा कर सीख चुका हूँ। कहते हैं ना, अकल बादाम और पिस्ते खाने से नहीं बढ़ता। जब बंदा ठोकर खाएगा तो देखो, मैं आपसे कितना चीजें सीख चुका हूँ ये 4-5 साल से, जब मैं इधर कतर में, मुझे तो 7-8 साल हो रहे हैं जब ये मैं FM 107 को सुन रहा हूँ, और जब मैं कॉल करता हूँ मैं जो सुनता हूँ वहां सीख लेता हूँ, फिर जब मैं बात करता हूँ तो कुछ ऐसी बात जो मैं कर लेता हूँ उसके हवाले से जो मुझे जवाब मिलता है, तो ये मेरी यही मेरा रोल मॉडल, यही चीजें मैं सीखता हूँ। आगे जब मैं बैठता हूँ जिधर महफिल में तो ये मौके आते हैं, क्योंकि ये रोजमर्रा वाली गुफ्तगू है, ये तो हमारी लाइफ से ये सारी चीजें हैं, जो चीजें अभी हम आपस में बात कर रहे हैं, ये हम यहाँ से हटकर भी जैसे आप अपने दोस्तों से मिल रहा है या अपने फैमिली में बहन भाई जिस तरह मैं हूँ, तो ये बातें हम दोहराते हैं डेली बेसिस पे। तो जहाँ तक मैं अपनी जाती अपने आप का बात बता रहा हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि मैं खुद अपने लिए रोल मॉडल हूँ तो मेरे ख्याल में कम नहीं होगा।
1: ये भी अच्छी बात, सही कहा आपने, बहुत अच्छा कहा। आप पता नहीं कितने लोगों के लिए रोल मॉडल हो, वो आपका जो डेडिकेशन है उसे देख रहे हैं, आपके हार्डवर्क को देख रहे हैं।
0: मैं भूल गया था, आपने बताया। और मैं रोल मॉडल हूँ, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो अभी जिनको मैं यहाँ चला रहा हूँ, जिनको अपने पास रह रहा हूँ, यकीन जाने वो अल्लाह जाने मैं जानता हूँ। लेकिन कभी हाँ मुझे एक बार फिर मैं ये बात करता हूँ, जिसके माँ बाप जिंदा हैं उनकी इज्जत करें, ये एक बहुत बड़ी नियामत है, बहुत बड़ी नियामत है,
1: बिल्कुल सही।
0: लेकिन उस माँ बाप से मैं यही कहता हूँ कि कोशिश करो आपके बच्चे के माइंड में, जेन में जो बात आप समझाओगे वो जल्दी बैठने वाली है, किसी टीचर, किसी स्कूल, किसी मदरसे से नहीं है। हर बच्चे के लिए माँ बाप रोल मॉडल है, ये कॉमन है ये बात, अगर वो ट्राई करे बताएं समझाएं। क्योंकि मेरे बहुत बड़ी फैमिली है, मैं इस चीज को ट्राई कर चुका हूँ। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, मेरे जो बेटे हैं ना वो इतने बड़े नहीं है, पर शुक्र है 1-10 साल का है, 1-7 साल का है।
1: अच्छा,
0: यानी अगर मैं उसको कॉल करता हूँ ना कि ये नहीं करना है, तो जो घर में मेरे भाई लोग है, बड़ी फैमिली है, हम 5-6 भाई एक साथ रहते हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनकी बात उसके ऊपर मैं अपनी वाइफ से, मुझे ये चीजें वो बता रही है कि जब आप उन्हें मना करते हैं तो 1 हफ्ते तक बिल्कुल साइलेंट, जैसे खामोश पानी है ना।
1: कितना बड़ा आपका दबदबा और रोब है माशाल्लाह, अब यहाँ से डांट दे तो बच्चे वहाँ मान लेते हैं।
0: जाने मैं एक बात और करता हूँ, शायद किसी को समझ में नहीं आया, तो अभी तो हालात चेंज हो गए। आज से 8-10 साल पहले वो मेरा कमीज लटका था,

0: ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਬੋਲਤਾ ਯੇ ਦੇਖੋ ਕਾਕਾ ਅਭੀ ਆ ਰਹਾ ਕਪੜਾ ਪਹਿਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਸ ਉਹ ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਤਾ ਥਾ ਯਾ ਯਾਰ ਯੇ ਤੋ ਵਾਕੀ ਤੋ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ੇ ਐਸੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਇਤਨਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਬੱਚੋਂ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਬ ਘਰ ਪੇ ਹੋਤਾ ਹੂੰ ਤੋ ਸਾਰੇ ਮੁਝੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਝੇ ਕਾਕਾ ਕੀ ਡਿੱਕੀ ਮੇ ਸੋਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਟਾਂਗੋਂ ਪੇ ਕੋਈ ਪੈਰੋਂ ਪੇ ਕੋਈ ਪੰਜ ਛੇ ਬੱਚੇ ਬਸ ਖਿੰਚ ਰਹੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ
1: चलिए जी बड़े आप देखिए आप उनके लिए रोल मॉडल हैं और आपने तो खुद ही अभी कहा कि मैं रोल मॉडल हूँ बहुत सारे लोगों के लिए तो मैं आपसे कहूँगी ये आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है
0: बिल्कुल
1: और आपको इसे निभाना है जब लोग आपको रोल मॉडल अपना मनाते हैं मानते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है उसे बहुत अच्छे तरीके से निभाना है
0: मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि बंदे की जो सबसे बड़ी चीज है ना वो पैसा नहीं है वो कद जवानी खूबसूरती सेहत बॉडी ये चीजें गोल्ड चांदी ये चीजें नहीं है मैं हमेशा जब बात करता हूँ मैं कहता हूँ भाई किरदार पे किरदार होनी चाहिए काला सफेद गोरा पीला नीला ये चीजें नहीं है आजकल उसका दौर है ही नहीं पहले भी नहीं था लेकिन हम लोग इस चीजों को थोड़ा देखते थे अगले के बाल देखो पता मतलब ये चीजें किसी के ऐप ढूंढ रहे थे कि आप इस तरह लग रहे ये चीज अभी भी है कुछ इलाकों में है लेकिन इंसान में ये चीज पाया जाता है वो कोशिश कर रहा है कि मैं अगले से खूबसूरत लगूं मतलब वो एक चीज है उसकी माइंड में अल्लाह ने उसको बनाया ऐसा है कि वो चाहता है कि मैं तवज्जो मेरे तरफ हो लेकिन असल मसला अगर कोई चाहता है किसी की तवज्जो उसकी तरफ हो तो सच्चाई के साथ ना छोड़े चाहे कुछ भी हो सच्चाई नंबर दो किरदार सही होना चाहिए कुछ भी हो जाए काम छोड़ना पड़े छोड़े लेकिन आपके किरदार पे आंच नहीं आनी चाहिए तो जिसका किरदार सही होगा ना वो अगला कैसे भी देखता हो खुद ब खुद लोगों में वो फेमस हो जाता है अपने फैमिली में अपने इलाके में अपने एरिया में तो जिधर जिधर रे के जाता है ना लोग उसको याद करते रहेंगे कि यार कोई आया था रे के चला गया यही वो चीज है
1: बिल्कुल
0: तो मरने के बाद तो रहते ही दो चीजें ना बुराई और अच्छाई
1: सही बात है
0: तो अच्छाई के लिए आपको किरदार करनी चाहिए ना ताकि आपको नस्ल तक मैं इस चीज को देख रहा हूँ काफी हमारे फैमिली में यानी 200 साल पहले जो लोग गुजरे हैं आज भी वो याद कर रहे हैं फलाने का जो वो दादा था वो परदादा था अभी भी याद हो रहे हैं जो उनकी किरदार है तो मुझे जब पता चला मैंने ये चीज समझ लिया कि ये सारी चीजें किरदार के होते हैं तो सबसे बड़ी बात चाहे वो मेल हो फीमेल हो
1: बहुत अच्छी बात जबरदस्त करीम शाह जी थैंक यू सो मच बहुत दिनों बाद आप जुड़े फाइनली जुड़े और उम्मीद करें कि अब आपसे हमारी बातचीत होती रहेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी
0: इंशाल्लाह
1: चलिए थैंक यू सो मच जजाकल्लाह ख्याल रखिए आपको भी वालेकुम अस्सलाम ऑलराइट दोस्तों इसी के साथ एक छोटा सा मैंडेटरी ब्रेक और हम यू गए यू आए

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check. Right guys, time for the time check. और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 8:03 और हम फाइनली अपने शो के थर्ड आर में एंट्री ले चुके हैं और इस वक्त इस टॉपिक को भी जल्दी से मैं कंक्लूड करना चाहूंगी।

0: जिससे कि हम और सेगमेंट्स पर भी आ सके क्योंकि आ ही नहीं पाते. तो एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बात करते हैं. आर वी कनेक्टेड? आई थिंक यस वी आर. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कौन है हमारे साथ?
1: जी समद बोल रहा हूँ. मैडम जी कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ. समद आप कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ.
0: तो आज का आपने हमारा
1: टॉपिक क्या है?
0: अच्छा ओके.
1: नहीं मैं ज्यादा सुन नहीं पाया था.
0: अच्छा आप सुन नहीं पाए थे.
1: मैं पूछ रहा हूं.
0: हाँ वैसे आज हम बात कर रहे थे रोल मॉडल्स की और उसमें मैंने एक एंगल रखा है कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपके रोल मॉडल हैं और आपको समझ में आता है कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सही नहीं है, तो क्या आप उन्हें हिकमत से समझाते हैं, समझा पाते हैं, या फिर क्या करते हैं, क्या करना चाहिए?
1: हाँ ये बड़ा मतलब सेंसिटिव टॉपिक है. वैसे तो रोल मॉडल जो है सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम जो है हमको रोल मॉडल पूरी दुनिया के लिए, नॉट ओनली मुस्लिम शाह एनी बड़ी, पूरी दुनिया के लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बनाकर दुनिया में भेजा.
0: सही.
1: जो कि हमको फॉलो करना चाहिए. अगर हम उस चीज को फॉलो करेंगे तो हमारी जिंदगी की सारी चीजें आसान हो जाएगी.
0: बिल्कुल.
1: और ये जो हिकमत रवेशी की जो जिस तरीके से जिंदगी गुजारी जाती है वो भी हमको सारी चीजें पता चल जाएगी, क्योंकि हर मरहले से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमारे नबी को गुजारा है ताकि कोई ये ना कह सके कि ये तो उनके ऊपर आया ही नहीं था. तो हर चीज से मतलब दुनिया में जिस भी इंसान को जो जो भी तकलीफ गुजरती है वो सारी तकलीफें इनफैक्ट उससे ज्यादा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो हमें चाहिए क्या, हमें रोल मॉडल उन्हें बनाना होगा ताकि हम जो है हमारी जिंदगी के तमाम मसाइल को हम हल कर सकें विद द हेल्प ऑफ कुरान ऑल्सो, उनकी जिंदगी को देखते हुए. अब यहाँ पर वालिदैन हमारे कुछ ऐसा करते हैं तो हमें उन्हें बहुत ही जो है मोहब्बत और प्यारे अंदाज से उनको पहले चीज तो ये बताना नहीं है कि उन्होंने ये चीज गलत की है, जो कि टोटली रॉन्ग है. क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में जब हम कुछ गलत किया करते हैं, कुछ ऐसा होता है, तो हमारे वालदेन हमें जो है डायरेक्टली नहीं कहते हैं, इनडायरेक्टली करके कुछ ऐसी एक्टिविटी बताते हैं कि जिससे हमें एहसास होता है कि हमने ये चीज गलत की थी. तो उसी तरीके से हमको चाहिए कि हम जो है हम उनको इनडायरेक्टली कुछ चीजों को इन अ सॉफ्टर मैनर कि जो है उनको इस चीज का फील ना हो कि जो है हम उनको जता रहे हैं या फिर बता रहे हैं, क्योंकि एक रेस्पेक्ट तो अपनी जगह है और दूसरी चीज के आप जो है इस चीज का एहतियात रखें कि आप अपने अखलाक को नीचे ना आने दें, अपने मयार को नीचे ना आने दें. ये तो पेरेंट्स की बात हुई और बाकी दूसरों के साथ में भी आपके जो है रवैये कुछ इसी तरीके से रहने चाहिए मेरे नजरिए में.
0: बिल्कुल सही कहा.
1: चाहे वो कोई भी रहो, पेरेंट्स रहो या कोई भी रहो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज दुनिया में अखलाक होते हैं. आपके अखलाक ही आपको जो है एक रोल मॉडल के जरिए से पेश करवाते हैं दुनिया में.
0: बिल्कुल सही बात है
1: कि भाई देखो उनको देखो कैसे है करके ये ऐसा. तो लोग अगर जो पैसे को तरजीह देते हैं और जो अपने पोजीशंस को तरजीह देते हैं और जो है अपनी क्या कहते हैं अपने दौलत को तरजीह देते हैं, एक्स वाई जेड जो भी दुनियावी चीज से जुड़ी हुई है वो जो है टेम्पररी है. सारी चीजें एक दिन खत्म हो जाएगी, बंदा डिप्रेशन में चला जाए, क्योंकि आजमाइश अल्लाह ने रखी है, कहीं ना कहीं से तो आजमाइश होगी. तो हमको चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलेंगे, जिस तरीके से हम अच्छे अखलाक रखेंगे, जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए भी पसंद करें, और जो है हमारे नजरियात जो हमारे अपनों के लिए होते हैं वो दूसरों के लिए भी रहना चाहिए, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई भी जो भी हमारे साथ बुरा कर रहा है हम उसके साथ अच्छा करें. देखिए कहने सुनने के लिए बातें बड़ी अच्छी होती है, लेकिन अमल पैरवी में जब बंदा आता है ना तो वो बहुत ज्यादा मतलब तकलीफें होती है. जैसे कि कोई एक बबूल के पेड़ पर जो है आप एक रेशम का कपड़ा डाल के खींचो, उस तरीके से ये अमल होते हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान होते हैं. धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बना के रखनी होती है. आप जो है करते रहे सबर का दामन थाम लेंगे ना तो सारी चीजें आसान हो जाएगी. सारी चीजें हाँ कड़वे घूंट भीने पड़ेंगे.
0: सही बात है. बहुत कुछ सहना पड़ेगा, सब्र जब्त करना पड़ेगा. बिल्कुल सही कहा.
1: हमें जैसा बुखार आता है हमारी जिंदगी में, जुकाम होता है, छोटी छोटी चीजें होती है जिसपे हम मरहम पट्टी करते हैं और जो है कड़वी दवाएं पीते हैं, तब जाके वो ठीक होता है, फिर हम हमारी जिंदगी में नॉर्मली चल पड़ते हैं, सही है ना? तो उसी तरीके से हमारी जिंदगी में भी कुछ लोग इस

0: तरीके से आते हैं हमारी लिए इबरत बनकर, लेसन बनकर, कि अल्लाह ने इसे भी लोग बनाए हैं जो कड़वी जुबान रखते हैं, कड़वी सोच रखते हैं, कड़वे जो है इरादे रखते हैं, तो अल्लाह जो है इन सब से बचा कर रखे। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ फरमाई कि ये दुआ तुम हमेशा फरमाओ कि या अल्लाह जालिमों के जुल्म से बचा, हासिदों के हसद से बचा, सियासतदानों की सियासत से बचा, शर पसंदीदा लोगों के शर से बचा, जादूगरों के जादू से बचा। यानी ये मुख्तलिफ लोग इस तरीके की सोच रखने वाले इस दुनिया में मौजूद हैं, इसके लिए हमको इस तरीके से बताया गया। अगर कोई ऐसी चीजें रखता है तो वो अपने आप पे काम करे जहन्नम से बचने के लिए। अगर हम ये सोचें कि हमको यहाँ पर जो भी अमल हम कर रहे हैं वो हमारी आखिरत में जो है उसका हिसाब लिखा जा रहा है, तो हर बंदा जो है अपने आप में सुधर जाएगा और हर बंदा एक दूसरे के लिए रोल मॉडल बन जाएगा। आज हम रोल मॉडल बनाते हैं फर्जी लोगों को, यानी कि भाई जिसने छोटे कपड़े पहन लिए, जिसने जो है BMW ले ली, जिसने जो है बड़े बड़े बंगले और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बना दिए, पता नहीं क्या कुछ जो है, ये टेम्पररी जिंदगी जो हमेशा रहने वाली जिंदगी है वहां पर की चीजों को हम भूल ही गए। यहाँ पर जो है हमारी कितनी जिंदगी होगी, हमारे जो 15 साल है वो तो बचपन में ही गुजर गए, बाकी के जो 5 साल है वो एजुकेशन में चले जाएंगे, बाकी के जो 20 साल है वो जवानी, वो हमारी जो है उमंग तरंगों में चली जाएगी, बच्चे सो बाकी के 20 साल वो बच्चों की जिंदगी और बुढ़ापे में चले जाएंगे। तो हमने हमारे लिए किया क्या आखिरत के लिए?
1: सही कहा,
0: कुछ नहीं किया। तो हमें हर सबको चाहिए कि रोल मॉडल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाए, तो सारी चीजें जो है आपकी जिंदगी और आखिरत दोनों में भी कामयाबी होगी।
1: बिल्कुल।
0: अब आप कहेंगे ये तो जमात वाली बात कर दी आपने।
1: नहीं नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की, और वाकई ये तो खैर हम लोग जिक्र कर भी रहे थे, फिर हुआ कि चलिए थोड़ा सा दीन से हटके दुनियावी लोगों के रोल मॉडल्स कौन किसके हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपने कहा कि ना जो अखलाक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। तो आप अगर इन सारी चीज़ों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनकी चीज़ों को अपनाते हैं, अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं, तो आप यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, चाहे लोग आपसे कहें या ना कहें। तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ को जो है बैलेंस्ड वे में, दीन और दुनिया में गुड बैलेंस क्रिएट करते हुए उसको जो है वो बताएं।
0: आप दुनियावी एतबार से अगर आप देखेंगे, आप जब सवाल किए हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस किसी भी इंसान के अंदर ये चीज़ें पाई जाती है कि वो आपको आखिरत की तरफ जो है तरगीब करता है, बताता है कि आखिरत ही सब कुछ है, मेरे लिए वो रोल मॉडल है भाई। दुनिया की जो बात करता है, मैं कहता हूँ कि ठीक है करो, बट इतना भी दुनिया में मत हो जाओ, हम मुसाफिर हैं यहाँ पर, हमें कुछ उतना दिल लगाना नहीं है, हमें दिल हमारे रब से लगाना है। अब उससे दिल लग जाएगा तो सारी चीज़ों से दिल टूट जाएगा। यहाँ पर लोग जो है ना मोहब्बत से दिल लगा बैठते हैं, औरतों से दिल लगा बैठते हैं, पता नहीं किस किस चीजों से दिल लगा बैठते हैं और अपने दिल को तोड़ बैठते हैं। और ये सारी चीजें आपके दिल को तोड़ती हैं, ये 100%। एक ना एक दिन ऐसा टाइम आता है कि टूट जाता है दिल, उसके बाद में फर्जी जो है देकर बैठता है कि दिल तोड़ दिया, दिल ऐसे हो गया करके, तुमने लगाए ही गलत जगह है।
1: सही कहा आपने, सही जगह दिल लगेगा तो वाकई टूटेगा भी नहीं और दिल भी लगेगा और आप जो है कुछ अच्छा करेंगे भी। तो वाकई हमें ये याद रखना है, अपनी आखिरत को हमेशा हर रोज़ याद रखें, ये इम्पोर्टेंट। और जैसे आपने कहा, मेरे लिए रोल मॉडल वो है जो मुझे मेरी आखिरत याद दिलाता रहे, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी लाइन, ज़बरदस्त, आई थिंक बेस्ट टेक अवे है अभी तक का मेरा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट दिस टाइम, और आपने वक्त निकाला और शेयर किया अपने थॉट्स मेरे साथ। थैंक यू वंस अगेन, अपना ख्याल रखिए, एंजॉय रेस्ट ऑफ योर डे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आज तो इतनी अच्छी बात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग जो अपने रोल मॉडल्स के बारे में बात करना चाहते हैं, उनमें से कोई भी ऐसा बंदा निकल के नहीं आया जिसने कहा कि भाई मेरे लिए मेरा रोल मॉडल जो है वो फलाना एक्टर है, फलानी एक्ट्रेस है। हालांकि जब मैंने पेरेंट्स की बात की तो मुझे लगा कि काफ़ी सेंसिटिव है, तो मैंने इस एंगल को यहाँ रोल मॉडल के साथ ही जोड़कर रखना बेहतर समझा, क्योंकि हम सब के लिए चाह के ना चाह के, हम इस चीज़ को एडमिट करें ना करें, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए रोल मॉडल हैं। हाँ ठीक है, अच्छाई बुराई तो सब में होती है, हम उन्हें अप्रोच भी कर रहे होते हैं, वो हमें कितनी बार स्कोल्ड करते हैं, सिखाते हैं, तो हम भी उन्हें कभी कभी ऐसा मौका आता है कि हम उन्हें कोई बात है अच्छी तरीके से बता दें, कोशिश करें उनको यू नो कन्विंस करने की, ज़बरदस्ती नहीं लेकिन हाँ इन अ गुड मैनर, अच्छे तरीके से जैसे आप कर सकते हैं वो करना, और ऐसे शख्स को एडमायर करना जिसको देखकर सुनकर जिसके साथ उठकर बैठकर आपको सीखने के लिए कुछ मिलता है।

0: है, आप एक बेहतर शख्स बन रहे होते हैं हर पल, वो आपके लिए एक सच्चा रोल मॉडल है। एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: अज्जू
0: हाय, कैसे हैं आप?
1: ठीक है,
0: आप खैरियत से? अच्छा, आज मैं बात कर रही हूँ कौन बेहतर रोल मॉडल है आपके लिए।
1: First, I would like to say something about the last caller. It was very... I accept all those words. मैं उसको actually मेरे को समझा नहीं, वो उर्दू बात कर रहा था। फिर मैं अब्दुल रोफ भाई मेरे को थोड़ा सा ट्रांसलेट किया जैसे जैसे बात कर रहे
0: हैं।
1: ओके, वो बिल्कुल मेरे को पसंद। I like very much exactly what he say. I like it. क्योंकि मैं कभी भी मेरा फादर मदर को रोल मॉडल नहीं लेता, क्योंकि
0: अच्छा
1: अगर आप एक परफेक्ट आदमी को आप रोल मॉडल लेगा तो बिल्कुल ठीक है। आजकल कोई भी परफेक्ट नहीं, आप एक्टर्स एंड एक्टर को लेगा तो दोस पीपल आर नॉट परफेक्ट, they are just entertainer and after movie nothing, they are not perfect and all those things. Same like my parents also, some things I don't like because my mentality and my father mentality bilkul alag hai. Like last time mera ghar ko thoda innovation kiya tha. मैं मेरा फादर को बोला पापा ऐसे ऐसे करो, अच्छा है अभी वो थोड़ा नया ट्रेंड में आपको दिखने के लिए अच्छा मिलेगा, मैं बोला। लेकिन मेरा फादर मेरा बात नहीं माना, उसका खुद का माइंडसेट ने वो कर लिया। वो थोड़ा चीज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब वो लोग को ओल्ड जनरेशन है, हमारा नया जनरेशन है। समथिंग क्लैश होता है, कभी भी समथिंग क्लैश होता है, क्योंकि हम लोग को बोलने के लिए नहीं आता ना, नहीं बोल नहीं सकता, वो पेरेंट्स है। ओके, कोई वो बोलेगा तो फिर प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग को नहीं बोलता है।
0: इसलिए आप
1: ये एक बार बट द वन थिंग डेफिनेटली, कोई बंदा आप रोल मॉडल लेना चाहिए वो आदमी परफेक्ट होना चाहिए।
0: परफेक्ट
1: आदमी को आप रोल मॉडल लेते हैं, अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल ये है एपीजे अब्दुल कलाम है, परफेक्ट गाय, रोल मॉडल ले सकता है। लेकिन मैं मेरा एक रोल मॉडल था वो जो निकोला टेस्ला है ना,
0: अच्छा
1: वो मेरा रोल मॉडल था।
0: एंड फॉर द रीजन
1: इनोवेशन,
0: फॉर द इनोवेशन,
1: इनोवेशन आजकल हम लोग को यूज कर रहा ना, एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट, इसका इन्वेंटर है वो निकोला टेस्ला।
0: बिकॉज़ ऑफ दैट यू एडमायर हिम,
1: ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, दैट्स व्हाई आई लाइक वेरी मच।
0: बट व्हाट आई बिलीव अज्जू जी, दैट द ट्रुथ एंड द रियलिटी इज नो वन इज परफेक्ट. When we comes to human being, everyone, they make mistakes, and I believe everyone, we all face challenges. Yeah. However, what is important in a person who inspires others is the values, the traits they carry. Their character, their values, their actions, being honest, being, you know, other values whatsoever. Somebody who's been...
1: If you are considering all those things like honest behavior, everything... No one is not perfect. Even Nikola Tesla also not perfect.
0: Yeah, that's what I'm saying.
1: Okay.
0: Yeah.
1: See, for one thing, I like Nikola Tesla very much because of he's a scientist. And mera professional science degree hai. Uske liye mere ko wo bahut pasand hai. That's why I like only as a scientist. I like.
0: As a scientist, and somewhere or the other, I mean, his character actually encourages you to become a better person. That's what you're saying.
1: Yeah.
0: In your field.
1: I feel. Because, अभी एक आदमी क्रिकेट अच्छा खेल रहा है. उसका इंस्पिरेशन लाजिम सचिन होगा और लारा होगा और बॉन्टिंग होगा, कोई भी एक रोल मॉडल होगा.
0: सही बात है, एक मेंटर तो होना ही चाहिए.
1: उसका उसका माइंड में उसका प्रोफेशनल जाते रहेगा, सो वो

0: किसी को किसी को पूछेगा तो भाई अब आप अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं सचिन जैसे पॉन्टिंग जैसे लारा जैसे कौन से आपका रोल मॉडल बोलेगा तो लाजिम एक आदमी का नाम बोलेगा
1: बोलेगा
0: वो प्रोफेशनल वॉइस है प्रोफेशनल वॉइस आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइक द गाय वाज डांसिंग डांस वेरी गुड समथिंग इंस्पायर्ड हिम किसी को इंस्पायर होता है अब गाना अच्छा गाता है किसी को इंस्पायर होता है वो आप किसी से इंस्पायर होता है आपका माइंड में वो रोल मॉडल होगा
1: बन ही जाता है तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि रोल मॉडल वो शख्स है जो आपको बेहतर बना रहा है ना आप डे बाय डे बेहतर हो रहे
0: हैं अभी अर्ली 90s में माइकल जैक्सन इज वेरी फेमस फॉर सिंगिंग एंड डांसिंग वो कितना आदमी माइकल जैक्सन जैसे डांस करता है गाना गाने के लिए किया तो वो लोग को क्या रहता है उसका पूरा लाइफ का मॉडल नहीं ले रहा है लेकिन उसका डांस एंड सिंगिंग को रोल मॉडल ले रहा है
1: टैलेंट को उसके
0: तो जो प्रोफेशनल एक्ट पे जा रहा है तो किसी को इंस्पायर होगा
1: और यही चीज मैं समझाना भी चाहती हूँ हमारी आज की जनरेशन को कि आप उस शख्स के टैलेंट को एडमायर जरूर कीजिए लेकिन उसके जो वैल्यूज हैं या कैरेक्टर्स हैं उन चीजों को देखिए तोलिए परखिए फिर अपने लाइफ में उसको जो है वो इनकलकेट करने की कोशिश कीजिए दैट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि ब्लाइंडली आप एकदम किसी को फॉलो नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए
0: थोड़ा सोचने का यू कैन नॉट एंटर द पर्सनल लाइफ फॉर द पर्सन
1: हाँ नहीं बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया पे अपनी फेक लाइफ भी दिखा रहे होते हैं अलग तरीके से पोर्ट्रेट कर रहे होते हैं एंड देयर वी गो डीप डाउन एंड वी गेट टू नो कि ये बंदा उतना अच्छा है नहीं जितना दिखाता है और आज की जनरेशन क्योंकि भाई ऐसा दौर है उन्हें लग्जरी से और एक अच्छी लाइफ स्टाइल दिखता है सब दिखता है तो बच्चे उन्हें ऑटोमेटिकली फॉलो करने लग जाते हैं और फिर कई बार हम
0: लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन दिस इज सी नाउ वी आर इन 2026 आफ्टर 2030 2035 विल बिकम मोर लाइफ स्टाइल चेंजेस दिस लाइफ स्टाइल चेंजेस इज नॉट इन सेटल टाइम इट इज चेंजिंग एवरी ईयर चेंजिंग
1: मतलब मैं जो ये कह रही हूँ कि जो यंग जनरेशन है वो किसी की भी आप देखिए कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया का दौर है तो लोग उनके फैशन को उनके लाइफस्टाइल को उनके स्पीकिंग स्टाइल को इन सब सारी चीज़ों को जो है वो फॉलो करने लगते हैं
0: और दे आर टेकिंग ओनली सम पर्टिकुलर कैरेक्टर ओनली राइट
1: हाँ लेकिन मैं कहती हूँ इन सबको जब आप रोल मॉडल बनाते हो तो थोड़ा सा एहतियात भी ज़रूरी है मतलब आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है हमें इग्नोर नहीं करना है हम सिर्फ और सिर्फ उनकी फेम से अट्रैक्ट हो रहे हैं लेकिन उनके वैल्यूज़ को भी देखना है लुक्स हैं या फिर लग्जरी लाइफ है ठीक है बहुत अच्छी है लेकिन असल कैरेक्टर क्या है उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए ज़रूरी नहीं कि हर फेमस शख्स जो है वो एक आइडियल शख्स भी हो ये ज़रूरी नहीं है
0: exactly.
1: ये तो है
0: Like what can I say? आपको जो इंटरेस्ट है जो बनने के लिए जा रहा है आपको रोल मॉडल बनाओ ना प्रॉब्लम
1: सही है जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें आप ज़रूर एडमायर कीजिए कोई ऐसी चीज़ किसी रोल मॉडल की जो आपको बेहतर कर रही है जस्ट गो फॉर इट लेकिन ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट करना इज नॉट गुड राइट
0: वी कैन नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली यू नो
1: एकदम कि बस उसने कह दिया तो हमने करना शुरू कर दिया कोई एक मैसेज डाल दिया तो बस ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं लोग उसको ट्रेंड बना दिया और नहीं जान रहे हैं कि बिहाइंड द स्टोरी क्या है बिहाइंड द कर्टन क्या पिक्चर है तो ये सारी चीज़ें अब ऐसा वक्त है कि हम थोड़ा सा सोचें गौर करें और फिर एक्शंस लें
0: Actually, only 50% of people having a role model. Other 50, if you are going for a debut, 50% of people आप किसी को पूछेगा कौन है भाई आपका रोल मॉडल ना ना ऐसे कुछ नहीं है बोलेगा
1: शायद यही जवाब
0: 50% of people बोलेगा मेरा रोल मॉडल ये है मेरा रोल मॉडल ये है क्यों पूछेगा तो ये डांस अच्छा करता है ये गाना अच्छा करता है इसे साइंटिस्ट इसे मेडिसिन इसे डॉक्टर ऐसे लाइक इंस्पायर किसी ना चीज को इंस्पायर होकर रोल मॉडल बनता है मतलब वो गलत चीज का नहीं है वो किसी का बात किसी का स्टाइल उसको अच्छा लग रहा है इसलिए उसके इंस्पायर होके रोल मॉडल बनके उसका से वो करता है
1: सही बात है वेरी वेल सेड थैंक यू सो मच अज्जू जी थैंक यू फॉर योर कॉल इट वाज ऑलवेज फैंटास्टिक टॉकिंग टू यू बहुत अच्छा लगा हैव अ ग्रेट वीकेंड थैंक यू वंस अगेन फॉर योर कॉल
0: या थैंक यू
1: टेक केयर बाय तो यहां पर

उसको एक छोटा सा मैंडेटरी ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे तो इस टॉपिक को तो कंक्लूड करेंगे एंड फिर हमारा जो गेम सेगमेंट है उसके तरफ भी आएंगे। और अभी के लिए बहुत ही प्यारा सा गाना मैंने लाइनअप किया है अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में, आपको 90s की तरफ लेकर जाता हुआ टक्कर मूवी का ये सॉन्ग। एंजॉय दिस एंड स्टे हुक्ड टू FM 107 दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी
1: FM107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

देखा जाए तो सिफारिश जो है वो किसी की चलेगी नहीं। वेलकम बैक गाइस, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आपने एंजॉय किया एंड दिस इज कॉल्ड चांद सिफारिश। शान और कैलाश खेर की आवाज़ में बहुत दिनों के बाद ये गाना सुना तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। लेकिन जो मैं कह रही हूँ ना, सिफारिश चलेगी नहीं, मतलब आज वीकेंड है, आपने सोचा होगा कि मैं घर पे बैठ के आराम करूँगा, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भाई आप कितना भी किसी से भी सिफारिश करवा लें, बच्चे और अम्मा एक ही तरफ होंगे। उनका कहना ये है कि भाई वीकेंड है, हम तो पूरे वीक बैठे रहते हैं घर, हमारी तो आउटिंग होनी ही चाहिए। तो चलिए आउटिंग के लिए मैं कुछ जगहें आपको बता देती हूँ, फिर इनकेस आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि हम कहाँ लेकर जाएं। वैसे तो हम लोग सबके लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए ईटिंग आउटिंग ही हमारी जो है ना वो वीकेंड आउटिंग कहलाती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हो रहे हैं जिन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है। और कतर की बात करें तो यहाँ पर इतने सारे एक्साइटिंग इवेंट्स हैं, इतनी सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ हैं जो बाकायदा आपका इंतज़ार कर रही हैं। चाहे आप इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई इवेंट उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी हो, या वर्कशॉप हो, या फिर फैमिली फ्रेंडली कोई भी एक्टिविटी, तो यहाँ ऑप्शंस बहुत सारे हैं। सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं कलर वर्स एक्सपीरियंस की। ये जो इवेंट है वो कटारा कल्चरल विलेज में स्टार्ट हो चुका है और ये लास्ट करेगा 15 सितंबर तक, मतलब अभी अच्छा खासा टाइम है। और इसके टाइमिंग्स की बात की जाए तो वीकडेज में टाइमिंग्स हैं 4 बजे यानी शाम 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक। वहीं वीकेंड्स की अगर मैं बात करूं तो टाइमिंग्स हैं 4 बजे से लेके रात के 11 बजे तक। और कलर वर्स एक्सपीरियंस एक बहुत ही नया और बहुत ही इमर्सिव अट्रैक्शन है जो विजिटर्स को एक एक्साइटिंग एडवेंचर पर लेके जाता है। और ये एक्टिविटी ख़ास तौर पर फैमिलीज और जो 7 साल के बच्चे हैं या उससे ज़्यादा उनके जो बच्चे हैं उनके लिए डिज़ाइन की गई। प्लस मैं बड़ी अमेज हुई जब मैंने पढ़ा कि 5 साल के बच्चों के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं। ऑल टुगेदर होता ही है कि 35 मिनट्स का एक सफ़र है जहां पर पार्टिसिपेंट्स को अर्थ से बाहर एक इमेजिनरी दुनिया का सफ़र करने का मौका मिलता है। और उनका मिशन होता है कि एक बहुत ही इंटरैक्टिव चैलेंजेस के ज़रिए रेड ग्रीन और ब्लू कलर्स वापस लाकर उस दुनिया को रीस्टोर किया जाए। तो ये कमाल की एक्टिविटी है जहाँ आपके बच्चे अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ एंटरटेनमेंट है, टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आपको देखने का मिलेगा, कलरफुल लाइट्स हैं, इंटरैक्टिव गेम्स हैं और एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो यहाँ अगर आपको मौका इस वीकेंड मिलता है ज़रूर चाहिए। देयर वी हैव द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, ये भी बच्चों को जहन में रख के ही प्लान की गई है एंड दिस इज कतर टॉय फेस्टिवल जो जारी है दोहा एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर में। ये जारी रहेगा 31 जुलाई तक। इसके टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, और वीकडेज में, और वीकेंड्स पे दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। तो ये बच्चों के लिए एक बहुत ही परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो है लोकल डेज फेस्टिवल जो स्टार्ट हो रहा है 25 जुलाई से, और ये स्टार्ट हो रहा है ईस्टर्न स्क्वायर सूक वाकिफ में। संडे से थर्सडेज के टाइमिंग्स हैं 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। फ्राइडे और सैटरडेज इसके टाइमिंग्स हैं 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। तो अगर आप कतर के कल्चर और एग्रीकल्चर में दिलचस्पी रखते हैं तो लोकल डेट्स फेस्टिवल जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन जगह है, ज़रूर जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। मतलब वीकेंड जो है उसको एक्साइटिंग और बहुत ही ज़्यादा यू नो मेमोरेबल बनाने के लिए बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं। चाहे आप जो हैं वो टेक्नोलॉजी या फिर आप एडवेंचर पसंद करते हैं, या फिर बच्चों के साथ जो है वो फन एक्टिविटीज़ एंजॉय करना चाहते हैं, या फिर कतर के रिच कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हर किसी के लिए मैं कहूँगी कुछ ना कुछ ज़रूर है। सो अपना परफेक्ट वीकेंड प्लान कीजिए और अपनी फैमिली के साथ खूबसूरत यादें बनाइए। वेल, यहाँ तो मैंने कुछ आपको अपडेट्स दे दिए और अब कुछ मैसेजेस भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप मैसेज तो पढ़ते ही नहीं हैं, तो चलिए मैं पढ़ लेती हूँ। यहाँ पर सलाम भी कहा, गुड मॉर्निंग कहा जुनैद माहिर जी ने, वेरी गुड मॉर्निंग, और जो आगे कहा वो मैंने पढ़ रही हूँ। अच्छा, इसके साथ उस्मान है।

हैं आजकल के पेरेंट्स में बर्दाश्त नहीं आजकल के पेरेंट्स में बर्दाश्त नहीं मैं ऐसे तो नहीं कह सकते देखिए सर मतलब हो सकता है कुछ ऐसी चीजें और वक्त के साथ थोड़ा सा चिड़चिड़ापन इंपल्सिव होना ये सारी चीजें होती हैं व्हेन यू ग्रो यू नो तो ये सारी चीजें आने लगती हैं अब इसे बर्दाश्त नहीं कहेंगे इसे कह सकते हैं कि ये बस उनके उम्र का तकाजा है दैट्स व्हाट वी कैन से अच्छा आज का क्या टॉपिक है अमर जी ने पूछा है टॉपिक तो ऑलमोस्ट कंक्लूड होने की तरफ पहुंच रहा है अच्छा गुड मॉर्निंग कहते हैं यहाँ यूसुफ जी हमारे साथ जुड़े हैं मैं कैसी हूँ पूछा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड वेलकम टू समर मॉर्निंग्स थैंक यू सो मच मेरे रोल मॉडल मेरे बड़े भाई हैं उनका नेचर उनका डिसीशन पावर लेने का तरीका उनका बात करने का अंदाज एवरीथिंग आई कंप्लीटली एडमायर हाँ उनकी कुछ बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता जैसे कि मैंने एक बार बताया था कि वो मेरे चाचा चाची से थोड़ा नाराज़ हैं जाते आते नहीं हैं मिलते नहीं हैं लेकिन मैं मिलता जुलता हूँ और इसी बारे में मैं अपने बड़े भैया को बहुत समझाता हूँ कि सब भूल जाए चाचा चाची बड़े हैं मिलकर बात कर ले लेकिन वो नहीं मानते कहते हैं तुम बाहर हो वहाँ हो तुम्हें नहीं पता यहाँ वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं जब हम इंडिया जाते हैं तो भैया कहते हैं जाओ चाचा चाची से मिलो बड़े हैं कहते हैं वो हमसे बुरे कहते हैं कि वो हमसे बुरे हुए हैं हाँ हमसे तो बुरे हैं तुमसे नहीं हम जाकर मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह चलिए देखिए होता है कि वाकई हम लोग बाहर होते हैं हमें नहीं पता और आगे भी कहते हैं मैं छोटा होने के बावजूद बहुत कोशिश की कि दोनों तरफ से समझा सकूं लेकिन नाकाम रहा चलिए आप कोशिश कर रहे हैं और मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी हो सकता है बड़े भाई को उतनी अच्छी नहीं लगती हो शायद वो थोड़े से यू नो उस अंदाज में कह रहे हो कि जाओ जाके मिलाओ तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छे हैं लेकिन देखिए अच्छा होना कोई दूसरा अच्छा तब होगा जब आप दो तीन बार खुद भी अच्छे होंगे तो थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छे हों तो पहले आप भी तो देखिए आप उसके साथ कैसे हैं क्या आपका रवैया उनके साथ उस तरह का है जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो ये चीज़ एक ज़रूरी है और अगर हमें समझ में आ जाए जितनी जल्दी आ जाए उतना ही हम सब का भला हो जाता है लेकिन ये बात हमें आती है बहुत देर से ठोकर खा के समझ में आती तो है अच्छा इसके साथ यहाँ एक और मैसेज है सैयद खादिम हुसैन जी का ओहो इन्होंने इतनी सारी कॉल्स की चलिए अगर आप फ्री हैं मैं खुद आपको कॉल करती हूँ ठीक है अभी थोड़ी देर में खुद ही कॉल करती हूँ ओके सलाम कहते हैं मुमताज़ अहमद जी कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी वीकेंड आपको भी और हकीकत में एक वीक एफएम पे कोई प्रोग्राम नहीं रहा बहुत ही मुश्किल से दिन कट रहा था चलिए बड़ी खुशी होती है बात सुनकर जानकर पढ़कर कि आप लोग हमारे साथ जो हैं वो इस तरह से जुड़े हुए हैं कि हमारी कमी का आपको एहसास होता है अच्छा अभी आप बिज़ी हैं सैयद खादिम हुसैन जी कह रहे हैं नहीं का मतलब मैं कॉल ना करूं है ना दिस इज़ व्हाट यू सेइंग ओके यहाँ पे रमेश यादव जी का भी हमें मैसेज है वेरी गुड मॉर्निंग नाजिया जी या वेरी वेरी गुड मॉर्निंग रमेश जी उम्मीद कर रही हूँ आप भी खैरियत से होंगे एक और मैसेज मुझे आया है और इनका नाम मेंशन नहीं है सिर्फ MD इन्होंने लिखा है वेरी गुड मॉर्निंग कहते हैं और कहते हैं कि मैम मेरे लिए जो रोल मॉडल हैं वो हमेशा से ही मेरे माँ बाप रहे हैं और ख़ास करके मेरे वालिद साहब उन्होंने जो चीज़ें मुझे सिखाई समझाई बताई वो मुझे लगता है कि आज मुझे बेहतर शख्स बना पा रही हैं और शायद इसीलिए मैं अपने वालिद का एहतराम करता हूँ उनकी हर अच्छी बुरी बात को समझता हूँ और मेरी कभी भी हिम्मत नहीं होती कि मैं उन्हें टोकूं या मैं उन्हें सही करने की कोशिश करूं अलबत्त वो ही मुझे आज तक सही कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि आप अपने पेरेंट्स को जो है अपना रोल मॉडल मानते हैं और मुझे लगता है

रोल मॉडल का मतलब है जो लोग जो हैं आपको किसी भी तरह से इंस्पायर करते हैं. उनमें कुछ खास चीज़ें भी तो होनी चाहिए. रोल मॉडल्स को अपने एक्शंस और अपने बिहेवियर से एक अच्छी मिसाल पेश करनी चाहिए और लोगों को भी ये देखना चाहिए कि क्या वो एक अच्छी मिसाल पेश कर पा रहे हैं. अगर जेन्युइनली कर पा रहे हैं, गुड एग्जाम्पल सेट कर पा रहे हैं, तो वो हमारे लिए रोल मॉडल बन सकते हैं. वहीं मेरे हिसाब से जो रोल मॉडल्स जिन्हें हम सेट करते हैं दीनी एतबार से, अगर अभी हम इस पे बात ना करें और सिर्फ दुनियावी एतबार से बात करूं, तो मैं कहूंगी कि एक चीज़ जो बहुत मैटर करती है वो है ऑनेस्टी और जेन्युइन रहना. रोल मॉडल्स का सच बोलना और ईमानदारी रखना, ट्रस्ट दिखाना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वहीं एक रोल मॉडल आपके लिए तब रोल मॉडल और ज़्यादा बन जाता है जब वो दूसरे को भी रिस्पेक्ट देना चाहता है. फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा शख्स है जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत पावर है, फेम है एंड एवरीथिंग, लेकिन वो दूसरों को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करता, तो क्या आप उसे, ऐसे शख्स को रिस्पेक्ट दे पाओगे? क्या रोल मॉडल मान पाओगे? और एक चीज़ और, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो फैलाए. सोशल मीडिया का दौर है, हम चाह के ना चाह के बहुत सारे लोगों से जो है वो मुतासिर हो जाते हैं, उनकी बातचीत से, उनके लाइफस्टाइल से, उनके एटीट्यूड से. लेकिन रोल मॉडल का एक बड़ा काम है कि वो पॉजिटिव अवेयरनेस फैलाए, ऐसे मैसेज दे जो लोगों को मोटिवेट करें और लोगों की ज़िंदगी में बेहतर डिसीशंस लेने में उनकी मदद करें. ये काम होता है रोल मॉडल का. वहीं पर रोल मॉडल जो है उन्हें आपको चुनना चाहिए जो आप देखें कि हार्ड वर्किंग हो. हार्ड वर्किंग होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ड वर्किंग के साथ आप जो हैं वो पेशेंट भी होते हैं और डेडिकेशन भी आपकी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन जाता है. वहीं पर जो रोल मॉडल्स बनते हैं या आप जिनको मानते हैं या हम जिनको एडमायर करना चाहते हैं करते हैं, उन सबसे गलतियाँ होती हैं. इंपॉर्टेंट क्या है? अपनी गलतियों से सीखना और सीखना समझना, ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है. यंग जनरेशन को किस तरह से वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस तरह से वो एडमायर कर रहे हैं. बच्चे और यंग जनरेशन अक्सर रोल मॉडल्स को फॉलो करते हैं, इसलिए उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन देना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो मेरे हिसाब से एक ट्रू रोल मॉडल वही है जो सिर्फ फेमस ना हो, बल्कि वो शख्स है जो अपने वैल्यूज पर स्ट्रांगली डटा रहे. ट्रू रोल मॉडल वही है जो अपने कैरेक्टर, अपने एक्शन से लोगों को इंस्पायर करता है. वो हमें सिखाता है कि रिस्पेक्ट क्या है, हार्डवर्क क्या है, ऑनेस्टी क्या है, डेडिकेशन क्या है, काइंडनेस क्या है और असल कामयाबी क्या है. तो ये आज के रोल मॉडल के ऊपर हमारी बात थी. आई होप बहुत सारी चीज़ें हम जो हैं वो डायरेक्टली तो बात नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्टली उन पर बात करना चाहते हैं. तो यहाँ मेरी ये कोशिश थी, क्योंकि अभी बहुत टाइम पहले बहुत सारे लोगों को ना मैंने बड़ा फॉलो कर रखा था, मैंने जेन्युइनली बहुत एडमायर करती थी, और मुझे पता चला कि नहीं, मैं तो शायद गलत लोगों को फॉलो कर रही थी. शायद मैं इनकी जो बाहर की जो दिखाने की इन्होंने कोशिश की, मैं बस उतना ही देख पा रही थी, मैं पीछे की पिक्चर को क्लियर नहीं देख पा रही थी. वो ठीक है, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट ये भी लाइफ में आता है, और ख़ास करके जब मैंने स्लेब्स का नाम लिया और ख़ास करके जब मैंने स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का नाम लिया, तो मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि इन लोगों की तो और एक्स्ट्रा एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि ये सोसाइटी के लिए कर क्या रहे हैं, वापस सोसाइटी को दे क्या रहे हैं. तो जब आप अपने लिए सिर्फ कर रहे हैं और वापस सोसाइटी को कुछ नहीं दे रहे हैं, तो इतने सारे बेशुमार फॉलोइंग्स और प्यार का क्या मतलब बनता है ना. चलिए इस टॉपिक को यहीं इस थॉट के ऊपर इसको एंड करते हैं, कंक्लूड करते हैं. आज हमारा इतना लंबा टॉपिक खिंच गया कि हम क्या ही बताएं. मुझे नहीं लगता हमारे पास टाइम है कि अब हम गेम वेम खेल पाएंगे, तो बस आपसे हल्की फुल्की चिट चैट करेंगे और बहुत ही अच्छे एक दो गाने हैं वो लाइनअप किए हैं, उन्हें इंजॉय करते हैं, फिर आएंगे तो बस अपना कंक्लूडिंग रिमार्क और फिर हम और आप अगले वीक मुलाकात करेंगे. लेकिन फिलहाल उसके पहले एक गाना जो कुणाल गांजावाला की आवाज़ में है, सोनू निगम का साथ है, सुनिधि चौहान और ऋचा शर्मा, इतने सारे लोग मिलजुल कर गा रहे हैं, इंजॉय कीजिए. अच्छा, ये गाना मुझे बहुत टाइम से याद चल रहा है, पता है कब से, जब मैं अपनी हॉलीडेज़ पे थी और जब मैं वाइल्ड सफारी पे गई, तब से मुझे ये गाना पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा मेरे जहन में था, या मैं कह सकती हूँ कि इस मूवी के साथ मैं रिलेट कर रही थी वहाँ पर. तो आज मुझे लगा कि चलो इस गाने को प्ले किया जाना चाहिए.

ऑलराइट दोस्तों, अब फिलहाल मेरा दिल कह रहा है कि आपसे इजाजत ली जाए इस बातें के साथ कि इंशाल्लाह अब आपकी हमारी मुलाकात होगी संडे में डॉट 6 बजे सुबह. तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, एंजॉय योर वीकेंड एंड कीप लिसनिंग FM 107.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: ये प्रोग्राम वजारत के उस इस विजन की अक्कासी करता है कि ऐसे नौजवान तैयार किए जाएँ जो खुद एतमादी के हामिल हों और चैलेंजेस का मुअसर अंदाज में मुकाबला करने की सलाहियत रखते हों। कतर के फुटबॉल क्लब्स और कौमी टीमें आइंदा 2026-2027 के सीज़न में मकामी और बैन अक्वामी मुकाबलों के शेड्यूल में मुतअद्दिद टूर्नामेंट्स में शिरकत के लिए तैयारियां कर रही हैं। माजरेन फुटबॉल सीज़न आइंदा 20 अगस्त को शुरू होगा जिसका आगाज़ कतर फुटबॉल लीग दौरी नजूम बैंक दोहा के मुकाबलों से होगा और ये कतर का सबसे अहम फुटबॉल मुकाबला है। इसके अलावा कतर स्टार्स लीग की जानिब से नई मुतारफ कराई गई दौरी क्यूएसएल 2 भी मुनाकिद की जाएगी जिसमें 12 टीमें शिरकत करेंगी और आइंदा सीज़न में कास कतर, कास नजूम और कास अमीर जैसे दीगर टूर्नामेंट्स भी मुनाकिद किए जाएंगे। कतर फुटबॉल लीग की इंतजामिया ने क्यूएसएल के खेलों के सीज़न 2026-2027 के मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये मुकाबले 30 अगस्त 2026 से शुरू होंगे जिनमें 12 टीमों के अलावा कतर की कौमी अंडर 23 टीम भी शिरकत करेगी। वाज़ह रहे ये शेड्यूल के मुताबिक इब्तदाई 3 राउंड्स के मैच अस्सुमामा खलीफा इंटरनेशनल, अलबैत, लुसेल, अहमद बिन अली और जासिम बिन हमद स्टेडियम्स में खेले जाएंगे जबकि चौथे राउंड और उसके बाद के मैचों के मकामात और औकात का ऐलान बाद में किया जाएगा। खलीजी ममालिक के अंडर 18 बास्केटबॉल एशिया कप फाइनल्स के लिए क्वालिफाइंग चैंपियनशिप की मुंतजिम कमेटी ने ऐलान किया है कि मुकाबले में शिरकत करने वाले वफूद के इस्तकबाल से मुतालिक तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वाज़ह रहे एडिशन कतर में मुनाकिद हो रहा है जिसकी मेज़बानी अलगर्राफा स्पोर्ट्स हाल करेगा और ये मुकाबले 25 से 30 जुलाई तक जारी रहेंगे। मिस्री टेनिस खिलाड़ी मयार शरीफ जो आलमी दर्जाबंदी में 55वें नंबर पर हैं नए हैम्बर्ग वेमेंस टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने टूर्नामेंट की छठी सीडेड स्विस खिलाड़ी सिमोना वाल्टेरेट को 3 सीटों के सख्त मुकाबले के बाद 5-7, 6-4 और 7-6 से शिकस्त देकर अगले मरहले में जगह बनाई। और अरब खलीजी फुटबॉल फेडरेशन के वफद ने इराक के दोहा के स्टेडियम का दौरा करते हुए 13 अगस्त 2026 को होने वाले गल्फ क्लब सुपर कप की तैयारियों का जायज़ा लिया। वाज़ह रहे 13 अगस्त को होने वाले इस मैच में इफ्तिताही गल्फ क्लब चैंपियंस लीग के फातह टीम दोहा स्पोर्ट्स क्लब और टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन की चैम्पियन कतर के रैयान स्पोर्ट्स क्लब की टीम आमने सामने होंगी। स्पोर्ट्स में इतना ही, अब समाप्त कीजिए न्यूज़ हेडलाइंस
1: आरजे सफा के साथ फ्रॉम उर्दू रेडियो एफएम 107।
2: साहिब सुमो अमीर और सीरिया के सदर अहमद अल शरा ने टेलीफोन पर गुफ्तगू में दो तरफा तआवुन के ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल, तनाव में कमी और अमनो इस्तेहकाम के लिए जारी मुश्तरका कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। कतर ने इसराइली बस्तियों की मसनूआत पर नैदरलैंड्स और बेल्जियम की पाबंदी का खैर मकदम करते हुए आलमी बरादरी से आबादकारी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ मज़ीद इकदामात का मुतालबा किया है। डॉक्टर माजिद अल अंसारी ने कैम्ब्रिज में गल्फ रिसर्च फॉर्म से खिताब करते हुए खलीजी तआवुन के फ़रोग और आलमी बरादरी के साथ मुतवाजन शराकत दारी की अहमियत पर जोर दिया है। GCC के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बुदैवी ने खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों और यमन की हूती जमात की जानिब से अबनाए बाब अल मंदाब बंद करने की धमकियों के पेश नज़र आलमी बरादरी से खलीजी सलामती, आज़ाद समंदरी आमदोरफ्त और एनर्जी के तहफ़ के लिए मुयसर इकदाम करने पर जोर दिया है। سامین اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سٹوڈیو سے ہماری ساؤنڈ ٹیکنیشین نور, سوشل میڈیا سے انتخاب عالم, روم نیوز روم سے فرقان شاہد, اور مجھے یعنی صفا صفدر کو دیجئے اجازت. اللہ حافظ.
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے ایف ایم 107, دل سے دیسی.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज एक और मोटर स्पोर्ट रैली ड्राइवर्स के बारे में मैं बात करूंगा। उनका नाम है आदिल हुसैन अब्दुल्ला। आदिल हुसैन अब्दुल्ला कतर के सबसे कामयाब और मशहूर क्रॉस कंट्री रैली ड्राइवर्स में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, हिम्मत और लगन के जरिए मोटर स्पोर्ट की दुनिया में एक ऐसा मकाम हासिल किया है जो हर कतरी एथलीट के लिए फख्र का सबब है। ऑफ रोड रैलिंग दोस्तों एक इंतहाई मुश्किल खेल है जहां ड्राइवर्स को रेगिस्तान, पथरीले रास्तों और सख्त मौसमी हालात का सामना करना पड़ता है। आदिल हुसैन अब्दुल्ला ने इन तमाम चैलेंजेस को कबूल करते हुए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। या उनकी सबसे बड़ी कामयाबी 2016 में आई जब उन्होंने FIA वर्ल्ड क्रॉस कंट्री रैली चैंपियनशिप के T2 कैटेगरी का वर्ल्ड टाइटल जीतकर तारीख रच दी और इस शानदार कामयाबी ने उन्हें दुनिया के बेहतरीन ऑफ रोड ड्राइवर्स की सफ में ला खड़ा किया और कतर का नाम बैनुल अक्वामी मोटर स्पोर्ट में रोशन कर दिया। दोस्तों वर्ल्ड चैंपियन बनना किसी भी ड्राइवर का ख्वाब होता है और आदिल ने इस ख्वाब को हकीकत में बदल कर अपनी काबिलियत साबित की। आदिल हुसैन अब्दुल्ला ने सिर्फ रीजनल और इंटरनेशनल रैलीज में मुसलसल बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दी बल्कि उनका ये तजुर्बा और कामयाबियां कतर के नए रैली ड्राइवर्स के लिए रहनुमाई का जरिया बने। एंड दैट इज व्हाट एवरीबॉडी लुक्स फॉरवर्ड टू, दीज काइंड ऑफ मोटर स्पोर्ट रैलीज। ना सिर्फ साले अलतिया हर कोई जानता है और ये जितने भी ड्राइवर्स हैं ये ऑफ रोड में ज़्यादातर ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ऑफ रोड ड्राइविंग काफ़ी डिफिकल्ट है दोस्तों, कोशिश मत करिएगा, यू नीड टेक्निकल गाइडेंस एंड सपोर्ट। आज आदिल हुसैन अब्दुल्ला कतर के मोटर स्पोर्ट के एक नुमाया हीरो के तौर पर पहचान

0: जाने जाते हैं, उनकी कहानी मेहनत और जज्बा की मिसाल है जो दिखाती है कि कतरी एथलीट्स दुनिया के सबसे सख्त मुकाबलों में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है, खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास। ड्राइवर्स को रोड मार्किंग्स जैसे लेन्स और स्टॉप लेन्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये रूल्स न सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए हैं, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए भी बुनियादी अहमियत रखते हैं। स्कूल्स के आसपास ट्रैफिक स्लो होना चाहिए और ड्राइवर्स को स्टूडेंट्स के क्रॉसिंग के वक्त रुकना चाहिए। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स और स्कूल साइंस की रेस्पेक्ट करना और स्पीड लिमिट का ख्याल रखना एक्सीडेंट्स और चोटों से बचाता है। हर एक शख्स का फर्ज है कि वो इन रूल्स की पाबंदी करे। पेरेंट्स, टीचर और लोकल कम्युनिटी सब मिलकर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को बढ़ावा दे सकते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम ट्रैफिक रेगुलेशंस फॉलो करें तो स्कूल

0: के आसपास का माहौल ज्यादा सिक्योर और स्टूडेंट्स के लिए सेफ बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत के बारे में जो ना सिर्फ आसान है बल्कि सेहत के लिए बेहद फायदेमंद भी है, और वो है वॉक या चहलकदमी। बहुत से अफराद सेहतमंद जिंदगी गुजारने का इरादा तो करते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि आगाज कहाँ से करें। अगर हम या आप वर्जिश शुरू करना चाहते हैं तो वॉक या चहलकदमी बेहतरीन इंतखाब है। इसके लिए ना किसी महंगी मेंबरशिप की जरूरत है और ना ही खास सामान की, सिर्फ आरामदेह जूते पहनिए और चलना शुरू कर दीजिए। वॉक करना दिल को मजबूत जो है वो बना देती है, इसी तरह हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रखने में मदद देती है, डायबिटीज या शुगर के खतरे को कम करती है, वजन को मतवाजन रखने में बहुत ही मददगार साबित होती है, और इसी तरह मेंटल हेल्थ जो कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें बेहतरीन एक इंतखाब है वॉक करना। उससे हम जहनी तौर पर जो जहनी दबाव होता है उसे कम

0: दीजिए और इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता 30 मिनट रोज़ाना तक ले जाइए। वॉक के लिए ऐसा वक्त मुंतखब कीजिए जो आपके रोज़मर्रा मामूल के मुताबिक हो। कुछ अफराद सुबह की ताज़ा हवा में चलना बहुत पसंद करते हैं, जबकि कुछ अफराद शाम को वॉक करने के लिए वक्त निकालते हैं। अहम बात यह है कि आप एक वक्त मुकर्रर कर लीजिए और उस पर मुस्तकिल रहने की कोशिश कीजिए, यानी मुस्तकिल मिजाजी बहुत अहम है। इसी तरह वॉक शुरू करने से पहले हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करना बेहद मुफीद है। इससे हमारे मसल्स जो हैं वो वार्म अप होते हैं और खुदा नखास्ता चोट कभी लगने का ख़तरा होता है तो चोट लगने का जो ख़तरा है वो कम होता चला जाता है। पानी पीना भी ना भूलिए, ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में, यानी पानी की एक बॉटल अपने पास रखिए और बिल्कुल सिप्स आप लीजिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी जो है वो आप पी लें, ऐसा नहीं है। याद रखिए कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा कदम ही काफ़ी है। और आज और अभी हमें फैसला करना होगा और हम फैसला करें और चंद मिनट की वॉक से अपनी सेहत का जो सफ़र है उसे शुरू कर दें।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महावश। उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। आपके लिए लेकर आ गई हूं हदीस टू हैबिट की एक और एपिसोड, एक ऐसा शो जहां हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत तालीमात को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाना सीखते हैं। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप सबको सेहत, सुकून, खुशी और बरकत वाली जिंदगी अता फरमाए। आज का हमारा टॉपिक है दूसरों की मदद करना। ये एक ऐसा अमल है जो

खैरियत पूछ लेना, किसी को हौसला दे देना, घर के काम में हाथ बटा देना, ये सब भी नेकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी दूसरों की मदद, मोहब्बत और आसानी पैदा करने की एक बेहतरीन मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दुख दर्द को महसूस करते थे, किसी को जरूरत होती तो फौरन मदद फरमाते। यतीमों, मिसकीनों, गरीबों, मुसाफिरों और कमजोर लोगों के साथ शफकत फरमाते। यही वजह है कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने अमल से इंसानियत को खुशियां सिखाते थे और खूबसूरती सिखाते थे। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम सब अपनी जिंदगियों में इतने ज्यादा मशगूल हो गए हैं, मसरूफ हो गए हैं, बिजी हो गए हैं कि दूसरों के हालात पर हमारी तवज्जो ही नहीं जाती। हर शख्स अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। सोशल मीडिया पे देखें तो लगता है कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन हकीकत में देखें तो ज्यादातर लोग टूटे हुए हैं, अकेले हैं। कभी कभी किसी इंसान को सिर्फ ये एहसास चाहिए होता है कि कोई मेरी फिक्र करता है, और इस्लाम हमें यही सिखाता है कि हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, उनके दुख बांटें, उनके काम आए। एक खूबसूरत बात यह भी है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो असल में हमारी मदद अल्लाह ताला फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। सोचिए, जब आप किसी परेशान इंसान की मुश्किल आसान करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान फरमा रहा होता है। जब आप किसी को खुश करते हैं तो अल्लाह ताला आपके दिल में सुकून पैदा करता है। आपने यकीनन सुना होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ही दुआएं कबूल हों, तो आपको चाहिए कि दूसरों को अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला जब उनके लिए आसानी फरमाएगा तो साथ ही साथ आपके लिए भी आसानी कर देगा। लेकिन अक्सर हम अपनी परेशानियों में इतना खो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करना भी दिल का सुकून का जरिया बनता है। कि कभी आपने ये महसूस किया कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो दिल में एक अजीब सी खुशी पैदा होती है? चाहे आपने किसी दोस्त को तसल्ली दी हो, किसी को रास्ता बताया हो, या घर में किसी का काम आसान किया हो, दिल हल्का महसूस होता है। यह अल्लाह की तरफ से मिलने वाला सुकून होता है। इस्लाम में अजमत सिर्फ दौलत, शोहरत या ताकत का नाम नहीं, असल अजमत अच्छे अखलाक और खिदमत खल्क में है। अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतरीन लोग वो हैं जो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हो। और याद रखें, दूसरों की मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती। अगर अल्लाह ने आपको नरम दिल दिया है तो ये भी नेमत है। अगर आप किसी की बात सब्र से सुन सकते हैं तो ये भी मदद है। अगर आपके पास इल्म है और आप किसी को सिखा सकते हैं तो ये भी सदका है। अगर आप किसी के लिए दुआ कर सकते हैं तो ये भी नेकी है। एक माँ का अपने बच्चों के लिए मोहब्बत से काम करना भी इबादत है। एक बाप का अपने घर वालों के लिए मेहनत करना भी नेकी है। एक दोस्त का दूसरे दोस्त का साथ देना भी भलाई है। यही इस्लाम की खूबसूरती है कि अल्लाह ताला ने नेकी के बेशुमार रास्ते खोल दिए हैं। लिसनर्स, इस हफ्ते हम सब ये कोशिश करेंगे कि रोजाना कम अज कम एक ऐसा काम जरूर करें जिससे किसी दूसरे इंसान को फायदा पहुंचे। शायद आप किसी थके हुए शख्स की मदद कर दें, शायद आप किसी बीमार को फोन कर लें, या आप घर में बैठे हैं और कोई काम नहीं भी आपको कहता तो आप उसका काम कर दें, किसी गरीब को खाना खिला दें, आप खामोशी से किसी के लिए दुआ कर दें। ये बज़ाहिर छोटे छोटे अमाल हैं, लेकिन ये हमारे दिलों को सॉफ्ट रखते हैं, हमारे रिश्तों को मजबूत करते हैं और हमारी जिंदगी में बरकत लाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब हम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला उसे कभी जाया नहीं फरमाता। तो आइए,

0: को किस नियत से इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, कभी कभी छोटा सा अमल, एक मैसेज, एक मदद, एक मुस्कुराहट या एक दुआ किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है, और शायद वही छोटा सा अमल कयामत के दिन हमारे लिए निजात का जरिया बन जाए। लिहाजा आइए हम ये अहद करें कि हम सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बनेंगे। हम सिर्फ अच्छे अल्फाज नहीं कहेंगे बल्कि अच्छे अमाल भी करेंगे। लिसनर्स, इसी के साथ हमारे शो का बिल्कुल इख्तिताम हो रहा है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप लोगों ने पूरी एपिसोड सुनी और अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला हमें दिया। अगर आज का शो आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इल्म और नेकी को बांटने से इसमें इजाफा होता है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अगले हफ्ते भी आप हमारे साथ हदीस टू हैबिट में शामिल होंगे, जहां हम एक और खूबसूरत इस्लामी लेसन लेकर आएंगे और उसको इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
3: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, feeling of missing out, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दुहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
4: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
3: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ RJ नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
5: दोस्तों, अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैत्राश 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैत्राश ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है, मैत्राश 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
6: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। याद रखिए, सेहत

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू साथियों, इस वक्त FM 107 की घड़ी की तरह बजा रही है। सफा अपना चश्मा सही करते हुए देख रही है कि 11 पास्ट 1 हो रहे हैं, मतलब 11 बज के 1 मिनट हो रहे हैं। 1 बज के 11 मिनट थोड़ी, अभी थोड़ी भाई। आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: भाई आज उल्टा चलना बनता है क्योंकि आज वीकेंड शुरू होता है ना भाई। वेलकम साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड ऑन FM 107 और मेरा और आपका साथ रहेगा 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, और इसमें हम करेंगे फन मस्ती मजा और ढेर सारी बातें। देखो भाई, गोभी दे पुल्लो, हमारा एक रूल हैगा। देखो जैसे मोमेंटम में आते आते टाइम लगता है ना, वैसे हमें भी टाइम लगता है शो स्टार्ट करने में। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए होती है अटेंडेंस। तो ज़रा जल्दी से हाजिर नाजिर हो जाओ गोभी पुल्लो, खुशबू लगा के। गर्मियों के दिन है तो खुशबू लगाना ना भूलना, जब किसी से मिलने जाते हैं ना तो खुशबू लगा के जाते हैं। तो भाई आप अपनी अटेंडेंस लगवाएं, हमें मैसेज करें 6622107 पर, 6622107 पर हमें आप मैसेज कर सकते हैं, चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं 4434377 इज द नंबर टू कॉल। और भाई सोशल मीडिया का भी बताना था, सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं @FM107Qatar। तो भाई आपने करना ये है कि आपने जो जो आपको जो जो पसंद आ रहा है ना वो करते जाएं, क्योंकि आज थर्सडे है भाई, थर्सडे है, डबल खुशी है आज, हर खता माफ है आज, एड्रेलिन का हाई डोज माफ है। तो भाई साथियों एक इंटरैक्टिव शो है मेरा और आपका, और लो हम जो है ना सरफेस पे बात करते हैं इस शो में, कोई हैवी डिस्कशन नहीं होती है हमारी। देखो भाई, देखो

दुनिया में ना बहुत सारी चीजें ऐसी जिसकी टेंशन ऑलरेडी चल रही है, तो हम टेंशन से हटकर चलेंगे ना, क्योंकि हम तो हैं ही अलग गोभी दें फुल्लो। दुनिया राइट जा रही होगी ना, हम लेफ्ट पे जाएंगे, लेफ्ट पे। तो भाई शो का आगाज करते हैं, ढेर सारा वेलकम है आपको। और शो का आगाज ऐसे करेंगे कि तड़कती भड़कती न्यूज के साथ, यानी कि गर्मी की न्यूज के साथ। भाई देखो, जिन जिन को भूल जाता है ना कि गर्मी हो रही है, उनको हम याद दिला देते हैं। तो भाई हम जो है शुरू करते हैं वेदर रिपोर्ट से। क्या कहते हो कभी ध्यान फुल्लो, वेदर रिपोर्ट पे चलते हैं। तो भाई इस वक्त आज मुझे दिखा रहा है वेदर रिपोर्ट में 46 डिग्री सेल्सियस आज हाईएस्ट टेम्परेचर रहेगा, 48 डिग्री सेल्सियस तक का, और लोएस्ट कहा जा रहा है कि 32 या 34 डिग्री सेल्सियस तक आएगा लोएस्ट, वो भी शाम को शायद आ जाए। तो भाई देखो, कंप्लेन नहीं करेंगे गर्मी की, कंप्लेन नहीं करेंगे आज हम, कंप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड सनी स्काइज हैं, अब तक तो रट्टा लग जाना चाहिए आप लोगों को। हवा की रफ्तार कल के मुकाबले में थोड़ी सी कम है, चपेड़ें हवा की थोड़ी कम पड़ेंगी, मतलब ये कि 16 किलोमीटर पर आर के हिसाब से हवा चल रही है। ह्यूमिडिटी 15% पर है, जो कि अच्छी बात है, ज़्यादा नहीं हुई। हाँ, ये जो टेम्परेचर 48-46 का चल रहा है ना, यूँ 19-20 ठक ठक ठक अटक हो रहा है, तो फील्स लाइक भाई 50 हो रहा है, फील्स लाइक 50, और पता चल रहा है कि हाँ मैं मानती हूँ फील्स लाइक 50 ही है, लेकिन असल में रुको ज़रा, सब्र करो, 46-48 ऐसा ही चल रहा है। जिन लोगों को अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल है, ओवर ख्याल है, तो वो जिम इंडोर चले जाएं, मेहरबानी करके बाहर भाग दौड़ के लिए ना निकलना, रोस्टेड चिकन बन के घर वापस आओगे। यानी कि यूवी इंडेक्स हाई है, रनिंग के लिए बहुत पुअर वेदर है, तो मेहरबानी करके, वेदर जो है ना वो एक्सट्रीम है, तो मेहरबानी करके घर के अंदर टिके रहो, और अगर कहीं एक्सरसाइज करनी भी है तो घर के अंदर कर लो, या जिम विम चले जाओ। सोड़ो गोभी दें फुल्लो, ऐसा ना करें ना। कभी कभी तो जब आप ऐसी हरकतें करते हैं तो पानी भी काम नहीं कर रहा होता। तो भाई कोशिश ये करें कि एक्टिविटीज जितनी भी करनी है वो इंडोर करें। देखिए कतर इतनी अच्छी जगह है, मॉल शॉल जाओ, कोई इंडोर एक्टिविटीज़ करो, क्या बाहर गर्मी में जो है ना वो गर्मी के चपेड़े खा रहे हो। नहीं नहीं, अंदर जाके सारी एक्टिविटीज़ करेंगे हम। पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न लेकर बैठना आज, अपना OTT प्लेटफॉर्म वाला कुछ चलाना, और मज़े से, मैं बता रही हूँ, मज़े से बैठ के खाना पीना, घर बाहर नहीं जाना बाहर। जो मैं करती हूँ ना वही दूसरों को बोलती हूँ तभी लोग मुझे काउच पोटैटो कहते हैं। तो भाई ये तो हो गई पापड़ की तरह करारी हमारी वेदर रिपोर्ट। अब चलो गर्मी के बारे में बात कर रहे हैं, तो गर्मी से याद आया, गर्मियों में लोग छुट्टियों पर जाते हैं। अच्छा, अक्सर औकात बच्चों की समर वेकेशन होती हैं, तो ये भी एक रीज़न रहता है कि हाँ भाई छुट्टियों पर जाना है। अब छुट्टियों पर जाने को क्या कहते हैं, अगर हम थोड़ा स्टाइल में आकर बोलें बाबू भाई, अगर हम थोड़ा स्टाइल में आकर बोलें तो भाई देखो हम कहते हैं वेकेशन पे जा रहे हैं। तो भाई आज की इन्फॉर्मेशन हमारी वेकेशन से ही जुड़ी हुई है। हमारा जो फन ट्रिविया है ना आज का, वो इस वेकेशन वर्ड से ही जुड़ा हुआ है। तो चलो थोड़ा सा ज्ञानी बन जाती हूँ आज के टाइम, थोड़ा सा हल्का फुल्का ज्ञान दे ही देती हूँ। तो भाई देखो, फिलॉसफी भी तो झाड़नी होती है ना, फिलॉसफी नहीं झाड़ूंगी तो इंप्रेशन कैसे पड़ेगा। तो मतलब थोड़ा सा तो ज्ञान झाड़ने दो ना, कॉल शॉल कर रहे हो, रुक जाओ, सबर करो, कॉल करो, करो कॉल, लेकिन मेरे ज्ञान की बात करना ना थोड़ा इंप्रेशन झाड़ने दो ना। देखो आज की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शुरू करना, शायद आपको अपनी नेक्स्ट वेकेशन और भी ज़्यादा स्पेशल लगने लगे या अच्छे से समझ में आने लगे। देखिए जितने लोग वेकेशन पे चले गए वो तो चले गए, अब आपके मुंह से जाकर बैठे हुए हो कि मैं वेकेशन पे नहीं गया, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और तौफीक देगा, अगले साल वेकेशन पे चले जाना, कुछ महीनों बाद चले जाना। रोना धोना किस चीज़ का मचा रहे हो, पहले ये तो जान लो ये जो वेकेशन का वर्ड आया था ये आया कहाँ से था असल में। देखो कभी आपने सोचा है कि वेकेशन का नाम आया कहाँ से, एक्चुअली में जो वेकेशन करते रहते हो, ये आया कहाँ से वर्ड, जाना दूर की बात, पहले ये तो जान लो कि आया कहाँ से। देखो हम जब वेकेशन बोलते हैं ना तो दिमाग में हमारे फौरन क्या आता है, किसी किस्म की तस्वीर आती है, साइलेंट क्या आएगा, जैसे वेकेशन का वर्ड बोला दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है, मेरे दिमाग में आता है भाई सूटकेस रेडी पड़ा हुआ, वो मेरे पास एक नीले रंग का सूटकेस है वो आता है मेरे दिमाग में, सनग्लासेस आंखों पर, मोबाइल फुल्ली चार्ज, और एक मेन चीज भाई ये जो ऑफिस के नोटिफिकेशन होते हैं ना ईमेल्स के, इसको तो फुल ऑन इग्नोर मिशन, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता उस एक महीने के लिए। लेकिन इस लफ्ज़ की कहानी ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है।
देखो वेकेशन जो है ना, वेकेशन का जो वर्ड है असल में लैटिन जबान का एक लफ्ज है जो कि आता है वेकेर से. किस वर्ड से? वेकेर. अब ये जो वेकेर वर्ड है ना, जिसका मतलब होता है खाली होना, यानी के नहीं ढोल नहीं, ढोल जैसे खाली होता है वैसा खाली नहीं होना, आजाद होना. इसका कॉन्सेप्ट आता है आजाद होने से. यानी पहले जमाने में जब लोग वेकेशन मनाते थे ना, तो उसका मतलब कुछ और होता था, यानी कि अपनी बिजी रूटीन को थोड़ी देर के लिए स्केड्यूल फ्री कर देना, अपना खाली हो जाना, बिल्कुल खाली. जैसा हमारा 24 घंटे आजकल दिमाग चलता है ना गर्मियों की वजह से, खाली, बिल्कुल लस्सी बना हुआ दिमाग, वैसा खाली हो जाना. अच्छा देखिए, मामला ये था कि 19th सेंचुरी में ना, वैसे तो ये लैटिन का वर्ड है ही है, लेकिन इसको जो फरोग मिला ना वो 19th सेंचुरी के अमेरिका में ये लफ्ज ज्यादा और ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हो गया. उस वक्त ना लोग पता है क्या किया करते थे, शहरों की जिंदगी छोड़कर दे भाग शहरों से. शहरों भाई कितना शोर शराबा होता है, ये गाड़ी का शोर, ये सायरन्स का शोर, ये इसका उसका. तो उधर ना, उधर के शोर से भागने के लिए लोगों ने क्या करना शुरू किया, उस वक्त शहरों में रहने वाले अमीर लोग गर्मियों और शोर शराबे से बचने के लिए अपने घर छोड़कर ठंडी जगहों पर, यानी कि वो कंट्री साइड उनके पास होती थी ना, अलग अलग स्टेट्स में चले जाते थे. अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है तो भाई उनके अलग अलग स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो गर्म है, कुछ स्टेट्स ऐसे ठंडे. तो गर्म स्टेट्स के लोग ठंडे स्टेट्स की तरफ भाग जाते थे. मतलब उनकी वेकेशन कुछ ऐसी होती थी कि सिटी की ट्रैफिक वाली लाइफ को टाटा बाय बाय कर वो गाँव की फ्रेश हवा में सुकून से नेचर को हेलो हाय करने चले जाते थे. और हम यहाँ पे उल्टा ही कर रहे हैं. वाह वाह सफा वाह. आज हम वेकेशन पर जाते हैं तो भाई हमारा क्या होता है, होटल की बुकिंग हो, फ्लाइट्स हो, थीम पार्क्स हो, तो सेल्फीज बननी हो, तो प्लेन में जाना है, तो शहरों में जाना है, तो हमने जाकर जो है ना वो क्या टाइम स्क्वायर घूमना है. तो भाई पहले ज़माने में जो एक्चुअल वेकेशन का वर्ड ना, ये ऐसा नहीं था. लोग सिर्फ उठाते थे एक बैग अपना और ये जा वो जा, अल्लाह हाफिज़ शहरों को, चलो भाई थोड़ी देर के लिए दुनिया से डिसकनेक्ट और नेचर के साथ कनेक्ट करने चले. तो भाई सीधी सी बात है, गोभी दिया फुल लो, खुशबू लगाओ, और अगली दफा जब वेकेशन पे जाओ ना तो याद रखना आप सिर्फ ट्रिप नहीं कर रहे बल्कि एक ऐसे लव्स की हिस्ट्री को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं जो सदियों से लोगों को फ्री मोड में ले जा रही है. नहीं वो एक के साथ एक फ्री वाला मोड, वेकेशन कोई भी फ्री नहीं होती, बहुत खर्चे वाली होती है, जेब भरी भी होनी चाहिए वेकेशन के लिए, मैं मानती हूँ. वो दिमाग से फ्री होने वाली, मतलब टेंशन से फ्री होने वाली, ठीक है, खुश रहो अपने अपने खर्चे पर. और हाँ, वेकेशन का असली मजा तब आता है जब बैटरी तो फुल हो लेकिन ऑफिस के नोटिफिकेशंस की बैटरी जीरो हो जाए. गोभी ने बोला. तो भाई वेकेशन के बारे में तो मालूमात बहुत भारी भरकम हो गई, अब क्या कहते हो, एक ब्रेक लिया जाए? देखो इन्फॉर्मेशन के बाद ना थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए. तो भाई मेरा ये फेवरेट वाला चलिया, ये वही वाला चलिया जो मैं सोच रही हूँ, या ये कौन सा वाला चलिया, पहले मुझे सुनने दो. ओए होए होए होए, ये मेरा फेवरेट वाला चलिया चलिया भाई. चलो भाई वॉल्यूम ऊपर करो, थर्सडे है, जरा बीट पर आओ और चलिया मैं तो चलिया तेरी. चलो मेरी आवाज में सुनो, आप सुन रहे हैं 107 पर सन एंड साउंड विद सफा, दिल से देसी. एंजॉय, वॉल्यूम अप वॉल्यूम अप, वीकेंड है भाई, मूड ये, क्या क्या उदास बैठे हुए हो, बत्ती निकाल के.

0: भाई इस गाने में इमरान हाशमी ने पहना था वाइट कलर का सूट और तब से ही सबने वाइट कलर के सूट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो भाई आप सुन रहे हैं सफा के साथ, शो का नाम है
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
0: क्या तो आ रहा था। चलें एरा से वापस आते हैं और इस एरा पे चलते हैं, मतलब ये कि इस एरिया पे चलते हैं जहाँ पे हम आपसे सवाल करते हैं। देखो भाई पहली बात तो ये कि वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड ऑन एफएम 107 कतर और इस वक्त अगर घड़ी की तरफ देखा जाए तो 11:20 हो रहे हैं। और भाई आप लोगों का दिन कैसा चल रहा है? गोभी दया फुल्लो अटेंडेंस लगवाइए कि नहीं लगवाइए। आज मैंने मोबाइल हाथ में रखा हुआ है, देखिए मैं कितनी अच्छी बच्ची चल रही हूँ। तो भाई आज की अटेंडेंस हमारी लगना शुरू हो गई है। जासिम भाई हैं, जासिम भाई क्या कह रहे हैं आपकी इस बात पर? नहीं ये मेरे लिए है। हम ओके ओके ओके ओके ओके। अरे जासिम भाई ये जो गाना आपने बोला है ना, ये वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स है। मतलब इन्होंने एक गाना बोला है जुनैद जमशेद का, हम क्यों चलें उस राह पर। तो ये गाना मुझे शुरू से अच्छा लगता है भाई। ये गाना ही हट कर है, वो जो मैं बात कर रही थी ना कि दुनिया राइट जा रही है तो हम लेफ्ट जाएंगे, तो ये गाना वाकई में उस बिल्कुल उस थिंकिंग के ऊपर सही बैठता है। जासिम भाई ये गाना अच्छा याद दिलाया, गाना अच्छा है। अच्छा अस्सलाम सफा जी, क्या हाल है जी? मेरे हाल चाल सही हैंगे। अब्दुलरहमान जी आप कैसे हैं, आपके क्या हाल चाल चल रहे हैं? गुड मॉर्निंग जी, हैव अ ब्लेस्ड डे। हरपाल सिद्धू फ्रॉम जकरी दुकान, ओ भाई दुकान में बैठे हुए कॉल कर रहे हैं। दुकान बीच याद आ गया इनकी बात सुनकर मुझे, अच्छा बीच है बड़ा, मेरे बचपन का चाइल्डहुड फेवरेट। चलो भाई देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। आप अगर कॉल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 4434377। देखते हैं भाई कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सफा।
0: ओह माय गॉड अहमद भाई को आज हमारी याद आ गई है। कहाँ गुम थे भाई?
2: यार मैंने जब आपसे बात की थी वो तो दो हफ्ते में, अब हमें ये पता नहीं था ना क्योंकि हम, मैं भी सोचा था कि चलो मैं अगले हफ्ते आपको फिर से कॉल करूँ, पर अगले हफ्ते ऐसे हुआ कि हमें 4-5 दिन वो लोगों ने वो चलाया था वो तिलावत, फिर आपने फिर अगले हफ्ते, तो मैंने कहा चलो अगले हफ्ते फिर मैं।
0: अच्छा ये तो बताओ किसको सपोर्ट कर रहे थे फुटबॉल में? अर्जेंटीना को तो ना कर रहे थे?
2: आप किसको कर रहे थे?
0: भाई मैं तो स्पेन की साइड पर थी। भाई देखो मेरा हॉलैंड और मेरा नॉर्वे जो है वो तो साइड पर हो गया, मेरा CR7 भी साइड पर हो गया, तो मैंने कहा अब मैं किसको करूंगी सपोर्ट, तो स्पेन ही बचा, तो स्पेन को सपोर्ट कर रहे थे हम।
2: वजह ये है अर्जेंटीना को सपोर्ट करने की यही वजह है, क्योंकि तो जो भी मेरा एक कजन है जो भी वो सपोर्ट कर रहा है वो ही बात कर रहा है।
0: ये मेरे भाई का सीन था,
2: उसने बड़ा सोचा कि चलो अब हम आखिर में अर्जेंटीना को सपोर्ट कर
0: रहे
2: हैं। बंदे को बुरा लग रहा है कि हाँ वैसे ने भी अर्जेंटीना अच्छा खेला, फिर भी हम उसके ऊपर इतना गुस्सा डाला कि नहीं खेलो, अच्छा नहीं खेलो।

0: एल बी अच्छा के लिए यानी बेशक एक बाय उस बंदे की टैलेंट है वो उसको इतनी बड़ी टाइप से आखरा आखिरी गोल कब भी था उसका तो इसलिए
1: तो भाई हमने तो बड़ा मजा किया मैच के आखिर तक बहुत मजा आया बहुत हम बड़े खुश हुए। अच्छा खैर चलो मैच की छोड़ो ये बताओ लाइफ कैसी चल रही है छुट्टियां कैसी चल रही हैं।
0: बस वैसे ही जो चल रही थी अभी तो क्या कहते हैं
1: सो सोकर चल रही है
0: क्योंकि सोकर ही चल रही है
1: अच्छा एक बात बताना ठीक है एक क्वेश्चन है मेरा ठीक है आप इसे शुरुआत करते हैं आज के शो के पहले कॉलर आप हैं तो आपके कंधे पे रखकर बंदूक चलाई जाएगी यानी कि देखो हमारे पास ना लाइफ में हमें दो किस्म के लोग मिलते हैं एक तो वो होते हैं जिनसे आप एक सिंपल सा सवाल पूछो ठीक है और वो आपको उसका सिंपल सा जवाब दे देते हैं एक वो होते हैं कि आप उनसे सिंपल सा सवाल पूछो और वो आपको पूरी पूरी OTT प्लेटफॉर्म की डॉक्यूमेंट्री बनाकर दे दें मतलब ये कि एक बंदा ऐसा होता है जिससे आप पूछते भाई टाइम क्या हुआ है और वो आपको फौरन ना बफरिंग किए बगैर टाइम बता देता है एक बंदा ऐसा होता है जिससे आप पूछ रहे भाई टाइम क्या हुआ है तो वो कहेगा देखिए पहले हमें ये समझना होगा कि वक्त का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है जमीन अपने एक्सिस पर घूमती है और सूरज सिस्टम के मुताबिक चलता है फिर एटॉमिक क्लॉक का रूल आता है मतलब उनकी पूरी डॉक्यूमेंट शुरू हो जाती है तो आप किन लोगों में से अगर आपसे कोई सीधा सा सवाल करे तो आप अपनी नॉलेज झाड़ेंगे उसके पास उसके साथ मिलकर या आप सीधा सीधा उसके सवाल का जवाब दे देंगे शॉर्ट एंड क्रिस्प।
0: मुझे अभी ये अभी उसके खाना से बात करता हूँ वो मुझे कहती है कि अच्छा क्या किया मैं कुछ और कहना शुरू करता हूँ ठीक है मैं कभी से ही बात कहता हूँ मैं कुछ और टॉपिक के बारे में बोलता हूँ मेरे में
1: ज्ञानी चल रहे ज्ञानी मतलब अपना ज्ञान बांटना है हमने किसी को चाहिए नहीं चाहिए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें ज्ञान बांटना है
0: फिर भी हमने उससे बात ही कर ली है तो मैटर व्हाट इज द टॉपिक दिल कर रहा है कई और टॉपिक में भी बात कर लिया उसका।
1: देखो बेटा मैं बता रही हूँ दुनिया कहेगी कि ये एक बहुत ही फजूल हरकत है लेकिन मैं कहूंगी कि ये कम्युनिकेशन स्किल है इसको पॉलिश करो देखना बहुत आगे जाओगे। मैं सच बता रही हूँ ये एक स्किल है कुछ लोग ना बड़े रूखे सूखे से होते हैं उनसे आप सीधा सा कोई सवाल करो तो वो सीधा सा जवाब दे देते हैं हाँ कभी कभी चलता भी है सीधा जवाब करो सीधा सवाल करो सीधा जवाब मिल जाए लेकिन कभी कभी ना आप साथ बैठे होते हो चार लोगों के और आप वो क्या कहते हैं उसे हम लोग गुफ्तगु इनिशिएट करने की कोशिश कर रहे होते हो ऐसे लोग गुफ्तगु इनिशिएट नहीं कर पाते भाई उनसे कोई सवाल करो हाँ आप कैसे हो हाँ ठीक है खामोशी।
0: तब जब भी मैं कभी सवाल करता हूँ मुझे इतनी परेशानी होती है कि अच्छा कभी ये कह देता है मैं एक टॉपिक से कोई रिलेटेड नहीं है ये सारे टॉपिक से कोई रिलेटेड नहीं है ये दो टॉपिक करता है या तो इतनी कभी कहा स्टोरी में कुछ कहता है आपने शायद इनका सुना होगा पहले तो इनका स्टोरी जब यानी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वो अच्छे थे बट नाउ इन द मिडिल ऑफ द ईयर जब गर्मियों की छुट्टियां भी आई हुई है और सब कुछ फिर उनकी स्टोरी फिर समझ नहीं पाती हमें शोर भी होता है ना गाड़ी में जब भी हम मॉल में जाते हैं
1: भाई कबीर भाई की स्टोरियां ना वो कोने में बैठ कर साइलेंट रूम में यूं आप कह लो कि साउंड प्रूफ रूम में सुना करो क्या मजे ही लगेंगी। अच्छा चलो अपना बताओ आप ये बोल रहे हो कि आप जो हो वो मतलब आप फुल ऑन इन्फॉर्मेशन मोड पे चले जाते हो अगर आपसे कोई छोटी सी बात कर ले सही
0: नहीं दफा एक्चुअली क्या है मैं उस वाले टॉपिक से ना एक्चुअली मैं क्या करता हूँ मैं जो वो टॉपिक कहना शुरू हो जाता है मैं वो नहीं सुनता आधा घंटे बाद मैं कॉल करता हूँ चलता है
1: मतलब दुनिया के साथ चक्कर लगा लेते हो। वाह भाई वाह आपके लिए ना
0: आप उस वक्त सोचूं कि चलो आधा घंटे बाद सुन लेता हूँ
1: मतलब कोई कुछ बोलता रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता देखो हमने तो अपनी जाननी है आपके लिए स्पेशल तालियां बजा दी जाए स्पेशल तालियां क्योंकि एक वाहिद शख्स है जिसने अपनी ये बात कबूल की है स्पेशल तालियां।
0: चलो कहना शुरू हो जाएगा फिर मुझे पता चल गया फिर लोगों की कॉलें आदि जरूरत चलो

0: कोई ऐसी बात है कि जैसे कई बार कुछ अर्जेंटली चीज ऊपर कहते नहीं आउट ऑफ लीग वाली बात की कुछ पर यार
1: ये सही है
0: सच्ची में लोग ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि जैसे वो लोग फनी मोमेंट दे रहे हैं
1: अहमद एक काम करना ना एक काम करना बड़े होकर ना एक सेक्रेटरी हायर करना जिसका काम सिर्फ ये हो कि तुम्हें तो वापस से ट्रैक पे ले आए
0: यार बस अब यही हुआ है
1: चलो भाई
0: क्योंकि पहले तुम हाँ मेरा लेकिन अब
1: नहीं हो सकता है दुरुस्त हो सकता है अपना फोकस थोड़ा सा फोकस किया करो अपने आप को ट्रेन करो सेट हो जाएगा मामला ये नहीं कि शॉर्ट बात करो बात करनी है इन्फॉर्मेशन देनी है दो कोई मसला नहीं है लेकिन बंदा सामने वाला देख लो कि
0: क्योंकि सुबह आपने मेरी लंबी बातें हो गई अब 7:43 हो गए आपसे बात किए हुए उससे तकरीबन ही 2-3 मिनट की बात हो रही है उससे मेरी और उसकी तो इतना ज्यादा मैं उससे भी बातें नहीं करता जितने आपसे करता हूँ
1: चलो भाई अच्छी बात हो गई हम बातें करने के लिए बैठे हैं ये बताओ हमारे साथ गेम खेलोगे बॉलीवुड लास्ट टाइम इन्होंने बोला था गेम खेलूंगा और गुम हो गए थे
0: बहुत कोशिश कर रहा था सफा फिर वो कॉल ही नहीं जा रही थी
1: अच्छा बेटा अच्छा ये बात है चलो आज एक काम करते हैं अहमद का नंबर लिख लेते हैं ठीक है अहमद अगर मौका लगा तो आपको कॉल कर लेंगे हम खुद ही ठीक है
0: ओके
1: चलो जी अपना ढेर सारा ख्याल रखना अहमद अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अच्छा अहमद का ये मामला अहमद वो गजनी की तरह पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाता है इसके मेरी तरह तो भाई गोविंद यहाँ पे लो आप भी अगर हमारे साथ शामिल होना चाहते हो तो आ जाओ जरा खुशबू लगा के मैसेज कर सकते हो 6622107 पर 6622107 पे मैसेज कर सकते हैं 6622107 मैसेज करें और चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं 4434377 पर मामला बड़ा सीधा सा है जी मामला बड़ा सीधा सा है दुनिया में होते हैं दो टाइप के लोग आप कौन से टाइप में से आपने मुझे ये बताना है एक वो जिनसे जितना सवाल किया जाए वो बड़े रूखे से होते हैं भाई वो उतना ही जवाब देंगे दो टोक ऐसे जैसे अगर वो एक लफ्ज भी और बोल देंगे ना तो उनके डबल एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो जाएंगे और एक वो जिनका मुंह बंद कराने के लिए आपका दिल करता है कि भाई मेरे पास चिल्लर नहीं है वरना मैंने दे देता ताकि इनका मुंह बंद हो जाए तो आप किन में से हो ज्यादा बात करने वालों में से कि कम बात करने वालों में से 4434377 इज द नंबर टू कॉल और देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम जी नदीम बात कर रहा हूँ मैडम
1: नदीम भाई
2: जी सर जी मैडम क्या हाल है
1: सर ओ माय गॉड मैं सर बन गया मुझे पता नहीं चला नदीम भाई गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है
2: सॉरी
1: 47 डिग्री सेल्सियस पानी पिए होश आएगा होश
2: नहीं वो पानी तो अभी पिया पर वो मैं ड्राइव कर रहा हूँ फोकस मेरा पूरा ड्राइविंग पे
1: देखो जरा मतलब ऑन एयर आके जुर्म का इकरार कर रहे हैं वाह तालियां तालियां शहजादे तालियां तालियां
2: थैंक यू मैं बहुत लकी हूँ इसलिए कि मैं पिछले 2 दिन से जस्ट आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ
1: सही
2: तो आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई किया और देखो मेरी कॉल लग गई अल्हम्दुलिल्लाह
1: ओए होए होए देखें इसे कहते हैं शिद्दत याद करने की शिद्दत इतने इतनी इतनी क्या वो शाहरुख खान का डायलॉग था इतनी शिद्दत से मैंने कॉल करने की चाहत की है कि सर रिजर्व ने मुझे कॉल करने की इजाजत दी है
2: मिलाने से
1: कैसे हैं आप नदीम भाई ठीक ठाक चल रहे हैं
2: अल्हम्दुलिल्लाह कैसे कर आप सुनाए आप ठीक हैं
1: भाई अल्लाह की रजा में राजी जो अल्लाह की रजा में राजी उसका क्या ही करेगा कोई और भाई आज वीकेंड है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मजा ही मजा खुश हो रहे
2: बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड पे तो स्पेशली सुबह से हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि इंशाल्लाह आज
1: बस ड्यूटी करेंगे बैग पैक करेंगे हाँ छुट्टी करेंगे अच्छा वीकेंड पे आप क्या करते हैं मोस्टली आप क्या करते हैं मेरी तरह घर में तकिए मुंह देकर सो जाते हैं या कहीं बाहर की एक्टिविटी होती है आपकी
2: नहीं मैं इस टाइम पे तो स्पेशली जो आजकल जो वेदर चल रहा है तो इस टाइम पे तो मैं अपने घर से भी नहीं निकलता
1: अरे भाई कुछ लोग हैं खतरों के खिलाड़ी
2: हाँ जी बिल्कुल आपकी बात पहले हम ऐसा करते थे लेकिन अभी वो वाला
1: अब उम्र का तकाजा है
2: उम्र का तकाजा है उम्र का तकाजा तो नहीं है स्टिल अभी है थोड़ा जवान है अल्हम्दुलिल्लाह
1: नहीं मैंने मैंने कहीं ना एक बड़ा फनी सा पोस्ट देखा था कि जो 30 साल प्लस के जो लोग हैं 30 इयर्स प्लस के जो लोग हैं

0: वो अपना मी टाइम कहाँ गुजारते हैं, वो क्या करते हैं, वो नजर क्यों नहीं आते मार्केट में? तो उसके ऊपर अगले ने बोला था कि हमारी सबसे बेस्ट जगह जो है ना आराम करने के लिए, हमारी गाड़ी में हम बैठ के मोबाइल यूज कर लेंगे, हमारे घर में तकिए मुंह देकर हम सो रहे होंगे, घर में होंगे, OTT प्लेटफॉर्म पे मूवियां देख रहे होंगे, हम अलग ही मिजाज के लोग हैं।
1: एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उसी टाइप में आते हैं, हम एज पर कितनी है,
0: बहुत देख ली दुनिया,
1: पर उसी एज में उसी कैटेगरी में हम भी आते हैं।
0: सही है।
1: और स्पेशली आजकल जो गर्मी का सीजन है, इसमें तो बाहर जाने का प्लान बिल्कुल मोड ही नहीं हो रहा। बस
0: जो जाएगा ना, फिर उसके साथ जो होगा, फिर वो उसका खुद ही
1: खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा।
0: अच्छा ये बताएं कि अगर आपसे सवाल किया जाए कि आप किस किस्म की शख्सियत में से एक हैं, एक वो होते हैं जिनसे सवाल किया जाए और वो सवाल का जवाब ऐसे दें जैसे उनके एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हों, टाइम क्या हो रहा है 11 बज रहे हैं, बस खत्म। एक वो होते हैं दूसरे टाइप के जिनसे आप अगर बातचीत करो ना, आप उनसे कहो टाइम क्या हो रहा है, तो वो आपको ये तक बता देंगे कि टाइम की इजाद किसने की थी। तो लंबे जवाब देने वाले बातूनी इंसान हैं आप, या आप, हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं ना, खड़ूस किस्म का एक शख्स होता है जो किसी से बात नहीं करता, कहता बस बात कर ली, मैंने इतना जवाब दे दिया, बहुत बड़ी बात है।
1: नहीं, वो आपकी बात सही है, पर वो उसके डिग्री में तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आते, शॉर्ट क्वेश्चन में बस जो पूछे वही सवाल जवाब दो, खलास।
0: बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट, मतलब बिल्कुल शॉर्ट जवाब देते हैं आप।
1: एग्जैक्टली,
0: बहुत
1: जाए
0: बहुत ही बोरिंग,
1: उसका जवाब दो।
0: नहीं नहीं, ये बोरिंग हो जाता है भाई।
1: ये होता है कि आपकी बात सही है, लेकिन अक्सर ये होता है कि सामने वाले के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो आप उसको डिटेल में बताएगा तो वो मतलब डिस्टर्बेंस को महसूस करेगा।
0: अच्छा, दोस्तों में जब आप बैठते हैं तो आप बातचीत करते हैं, मतलब ज्यादा बात होनी है, या दोस्तों में भी चुप?
1: नहीं, दोस्तों में तो मैडम बहुत बात करते हैं, बहुत।
0: हाँ, तो फिर आप बातूनी शख्स है ना, मतलब है बातूनी। ये और बात है कि आप ये देख लेते हैं कि भाई मूड के हिसाब से बात करते हैं, किसको मुंह देना है, किसको मुंह नहीं देना। सही नदीम भाई, सही हो गया। इंटेलिजेंट इंसान, इंटेलिजेंट, ऑब्जर्वेशन करके बात करते हैं। अच्छा जी,
1: थैंक यू।
0: चले भाई, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और ऑब्जर्वेटिव रहें आजकल के दौर में, तो वाकई में जिससे नाप तोल कर बात करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम दिलों में जगह देते हैं और फिर वो आस्तीनों से निकलते हैं।
1: वही बात जी, बिल्कुल आपने ये सही फरमाया, क्योंकि आजकल मैं सब की बात नहीं करता, है कुछ ऐसे कि जिसको दिल से मतलब वो इज्जत करोगे, रिस्पेक्ट दोगे, तो वो पता नहीं आगे से थोड़ा आपको इंसल्टिंग फील करवाएगा। बट सब ऐसे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ऐसे नहीं है, सब लोग अच्छे, और अपने आप के ऊपर डिपेंड कर, जितना अच्छा सोच रखेगा दूसरे के लिए तो एग्जैक्टली वो भी आपके साथ वैसे करेगा।
0: अल्लाह ताला अच्छा, तो अच्छा, अच्छी सोच रखे, अच्छा करने वाला है।
1: हाँ जी, मेरा तो, हाँ जी, मेरा तो यही मानना है कि पॉजिटिव सोच रखिए और हर किसी का इज्जत रखिए, बाकी बस उसके ऊपर डिपेंड है, उनके शॉर्ट जिंदगी है, तो बस खुश रहिए, खुश रहिए बांटे।
0: सही जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।
0: तो भाई गोविंदा बोल लो, देखो मेरे आंख के तारों, कॉले तो कर रहे हो, मैसेजेस भी कर रहे हो, लेकिन अभी एक काम करते हैं, पता है क्या, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अजान का भी टाइम होने वाला है, तो एक छोटू सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह वापस आके आपकी कॉल भी रिसीव करेंगे, आपके मैसेजेस भी पढ़ेंगे और मज़े मज़े के अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करो भाई। अगर कभी किसी को कोई शॉर्ट जवाब दिया है, कभी किसी को कोई लॉन्ग आंसर दिया है, तो कोई सीन पार्ट हुआ है किसी के साथ, भाई मेरा तो एक ही सीन पार्ट होता है, मुझे लोग कहते हैं भाई ये इसका ऑफ का स्विच कहाँ है, इसका ऑफ का बटन कहाँ, कोई लगाना भूल गया था या मिसप्लेस हो गया, टूट गया है। मेरी अम्मी को अक्सर लोग बचपन में कहते थे कि भाई कोई कहीं गिर भी गई थी ये, कोई स्विच विच टूट गया इसका, कोई नट बोल्ट ढीला हो गया, क्या है, बंद क्यों नहीं होती। और मेरी यूनिवर्सिटी के दोस्त तक आज जब उन्हें पता चलता है कि मैं रेडियो में हूँ, तो मुझे कहते हैं भाई सही जगह लगी है तू, सही, बिल्कुल सही, सूट करता है भाई, सूट करता है। तो आप किन लोगों में से जो बातें करते हैं, या जो बिल्कुल यूं बिल्कुल रुके सूखे से होते हैं ना, वो हैं? आप किस टाइप के इंसान हैं, किस टाइप के इंसान हैं आपका मोजी? चलो जी ब्रेक पे चलते हैं जी। आतिफ असलम कहाँ गए, हमारे आतिफ असलम, आजकल आतिफ असलम बहुत इन चल रहे हैं, वापस से आ रहे हैं क्या मार्केट में?

0: इश्क दे झोल मैं की करया की करया, ये जो इश्क के झोल होते हैं ना, इनसे कोई निपट नहीं सकता जी, निपट नहीं सकता।
1: आप सुन रहे हैं सन,
0: कहाँ गया भाई, कहाँ गए कबीर भाई? आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड, था कबीर भाई,
1: सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: तो जी आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड और एफएम 107, और ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं हम। इस वक्त घड़ी में बज रहे हैं 11:52, और भाई हमने जाने से पहले आप लोगों ने सवाल किया था कि जरा बताएं आप किस किस्म के लोगों में से एक हैं। दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, गोभी दिया फुल्लो, एक वो जिनसे जितना जवाब मांगा जाए वो उससे भी कम जवाब देते हैं, मतलब वो ऐसे तो कोई रूखे सूखे के भाई उनसे दोबारा बात करने को दिल ना करे, और दूसरे वो होते हैं जो महाज्ञानी, मैं तो कहता हूँ आप ज्ञानी नहीं आप महाज्ञानी हैं, वो वाला टाइप हो जाता है, मतलब उनसे बात करें तो फिर उनका ऑफ का बटन जो है ना, आप कहते हो कानों को हाथ लगा, कहते भाई मैंने गलती कर दी, मेरे मुंह से निकल गया, मुझसे गलती हो गई, मतलब वो इतना ज्ञान दे देते हैं। तो भाई आप कौन से वालों में से हो ये बताओ, 666-22107 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, 666-22107 पे मैसेज कर सकते हैं, और चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल। देखो भाई कौन है हमारे साथ, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, कैसे हो, ठीक ठाक?
0: बिल्कुल ऐसे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ऐसा चाहता है वैसे ही चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है हमारे साथ?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुदस्सिर बात कर रहा हूँ, लेकिन सांपों वाला नहीं हूँ।
0: मुदस्सिर भाई ने अपना अपना स्लोगन बना लिया, मुदस्सिर भाई, देखो मैं सांपों वाला नहीं हूँ।
2: हाँ लाजिम ये सब बोलेगा ना, अभी फिर मैं तुम बोलोगे कि सांप वाले
0: खतरनाक। नहीं नहीं नहीं नहीं मुदस्सिर भाई, मुदस्सिर अयूब है कि नहीं?
2: जी जी, हाँ,
0: देखो
2: जी,
0: मुझे याद हो गया मुदस्सिर भाई, देखिए गजनी को भी आपका नाम याद है। मैंने कहा गजनी को भी आपका नाम याद हो गया, चलें भाई अच्छी बात होगी,
2: अच्छी बात है।
0: ये बताएं आज का दिन का क्या प्लान है मोगेम्बो, आज के नए प्लान के मुताबिक?
2: प्लान तो नहीं है, बस घर पे बैठना है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है।

0: भाई यही तो प्लान है, यही तो प्लान है।
1: दोस्त आएंगे बस घर में ही बैठेंगे।
0: अरे मुदस्सर भाई बड़े खुश नसीब हो जो आपके पास दोस्त हैं, कुछ मेरे

0: छुट्टी होगा ना, वो तीसरे दिन का दिल भी नहीं करता है काम करने का।
1: सैटरडे वाले दिन बुखार चढ़ जाता है हमें, हम कहते हैं बुखार हो गया, हमारी तबीयत खराब हो रही है, हमसे लीव लेंगे।
0: अच्छा
1: अच्छा, ये बताएं मुदस्सिर भाई, आपसे अगर सवाल किया जाए, जरा ये बताएं कि दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, अब आप कौन से टाइप में से, ये बताएं, जो ज्यादा बात करना पसंद करते हैं या जो कहते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म बात करो।
0: सवाल नहीं है, मैंने सुना नहीं था सवाल।
1: क्या मतलब, क्या मतलब?
0: मुझे पता नहीं किस चीज के बारे में आप सवाल कर रहे हैं।
1: अच्छा ठीक है भाई, देखें दो किस्म के लोग होते हैं दुनिया में, एक वो जिनसे आप कोई नॉर्मल सा सवाल करते हो तो वो ऐसे हल्का फुल्का सा छोटा सा जवाब देकर बात खत्म कर देते हैं, मतलब कुछ बोलते ही नहीं, जितना आपने सवाल किया उतना उन्होंने जवाब दिया, कैसे हो, ठीक हूँ, बस ये जवाब है, आपने पूछा कैसे हो, उन्होंने कहा ठीक हूँ, खामोशी। दूसरी टाइप वो होती है जिनसे आप सवाल करते हो तो वो आपको कसीदे सुना देते हैं, आप उनसे सवाल करो कैसे हो, अरे भाई मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक, तुम सुनाओ और क्या चल रहा है जिंदगी में और क्या हो रहा है, वीकेंड कहाँ गुजारने जाओगे, ऐसे वाले लोग। आप कौन से वाले बंदे में से?
0: मैं तो भी इसी तरह हूँ।
1: आप दूसरे वाले टाइप में से?
0: हाँ दूसरे वाले टाइप से। आपको एक बात पूछेगी, मैं तुमसे हजार बात पूछूंगा।
1: उसका एक सवाल मेरे छह छह जवाब, उसके दो सवाल मेरे 18-18 जवाब।
0: ये है यार,
1: अरे वाह, ये सेट है, मतलब ये अच्छी कंपनी वाले, अच्छी कंपनी वाले
0: हम दूसरे को बोर नहीं करते हैं ना।
1: हाँ ये बात ना, ये बात कोई समझता नहीं है,
0: नहीं
1: सब हमें ऐसे ही बोलते हैं, ये बात नहीं है
0: जी। आप किसी के साथ बैठोगे ना तो मुझसे पूछोगे, वो तो मुझे जवाब नहीं देगा, वो तो खुद बहुत बैठा हुआ है, आपको भी बोर हो जाएगा।
1: सारी कोई किसी को बात ये वाली सारी की सारी समझ में नहीं आती, ये फैक्टर कोई नजर में नहीं रखता, कहते बात बहुत करता है।
0: होना चाहिए कि किसी को बोर नहीं करना चाहिए ना, लेकिन बात ऐसा करो कि दूसरे को बोर नहीं ना, उसको मजा आए ना, वो तुम्हारे तरफ मुतवज्जो हो, तुम्हारे साथ वो बात करना चाहे।
1: अब वो बिल्कुल बात वो नॉर्थ की चल रही है, आप साउथ की बात कर रहे हैं, वो तो एक अलग ही मुद्दा है, वो तो एक अलग ही स्पीशीज है, ऐसी वाली नहीं।
0: लेकिन वो हम ज्यादा बात करता है, लेकिन ज्यादा बात में ये बात करता है कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह मुतवज्जो हो जाए।
1: हाँ दिलचस्प बातें, दिलचस्प बातें, अच्छी अच्छी अच्छी वाली बात
0: बोल रहा हूँ।
1: देखिए हम है ही अच्छे लोग,
0: चलता है कि हम कैसे है, बस ठीक है, बात खलास हो गया।
1: मुदस्सिर भाई हम है ही अच्छे लोग, तो हम अच्छी बातें करेंगे ना, दुनिया तो ऐसी जलती रहती है, छोड़े जाने दे दुनिया को, क्या दुनिया वाले
0: चलती रहती है, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है आज।
1: गर्मी बहुत, हाँ तो मैं तभी कह रही हूँ शाम
0: गाड़ी में तो अभी मेरे गाड़ी में तो 49 बता रही है।
1: हाँ अच्छा, मैंने कहा ना 48 तक तो मैक्सिमम, ये बताया था उन्होंने टेम्परेचर वालों ने कि 48 तक कुछ आएगा। हाँ वो फील्स लाइक 50 तक तो लगेगा, लगेगा इतना तो लगेगा, ये तो होगा। अभी तो अगस्त भी आना है मेरे भाई, रुको जरा सबर करो।
0: मिर्जा साहब
1: अभी शायरी में मशगूल हैं, वो अभी अपनी एक टेबल बैठे होंगे किनारे पर, उनको सोचने का मौका दिया हुआ है, उन्होंने उनसे हमने कहा कि 15 तारीख के बाद आना मिर्जा साहब आप, तो वो अभी अपने कसीदे किताबें वगैरह लिख के 15 तारीख को आएंगे, 15 अगस्त से इंशाल्लाह।
0: अच्छा अच्छा, तुम्हारे और मिर्जा साहब का अच्छा टीम बनेगा
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं भी बड़े इंतजार में हूँ कि भाई आए पार्टी आए तो उसके साथ जो ना शुगल करेंगे इंशाल्लाह
0: इंशाल्लाह। सारे लोग अभी इंतजार कर रहे हैं
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
0: जब आप आ रही थी ना
1: जी जी,
0: मिर्जा साहब क्या बोला था?
1: क्या क्या क्या
0: मिर्जा साहब बोल रहा था कि सफा आ रही है, वो बोल किसी ने फोन पे बोल रहा था किसी को, किसी ने बोला कि सफा कौन है, वो बोलते वो बहुत खतरनाक है।
1: सफा की तलाश तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है।
0: ये बात आपको मालूम है कि नहीं मालूम है?
1: ये बात मुझे मालूम ही नहीं है, ये बात मुझे मालूम ही नहीं। सफा की तलाश तो 11 मुल्कों का रेडियो कर रहा है, सफा को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है।
0: नामुमकिन है। बस मिर्जा साहब ने ऐसा बना दिया आपको।
1: बस अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह आएंगे सरवर भाई, फिर मजा करेंगे इंशाल्लाह, बातचीत करेंगे 15 अगस्त से। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बातचीत करते रहिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, ये भी एक टैलेंट है। मैंने एक जगह पढ़ा था, मैंने बहुत पहले अब मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ एग्जैक्टली, लेकिन मैंने बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी जो कि मुझे बहुत क्या कहा जाए मेरे दिल पे लगी थी। उसने लिखा था लोगों को रुलाना बड़ा आसान होता है, इमोशनली लोगों को रुला देना बहुत आसान होता है, किसी रोते हुए को हंसा देना एक टैलेंट होता है जो कि हर किसी में नहीं होता। तो मुझे याद पड़ता है, नहीं नॉट टू ब्रैग अबाउट इट, मुझे याद पड़ता है मेरी कज़न है, मेरी खाला की बेटी है, वो माशाल्लाह मेरी जो ना बहुत अच्छी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है मेरी। तो वो मुझे कहती थी पर

0: कि मेरे खानदान में सभी कहते कहते भाई क्या है तुम्हारे साथ मसला, तुम रोने नहीं देती किसी को. ऐसी हरकतें और ऐसी बातें करती हो कि इंसान रोता हुआ इंसान हंस जाए. तो उन्होंने कहा भाई ये टैलेंट है, टैलेंट ये सबके पास नहीं होता. और मेरा वाला तो फ्री में चल रहा है. चले भाई आप भी अगर कॉल करना चाहते हैं 4434377 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं. 4434377 इज द नंबर टू कॉल. चले भाई देखते हैं हमारे कॉलर कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम जी, करीम शाह.
0: करीम भाई कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया, बहुत अरसे के बाद.
0: मैं भी यही बोलने वाली थी. ये शाम का भूला दोपहर को कैसे वापस आ गया?
1: देख ना, दुनिया के मसले मसाइले मकाफाते अमले, तो ये चीजें तो होते रहेंगे. कोशिश तो थी, दिल चाहता था, बस हालात कुछ ऐसे थे कि मौका नहीं मिल रहा था.
0: करीम भाई जिंदगी है, चलती रहेगी, ये तो ऐसे ही चलेगा. भाई देखिए जब तक हार्ड टाइम नहीं आता तब तक अच्छे टाइम की कदर भी तो ना होती हमें.
1: बिल्कुल,
0: हम इतने मासूम भी तो नहीं है ना कि अच्छे तरीके समझ जाएं.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जी मुझे, मैं खुश हूँ,
0: अल्हम्दुलिल्लाह,
1: कोई गिला भी नहीं है.
0: करीम भाई मैंने कहीं आपसे तो नहीं सुना था अल्लाह की रजा में राजी.
1: यही तो मैं कह रहा हूँ ना.
0: ये हाँ मुझे याद आ गया, मैंने करीम भाई से सुना है. मैं हर दफा ये कहती हूँ कि मैंने, मुझे नहीं पता कितने कॉलर्स ने मुझसे क्या सीखा होगा, लेकिन मैंने अपने कॉलर से जरूर एक चीज सीखी. और वो दो टोक में कहती हूँ कि ये एक मैंने अच्छी बात सीखी. जब जब मैं बोलती हूँ ना, अल्लाह ताला इसका अजर कहीं ना कहीं आपको भी देता होगा. अल्लाह की रजा में राजी, अल्लाह की रजा में राजी. ओ भाई ये बहुत खूबसूरत बात है.
1: असल बात है यही ना कि देखो हमें अल्लाह के रजा में राजी होना है ना.
0: अच्छा
1: बात है असल में कि जी जी.
0: मुझे एक एक मिनट का आप ब्रेक दे सकते हैं? एक मिनट का कॉल पे रहिएगा, जाइएगा नहीं.
1: पांच मिनट ले ले, नो प्रॉब्लम.
0: बस मैं यूं गई और यूं आई भाई, जिंगल बजाने का है ना जिंगल.
1: मैं वेट कर रहा हूँ.
0: चलिए जी अपना ढेर सारा ख्याल रखें और लाइन पे रहें.
1: जी जी जी जी.

0: FM 107, Time Check.
1: भाई इस वक्त अगर बात करें टाइम की तो इस वक्त टाइम हो रहा है 12:03 ऑन द क्लॉक ऑफ एफएम 107 और हमारे साथ जो हैं वो शामिल हैं करीम भाई। करीम भाई कैसे हैं भाई? सबर का मेडल देना चाहिए आपको, सबर का मेडल, सबर का मेडल। अच्छा भाई ये बताएं कि अगर आपसे सवाल किया जाए करीम भाई कि जिंदगी के मामलात में अगर आपसे कोई सवाल करता है तो आप किस किस्म के इंसान हैं के दो टोक बस हाँ हूँ मैं जवाब देकर ख़त्म कर देते हैं शॉर्ट, या आप अच्छी खासी बातचीत करते हैं, ज्ञान व्यान झाड़ते हैं कुछ?
2: देखो मैं अगले बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि सवाल करने वाला शख्स क्या चाहता है। अगर वो इसका लायक हो कि मैं अपने लाइफ के बारे में अपने बारे में उसको बताऊं तो मैं बता दूंगा। अगर मुझे ये लगे कि वो कहता है ना किसके आगे बीन बजाना तो कोई बात है ना
1: बहस के आगे
2: शॉर्टकट में
1: बहस के आगे बीन बजाना हाँ ये बात
2: है बहस के आगे। तो आपको इस चीज का पता है कि हमारे यहाँ हर जगह में कुछ ऐसे बंदे होते हैं कहते हैं ना कि एक मिसाल है या हकीकत है कि जब वक्त खराब हो जाता है ना
1: सही
2: तो फिर जो नाकाबिल शख्स होते हैं जिसे आप किसी भी नाम से याद कर सकते हैं
1: हाँ ठीक है
2: नाला एक ही समझो
1: हमें वो पसंद नहीं होते बस इन शॉर्ट।
2: हाँ तो जब बंदे का वक्त बुरा होता है तो फिर नसीहत कौन करता है नालायक
1: वाकई। अरे भाई ये वाकई में पता है जब आपका टाइम बुरा चल रहा हो ना हर 30 मार खान आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा डेढ़ होशियार और ज्ञान झाड़ेगा।
2: अब आपकी वक्त खराब है और उस हालात के वजह से आपने उसको सुनना पड़ता है।
1: हाँ हाँ हाँ सही तो, बात है
2: उस, तो ये वो चीज है कि हमेशा मैं लोगों से भी यही कहता हूँ कि देखो रिश्ते तो हमारे कुछ मोहब्बत के हैं कुछ जज्बात के हैं।
1: सही
2: ये जो माँ बहन भाइयों के बीच में रिश्ते हैं ये जज्बाती है।
1: सही सही सही
2: अगर हम प्यार और मोहब्बत के रिश्ते बोले तो वो माजरत के साथ मियां बीवी के बीच में है। आपने देखा होगा भाई लोग साथ रहते हैं 25 साल 30 साल एक साल एक दस्तरखान पे बाहर से एक बीवी आ जाती है और वो उस भाई को ले उड़ती है चली जाती
1: है। हाय हाय बहुत ही दिल जले चल रही है। तो
2: ये चीज देखो पॉइंट वाली है तो ये इस चीज का कि ये मोहब्बत सिर्फ मियां बीवी के बीच में होता है और ये जो बहन भाई के बीच में जो रिश्ते हैं ये जज्बाती है।
1: सही
2: तो हमेशा
1: नहीं इन हमेशा इन, इन इन रिश्तों का ना एक लेवल रखा गया है जो कि हमारे कल्चर में मैं कहूंगी हमारी सोसाइटी में हमारे कल्चर में वो फर्क भुला दिया गया है। हमारे कल्चर का प्रॉब्लम है वो हमारे दीन में तो उसको बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया है। बस हम लोग कुछ ऑफ रोड चल रहे हैं
2: बिल्कुल
1: ऑफ रोड चलेंगे तो भाई भरपाई तो करनी पड़ेगी।
2: बिल्कुल यही बात है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपका वक्त अच्छा हो ना तो हर कोई आपका अपना है ये मैं तजुर्बा कर चुका हूँ मैं इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ।
1: वक्त अच्छा और जेब भरी हुई हो तो आपकी हर कोई बात सुनता है भाई।
2: हर कोई बात सुनता है
1: जेब भरी हुई होनी चाहिए
2: पूरा हो जाता है ना आपके वक्त तो सबसे दोस्त जो है बेहतरीन दोस्त बेहतरीन चीज वो आपकी वक्त है।
1: सबसे पहले अपने छोड़ के भागते
2: हैं। वक्त अच्छा है तो हर कोई आपका अपना है
1: जब जेब खाली होती है।
2: बिल्कुल भाई मैं इस फैमिली में देख चुका हूँ एक बड़ा
1: होता भाई होता है
2: 25 से 30 साल वो पूरी फैमिली के लिए कमा रहा है मतलब अपने आप से बचा रहा है। जब उसको गोश्त खाने का जब शौक हो तो वो कहता है मैं क्यों खर्च करूँ यहाँ पे मतलब अगर 20 रियाल खर्च होता है मैं 5 रियाल से गुजारा करता हूँ या 15 रियाल और भेज देता हूँ किसी बच्चे की स्कूल।
1: होता है ये बड़ी नॉर्मल सी बात है भाई ये बहुत नॉर्मल है।
2: अपनी जिंदगी गुजारती है और जब उस घर का फिर लास्ट का बंदा आखिर का जो छोटे से छोटा भाई है जब फिर वो कमाने लगे उस बड़े भाई से कुछ पैसे ज्यादा तो फिर वो खर्चा देने लगे तो वो सारे उसके पीछे लग जाएंगे।
1: मतलब बात यही है इन शॉर्ट बात यही है भाई कि हमने पूछा कि भाई कौन आप जो है वो किस किस्म से बातचीत करते हैं शॉर्ट आंसर जवाब देते हैं या लॉन्ग जवाब देते हैं तो आप कह रहे हैं भाई मैं सामने वाला बंदा देख लेता हूँ कि उसने मेरे साथ क्या कितना कैसा रख लिया तो मैं उसको उसी हिसाब से जवाब दूंगा। सही है सेट है।
2: और मैं आपको अपने बारे में जो आपने सवाल किया तो वो जवाब मैंने दिया नहीं मैं अभी देना चाहता हूँ।
1: हाँ,
2: एक ही तबीयत है कि हमने हमारे इस्लाम के नजरिए से मैं हमेशा कुछ चीजों को इसी नजरिए से देखता हूँ। अल्लाह ने हमें वाज़े पैगाम दिए कलामुल्लाह किताब में कुरान में के रोजी ये मेरे हाथ में, इज्जत और जिल्लत मेरे हाथ में
1: है। बिल्कुल बिल्कुल बेशक।
2: आपको एक बूट का अगर एक तस्मा भी चाहिए तो अल्लाह ताला कहता है मुझसे मांग, वो फिर किस शक्ल में बंदा आ रहा है, मेरे शक्ल में आ रहा है, आपकी शक्ल में आ रहा है।
1: हाँ ये तो है, ये इस बात पर तो मेरा ईमान है भाई, ये तो है, ये बात तो है भाई।
2: तो मेरा जाती अपना ईमान यही है कि मैं कुछ भी हो जाए मैं एक ही चीज फॉलो करता हूँ कि मुझे रोजी देने वाला और इज्जत और जिल्लत देने वाला मेरा अल्लाह है, बाकी मैं सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए।
1: चले भाई, गुड बात हो गई, गुड बात हो गई। अच्छा अब ये बताएं कि इतना इमोशनल हमने बातें कर ली, अब बताएं बॉलीवुड ट्रिविया खेलेंगे हमारे साथ?
2: हाँ क्यों नहीं, ट्राई।
1: चले भाई, आपके साथ बॉलीवुड ट्रिविया का आज आगाज होने वाला है। आपको सुनाऊंगी कुछ सॉन्ग्स, एक मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको और उस एक मिनट में आपने करना ये।
2: जी जी, मैं पुराने सॉन्ग 92 के बाद, 2000 के बाद मुझे कोई सॉन्ग याद नहीं है।
1: अरे भाई ना ही करो ना, ऐसा ना करें ना।
2: मैं 87-88 से 2000 तक जितने भी सॉन्ग आए
1: मैं। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ, सुनाती हूँ आपको, ठीक है?
2: 1992 का मुझे 100% आइडिया है।
1: चलें मैं आपको सुनाती हूँ, देखते हैं क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है? मिक्स ही रखे थे आज मैंने सॉन्ग, तो ये जब मैंने इतने पुराने पुराने लगाए थे तो कहाँ थे आप? रेस्ट करने गए थे कि? अच्छा चले, आपको एक मिनट का टाइम दिया जाता है, आपका वन मिनट शुरू होता है नाउ और ये सॉन्ग पहचाने नाउ।
3: खाना तूने मुड़ के भी पीछे,
2: ये तो उदित नारायण है। तो
1: हाँ उदित नारायण है, लेकिन गाना क्या है? गाने का टाइटल बताना है ना, गाने का टाइटल बताना।
2: ये लता मंगेशकर और उदित नारायण।
1: हाँ बिल्कुल सही पहुँचाना,
2: हो गया है तुझको तो प्यार सजना।
1: चलो जी एक पॉइंट तो मिल ही गया। अच्छा ये वाला कौन सा है, ये वाला बताइएगा जरा मुझे। शान का गाना है, शान का।

0: क्या कहो?
1: It's the time.
0: It's the time to disco. ठीक है भाई, ठीक है, अच्छा.
1: हाँ यही है, मैंने कहा ना it's the time.
0: ये वाला बताइएगा.
2: रेशम की डोर जैसे, परियों का राग जैसे.
1: हाँ, एक चांद देखा तो ऐसा लगा.
0: नहीं, एक चांद को नहीं देखा ना. चले, आपके दो ही मार्क्स कैलकुलेट होंगे क्योंकि एक चांद को नहीं देखा हमने. चले भाई, टाइम भी खत्म हो गया. दो का स्कोर किया आपने. नॉट बैड. गुड गुड हो गया भाई, गुड गुड हो गया.
1: देखो ना, हम तो अभी बड़े हैं ना उम्र के, फिर भी शाबाश.
0: चले भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. अपना ढेर सारा ख्याल रखें, कॉल करते रहा करें, अच्छी अच्छी बातें करते रहा करें भाई. ठीक है,
1: जरूर इंशाल्लाह. अल्लाह आपको खुश रखे, दुआओं में याद रखो. अस्सलाम वालेकुम.
0: चलें जी, अल्लाह की मान, अल्लाह हाफिज. तो भाई साथियों, 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल. 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल. बॉलीवुड ट्रिविया का सेशन शुरू हो चुका है और सवाल वहीं पे खड़ा है कि जरा बताओ, शॉर्ट टर्म में बात करना पसंद करते हो कि लॉन्ग टर्म में ज्ञानी बनना, फिलोसोफर, किताब नहीं लिखी तो क्या हुआ, जो मिला उसको सुना देंगे कुछ ना कुछ. 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल. मैसेजेस की तरफ भी आती हूँ मैं, मैसेजेस ढेर सारे पड़े हुए, उनके भी जो है ना तरफ जाना है. अच्छा जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह.
0: जी, कौन है हमारे साथ?
3: मोहम्मद अय्यूब बलोच.
0: मोहम्मद अय्यूब बलोच. अरे अय्यूब भाई, पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
3: नहीं, पहले भी किया है.
0: अय्यूब बलोच से कब बात हुई है मेरी? लास्ट टाइम कल तो नहीं,
3: कुछ दिन पहले
0: की. सही. अच्छा अय्यूब भाई, ये बताएं के हाल चाल कैसे हैं, पहले तो ये बता देना.
3: अल्हम्दुलिल्लाह का मेहरबानी,
0: अल्लाह का करम है भाई, अल्लाह की रजा में राजी हैं. अच्छा ये बताएं कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस किस्म की पर्सनालिटी के मालिक हैं भाई, ज्यादा बोलते हैं ये आप बिल्कुल शॉर्ट बोलते हैं?
3: जब खुश हो जब ज्यादा बोलते हैं, जब नाराज तो कम बोलते हैं.
0: लो, ये तो सबके साथ होता है. नहीं, सबके साथ नहीं होता. मैं तो गुस्से में होती हूँ तो मैं तो और ज्यादा बोलती हूँ. देखिए, जेंडराइज नहीं करें ना इसे, अब ये ऑफेंसिव हो जाएगा. मतलब अभी कॉल आना शुरू हो जाएंगी लेडीज की, क्या बोल दिया आपने.
3: तो बात ही सही. आपने देखा होगा जहाँ भी जो औरतें बैठी हूँ खामोश हो, ऐसा हुआ.
0: देखे ये जो है ना, इतना ज्यादा सच नहीं बोलते रेडियो पर. यू भाई, बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा. देखे इतना ज्यादा सच नहीं बोलना, इंसान को सच बोलना चाहिए, लेकिन अपनी भी थोड़ी सी, कहते हैं ना वो, अपने आप को थोड़ा सा महफूज रखते हुए.
3: घर भी जाना है
0: तो आपको पता है ना मामला, समझ रहे ना. तो भाई,
3: अच्छा, आपको मैंने लिखवाया था वो उसके बारे में, इनाम वगैरह आपने लिखा है, एडमिन से पूछा क्या हुआ?
0: अच्छा, मैंने एडमिन से पूछा था तो उन्होंने कहा कि कुछ मामला तो ऊपर से ही ऐसे चल रहे हैं, आप टेंशन नहीं लें. वो ऊपर से अभी तक नहीं आया, ऐसा नहीं है कि आपको मिला नहीं है. इट्स नॉट जस्ट यू, आपका मामला नहीं है ये, सिर्फ बाकी जो आपके साथ थे, आसपास थे, उनका भी यही मामला चल रहा है. तो वो कुछ प्रोसेसिंग होती है जो मैं कहूंगी कि बैक ऑफिस से आती है, वो बैक ऑफिस से ही रुका हुआ है कुछ मामला.
3: तो ठीक है, अब कोई बात नहीं है, आप दे देना.
0: मेरे भाई, पहले मेरी सैलरी तो आ जाए. मतलब ये क्या बात चल रही, मैं अपनी सैलरी का 28 तारीख का इंतजार कर रही, ये मुझसे इनाम मांग रहे. मैं तो खुद
3: आपसे मैंने बात करके जीता था, आप थे या नाजिया थे?
0: नहीं, मैं नहीं थी. पता है क्यों? मैं उन दिनों छुट्टियों पर थी.
3: रमजान में किसका प्रोग्राम चल रहा था सुबह सुबह? रमजान में
0: नाजिया को पकड़े.

0: Nazia. Nazia. Sumpah-sumpah ke programnya. Nazia ke program ni, Nazia ko. Nani, tension ni le. Mazak apni jaga. लेकिन टेंशन नहीं ले, वो जो आपका जीता वाला इनाम है वो ऐसा नहीं कि वो कहीं गुम हो गया, अक्सर लोगों को ये होता है कि भाई मिला नहीं, वो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ हैं, बाकी लोग भी हैं, कुछ मेरे ख्याल से कुछ फुटबॉल के महामुकाबले के भी जो है ना कुछ लोग रहे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप रुको जरा, सब्र करो, वो बैक ऑफिस से ही कुछ इशूज़ हैं, तो जब आएगा तो भाई क्लियरेंस हो जाएगा तो आपके साथ मिल बैठ कर फिर हम भी तिक्के कबाब खाएंगे आपके इनाम वाले पैसों से, ठीक है? अच्छा बोल ही रहे मैडम से, हाँ। अच्छा भाई आप ये बताएं, आपने मुझे बताया था कि आप कम गो हैं कि ज्यादा बात कर लेते हैं?
1: वही खुशी में ज्यादा है और उसमें कम।
0: अरे वाह, चले भाई ये अपने मामला में चल रहे हैं, इनको ये वाला ऑप्शन ना दिया था हमने, लेकिन थर्सडे तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा बताए, बॉलीवुड ट्रिविया खेलेंगे?
1: नहीं, सुनता नहीं, छोड़ दिया।
0: लो जी, चलो कोई पहचान नहीं, गाना नहीं सुनना, मतलब सिर्फ पहचानना है।
1: नहीं, छोड़ दिया, जो चीज छोड़ दिया बस अल्लाह के लिए वो।
0: चले भाई, चले ठीक है भाई, आपने बात ही ऐसी कर दी। हाँ जी,
1: पैगाम है मेरा, छोटा सा पैगाम।
0: जी जी बिल्कुल।
1: आज जुमेरात है, अगर किसी वीकेंड है, सबका प्रोग्राम है, जिधर जाते हैं, तो हमने कहा अगर किसी का प्रोग्राम वगैरह नहीं है तो आज सनाई इंडस्ट्रियल लुलू के भी हैंड में तबलीगी मरकज है, तो मर्द हजरात के लिए प्रोग्राम है, उधर आ जाए इंशाल्लाह, वो बयान सुने, ईशा के बाद खाना होगा हमारा, दस्तरखान लगता है, आ जाए, गुलाब जामुन भी है, सब कुछ भी है।
0: चले भाई, ये मर्द हजरात के लिए, चले भाई ठीक है भाई, हो गया भाई, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। तो भाई हम एक और कॉलर की जानिब चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाई, कौन है हमारे साथ?
2: लतीफुल्ला। यस मैडम।
0: अच्छा जी लतीफ भाई, कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप लोग कैसे हैं?
0: अल्लाह का करम है, अल्लाह की रजा में राजी हैं। और ये बताएं कि गर्मी एंजॉय कर रहे हैं?
2: मैं तो इतना सब जगह पाकिस्तान से आया हूँ, चार दिन हो गया, छह महीने छुट्टी उधर गुजारा था।
0: हाँ जी,
2: चार दिनों आया,
0: तो जैकेट शैकेट पहनी हुई है कि नहीं पहनी हुई? मैंने कहा जैकेट शैकेट पहनी हुई है कि नहीं पहनी हुई?
2: नहीं, जैकेट तो नहीं पहना था, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत, मैं क्योंकि मैं देहाती हूँ, बिल्कुल लास्ट पाकिस्तान का हूँ।
0: अच्छा सही। अच्छा कहाँ के हैं आप? कहाँ नॉर्थ के? कहाँ के?
2: पेशावर से आके दीर सवाद, नाम सुना है
0: क्या? क्या कौन सी जगह बता रहे हैं?
2: सवाद, दीर।
0: सवाद का नाम सुना है मैंने, सवाद का ना, क्योंकि सवाद की मेरी दोस्तें भी हैं बहुत माशाल्लाह, वो बड़ा पहाड़ी इलाका है, अच्छा खास ठंडा इलाका है वो सवाद का।
2: स्विट्जरलैंड।
0: हाँ, सही कह रहे हैं आप, वो जैसे मरी और ये वो जो है वो ठंडे इलाकों में से एक है। हाँ। तो भाई वेरी गुड भाई, आप तो ठंडे, मतलब आपको तो यहाँ पे और ज्यादा पिघल जाते होंगे आप तो।
2: मगर इधर क्योंकि मैं तो ठीक भी चलाता हूँ, तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी तो देखा नहीं, बस रूम भी इसी था, गाड़ी में बैठ गया फिर भी इसे।
0: अच्छा ये
2: तो बात, जब बात के बाहर हो जाए तो गर्मी बहुत ज्यादा है।
0: अच्छा ये कतर की एक अच्छी बात है कि यहाँ पर अगर आप इंडोर वगैरह काम कर रहे हैं ना, ऐसा गाड़ी वगैरह का कोई काम कर रहे हैं, तो एसी से निकल कर एसी में, ये एक अच्छी चीज है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। अच्छा भाई ये बताएं कि अगर आपसे सवाल किया जाए कि आप बहुत कम गो इंसान हैं, कम बोलते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब देते हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कॉमेडी जैसा आदमी हूं, मगर अभी तो ज्यादा बोलता हूं क्योंकि मेरा शुगर है, उसके वजह से कोई छोटा बात भी होता है तो बड़बड़ाता हूं।
0: अच्छा ये वाकई में होता है क्या? इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, रिसर्च करूंगी मैं, कि कहा जाता है कि जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं वो अपना थोड़ा सा टेंपरेमेंट जो है उनका ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये
2: सही बात है,
0: ये शिकायत सुनी है हमने अक्सर, होगा था हमारे अब्बा भी यही कहते हैं, कहते भाई मेरा जो ना मिजानिया दुरुस्त नहीं जाता, मेरी शुगर की वजह से ना बीपी ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा सही,
2: बाकी कुछ नहीं होता, बस यही मैं रखेंगे मेरे 22 सालों के शुगर का, अभी बस जो छोटा बात होता है दिल में, अच्छा लगेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं बोल थोड़ा बुरा लगेगा तो
0: हाँ, थोड़ा मूडी रहता है इंसान, मूडी रहता है तबीयत की वजह से। सही, अल्लाह ताला आपको शिफा दे, अल्लाह ताला आपको शिफा दे, बाकी सब तो ठीक ठाक है। ये बताएं बॉलीवुड ट्रिविया खेलेंगे हमारे साथ?
2: मैं तो पहला पता नहीं अभी, वो आज वो क्या नाम है जो फिल्म, मगर मैं अभी तो छोड़ दिया है, नहीं देखता, पहले देखता था, बहुत देखता था।
0: अच्छा आपको जरा गाने शाने सुना देते हैं, आपने सिर्फ गाने का नाम पहचानना है।
3: मुझे ऐसा पता नहीं है, मगर चलो कोई बात नहीं,
0: पुराना
3: ट्राई
0: करेगा, पुराना ट्राई करें, पुराना लगा लेते हैं आपके लिए कोई हल्का फुल्का सा, ठीक है
3: चलो
0: चलिए जी।
3: बाकी जो कबीर है फजील है इसको मेरे तरफ से दुआ सलाम करना, क्योंकि 6 महीने बाद
0: अभी मेरे ख्याल से इंशाल्लाह मेरे बाद जो है ना वो फजील भाई का शो है ना, हमारा फजील भाई का शो है आज के दिन
3: में। बस अभी तुम्हारा जो प्रोग्राम सुनता था तो मैंने बोला चलो फोन करूँ।
0: चलें भाई आपका सलाम दुआ पहुंचा दिया जाएगा, चलें गेम खेलते हैं ठीक है।
3: ओके मैडम,
0: ये जरा एक गाना सुने और पहचाने कि ये कौन सा वाला गाना है। 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ये रहा आपका 1 मिनट।

0: ये बताए कौन सा वाला गाना था भाई?
1: मैडम नहीं नहीं जानता हूँ, खुदा कसम अभी पाकिस्तान का है तो घर वाले सब दिल के ऊपर पड़े हैं, अभी गाने के पता नहीं कौन सा है।
0: चले भाई, इन्होंने तो पहले ही हार मान ली, अनिल कपूर को पहचानने से इनकार कर दिया। चले कोई बात नहीं,
1: ओके मैडम, ओके,
0: अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह हाफिज मैडम, अल्लाह हाफिज।
0: तो भाई को भी ना भूल लो, अगर किसी को बॉलीवुड ट्रिविया खेलने का शौक हो रहा है तो आ जाओ मैदान में, बताओ जरा कि आपको कौन कौन से एक मिनट के अंदर कितने गाने पहचान सकते हो। और भाई एक और कॉलर की जानिब चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं भाई और कौन बात कर रहा है?
2: हमजा बात कर रहा
0: हूं। हमजा भाई आज ना कोई मजे के प्लेयर नहीं आ रहे, मज्जा नहीं आ रहा हमजा भाई। देखिए मजा नहीं आ रहा, कोई गेम खेलने वाला नहीं भाई, ये क्या हो रहा है भाई? कम से कम कोई 3-4 का स्कोर तो करे ना।
2: असल में बात पता है क्या है, मैं तो वैसे ही अभी छोटा सा बच्चा हूँ, मेरी 97 की पैदाइश है, उससे बाद यानी कि 2010 के बाद के गाने मैंने थोड़े बहुत सुने और वो भी इतने खास नहीं, क्योंकि गाने में इतना शौक ही नहीं है।
0: मतलब आप भी मेरी मायूसी में 4 चांद लगाने आए हैं?
2: हाँ जी।
0: नहीं नहीं, आपदा परवीन भाई, आपदा परवीन नुसरत फतेह अली खान, ये रोना धोना नहीं है, ये क्लासिक लोग हैं, ये सबको समझ में नहीं आते। वो भाई वो बहुत बहुत क्लासिक लेवल का कोई वो है, असल में रोला ये कि हम जो है ना यहाँ पे चलाएंगे तो फिर बाकी आवाम बोर हो जाएगी, तो मैंने इसलिए नहीं चलाया।
2: मैं आपको यही बता रहा ना, बाकी आवाम जो है वो यही सोचती है यार क्या रोना धोना लगाया।
0: वीकेंड पे चलाऊंगी तो वाकई में लोग रो पड़ेंगे भाई। अच्छा ये तो बताएं, ये बताएं एक बात बताएं हमजा भाई, एक बात बताएं कि ये जो मामला है बातूनी होने का, इस मामले में आप कहाँ तक फिट बैठते हैं कि आप हल्की फुल्की बातचीत कर लेते हैं, थोड़ी बहुत या लंबी चौड़ी बातचीत कर सकते हैं आराम से?
2: मैं आपको वही बता रहा था कि आज का जो आपका टॉपिक है ना, इसमें ये है कि मैं मीडियम लेवल का बदला हूँ।
0: सही,
2: बहुत ज्यादा अगला बंदा उकता जाए या आप खुद तंग आ जाओगे यार, क्योंकि मैंने लोग ऐसे भी देखे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि अगला बंदा अपने मुंह से बोल रहा है यार मुझे पता है मैं ज्यादा बोलता हूँ, तुम लोग मेरी बातों से उकता जाते हो, लेकिन क्या करूं मुझे आदत है, मैं बोले बगैर रह नहीं सकता भाई।
0: ये मेरा मामला है, ये आपके मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहे थे, मेरे डायलॉग तो ना सुन लिए?
2: आपसे पहले भी बंदे मिले हैं मुझे।
0: अच्छा आपका लेवल एक्सपर्ट लेवल का चल रहा है। ये एक्सपर्ट लेवल का प्लेयर है।
2: क्या करो कि अगला भी राजी रहे और आप भी राजी रहो।
0: देखिए ये वाली जो आपकी बात है ना, ये दिल पे तो लगी लेकिन दिमाग में नहीं पहुंची।
2: ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि आप उनको खुद बात करने को उकसाते हो, यहाँ यार आपने को बात ऐसी कर दी कि अगला तजुर्बा में अच्छा यार इसके बाद क्या हुआ।
0: हाँ हाँ हाँ, ये वाला काम ना, ये वाला काम ये अपने कबीर भाई कर देते हैं, एक्सपर्ट लेवल के गेमर है वो उसके अंदर।
2: वो तो फिर भाई है
0: ना, हाँ वो तो फिर उनका तो लेवल अलग है, वो तो ट्रिगर कर जाते हैं।
2: कलर से मेरे ख्याल से धीरू साहब थे, कौन थे तो वो जो बात कर रहे थे कि वक्त बुरा हो, तो हमारे पंजाबी में ना एक मिसाल भी जाती है कि अगर वक्त बुरा हो ना तो ऊंट पेट में भी कुत्ता काट जाता। तो वाकई हकीकत कहानी आपका बुरा ना, आप चाहे जितना मर्जी अच्छा काम कर लो, कितने साथ अच्छा कर लो, तो वो आपको नहीं समझ में आता, अगले ने आपको चीज करना होता है, ठीक है, आपको ऐसा समझ लें कि जहनी तौर से मिलता है कि आप बोलते हैं यार क्या है यार कैसे चलेगी लाइफ।
0: अरे भाई कुछ लोगों की बातें मुझे पता है कि बड़ी बड़ी अच्छी बातें होती हैं, कुछ लोगों की ऐसी वाकई बातें होती हैं वो ऑफ रोड होती हैं थोड़ी सी, लेकिन वो आपकी लाइफ की सिचुएशन के साथ इतनी अच्छी लग रही होती है कि आप चुप करके उनको सुन लेते हो, आप कहते हो हाँ मामला तो कुछ ऐसा ही चल रहा है, मामला तो कुछ
2: निकाल देते होते हैं, तो बोलते हैं पुत्र वक्त पैड़ा हुए ना ते मसली भी उठ के गल्ला कर दें।
0: हाँ हाँ, ये बात ये हकीकत है।
2: हाँ
0: ये एक ऑथेंटिक मिसाल है वाकई में।
2: जो लोग जो है क्या आप इनको किसी फाते में नहीं समझते यार, ये किसकी बातें सुननी पड़ेंगी, तो वो बड़ी बात है कि वक्त पैड़ा हुआ तो मसली भी उठ के गल्ला सुना जाएगा।
0: बस होता है भाई ये और ये वक्त सबके ऊपर आता है, अल्लाह करे कि लोगों के ऊपर कम ही टाइम के लिए आए और ना ही आए लेकिन आता सबके ऊपर है। और इसी वक्त से हम ये सीखते हैं कि कौन हमारा मुखलिस है, वही वाली बात हो जाती है कि जो अच्छा बुरा वक्त जो है वो अच्छे वक्त की कदर सिखाता है। एक हकीकत बात है, आप तब तक आस्तीन के सामने नजर नहीं आते जब तक आपने जिंदगी की तलखियां नहीं झेली होती।
2: हकीकत बात है, पुराने लोग जो है ना अक्सर ना वो उनकी दुआएं भी ऐसी होती है पुत्र अल्लाह पाक पैड़ा वक्त किसी दुश्मन में भी ना तका दे, यानी कि बुरा वक्त जो है अल्लाह पाक के दुश्मन।
0: ये मिसालें बड़ी आम है, बड़ी आम मिसालें ये सोच समझ के बोली गई है, ये उम्र के एक हिस्से में जाकर समझ में आती है।
2: हकीकत बात है, और उससे पहले एक भाई ने बात की थी कि 30 की एज के लोग नजर नहीं आते बाहर।
0: मैंने ये वाला भाई ये बहन वाला भाई।
2: अब मैं आपको उसकी एक्सप्रेशन ये देता हूँ कि आप जो हो ना, आपकी जो 30 तक की एज होती है वो आपकी एक्सप्लोरिंग की होती है, ठीक है? आप हर चीज एक्सप्लोर करते करते इतना क्या
0: थक जाते हो, डोरा दी एक्सप्लोरर बन बन के सुकून ही होता है कि बचपन में नींद आपके पीछे भाग रही होती है और 30s के बाद आप नींद के पीछे भाग रहे होते हो।
2: मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन।
0: हाँ
2: आज बैठे बिठाए
0: क्यों याद आ गए। अरे भाई क्या तो याद दिला दिया। अच्छा एक काम तो करे ना, एक काम तो करें जरा हमारे साथ गेम तो खेले ना।
2: हाँ जी
0: चले भाई,
2: लेकिन चलेगा के न्यू एरे में ही हूँ,
0: गेम ही है
2: तो वो ज्यादा बेहतर है।
0: चले हम आपके लिए नए नए गाने चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चले भाई आपको दिया जाएगा 1 मिनट और आपका 1 मिनट स्टार्ट होता है नाउ, और ये गाना पहचाने। अरे भाई ये तो कोई पहचान लेगा भाई।

0: वाला गाना तो भाई कोई भी बताएगा। अरे भाई ये इमरान हाशमी का गाना, ये तो कोई बताएगा। ट्रेंड मेकर था इमरान हाशमी इस गाने में।
1: सिंगर्स के नाम लेते हो साथ में, ठीक है, और मेरे जो पुराने पुराने राइटर्स हैं उनके नाम लेते हो। मैं सोनी पहली बार रहा हूँ कि यार इसमें भी गाना गाया है। हाँ लता मंगेशकर जो है वो मुझे याद है।
0: अच्छा ये देखो टोपी उन्होंने मुझे पहना दी, कह रहे हैं कि मुझे 2000 के बाद वाले गाने बताओ, ठीक है, और फिर कह रहे हैं लता मंगेशकर, तो फिर वो पिछ पुराने भी गाने आ जाते हैं।
1: मैंने आपको क्या बताया, मुझे नाम नहीं पता, मुझे नाम जो है लता मंगेशकर का नाम मुझे इसलिए याद है कि हमारे जो मैं कराची में रहता हूँ, मेरे ना के जो मोहल्ले में एक लड़का है वो समझने को उधर से इंडिया साइड से बिलोंग करता है।
0: सही सही सही,
1: ठीक है, करके आए हुए तो उस भाई का शौक ही यही है। आप यकीन करो उसके पास हमारा, मुझे अच्छे से याद है जिसका तक मोबाइल नहीं होने शुरू होते, एस डी कार्ड आता था जिसको मेमोरी चिप बोलते हैं।
0: सही,
1: उस भाई ने 64 GB का मेमोरी कार्ड से लता मंगेशकर के गानों से भरा हुआ।
0: भाई ये हमारे पास आज भी रहा है, हमारे मामू तो ऐसे तो कोई दीवाने थे वो 90s और 80s के गानों के बस क्या ही, उससे हमारे दौर में CDs चलती थी।
1: हमें ट्रेजेडी पता है क्यों होती थी, कि उसकी एज हमारे हमारे बराबर थी, वो मेरी एज था। हम लोग बोलते हैं यार तो इस जमाने का हो के इतने पुराने जमाने के गाने
0: नहीं तो गाने भाई, अरे भाई रहने तो वो गाने गाने थे भाई, उसको आप एज से नहीं कर सकते भाई, वो गाने थे भाई वो।
1: तो पता लगता है कि हाँ यार
0: वो जज्बात थे भाई, वो जज्बात थे, वो गाने नहीं थे वो जज्बात थे भाई वो, और वो बड़े खूबसूरत तरीके से लिखे गए जज्बात थे, आज के डिंचिक डिंचिक वाले नहीं थे वो मामला कुछ और था वो। चले भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अब हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलेंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जी जी
1: तो जो आप हमारा वो चला था ट्रिडी वाला,
0: हाँ जी,
1: क्या करे सिंगर सिंगर मेरे ख्याल से,
0: हाँ हाँ हाँ,
1: कल मैं उबेर वाली साइड पे गया, मुझे रात के टाइम उसकी आवाज बड़ी सुनाई थी,
0: तभी
1: मजा आ रहा था।
0: तभी मैं कहूँ मुझे हिचकियाँ क्यों लगी हुई है, जितने लोग ये झिंगर को याद करते हैं वो मुझे भी याद करते हैं, इसने बात की थी झिंगर के बारे में।
1: बोलते हैं आप भी इंटीरियर सेंस से ताल्लुक रखते हैं तो आपको
0: टिड्डी,
1: ये ट्रिडी होती है और टिडियां जो होती है वो दूसरी, वो अक्सर ये जो भी मौसम चल रहा है इसके बाद के मौसम में एक बार आता है उनका, तो बहुत सारी अफेक्ट होकर आता
0: है, वो ग्रास हॉपर होता है, वो ग्रास हॉपर है वो अलग है,
1: हाँ उसको वो सिंधी जुबान में टिडी कहते हैं।
0: सही, चले मैं इंफॉर्मेशन में इजाफा करते हुए अब अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। फिर वापस आ गए हम उसी टॉपिक पर, नहीं नहीं भाई हम अपने आज के टॉपिक पर रहते हैं और देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन है हमारे साथ?
2: कौन है? आरिफ अंसारी।
0: आरिफ भाई, आज आरिफ भाई फुल ऑन एनर्जी में, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और ये थर्सडे वाली एनर्जी आरिफ भाई के अंदर नजर आई मुझे, किसी और में नजर ना आई, बस
2: एनर्जी क्यों नजर आ रही है कि आप लोगों का 2 दिन हॉलीडे है, हम लोग का 1 दिन में नहीं है।
0: लो जी मतलब ये आओ आओ हम इज्तमाई दुख करते हैं। इज्तमाई दुख मनाते हैं, आ जाओ भाई देखे
2: जानबूझकर जो शक्तियां प्रदर्शन की जाती है ना वही।
0: चलें भाई इंशाल्लाह हम आपके लिए दुआ करते हैं, आपके हिस्से में भी करना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
2: दुख इसका नहीं कि हमका नहीं, हमारा हॉलीडे नहीं है, खुशी इसकी है कि आपका 2 दिन।
0: चले भाई देखिए यही तो दोस्ती की अच्छी पहचान है, दोस्तों की खुशी में खुश रहना चाहिए, बाकी अपना क्या है, अपनी चलती रहेगी जिंदगी,
2: चलती रहेगी बस।
0: अच्छा भाई आरिफ भाई ये बताएं कैसे टाइप के लोगों में से आप एक हैं? वैसे आप तो मुझे दूसरे टाइप के लोगों में से लगते हैं कि जो माशाल्लाह बातचीत कर लेते हैं, आप भी मेरी तरह ही लगते हैं मुझे, मतलब ऐसे कि जैसे किसी से कोई बात करे तो कोई नखरे से बात ना करे, बस हम हमारी रेलगाड़ी चलती है,
2: दूसरों को बोर नहीं होने देते बस हमारे साथ वाले को,
0: मतलब वो बैटमैन वाला जोकर था ना वो हमारे साथ बिल्कुल सूट करता है। दुनिया जाए जो करना है करे भाई, हम अपनी करेंगे और ये अपनी बातें, हम अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं, कोई और मिल जाए तो उसके साथ चलते हैं।
2: वैसे होता है ना जो न्यूट्रल बीच का, हम लोग मैं अकेला रहता हूँ तो खुद को भी एंजॉय कर लेता हूँ।
0: हाँ, सही है, हम अपने आप से बातें करते हैं।
2: साथ में तो उसको भी वो फील नहीं होने देता हूँ कि ऐसा कन्वर्सेशन होना चाहिए कि वो उसको अकेला फील ना हो।
0: चलिए भाई, ये तो अच्छी बात हो गई। अब इसी के साथ आरिफ भाई एक काम करेंगे, गेम खेलेंगे। गेम क्या कहते हो आरिफ भाई?
2: मैंने अपना कचरा करा लिया है।
0: अरे अरे भाई, ये वाली गेम खेलो, मैं बता रही हूँ जीत जाओगे इसमें।
2: वही है गाने पहचानने।
0: हाँ, गाने पे, ये बस, नहीं होगा, ये आज का आखिरी दिन है भाई, कोशिश कर लो। अगले हफ्ते से नेक्स्ट गेम दूसरा है, ठीक है?
2: मैं अगले हफ्ते आऊंगा।
0: नहीं नहीं, अभी अभी अभी कॉल की है तो कॉल का पूरा मजा तो लेकर जाओ भाई।
2: ओके,
0: चलो भाई, एक मिनट दिया जाएगा और ये वाला गाना पहचानो जरा, ये वाला। अरे ना करो भाई, ये इतना सुपर हिट गाना था भाई। हाउ डू यू डू, लो गाना अच्छा लगा, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन, मतलब भाई बस बस हो गई। अब
2: गाने को याद नहीं करता मैं, ये बस वो दो चार गाने शायद याद होंगे। अब तो वो भी नहीं बोल सकता कि कुमार सानू लगा और उम्मीद।
0: मैं जो हूँ ना, छलांग मारने जा रही हूँ अभी पहली मंजिल से। मैं उठा के अपने, मैं अपने आपको पहली मंजिल उठा के फेंकने वाली हूँ। ये वाली जो बातें हो रही है ना, ये बहुत खतरनाक बातें हो गई। देखिए, मेरा दिल टूट गया, बस बस हो गई, बहुत हो गई। चलिए कोई बात नहीं, आपने पहले ही हार मान ली। थोड़ा सा तो सुनते, थोड़ा सा तो पहचानने की कोशिश करते, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जी जी जी,
2: गाने के हवाले से
0: चले, कोई नहीं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में से छुट्टी छुट्टी बातें तो होती रहती हैं। चले जी, अपना ढेर सारा, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।
2: अल्लाह हाफिज।
0: ओ, तालियां तालियां क्यों बज गई भाई? म्यूजिक था, बैकग्राउंड म्यूजिक था, तालियां किसके लिए बज रही? उन्होंने तो एक गाना भी ना पहचाना। ये तालियां मारोगे ना, 500 रियाल तनख्वाह में से काट लेती हूँ, वैसे डेट में चल रहे हैं। अच्छा भाई, चलो भाई, एक और कॉलर की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हालकुम?
0: अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैन तमाम। मिया मिया
3: मिया मिया, अना नेम अली वजदान।
0: यस, हाउ आर यू मिस्टर अली?
3: फाइन, हाउ आर यू? योर नेम?
0: माय नेम इज सफा।
3: सफा, हां, ओके, कैसे हाल सफा?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैन तमाम।
3: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: शलोनक انت بخير؟
3: الله يخليك. انا بنفس البروجرام هاي مال 90s. ايوه، انت تسوي سؤال انا بجاوب.
0: اوكي، I will play song, you tell me the song name.
3: شوف، 1 مينيت، هذا بيفور مال اغنيه، هذا مال سنيل شتي.
0: يس.
3: عند ربينا تندر.
0: يس يس يس. But I want song name.
3: ها اوكي، 19 ها؟
0: يس. This one.

0: It is
1: Amitabh
0: Bachchan, Rastar Devi, Khuda Gawa. Khuda Gawa is movie name, but song name is other.
1: Aja mere mehbooba,
0: tu na ja mere baad.
1: Badshah.
0: Good try. So, it was nice talking to you.
1: Again, bad.
0: Baad, bas, khalas. Time over. 1 minute, khalas.
1: Okay. Shukran.
0: Thank you so much for calling.
1: Shukran.
0: Achha, ye bhi, this is very interesting. I believe ke inki mother tongue na Urdu nahi hai. Or ya Hindi nahi hai. But he understands the Bollywood songs. This is very interesting. This is very awesome. This is interesting. Achha, bhai, ek aur caller ki taraf chalte hain. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Achha, call aayi bhi aur call gayi bhi. Ye kya hua? Maut ko chuke se wapas. Wah. Achha, bhai. Nawazuddin Siddiqui yaad aa gaya mujhe. Bhai, kya actor hai Nawazuddin Siddiqui. Achha, kya actor se yaad aa raha hai mujhe ki mere paas messages bhi hain, bhai. Messages mein jo hai, wo please call me, thank you chal raha hai. Aur hamare paas ek bhai hain jinhone kaha hai inko call kare kyunki inhone game khelni hai. Shahzada Sareen bhi line mein hi baithe hue hain. Aur are bhai, main aapko call karne lagi thi lekin call aa gayi hai. Jaise hi farigh hota hai na phone to fir main aapko call karti hu. Assalam alaikum.
2: Salam, Safa ji, ki haal chaal hai ji tuhanda?
0: Oh ji, meda haal chaal ji bahut changa hai ga ji. Mainu itni hi Punjabi aandi hai. Isse zyada wali nahi aandi hai. To bhai aap bataye kaun baat kar raha hai?
2: Ji, main Gaba baat kar raha hu.
0: Gaba bhai,
2: Punjabi aati to hai aapko magar kishton mein aati hai.
0: Ab bas wo gajni wali aati hai na reh reh kar.
2: Easy installments.
0: अम्मी ने अगर बचपन में मुझे वो कहते ना वो दूध में वो एक एनर्जी सिरप होता है वो डाल के पिलाते ना तो मेरा दिमाग थोड़ा सा स्ट्रांग होता. दिमाग मेरा जो है ना बस तभी अच्छा. 2 रुपए एक्स्ट्रा डाल के अम्मी अच्छा वाला जो शरबत था ना वो पिला देती तो ज्यादा बेहतर था लेकिन ऐसा ना हो सका. चलें कोई बात नहीं. तो भाई ये बताएं गाबा भाई कि आप बातूनी इंसान हैं कि कम बात करने वाले लोगों में से.
2: जी सबसे पहले तो सफा जी ये जो आपने दिमाग वाली बात की है ना मैं इससे एग्री नहीं करता. माइंड बहुत शार्प है जी आपका.
0: थैंक यू. देखिए
2: आप डिपेंड करेंगे वो बात अलग है मैडम.
0: देखें ये बातें रेडियो पे नहीं बोलते येड़ा बन के पेड़ा खाते हैं.
2: सही.
0: तो भाई गावा भाई बताए ना आप किस किस्म के बंदों में से हैं जो ज्यादा बात करना पसंद करते हैं या जो कम बात करना पसंद करते हैं.
2: टू द पॉइंट मैडम.
0: टू द पॉइंट. अरे भाई
2: जी जिस पॉइंट पे बात चल रही है उस पे खुल के करते हैं मगर टू द पॉइंट मैडम.
0: अच्छा पॉइंट पे चिपके रहेंगे उसी पॉइंट पर मेरी तरह यहाँ वहाँ घूमने निकलेंगे सैर सपाटे करने.
2: नहीं मैडम.
0: चले भाई फिर जो है ना मतलब संगीन काम हो जाएगा ये तो बहुत. अच्छा ये बताएं बॉलीवुड ट्रिविया में आप कितने अच्छे हैं जरा ये तो बताएं.
2: मैडम गेम में तो सॉरी मेरा इंटरेस्ट नहीं है.
0: अरे भाई आज का प्लेयर ढूंढ रही हूँ मैं.
2: नहीं मैडम गेम में तो है नहीं मेरा इंटरेस्ट.
0: चले कोई बात नहीं मैं अपना प्लेयर. भाई आज का थर्सडे वाला दिन जो है ना हमारा बड़ा रूखा सूखा गया. संडे तक मैं यही रोना रोती रहूंगी.
2: आप सफा जी एक काम कीजिए ना.
0: हाँ जी
2: खड़के धड़के वाला गाना चला दीजिए अपने आप ही.
0: चले भाई बस हो गया भाई अभी अभी अभी चलाते हैं. बस आपने बोल दिया ये आप कॉल रखेंगे और हम गाना चलाएंगे. देखें आप आपकी आपकी फरमाइश पहले आती है भाई.
2: थैंक यू मैडम.
0: चले भाई
2: स्पेसिफिक फरमाइश तो है नहीं मैं वैसे ही आपको जस्ट एज अ सजेशन बोल रहा हूँ. अच्छा एक सफा मैडम एक छोटी सी बात और करनी थी.
0: जी जी
2: हाजिर. आपकी बात चल रही थी ना करीम भाई के साथ सोसाइटी के लेके कुछ बात हुई थी.
0: हाँ.
2: मेरे ना दिमाग में एक बात आ रही थी सफा मैडम.
0: हाँ जी.
2: जब ना हमारे घर पे कोई डॉक्टर आता है तो हम सब मरीज बन जाते हैं.
0: हाँ जी.
2: अगर कोई सपोज कीजिए तो मरीज आता है तो हम उसको इतनी ज्यादा सलाहें देते हैं ना डॉक्टर से भी ज्यादा. तो ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन चलती है सोसाइटी में.
0: सोसाइटी में और अपने खानदान में बहुत चलती है भाई. हर कोई ज्ञानी बैठा हुआ है. अच्छा मजे की बात है कोई ये झांक कर नहीं देखेगा अपने गिरेबान में कि अपना क्या हाल चल रहा है. लेकिन नीम हकीम खतराए जान बनने के लिए सब तैयार हैं।
2: मैं आपको बोलता हूँ सफा जी, मैं आप अभी बोल दो भी मेरे को नजला हो गया, खांसी हो गई, मैं बोलता हूँ आपको उस हिसाब के टोट के आएंगे ना मैडम।
0: सब दादी अम्मा बन जाएंगे, आंटी जुबैदा बन जाएंगे सब।
2: बिल्कुल बिल्कुल, जब अपने को होता है बंदे को, फिर उस टाइम उसको सभी डॉक्टर मिलते हैं। जब उसको डॉक्टर मिल जाए तो उससे बड़ा मरीज कोई नहीं होता, बंदे से बड़ा।
0: अच्छा, आधा दर्जन तो हमारी बीमारियां शुरू इसी वजह से होती हैं, मतलब ज़हनी बीमारियां भी इसी वजह से शुरू होती हैं कि लोगों ने क्या कहा।
2: लोगों ने क्या कहा जी?
0: लोगों ने क्या कहा? तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह।
2: एक तो ये मैटर हो गया सफर, दूसरी बात एक और मेरे दिमाग में आ गई। जैसे मान लो मेरे जैसे बंदे ने ओवर ईटिंग कर ली, ठीक है, मेरे जैसे बंदे ने, या सर्वर भाई लगा लो, उनसे ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। तो देखिए मैडम, ओवर ईटिंग हुई खाने की वजह से, सही है ना? इसका रीजन तो यही हो गया ना। मेरे दिमाग में फिर खाने की बात आएगी, भाई मैं क्या खाऊं या क्या पीऊं उसको सेट कर सकूं।
0: सही
2: बात देखो, मतलब दिमाग में वही खाने पीने की बात चल रही है, चाहे दवाई।
0: जिसका जैसा इंटरेस्ट होता है, जिसका जैसा इंटरेस्ट हुआ उसको उतनी बात समझ में आएगी। अरे भाई, आपकी बात से ना मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आई कि इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसको जो सुनना होता है ना वो उतना ही सुनता है, उससे आगे और पीछे वाली बात सुनेगा ही नहीं, अपने मतलब की सुनेगा और आगे पीछे अगले ने क्या बोला उसके कानों पे जू भी नहीं रेंगेगी।
2: नहीं रेंगेगी मैडम, नहीं रेंगेगी।
0: ये आपने बात बिल्कुल सही की है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात की है
2: जी, बिल्कुल मैडम।
0: चले भाई, बात करके आपसे अच्छा लगा। दुआ करते हैं, इज्तिमाई दुआ करेंगे कि हमारे कल्चर में जो डिफेक्ट्स चल रहे हैं ना वो थोड़े से रिफाइन हो सकें।
2: बिल्कुल,
0: अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज,
2: हैप्पी वीकेंड। थैंक यू मैम,
0: आपको भी हैप्पी वाला वीकेंड जी। तो भाई प्लेयर की तलाश कर रहे हैं हम, एक और कॉल आ गई। अब मैं क्या करूँ, कैसे कॉल करूँ, कॉल पे कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: अहमद भाई आए वापस?
3: नहीं, आया।

0: हेलो
1: हेलो
0: अहमद ही है ना?
1: अहमद
0: ही है। मैंने कहा कोई और बदल कर आ गया आवाज। चलो अहमद गाना शुरू करते हैं। टाइम हमारे पास कम रह गया, ठीक है? बातें शादी तो हो गई नहीं हमारी, अब हम गानों का सिस्टम शुरू करते हैं। आपको दिया जाएगा एक मिनट, ठीक है? इस बॉलीवुड ट्रिविया में एक मिनट के अंदर आपने मैक्सिमम गाने पहचानने, ठीक है? लेकिन ये याद रखना कि जिस गाने पे आप रुक गए गेम वहीं खत्म हो गया, ठीक है? चलो भाई, ये वाला गाना अभी तक किसी ने नहीं पहचाना तो अहमद पहचान लेगा। अरे भाई ये नहीं, एक मिनट, ये फिर से शुरू करते हैं। रुको, हाँ यहाँ से ये वाला गाना। वेरी गुड हो गया भाई, वेरी गुड हो गया। अच्छा ये वाला जाने से पहले तुझे मैं जी। हाँ जी
1: पूरा जाओ मेरे बात का।
0: अरे भाई ये अच्छा हो गया। अच्छा ये वाला ये नहीं पता। अरे भाई हाँ वेरी गुड हो गया। एक और गाने का टाइम है हमारे पास। एक और गाना ये वाला।

0: हाँ लड़की क्यों, वेरी गुड हो गया भाई, बच्चा चीता चल रहा, टाइम खत्म हो गया, लेकिन बच्चे ने आज का टॉप स्कोर मारा है भाई, 4 पॉइंट्स हासिल किए हैं, वेरी गुड। प्लेयर मिला हमें, प्लेयर इसे कहते हैं, प्लेयर सीखो कुछ, बच्चे से सीखो कुछ, सारे बड़ों को गिरा डाला आज अहमद ने, अहमद वेरी गुड, वेरी गुड भाई, मजा आ गया आपके साथ गेम खेले, मतलब अब मुझे सुकून की नींद आएगी घर जाकर कि कोई किसी एक ने तो अच्छा गेम खेला था। चलो जी अहमद, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, और आज के टॉप विनर अभी तक के तो आप ही हैं भाई, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। देखो भाई सब कह चले जा रहे हैं, हम 90s के गाने पहचानते हैं, हम 2000 के गाने पहचानते हैं, बच्चा अभी अभी आया, बच्चे ने सारे गाने बता दिए। बच्चा चीता चल्ला, बड़ों को पीछे छोड़ दिया बच्चे ने। अच्छा भाई हम कोशिश में हैं कि कुछ प्लेयर्स और शामिल कर लिए जाएं, तो भाई मैं इनको कॉल कर लेती हूं, अगर बीच में कोई कॉल ना आए तो इनको कॉल की जाए। हमारे कौन से वाले भाई हैं, कौन से वाले भाई हैं, ये क्या नाम है इनका, मैडी। अच्छा मैडी, ओ ये तो हमारा अहमद ही है, तो ठीक है नहीं नहीं अहमद से तो बातचीत हो गई थी। अहमद भाई सॉरी भाई, वापस से आपको कॉल घुमा लिया, आई एम रियली रियली सॉरी। अच्छा भाई कौन है हमारे साथ, शहजाद सलीम है, शहजाद सलीम कब से बेचारे बैठे हुए वेट कर रहे हैं, इन्होंने मैसेज किया था तकरीबन एक आधा घंटा पहले कि भाई मुझे कोई कॉल कर ले। शहजाद सलीम भाई हम आपको कॉल घुमा रहे हैं, बस आप कॉल उठा लेना, आपने काम ये करना है। तो भाई कॉल जा रही है, और शहजाद सलीम कहाँ चले गए, बाद अब बामुलाहिज़ा होशियार कहाँ हैं, कॉल बस जा रही है, रिंग जा रही है। तो मुझे लग रहा है अभी मूड में नहीं है, कहाँ चले गए, वैसे तो मोबाइल हाथ में रखते हो भाई। अच्छा अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम,
0: बाद अब बामुलाहिज़ा होशियार, जहाँ बना क्या आपसे आपका कीमती वक्त लिया जा सकता है, जहाँ बना
1: क्यों नहीं, इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है।
0: जहा हमारे पास टाइम कम रह गया है, क्योंकि अब 50 पे ना आज हमने स्टूडियो छोड़ देना है, तो
1: लेकिन जहा
0: पर देखिए मिक्स गाने सारे, देखिए आपकी फरमाइश के आगे हमारा क्या उर्दू में क्या कहते हैं, तस्नीम सरे खम, पता नहीं कुछ ऐसा होता है, कुछ बड़ा ही गरारों वाला कोई वर्ड है, लेकिन अभी फिलहाल जो है ना मिक्स गाने हैं जहाँ पर ना, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। अच्छा चले ये वाला गाना आपको दिया जाएगा 1 मिनट, और 1 मिनट के अंदर ना आपने पहचानना है, ठीक है? ये वाला गाना पहचाने जरा, 1 2 3 गो। मशहूर गाना है।
1: हाँ हाँ

0: सुने सुने क्या था गाना?
1: जमाना अगर तुम कहो तो।
0: हाँ, अगर तुम, अगर तुम, अगर तुम,
1: अगर तुम्हें हमें,
0: अगर तुम्हें हमें,
1: बस जमाना भूल जाएंगे।
0: नहीं, हमने जमाना नहीं भूलना। अरे भाई, अगर तुम मिल जाओ, अगर तुम मिल जाओ, जमाना भूलने की बातें नहीं हो रही थी। क्या कर देता है, क्या कर देता है गोभी दिया फूलों, गोभी का फूल बन गए क्या?
1: गोभी के पकौड़े।
0: अरे भाई, क्या याद दिला दिया, ये बड़ी गलत हरकत की आपने। आपने मुझे वीकेंड पे गोभी के पकौड़े याद दिला दिए।
1: हाँ जी, जरूर जरूर।
0: नहीं, अब ये, अब मैं स्टूडियो छोड़कर जा रही हूँ। चले भाई, आपकी आखिरी कॉल थी। आपकी आखिरी कॉल थी। चले भाई, सहज जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
1: संडे को मोस्ट वेलकम आलू पराठे के साथ।
0: नहीं, मैं अभी जाके गोभी के जो है ना, मुझे याद दिला दिया अपने, गोभी के पकौड़े खत्म हो गई, बात कैंसिल हो गई, बस खत्म, शो खत्म है इसके बाद। चले जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह हाफिज।
0: तो भाई, अब बात एंड हो रही है गोभी के पकोड़ों पर, ठीक है? बहुत खतरनाक बात कर दी है उन्होंने, अब मेरे पेट में हो गई है गुड़गुड़ शुरू। तो भाई, मैं जा रही हूँ, घर जाऊंगी, मस्त मजे ना गोभी के पकोड़े बना के खावांगी मैं। तो भाई सुनियो, आज जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। वैसे तो फन शुगल मस्ती है कि भाई देखो, बातचीत अपनी चलती रहती है, सबसे हम बंदा देख कर बात करते हैं, ऐसा नहीं कि सबसे हर बात कर देते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जिन लोगों को ज़्यादा बात करने का, अच्छा मेरा ये मामला है कि मुझे अगर आप कहीं पब्लिक में देखेंगे ना, तो आपको मैं बहुत इंट्रोवर्ट लगूंगी, क्योंकि मैं पब्लिक से छुपती हूँ। हाँ, जिन लोगों से मैं बात करती हूँ उनसे मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, ये एक फैक्ट है। तो भाई, होना ये चाहिए कि सामने वाले बंदे को देख कर, थोड़ा सा समझ कर, थोड़ा सा सोच कर, फिर बात करनी चाहिए। बातें सबकी अच्छी होती हैं, तमीज़ के दायरे में, लिमिटेशन में सबसे बातचीत रखनी चाहिए। किसी को सामने वाले को बुरा ना लगे, कोई ओवर बात ना हो जाए, ये ध्यान में रखना चाहिए। दोस्त यारों में भी ये लिमिटेशंस रखनी चाहिए। हाँ, ये भी नहीं करना चाहिए कि भाई बिल्कुल कट ऑफ होके ऐसे बिल्कुल यूँ रूखे सूखे से पापड़, बगैर तेल के पापड़ तलते हैं ना, तो कैसा रूखा सूखा सा होता है, ऐसा भी जवाब नहीं देना चाहिए किसी को। अपना ढेर सारा ख्याल रखें भाई, एंजॉय करें अपने वीकेंड को, अपनी बातचीत को दूसरों के दिलों के ऊपर पत्थर मारने वाला नहीं रखें, अपनी बातचीत को ऐसा रखें कि लोगों के दिल का सुकून बने आपकी बातचीत, और आप भी लोगों के दिलों का सुकून बने कि आपको देखकर कोई 500 किलोमीटर दूर ना भाग जाए कि भाई अब ये आ गया, फिर कोई ना कोई बात करने। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, इस बात को याद रखें कि जो अपना ख्याल नहीं रखता वो दूसरों का भी ख्याल नहीं रख सकता। हैप्पी वीकेंड, मी साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय। और भाई, सुनते रहो FM 107। ये जो गाना लगाकर जा रही हूँ ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, तो इसे थोड़ा वॉल्यूम हाई करके सुनना। हर गाने के साथ ना एक शख्स जुड़ा होता है, आपको इस गाने से कौन सा शख्स याद आता है? मेरी तो अपनी ही बातें हैं, मैं क्यों बताऊं। चलो जी, सुनते रहो FM 107, दिल से देसी। हैप्पी वाला वीकेंड।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, ये सरप्राइज तो नहीं होना चाहिए अभी तक कि हर थर्सडे अभी जब तक अमीन भाई नहीं है उनकी प्रॉक्सी अटेंडेंस मैं लगाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, और मैं दोहा वाला कबीर आपके जी एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन फिलहाल जो है स्पोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। क्योंकि देखो अभी आधे घंटे में आपके साथ रहने वाला हूँ अमीन भाई की गैर हाजिरी में, और ये बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे कल बता देना चाहिए था शाम में। मैं लिटरली मेरे जहन से निकल गया, फिर मुझे अरे दोपहर में तो पहुंचना है, पर मैं आ गया। सो व्हाट्सएप 666-22-107 है, इस पर जरूर आ सकते हैं। मगर फिलहाल खबरों की तरफ बढ़ेंगे, फुटबॉल से शुरुआत करते हैं। देखो मैंने अपना स्टांस बदल लिया था आफ्टर वट एवर हैपन्ड, एंड देन मेरा स्टांस स्पेन के साथ था, और शुक्र है कि स्पेन ने वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया, अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया। इट्स नाउ एन ओल्ड न्यूज, लेकिन फिर भी वो जो आखिरी मोमेंट तक ये मैच चले हैं, ये रिजोल चलते रहना चाहिए, मेरी यही उम्मीद है कि ऐसी रहे। तो 1-0 से वो तो जश्न हो गया और स्पेन जीत गया, और पूरी दुनिया स्पेन के साथ जश्न मना रही है। और दूसरी तरफ जो अर्जेंटीना के प्लेयर्स ने किया, दैट वाज रियली अनएक्सेप्टेबल, और उसके बाद जो होगा क्रिटिसिज्म होगा, झेलना पड़ेगा बाहर, वो एक अपनी स्टोरी है। बट इसके अलावा जो फुटबॉल की खबरें आ रही हैं वो आर्सेनल की तरफ से भी आ रही हैं। जो आर्सेनल फैंस हैं भाई साहब, झटके के लिए तैयार हो जाइए। आर्सेनल के जो स्टार डिफेंडर हैं विलियम सालिबा, उनको बैक इंजरी की वजह से एक्सटेंडेड पीरियड के लिए टीम से बाहर कर दिया गया है। वाँ, वाँ, वाँ। तो क्लब के लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि प्रीमियर लीग सीजन बहुत करीब है और उनके डिफेंस के बिना भाई फर्क तो पड़ेगा। सो आई डोंट नो आप किसको सपोर्ट करते हैं क्लब वाइज, जो क्लब मैचेस देखते हैं, मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े फैंस हैं भाई क्लब मैचेस के भी, एंड आई डोंट नो इफ यू सपोर्ट आर्सेनल और नॉट, बट फॉर नाउ ये जो सबसे बड़ा झटका लगा है ये आपकी टीम को, तो आपके क्लब को फॉर श्योर लगा है। तो किसी और को तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे अमीन भाई की जगह मैं तैयारी करनी उतरा हूँ मार्केट में, तो दिस इज समथिंग यू नीड टू फोकस ऑन। इसके अलावा जो ट्रांसफर सिस्टम चल रहा है, मार्केट बहुत गर्म है भाई। यूरोप के जो तमाम बड़े बड़े क्लब्स हैं नए सीजन से पहले प्लेयर्स की जो खरीद फरोख हो रही है उसमें काफ़ी बिजी चल रहे हैं सारे क्लब्स। मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर बात की जाए तो मार्कस रैशफोर्ड के मुस्तकबिल पर फैसला किया जाने वाला है, और जो इंटर मायामी है, इंटर मायामी ने ब्राज़ीलियन मिडफील्डर कैसमीरो को साइन कर लिया है। तो ये कुछ चीज़ें मिड वीक हो चुकी हैं, तो इन बातों पे ज़रा ध्यान बना के रखें। बाकी एक मैसेज आया आरिफ अंसारी साहब का, वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, बढ़िया। फरहत भाई कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सब होगा। एंड इसके अलावा अफ्रीका का जो कप है 2027, इससे भी बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सो कैफ CAF प्रेसिडेंट पेट्रिस ने यकीन दिलाया है कि 2027 का जो वर्ल्ड कप है, जिसमें बहुत सारे नेशंस हैं, केनिया है, तंजानिया है, युगांडा है, कामयाबी से मुनक्किद होगा। देयर इज़ नो बैरियर, नो डाउट्स, नथिंग एट ऑल। उन्होंने ये भी कह दिया है कि चाहे स्टेडियम तैयारी से कुछ चैलेंजेस झेल रहे हों, लेकिन फिर भी इन सारे चैलेंजेस को टापने के बाद ये अफ्रीकन कप तो होके रहेगा। देखो अगर आप फुटबॉल को बहुत ही दिल से फॉलो करते हैं, मैं अपने आप को इतना बड़ा फुटबॉल फॉलोअर नहीं मानता था, कतर में आके तो मैं भी थोड़ा बहुत फॉलो करने लगा हूँ, बट लुकिंग एट दिस, वो ये जो रेजिलियंस है आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। जब भी वर्ल्ड कप को होस्ट करने की बारी आती है तो कतर नहीं है, बहुत सारे मुल्कों को एक क्या कहते हैं उसको, पाथ दे दिया है कि भाई साहब आप कर सकते हैं, आप छोटी कंट्री हो, बड़ी कंट्री हो, आपने स्टेडियम बनाए हो ना बनाए हो, एवरीथिंग कैन बी डन। एंड ये रेजिलियंस अभी अफ्रीका की तरफ से देखा जाने वाला है। सो अब इस टीम को, सॉरी इस कप को आप फॉलो करते ही नहीं करते ये भी ज़रूर बताएगा, बिकॉज इसमें केनिया, तंजानिया, युगांडा जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब ज़रा क्रिकेट की दुनिया की तरफ बढ़ते हैं, तो तस्कीन अहमद साहब ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। बांग्लादेश के जो फास्ट बॉलर हैं तस्कीन अहमद ने श्रीलंका की जो प्रीमियर लीग है उसे छोड़ दी है, ताकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए बेहतर तैयारी वो कर सकें। अब जितनी बांग्लादेशी जनता अभी सुन रही है, क्या आप उनकी इस डिसीजन के हक़ में हैं? वैसे तो कुछ नहीं कर सकते, हक़ में रहना ही पड़ेगा, पर आई थिंक ये भी ठीक है। ये बहुत हार्ड डिसीजंस होते हैं जब आपको सोचना पड़ता है कि नहीं मैं ये नहीं खेलूँगा, मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ इसलिए मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत टफ डिसीजन है, आई थिंक ये डिसीजन के हक में वो आए हैं तो काफ़ी सोच समझ के आए होंगे. उन्होंने फ्रेंचाइजी क्रिकेट पर मुल्की ड्यूटी को तरजीह दी है, विच इज़ अ ह्यूज ह्यूज थिंग. सो जिम्मेदारियाँ जिस बॉलर पे, जिस पेसर पे, बैटर पे ज़्यादा होती है, उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो लगातार ना खेलता चला जाए, एंड ही शुड टेक अ ब्रेक इन बिटवीन. तो ये बहुत अच्छा फैसला किया तस्कीन अहमद साहब ने, कि उन्होंने फैसला किया श्रीलंका लीग छोड़ देता हूँ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज की बेहतर तैयारी करूंगा. ग्रेट डिसीजन. टेस्ट क्रिकेट को भी जिंदा रखना बहुत बहुत जरूरी है. इसके अलावा आईपीएल की बहुत बड़ी खबर है भाई, नए नए इन्वेस्टर्स दिलचस्पी ले रहे हैं. ऑलरेडी इतने स्पॉन्सर्स हमने देखे हैं, यहां बैनर वहां बैनर, स्टेडियम के बाहर अंदर जर्सियों पर जगह जगह. और अभी सिंगापुर की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है तेमसिक, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, या तेमसिक, आईपीएल की किसी फ्रेंचाइजी में हिस्सा खरीदने में बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. वो लोग वो सोच रहे हैं कि किसी टीम को या फिर आईपीएल को आईपीएल के साथ पार्टनरशिप की जाए. सो आईपीएल की कीमत, ध्यान से सुनिएगा, आईपीएल की कीमत अब 18 बिलियन विद अ बी, कैपिटल बी, 18 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो चुकी है और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इस लीग में पैसा लगा रहे हैं. तो जो अब आने वाले टाइम में ये आईपीएल होने वाला है, ये बहुत बहुत जाइगेंटिक होने वाला है. जिस हिसाब से इसमें बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उन्हें भी पता है यार, पैसा बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है ये. यू ईदर बाय अ टीम और यू बिकम अ पार्टनर विद आईपीएल. मामला आसान है, T20 के मजे भी आएंगे, छक्के चौके भी पड़ते रह जाएंगे, सब ठीक है. मैं तो कह रहा हूँ बस जर्सियों के रंग थोड़े से ठीक ठाक कर दो यार, ये पिंक जर्सियों में समझ में नहीं आता. बट एनीवे, ये खबर थी तो मैंने आपको बता दी. इसके अलावा इंग्लैंड की द 100 लीग में प्राइवेट इन्वेस्टर्स की एंट्री के बाद क्रिकेट एक्सपर्ट्स बहस कर रहे हैं कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा साबित होगा कि नहीं होगा. बट आई थिंक किसी भी लीग को, चाहे वो हमारी आईपीएल हो, चाहे पाकिस्तान की पीएसएल हो, चाहे बाहर की कोई लीग हो, जैसे द 100 लीग है इंग्लैंड की, किसी भी लीग को बड़ा करने के पीछे खिलाड़ी तो ऑफकोर्स हैं, बट देन कम्स द इन्वेस्टर्स, द स्पॉन्सर्स. वो जब तक प्रचार प्रसार नहीं करेंगे भाई, आप तक और हम तक पहुँचेगा ही नहीं. तो ये भी एक बड़ी कोशिश है, एंड आई थिंक इन्वेस्टर्स को फायदा तो होगा. उस तरफ के देखने वाले भी लोग हैं. एक मैसेज आया है, जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था अर्जेंटीना नहीं जीतेगी और मैं बहुत खुश हूँ कि नहीं जीती. वैसे तो मैंने फ्रांस यूज किया था, लेकिन खुश हूँ कि अर्जेंटीना नहीं जीती. आरिफ अंसारी साहब, हाई फाइव ऑन दैट भाई. मैं बताऊँ, मैं शुरुआत में वेन फ्रांस वॉज देयर और बाहर नहीं निकले थे, तो मैं उस वक्त फ्रांस को सपोर्ट कर रहा था. मैंने लगा यार क्या पता इस बार कुछ ऐसा हो जाए. मैं तो यहाँ तक पहुँच गया था, मैंने कहा हो सकता है कि फिनाले में, जो ग्रैंड फाइनल है, उसमें फ्रांस होगा और अर्जेंटीना होगा, एंड इतिहास अपने आप को ना दोहरा के इस बार फ्रांस को जिता देगा. ये मैंने सोचा था. सोचो कितना आइकॉनिक होता अगर ऐसा हो जाता. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, एंड स्पेन वन. काफ़ी नीयत साफ रही है स्पेन की कंट्री के हर मामले में, तो खेल के मामले में उनकी जीत देख के बड़ी खुशी हुई. सो मैं आपके साथ हूँ भाई इस पूरी सोच में. इसके अलावा जो ग्लोबल सुपर लीग है उसकी शुरुआत हो चुकी है. जो वेस्ट इंडीज़ में ग्लोबल सुपर लीग का आगाज़ हो गया है, वहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक की जो T20 टीम्स हैं वो हिस्सा लेने जा रही हैं, और ये टूर्नामेंट जो है 1 अगस्त से रहेगा. सो आई डोंट नो कितनी लीग्स को फॉलो करना है, but this is one of the leagues that you should keep an eye on. So West Indies की भी Global Super League शुरू हो रही है.

और भाई ने अपना पूरा प्रेडिक्शन भेजा है, इन्होंने भी लिखा था कि अर्जेंटीना फ्रांस का फाइनल होगा, फ्रांस जीत जाएगा। भाई मेरा भी यही था, मैं सच में आरिफ भाई यही सोच रहा था कि इफ इट एवर हैपन्स सो ये हो सकता है। और लिखते हैं वैसे अर्जेंटीना टीम अच्छी खेलती है लेकिन हैबिट इज़ नॉट गुड। या वो थोड़ा टेम्परमेंट, वो थोड़ा एटीट्यूड इस बार मुझे नहीं दिखा जो कतर में जब मैच हुआ था उस टाइम पे जब दिखा था, वो टेम्परमेंट कहीं नहीं था। ऐसा लग नहीं रहा था कि दे आर प्लेइंग टू विन, ऐसा था कि जीत गए तो ठीक है वरना अग्रेसिव तो हमारी टीम है ही, थोड़ा कुछ तो कर ही लेंगे। तो कुछ चीज़ें ओवर थी, कुछ चीज़ें अंडर थी दिस टाइम व्हेन दे वर प्लेइंग, एंड इट वाज सैड टू सी बिकॉज वी ऑल हैव बीन फैंस ऑफ अर्जेंटीना। लेकिन भाई इजिप्ट के मैच के बाद फिर जो झटके पे झटके लगे हैं, दिल हल्का सा टूट गया था भाई। आरिफ भाई अग्री करोगे इस बात से? सुमुल बहन लिखती है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, मैं एकदम बढ़िया। या एग्जैक्टली आरिफ भाई, ओके दिखते हैं इफ एनीथिंग हैपेंस स्टार्ट करेंगे। ऑफ कोर्स कुछ भी हो रहा था ऐसा लग रहा था ये बिलक रहे हैं, अरे अरे हमारे साथ ऐसा क्यों गया। और इनफैक्ट हमारे साथ नहीं, हमारे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, वॉज देयर एटीट्यूड विच वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। अच्छा इसके बाद टेनिस की दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। हैमबर्ग, प्राग और एस्टोरल में ATP और WTA टूर्नामेंट्स जारी हैं। कई टॉप प्लेयर्स US ओपन से पहले रैंकिंग पॉइंट्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और टेनिस के जो शायकीन हैं, जो टेनिस को फॉलो करते हैं, मैं पिछले भी शो में कह चुका हूँ, इफ़ यू हैव नॉट बीन इन अ टेनिस कोर्ट, जाके मैच कभी नहीं दिखा है, अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है भाई। मैं एक मरतबा बस जाके आया हूँ, मैं ऐसे बैठ के नहीं देखा, बट मैं बड़ा सरप्राइज था कि यार यहाँ पे इतनी शांति, इतना बढ़िया माहौल है। आई नो उसकी सिटिंग थोड़ी सी अलग होती है बाकी स्टेडियम से, इफ़ यू हैव बीन देयर, बट इट इज़ रियली रियली इंटरेस्टिंग। सो टेनिस की दुनिया से खबर है। इसके अलावा एलेक्जेंडर विरेव ने विंबलडन के बाद दुनिया के बेहतरीन प्लेयर करार कर दिए गए हैं, उनको एक टाइटल मिल चुका है। सो टेनिस एक्सपर्ट्स भी सिनर को इस वक्त सबसे मजबूत प्लेयर समझ रहे हैं। ये होता है कि एक लेजेंड को आप उसके फुटस्टेप्स में फॉलो करते हैं, यू सेल्फ बिकम द लेजेंड, एंड ऐसा ही इनके साथ हुआ है। तो दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेयर का टाइटल इज़ नॉट अ स्मॉल टाइटल, बहुत बड़ी बात है। और इसकी बाद एक और मैसेज आया, क्या जस्ट स्टोरी सुनी और मुझे पता ही नहीं कि कबीर भाई ऑन एयर है। अरे मुबीन भाई बस इस टाइम भाई स्पोर्ट्स राउंड अप, दैट्स व्हाई, बाकी सारी बातें 5 बजे के करीब करेंगे। अच्छा बैडमिंटन की तरफ बढ़ते हैं आफ्टर द वर्ल्ड ऑफ टेनिस, क्योंकि बैडमिंटन में भी काफ़ी कुछ जारी है। फिलहाल एक और मैसेज है फुटबॉल के लिए, क्या लिखा है, आई रियली लव्ड अर्जेंटीना टीम फ्रॉम मैराडोना टाइम्स बट द 2026 फाइनल रियली डिसअपॉइंटेड मी, नॉट बिकॉज दे लॉस्ट बट द थिंग्स दैट हैपेंड, एक्चुअली द थिंग्स दैट हैपेंड राज भाई उनकी वजह से, एंड नॉट जस्ट द थिंग्स दैट हैपेंड, वो जो जिस एटीट्यूड के साथ मैदान में उतरे थे वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा था कि नहीं यार ये वाली टीम नहीं है जो 2022 में खेली थी। ऐसा लग रहा है इस टीम को जानते ही नहीं हम, क्योंकि 2022 में आई वॉज रूटिंग फॉर देम, पर ऑटोमेटिकली वो ऐसा हो गया कि सडनली आई वॉज नॉट रूटिंग फॉर देम एट ऑल 2026 में। तो ये जो उन्होंने किया ये उन्हीं की गलती है। बहरहाल दे वर वेलकम्ड रियली वेल। और एक मैसेज आया, यस प्लेड लाइक अ न्यू रॉ टीम, एब्सोल्युटली, पर उनका वेलकम बढ़िया हुआ, उन्हें अपने मुल्क से मिला, उन्होंने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं दी, किसी खिलाड़ी ने कोई बात भी नहीं करी, विच वॉज नॉट गुड। बट एनी वे बैडमिंटन की तरफ बढ़ते हैं। सो पी वी सिंधु ने चाइना ओपन में चेन ह्यूफी के खिलाफ 4 मैच पॉइंट्स हासिल करने के बावजूद मैच उनके हाथ से निकल गया और टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। ये मैच बहुत दिलचस्प था, शुरुआत में लोगों को लग रहा था कि पी वी सिंधु कर दिखाएंगी, मगर यार वो 4 पॉइंट्स हासिल करने के बावजूद जो है मैच जो है निकल गया। सैड स्टोरी, पर कोई बात नहीं, शी इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट प्लेयर और उनकी ट्रेनिंग में कोई कमी नजर नहीं आ रही, आई रियली होप फॉर द बेस्ट। इसके अलावा आयुष शेट्टी का जो अपसेट है वो अलग है, जो शटलर है आयुष शेट्टी साहब शेट्टेवा है, चाइना ओपन में वर्ल्ड नंबर 11 को हराकर सबको हैरान कर चुके हैं और अगले राउंड में जगह बना लिए। आई रियली होप ही गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड इंडिया का नाम रोशन करें। बहुत बढ़िया आयुष भाई, शेट्टी भाई का जलवा चल रहा है, शेट्टी भाई का जलवा। मीनवाइल एक दो और मैसेजेस हैं पढ़ देता हूँ मैं। हाँ तो बट वन जापान जापान कप विच इज़ गुड, यू विन सम यू लूज सम, एब्सोल्युटली। फरहत भाई कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस ने इस बार हरवा दिया अर्जेंटीना को। इसके बाद आरिफ भाई लिखते हैं मेरे हिसाब से अर्जेंटीना डिजर्व दैट फाइनल लॉस, आई बिलीव सो, आफ्टर सीइंग द एटीट्यूड आई ट्रूली बिलीव सो। अच्छा इसके बाद हम जरा बढ़ते हैं हॉकी की तरफ, क्योंकि हॉकी की दुनिया द नेशनल गेम ऑफ आर कंट्री, इंडिया ने हॉकी वर्ल्ड कप के लिए एक्सपीरियंस और यंग प्लेयर्स का जो मिक्स स्क्वाड है वो तैयार किया है और कैप्टन हरमनप्रीत सिंह जो हैं बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं। और हॉकी एक ऐसा खेल है जो बिल्कुल

0: एक हार्ट बीट की तरह है, बीच बीच में बहुत ऊपर चला जाता है जब लगता है बाप रे बाप, एंड नॉट जस्ट फॉर इंडिया, फॉर पाकिस्तान ऑल्सो। फिर कई मरतबा होता है कि हॉकी बिल्कुल ही गायब हो जाता है। सो अभी ये मौका है वो चक दे इंडिया वाली फीलिंग जगाने का। देन उम्मीद करता हूँ, आई विश आर टीम ऑल द बेस्ट। अमन हरमनप्रीत सिंह को भरोसा है तो इंडियन हॉकी इस बार वर्ल्ड कप में कुछ कर दिखाए, रियली होप सो। कॉमनवेल्थ गेम्स भी, उनकी भी ज़रा बात कर लेते हैं। तो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में हॉकी को शामिल नहीं किया गया है, विच इज़ अ सैड स्टोरी। जैसे मैंने कहा कि हॉकी की कहानी ऐसी रहती है, कभी अप कभी डाउन, बट दिस टाइम इट इज़ सैड टू इवन मैंशन दिस। सो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में हॉकी को शामिल नहीं किया गया है, जिससे इंडिया का जो मेडल चांसेस हैं उस पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है, बिकॉज वी आर रूटिंग फॉर इट। हमें लगा था हो जाएगा, कुछ ना हो जाएगा, बट नो। एक और मैसेज है, क्या लिखा है, सर आई डोंट नो योर शो वॉज ऑन द टाइम, हियरिंग योर वॉइस रियली रिफ्रेश्ड माई मूड, थैंक यू सो मच भाई। बहुत सारा प्यार भाई को, थैंक यू सो मच भाई। वाह भाई, आऊँगा तो वैसे मैं 5 बजे ही, बट दिस इज जस्ट स्पोर्ट्स राउंड अप कुछ वक्त के लिए। और एक फोटो भेजा, बाहर टेम्परेचर भाई ख्याल रखो अपना, आई नो अभी टेम्परेचर 50 के आसपास आपकी गाड़ी में दिखाएगा। ओके, फार्मूला वन देखो, कतर में भी नवंबर के आसपास शुरू हो जाएगा और लुसेल सर्किट बिजी हो जाएगा, बट फॉर नाउ फार्मूला वन की जो टीम्स हैं हंगेरियन ग्रांड प्री के लिए तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। मर्सिडीज को उम्मीद है कि फरारी और लुई हैमिल्टन से सख्त मुकाबला होगा इस बार भी। एक तो मैं पहले ही बता दूं, लोगों ने F1 के बारे में सीखा ही जब कतर में आया, बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग माई सेल्फ। इस बार अगर मुकाबले की उम्मीद है तो देखेंगे, क्योंकि इस मुकाबले का असर सीधा आने वाले मुकाबले में पड़ेगा जब यहाँ पर कतर में F1 रेसेस होने वाली है। सो लेट्स होप मैं किसी की साइड नहीं लूंगा भाई। लुई हैमिल्टन का नाम बच्चे बच्चे को पता है, भले ही आप रेस देखते हो ना देखते हो, बट लुकिंग एट दिस कॉन्फिडेंस फ्रॉम मर्सिडीज, लेट्स होप कि वो इस बार कुछ करके दिखाएं। इसके अलावा जो WNBA सीजन है पूरी रफ्तार से जारी है, ऑल स्टार वीकेंड के बाद टीम प्ले ऑफ रेस के लिए तैयारी कर रही है, और जैसे कि आप जानते हैं बास्केटबॉल बहुत जल्दी कतर में भी देखने को मिलेगा, सो वी आर ऑल सेट फॉर इट। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी, प्रतापगढ़ इंडिया से सुन रहे हैं आपका शो सुनता हूँ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतापगढ़ से सुन रहे हैं आप, मेरा भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, लॉट्स ऑफ लव। और एक और मैसेज है, सलाम भाई सो जाओ गर्मी है कह रहे हैं सो जाओ गर्मी है। और एक और मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम, ये इन्होंने मैसेज किया है मोहम्मद भाई थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया गया। हाँ, तो बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप भी आने वाला है, और इसके अलावा गोल्फ के टूर्नामेंट्स की तरफ बढ़ूँ तो वुमेन्स स्कॉटिश ओपन, 3 मिलियन ओपन इस हफ्ते से सबसे अहम गोल्फ इवेंट शुरू हो रहे हैं, दुनिया के टॉप गोल्फर्स टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने वाले हैं, सो इट्स गोइंग टू बी ह्यूज, और इस पर भी नज़रें बनाए रखिएगा आप। बाकी आपके मैसेज भी आते रहते हैं और आप लोग कहते रहते हैं किसी चीज़ के बारे में बताना हो पूछना हो आप प्लीज़ आगे बढ़ें। टेनिस की दुनिया से एक दो खबरें जो मुझे अभी नज़र आ रही हैं, हार्ड कोर्ट सीजन शुरू होने की वजह से कई स्टार्स अपनी फिटनेस और फॉर्म बेहतर बना रहे हैं, इस बार की कंडीशंस अलग होने वाली हैं और प्लेयर्स यूएस ओपन से पहले रैंकिंग पॉइंट्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद जारी है। इफ़ यू हैव फॉलोड टेनिस एवर इन योर लाइफ, कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट जागेगा, क्योंकि यहाँ पर आके लोगों का खेल की तरफ इंटरेस्ट ज़रूर जाग जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स की कुछ देर पहले बात कर रहा था, आई वुड लाइक टू कम बैक टू दैट अगेन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बैडमिंटन शामिल ना होने की वजह से, विच इज़ अगेन अ शॉकर, हॉकी के बाद इसे भी शामिल नहीं किया गया है, प्लेयर्स में मायूसी है, एंड आई डोंट नो यार ये क्या होगा, दिस इज जस्ट सैड। और इंडिया और चाइनीज शटलर्स की परफॉर्मेंस सबकी तवज्जो का मरकज बनी हुई है, अभी भी दे आर डूइंग अ ग्रेट ग्रेट जॉब। इसके पीवी सिंधु की, जैसे मैंने आपको खबर बताई, 4 पॉइंट्स लेने के बावजूद शी कुडंट मेक इट, बट स्टिल द गेम वॉज जस्ट ब्रिलियंट। चाइना ओपन में टॉप एशियन प्लेयर्स क्वार्टर फाइनल में पहुँच चुके हैं। एंड एक और मैसेज आ रहा है भाई, धड़ल्ले से मैसेज आ रहे हैं, क्या बात है, एक सेकेंड। उस्मान और साहब लिखते हैं, सलाम कबीर भाई कैसे हो, ठीक हो, दुआ है कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। अरिफ अंसारी भाई, लॉट्स ऑफ लव मेरे भाई। और लिखते हैं, वैसे मैं RCB को सपोर्ट और RCB बैक टू बैक जीतने पे खुशी नहीं हुई उतनी जितनी अर्जेंटीना की लॉस पे हुई। भाई टॉकिंग अबाउट आर T20, मैं देखो मैं बता रहा हूँ, मैं दिल्ली का हूँ, मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ हमेशा दिल्ली को, हमारी टीम कभी तो कुछ करे यार, कभी तो कुछ करे। हम दिल्ली वालों की मजबूरी है, हमें दूसरी टीम को सपोर्ट करना पड़ता है, मजबूरी है भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, वी हैव टू सपोर्ट सम अदर टीम, क्योंकि हम जैसे दिल्ली बोलते हैं लोग हम पे हंसने लग जाते हैं, है दिल्ली की टीम है। एक मैसेज, लव यू भाई, आपको सुन के दिल बाग बाग हो गया, थैंक यू सो मच, आम के भाई बहुत सारा प्यार भाई, थैंक यू। तो यार अगले आईपीएल में जो हो पता नहीं, बट आई होप कि दिल्ली की टीम कुछ कर पाए, क्योंकि हम बहुत उदास हो जाते हैं और लोग हम पे हंसते हैं,
1: तुम दिल्ली से हो, तुम्हारी टीम तो कुछ नहीं कर रही।
0: ठीक है भाई, बुरा लगता है यार, इतना मत मजाक उड़ाओ, थोड़ा सा अलगाद रखो भाई। कह रहे आई लव दिल्ली टीम, आरिफ भाई ये तो बोलना भी हमारे लिए भारी पड़ता है, हाउ कम यू लाइक अ टीम, यू लव अ टीम जो जो कुछ कर नहीं रही है, बट क्या करें भाई, वहीं के हैं। फार्मूला वन की कुछ और खबरें देता हूँ आपको। मीनवाइल एज़ वी आर स्पीकिंग, फार्मूला वन टीम्स अगले ग्रैंड प्री के लिए प्रैक्टिस और कार अपग्रेड्स में काम चल रहा है बहुत जोरों शोरों से, बिकॉज दे नो कि इसके बाद ये जो रेस होने वाली है अभी हंगेरियन ग्रैंड प्री के बाद, दे हैव टू कम डाउन टू कतर लुसेल सर्किट पे अपने जलवे को बिखेरना है। तो चैंपियनशिप रेसेस में टॉप ड्राइवर्स के दरमियान काफ़ी काफ़ी सख्त मुकाबला होने वाला है। मोटो जीपी की तरफ से भी खबरें आई हैं, सो मोटो जीपी राइडर्स अगले रेस वीकेंड की तैयारी में मसरूफ हैं, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी ह्यूज। चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल पर टॉप राइडर्स के दरमियान फ़र्क ज़्यादा नहीं रह गया है, सो मोटो जीपी में और अभी F1 रेसेस में जो मेन फैक्टर है वो ये आ गया कि दोनों ही जगहों पे जो राइडर्स हैं, चाहे वो मोटो जीपी वाले हों या F1 वाले हों, पॉइंट्स टेबल अगर आप देखेंगे, देयर परफॉर्मेंस इज सच दैट टॉप राइडर्स में और जो मिडल में है इतना कुछ खास फर्क है नहीं। और ये क्या मुझे भेजा है, एक सेकेंड भाई, मैं क्या खा पी रहा हूँ, स्टोरी नहीं भाई, बढ़िया भाई, स्टोरी तो अभी आएगी नहीं, स्टोरी 5 बजे आएगी मेरी जान, अभी तो मेरे टाइम भी नहीं है स्टोरी का। अच्छा, बॉक्सिंग की तरफ बढ़ते हैं। हैवी वेट डिवीजन में नए टाइटल फाइट्स के ऐलानात की तवक्को है भैया, नए नए फाइट्स होने वाले हैं, नए नए टाइटल्स आपको नजर आने वाले हैं, और कई चैंपियंस अपने अगले टाइटल डिफेंस के लिए ट्रेनिंग कैंप्स में हैं, तो तैयारी उधर भी जारी है। MMA की तरफ से जिस जगह पे हमने देखा है कई लोग जा रहे हैं रशिया स्पेशली ट्रेन होने के लिए, इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी, सो इट इज़ बिकमिंग बिग डील। सो UFC के अगले इवेंट की तैयारी मुकम्मल है और हाई प्रोफाइल फाइट्स तैयार हो रही हैं। शेड्यूल में आपको बता दूंगा जब भी पूरे शेड्यूल आ जाएगा। जो फाइटर्स वे इन और मीडिया इवेंट्स में हैं ऑलरेडी हिस्सा ले रहे हैं उस तरफ, एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग। फिर आता है बास्केटबॉल, NBA टीम्स ऑफ सीजन में ट्रेड्स और नए कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनल किए जा रहे हैं, एंड ऑल्सो तैयारी चल रही है बिकॉज कतर में भी NBA देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल वॉलीबॉल लीग्स यूरोप और एशिया में जारी हैं, तो खेल किधर भी कमी नहीं है। नेशनल टीम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफायर्स की तैयारी कर रहे हैं। एंड इसके अलावा एथलेटिक्स की तरफ अगर मैं पढ़ूँ, तो कॉमनवेल्थ गेम्स के एथलेटिक प्रोग्राम्स आज से शुरू हो रहे हैं, उसमें स्प्रिंटर्स और मिडिल डिस्टेंस रनर्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, पहले भी और इस बार भी उनसे उम्मीदें बेहद ज़्यादा हैं। चेस की तरफ बढ़े, जिसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, पिछले साल भी हमने देखा कि कतर में भी काफ़ी सारे इवेंट्स हुए, सो इस बार भी टॉप ग्रैंड मास्टर्स इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं। लाइव रेटिंग रेस में टॉप प्लेयर्स के दरमियान बहुत बहुत कम फर्क रह गया है, एंड इन सारे टूर्नामेंट्स का रिजल्ट ये है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है चेस की दुनिया में, जिन्होंने चेस कभी देखा भी नहीं था, खेला भी नहीं था, they are not interested in playing chess, and मैं क्यों ना बात करूँ, मैं खुद एक गेमर हूँ, so EA Sports League में भी काउंटर स्ट्राइक, वैलोरेंट और डोटा 2 के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जारी हैं, और ये टूर्नामेंट्स इससे पहले कतर में, सऊदी अरेबिया में, पूरे गल्फ में भी हो चुके हैं, अभी एशियन लेवल पे ये इवेंट्स हो रहे हैं, तो एशियन गेम्स 2026 में EA Sports को मेडल स्पोर्ट के तौर पर शामिल किया जाएगा, सो इट्स अ बिग डील। बहुत बहुत सालों से ये कोशिश जारी थी कि लोग इतना खेलते ही हैं, EA Sports में पार्टिसिपेट करते हैं, बड़ी बड़ी टीम्स आती हैं, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स आते हैं, सो इसको शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है एशियन गेम्स में, और एशियन गेम्स 2026 में फाइनली इतने सारे विशेज हैव कम ट्रू, सो एशियन गेम्स 2026 में EA Sports को मेडल स्पोर्ट के तौर पे शामिल किया जा रहा है। मुबारक हो भाई साहब, मुबारक हो। चलो कम से कम एक स्टेप और तो हुआ, आपको ये तो नहीं बोलेगा गेमिंग तो करना अच्छी बात नहीं होती, एशियन गेम्स में है गेमिंग, क्या बात कर रहे हैं आप। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाईजान, गुड आफ्टरनून, आपकी टाइमिंग कब है भाई? शाम को है, बट अभी मैं प्रॉक्सी लगा रहा हूँ हमारे भाई अमीन भाई की तरफ से, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे इकबाल भाई, थैंक यू सो मच इकबाल भाई की बात जो है। एक और मैसेज है, भाई आते ही स्टोरी बोलते हैं लोग सिर्फ, और कुछ नहीं। हाँ वही तो, मैं आया और सीधा वो होता है ना परचूनी की दुकान, सुबह सुबह खुलती है भैया, वो आपकी दुकान का वेट कर रही थी 1 किलो आटा, तो वैसा वाला सीन हो गया है मेरे साथ। बट ठीक है, यही मोहब्बत है, इसी के लिए जीते। चलिए इसी बहाने मुझे याद तो रखेंगे। यही बड़ी बात है। आरिफ भाई कहते हैं कि वैसे बिना आपसे मिले आपसे ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे गांव वाले चाय नुक्कड़ वाले दोस्त हों। भाई इस कमेंट को मैं स्क्रीनशॉट लगे रखूंगा आरिफ भाई, दिस इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट, इसी के लिए तो जीता है बंदा भाई, थैंक यू मेरा भाई। अच्छा शूटिंग की तरफ भी बढ़ लें थोड़ा सा, तो शूटिंग खेल भी जा रही है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में, शूटिंग को प्रोग्राम से हटा दिया गया है, सैडली इट्स नॉट देयर। और इस फैसले की वजह से फिर से इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि इंडिया के मेडल चांसेस में और भी ज्यादा कमी आने वाली है। पहले ही एक सेटबैक मिल चुका था हॉकी के ना होने की वजह से, और फिर उसके बाद ये और एक इंपैक्ट देखने को मिला है। सब अब कितना झेलें भाई, कितना झेलें। खैर स्विमिंग की तरफ बढ़ लेते हैं, तैराकों की तरफ। सो ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में स्विमिंग सबसे बड़ा अट्रैक्शन होने वाला है ऐसा कहा जा रहा है, और एडम पीटी और दूसरे टॉप स्विमर्स गोल्ड मेडल्स की तैयारी कर रहे हैं। और साइकिलिंग की दुनिया में भी हलचल है। सो ट्रैक साइकिलिंग और रोड साइकिलिंग के लिए इंटरनेशनल इवेंट्स यूरोप में जारी हैं, और कॉमनवेल्थ गेम्स में साइकिलिंग मेडल इवेंट्स में शेड्यूल्ड है। तो हमारी कंट्रीज़ को भी ज़रूरी है कि हम लोग भी बढ़ चढ़ के इन सारे खेलों में जाएं जहां पर हमारी मौजूदगी नहीं है, बिकॉज जहां पर हमारी मौजूदगी है वो खेल तो शामिल ही नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट। एक मैसेज है, मैं क्या, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, सरप्राइज शो, मजा आ गया, थैंक यू सो मच भाई डीपी भाई, थैंक यू सो मच। और अभी जाने का ही वक्त हो गया है मेरे। साथी भाई कह रहे हैं मैं लंच के लिए निकला, रेडियो चालू किया तो एक मोमेंट लगा कि टाइम वॉर्प हो गया है। कह रहे हैं ये क्या हुआ, साथी भाई डर गए। लगा होगा ना किसी लूप वूप में तो नहीं फंस गया मैं भाई, ये क्या हो गया। नहीं आप बिल्कुल सही जगह आरिफ भाई, एंड इन तमाम खबरों के बाद इजाज़त लेने का वक्त भी आया, आ गया आप लोगों से। बाकी सर अभी घर जाओगे, फिर 5 बजे जाओगे? जी भाई अभी निकलूँगा नाश्ता पानी, फिर आपका भाई सीधा 5 बजे मिलेगा आपसे। बट फॉर नाउ आपसे चाहूँगा इजाज़त, इंशाल्लाह आप सीधा आपके आपसे मुलाकात होगी शाम 5 बजे। वीकेंड भी सेलिब्रेट करना है, कहानी भी सुनानी है, बहुत सारी बातें भी करनी है। सो स्पोर्ट्स राउंडअप से दिस इज़ दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मां सलामा।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक,
3: टाइम चेक, चेक चेक चेक, टाइम चेक। इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं दोपहर के 1:31, यानी इट्स टाइम फॉर,
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
3: तो यस माय देसी ऑडियंस, क्या हालचाल है, हैप्पी वाला वीकेंड। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ऑन एफएम 107, मैं हूँ आपकी फरमीता और आज एस्केप रूम बड़ा कमाल का होने वाला है क्योंकि आज हम बहुत सारी मीठी मीठी चीज़ों का स्वाद लेने वाले हैं। पर स्वाद से याद आया, अभी मैं दवाई खाकर आ रही हूँ, यू नो व्हाई, बिकॉज मौसम में तब्दीलियाँ जब आती है तब सर्दी खांसी जुकाम और फ्लू होने के चांसेस होते हैं। देखो मेरा अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, कोशिश मेरी है कि जल्द से जल्द मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन आपके आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि पहली चीज़ अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, दूसरी चीज़ एकदम ठंडा गर्म ना करें, मतलब एसी से एकदम से गर्मी में ना जाएं। आई नो यू नो दिस, पर ख्याल रखना ज़रूरी है। वेल आज आप एस्केप रूम में कान से चैलेंज में फंसने वाले हैं। मतलब बताओ आप में से कितने लोगों को कैंडीज खाना पसंद है, या बचपन में आपको पसंद था, या कभी मन करता है कि हम उस बचपने में लौट जाएं। अगर ऐसी फीलिंग्स अंदर आ रही हैं तो आज का जो एपिसोड है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। यस 666-22-107 ये हमारा नंबर है, इसे याद कर लीजिए क्योंकि इसके ज़रिए ही आपकी मेरी बातचीत होती रहेगी। तो आज का जो एपिसोड होगा वो होगा द मैजिक कैंडी शॉप। तो बस थोड़ी सी मिठास में खोएंगे, कुछ ही देर के बाद आज का चैलेंज आपके सामने आएगा, लेकिन अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक टू जस्ट लूजन अप, अपने माइंड को फ्रेश कीजिए और फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी मेरी मुलाकात यहीं होने वाली है। तो कहीं ना जाए, बने रहे और एफएम

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: एब्सोल्यूट सिनेमा।
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद RJ सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: तो यस माय देसी ऑडियंस, वेलकम वंस अगेन। मैं हूं आपकी एफ और अमिता। एस्केप रूम की शुरुआत हो चुकी है और आज का चैलेंज क्या होने वाला है? तो देखो, आज वीकेंड है और मैंने सोचा कि आज के दिन ना थोड़ा सा लाइट चैलेंज रखते हैं, थोड़ा मीठा मीठा चैलेंज रखते हैं। एग्जैक्टली। तो आज क्या किया? आज आप तसव्वुर कीजिए कि आप काम वगैरह से बिल्कुल फारिग होके, फ्री होके अपने घर के लिए निकल चुके हैं। आपके घर के रास्ते में एक कोने में एक बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी मैजिक कैंडी शॉप है। हाँ, ये इस दुकान का नाम है और आपको ये बड़ी प्यारी लग रही है ये शॉप। आप रुक गए थोड़ी देर के लिए, आपने कहा चलो जाके ना देखें क्या इसमें नया है, कौन कौन सी कैंडीज हैं, और आपने इस दुकान के अंदर कदम रखा। पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि दरवाजा गायब हो गया। उफ, यू आर ट्रैप्ड। ये दुकान जिंदा है जनाब। चॉकलेट बार्स अपने रैपर्स को पंख बनाकर छत पर उड़ रहे हैं। जार्स में रखे लॉलीपॉप्स खुशी से गाने गुनगुना रहे हैं। हवा में स्ट्रॉबेरीज और वेनिला की खुशबू। आपको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, मतलब इस सिचुएशन को देख के हमें खुश होना चाहिए या डर जाना चाहिए?

वेल आज तो आप ट्रैप हो चुके हैं, आपको पता है, लेकिन इस जगह से जल्दी निकलना पड़ेगा, ठीक है? ना ही आप कैंडीज खरीद सकते हैं, ना कैंडीज खा सकते हैं, और अगर यहाँ से नहीं निकले तो जिंजर ब्रेड पर्सन बन के रह जाएंगे। देखो ये जो तिलस्म है ना, ये जो मैजिक, इससे बाहर निकलने के बस कुछ ही रास्ते हैं, और वो कुछ रास्ते क्या है कि तीन कमाल की पहेलियों को आपको सुलझाना होगा। मतलब आप दुकान के पीछे वाले हिस्से की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आपने कहा कि चलो भैया भाग जाएं, कुछ तो हो मतलब, लेकिन चैलेंज तो चैलेंज है, आप नहीं भाग पा रहे। गेट के सामने आके आप रुक गए एकदम अटेंशन में, क्यों? क्योंकि एक तरह की कैंडीज की फौज ने आपका रास्ता रोक दिया है। वो आपको तब तक आगे नहीं जाने देंगे जब तक आप उनका नाम नहीं बताते। सो हियर कम्स योर क्लू नंबर वन। मैं एक सख्त गोल कैंडी हूं जो एक छोटी सी स्टिक के ऊपर बैठी होती है, या यूं कहें लगी होती है। आप स्टिक पकड़ के मुझे तब तक खाते हैं जब तक मैं खत्म नहीं हो जाती हूं। बताएं मेरा नाम क्या है? लेट मी टेल यू कि ये वो कैंडी है कि हर एक छोटे बच्चे की फेवरेट है। मतलब मैं खुद अपने बचपन में आई यूज्ड टू जस्ट लव दैट। यस, सो आई रिपीट अगेन, मैं एक सख्त गोल कैंडी हूँ, कई रंग में आती है वो, ठीक है, जो एक छोटी सी स्टिक के ऊपर बैठी होती है और आप स्टिक पकड़ के मुझे खाते हैं और तब तक खाते जब तक मैं खत्म नहीं हो जाती हूँ। मेरा नाम क्या है? कम ऑन, गिव द राइट आंसर 666-22-107 पर, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ। लेट्स सी कि क्लू नंबर वन आप में से कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। और सोचने के लिए आपको मैं एक म्यूजिकल ब्रेक देती हूँ, सो अपने माइंड को क्लियर कीजिए और जवाब दीजिए। बने रहिए FM 107 पर, दिल से देसी।

Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखिए.
1: Yes, welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता. और कैसा लगा आपको ये शानदार गानों का सिलसिला जो अभी अभी आपने एंजॉय किया? देखो, अब थोड़ा सा ये एंजॉयमेंट खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि हम एस्केप रूम के चैलेंज में हैं. लेकिन आज का जो चैलेंज है वो बड़ा मीठा मीठा सा है. यस क्योंकि आज हम कैद हो गए एक मैजिकल सी कैंडी शॉप में. देखो, यहाँ पर जब हम आए और एकदम से दरवाज़ा जो था, जिस दरवाजे से हमने एंट्री ली, पलट के देखा तो दरवाज़ा ही गायब. अब यहाँ पर जो चॉकलेट बार्स हैं, लॉलीपॉप्स हैं, अलग अलग तरह की कैंडीज़ हैं, अब ये हमें ना थोड़ा परेशान कर रही हैं, हमारे रास्ते रोक रही हैं. वैसे आपने पीछे की तरफ से भागना शुरू किया. आपने कहा कि चलो पीछे का दरवाज़ा जाके देखते हैं, और आपने भागने की कोशिश की तो एक तरह की कैंडीज़ ने, उसकी पूरी फौज ने आकर आपका रास्ता रोक लिया. और ये तब तक आपको आगे नहीं जाने देने वाली है जब तक आप इस पर्टिकुलर कैंडीज़ का नाम नहीं बताते. तो क्लू नंबर वन आपके लिए कि मैं एक सख्त गोल कैंडी हूँ जो एक छोटी सी स्टिक के ऊपर बैठती है. आप स्टिक पकड़ के मुझे खाते हैं, तब तक खाते हैं जब तक मैं खत्म नहीं हो जाती हूँ. तो मेरा नाम क्या है? वेल, यहाँ पर एक ही नाम है एंड द नेम इज लॉली पॉप. आई कैन सी ऑन माई स्क्रीन सबने अपने अपने इमेजिनेटिव नाम दिए हैं, बट येस द राइट आंसर इज लॉली पॉप. तो जिन्होंने भी ये जवाब दिया है वो अपनी पीठ को थपथपाएंगे. क्लू नंबर वन आपने सॉल्व कर लिया है, दैट्स फैंटास्टिक. आइए देखें जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिए. उनके नाम हैं अनवर, रहीम, असलम, मोहम्मद यूसुफ खान, रमेश, तुफैल, अहमद और आरिफ अंसारी. क्या बात है.

आप सभी ने सही जवाब देकर क्लू नंबर वन सॉल्व कर लिया है। तो लॉलीपॉप्स, ये जो पूरी कैंडीज की फौज थी, वो रास्ते से हट गई। लेकिन जो गेट आपको दिख रहा है, आप अभी भी उसके पास नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। अब उड़ने वाली एक कैंडी बार्स का एक पूरा झुंड दूर से सीधा आपकी तरफ फोर्सफुली आ रहा है। अब आप उसे देख के डर रहे हैं कि भाई अगर ये आके सीधा मेरे सर पे पड़ गया ना, तो मतलब मैं बेहोश हो जाऊंगा। तो क्या करना है, उन्हें जमीन पर उतारने के लिए आपको बताना होगा कि वो किस चीज से बनी है। एंड क्लू नंबर टू ये रहा, मैं मीठी हूं, ब्राउन हूं और आपके मुंह में घुल जाती हूं। मैं बीन्स से बनी होती हूं और अक्सर एक सिल्वर रैपर में लिपटी होती हूं। बताएं मैं क्या हूं? ओके, सो मैं फिर से रिपीट करना चाहती हूं कि एक उड़ने वाली कैंडी बार्स एक तरह की कैंडी है। ये सारी की सारी फौज अब आपकी तरफ सीधा उड़ते हुए आ रही है कि आपको अटैक करेगी, ठीक है? और ये किस चीज से बनी है, हमको ये गैस करना है। सो क्लू नंबर टू ये है कि मैं मीठी हूँ, ब्राउन हूँ और आपके मुंह में घुल जाती हूँ। मैं बीन से बनी होती हूँ और अक्सर एक सिल्वर रैपर में लिपटी होती हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? कम ऑन, सोच तो लिया होगा आपने। नहीं सोचा तो सोचिए जल्दी से। 666-22-107, 666-22-107 इज आर नंबर। उस पर अपना जवाब दीजिए अपने नाम के साथ। एंड लेट मी सी कि आज एस्केप रूम का ये जो सेकंड चैलेंज है ना, ये आप पार कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ रुक करते हैं और मैं जाके थोड़ा सा अपनी करक का इंतजाम कर लेती हूँ। अरिजीत सिंह की आवाज में बड़ा ही शानदार गाना है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। इंजॉय इट। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: एस्केप रूम का सेकंड हाफ शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के 2:02, यानी अब आपको विश करना है कि जल्द से जल्द आप इस कैंडी मैजिकल कैंडी शॉप से आजाद हो पाए।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: तो यस माय देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है? तो कैसा लग रहा है एक मैजिकल कैंडी शॉप के अंदर जहाँ पर आप कुछ खा नहीं सकते, मतलब एक से बढ़कर एक चॉकलेट्स है, रंग बिरंगी कैंडीज है, लेकिन सब जिंदा है। यही थोड़ा अफसोस है। वेल, आपने इस कैंडी शॉप में जब एंट्री मारी तो जो पीछे का दरवाज़ा था, मतलब जो एंट्रेंस था बेसिकली, आप जब पीछे मुड़ के देखा आपने तो वो एंट्रेंस ही गायब हो गया। और फिर आपने देखा कि कहीं दूर दरवाज़ा है, आपने भागने की कोशिश की तो कुछ कैंडीज ने आपका रास्ता रोक लिया। अब यहाँ पर क्लू नंबर 1 आपने सॉल्व किया, सही जवाब था लॉलीपॉप। और क्लू नंबर 2 आपको सॉल्व करना था और वो ये था कि मैं मीठी हूँ, ब्राउन हूँ और आपके मुंह में घुल जाती हूँ, मैं बीन से बनी हूँ और अक्सर एक सिल्वर रैपर में लिपटी होती हूँ। ये क्या चीज़ है? क्योंकि एक कैंडीज का जो झुंड है, कैंडी बार्स जो है, वो आप पर अटैक करने वाली है, तो ये बनी किससे, ये हमको बताना है। तो जवाब क्या है हमें, कुछ लोग ने लिखा है कॉफी, कुछ ने लिखा है शुगर, कुछ ने लिखा है चॉकलेट। वेल, सही जवाब है चॉकलेट्स। क्या बात है भाई, चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट इज द राइट आंसर। और जिन्होंने भी ये पहचान लिया है ना भाई, आप समझ में आ रहा है कि बड़े चॉकलेट प्रेमी रहे हैं, आपने खूब खाई है बचपन में चॉकलेट्स। हाँ, फैंटास्टिक, पीठ थपथपाओ, क्लू नंबर 2 सॉल्व कर लिया है। और जिन्होंने सबसे पहले क्लू नंबर 2 सॉल्व किया है, आइए जरा उनके नामों की तरफ रुख किया जाए। तो ये हैं हमारे वन ऑफ द रेगुलर लिसनर मोहम्मद यूसुफ खान, इन्होंने सही जवाब दिया। तुफैल ने भी सही जवाब दिया है, आरिफ साहब ने भी सही जवाब दिया, मोहम्मद मुशीर आलम ने भी सही जवाब दिया है, रहीम असलम, अनवर ने भी सही जवाब दे दिया है। क्या बात है, अब ये सब देखने के बाद तो समझ में आ रहा है कि इस कैंडी शॉप से हो सकता है आप बाहर निकल जाएं, एस्केप कर पाए। वेल, 2 क्लूज आपने सॉल्व कर लिए। अब आपके सामने एक सफ़ेद चीनी या यूँ कहे शुगर से बना एक विशाल दरवाज़ा अपियर हो गया है, ठीक है, वो दिख रहा है आपको, मगर उसमें हैंडल ही नहीं है। अरे रे रे रे, खोलेंगे कैसे? उसके पास एक लाल और सफ़ेद धारियों वाली स्टिक रखी है। अब ये चीज़ समझनी पड़ेगी हमको। चलो आओ, क्लू नंबर 3 अब आपकी आंखों के सामने आ चुका है। क्या है ये क्लू नंबर 3, देखते हैं। मैं एक सख्त कैंडी हूँ जिसकी शक्ल एक वॉकिंग स्टिक जैसी होती है, ओके? मुझ पर रेड और वाइट स्ट्राइप्स हैं और मेरा टेस्ट ठंडा पेपरमेंट जैसा होता है। मैं क्या हूँ, मेरा नाम क्या है? गाइस, थिंक अबाउट इट, ये कौन सी कैंडी है जो एक वॉकिंग स्टिक की तरह होती है, रेड एंड वाइट कलर इसमें मिक्स होता है, स्ट्राइप्स होती हैं, इस कैंडी का नाम क्या है? सोचो, कम ऑन, सोचो और इसका सही जवाब दो मुझे 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ, ताकि आज के इस मैजिकल कैंडी शॉप से आप एस्केप कर पाओ, वरना इतनी मिठास एक दिन में बड़ी मुश्किल हो जाएगी, वो भी आप कह दो किसी मैजिकल शॉप में, बाहर नहीं निकलोगे तो वीकेंड का मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए और आपको सोचने के लिए मैं एक बेहतरीन सा म्यूजिकल ब्रेक देती हूँ। सो कमिंग अप सॉन्ग इज, इस गाने को तो कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, लेट्स इंजॉय पूरे वॉल्यूम के साथ, स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
1: यस माय देसी ऑडियंस, वेलकम वंस अगेन ऑन एफएम 107. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता. और एस्केप रूम का आज जो चैलेंज है बड़ा कमाल का है, बड़ा मीठा मीठा है. और मुझे लग रहा है कि हमारे लिसनर्स पहले दो क्लूज में धड़धड़ा के उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है, अब तीसरे क्लू को सॉल्व करने के लिए थोड़ा परेशान हो रहे हैं, अलग अलग तरह के नाम सजेस्ट कर रहे हैं. चलिए सिचुएशन की तरफ फिर से चलते हैं. आज आप एक मैजिकल कैंडी शॉप के अंदर कैद हो गए हैं, ठीक है. आप यहाँ से निकलना चाहते हैं तो एक एक करके आपको सारे क्लूज सॉल्व करने पड़ेंगे. पहला क्लू आपके सामने आया, आपने सॉल्व किया, उसका सही जवाब था लॉलीपॉप. दूसरा क्लू, उसका भी सही जवाब दिया, दैट वॉज चॉकलेट. और तीसरा क्लू, हाँ, जब आपने चॉकलेट कहा तो आपके सामने एक सफ़ेद चीनी से बना एक विशाल दरवाज़ा आया, मगर उसमें हैंडल ही नहीं है. अब क्या किया जाए? अब उसके पास एक लाल और सफ़ेद धारियों वाली यानी स्ट्राइप्स वाली स्टिक रखी है. क्लू नंबर 3 आपके सामने आया, मैं एक सख्त कैंडी हूँ जिसकी शक्ल एक वॉकिंग स्टिक जैसी होती है. मुझ पर रेड और वाइट स्ट्राइप्स हैं और मेरा जो जायका होता है वो ठंडा होता है, बिल्कुल पेपरमेंट जैसा. मैं क्या हूँ? जैसे मेरे व्हाट्सएप स्क्रीन पर जवाब आए हैं, मुझे लगता है कि मुझे इस सवाल को थोड़ा और आसान करना पड़ेगा, ठीक है. तो अब ध्यान से सुने क्लू नंबर 3 एक बार फिर से, फिर मैं आपको इसके और इसको आसान करने के लिए हिंट भी दूंगी, ठीक है. मैं एक सख्त कैंडी हूँ जिसकी शक्ल एक वॉकिंग स्टिक जैसी है. मतलब कौन सी कैंडी है? कम ऑन, थिंक अबाउट इट. ये बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है. एक ऐसी कैंडी जो वॉकिंग स्टिक के जैसे है, रेड और वाइट स्ट्राइप्स वाली है, जायका पेपरमिंट जैसा है. चले ठीक है, बताएं इन तीनों में से इसका नाम क्या है. कैंडी केन, कैंडी कोन, कैंडी स्टिक, ठीक है. अब ये तीन ऑप्शंस दे दिए, अब इसमें से कोई एक चुन लो. 666-22107, 666-22107, इस पर अपने नाम के साथ सही जवाब हमें मैसेज कर दो और इस आखिरी पड़ाव को पार कर लो. एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, कैंडी केन, कैंडी कोन, कैंडी स्टिक, इन तीनों में से सही जवाब क्या हो सकता है? सोचो सोचो. और सोचने के लिए आपको दे रही हूं मैं एक म्यूजिकल ब्रेक. इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगी और देखते हैं कि आप में से कितने लोग आज इस मैजिकल कैंडी शॉप से एस्केप कर पाते हैं. स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107.

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है।

इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ, संडे से थर्सडे, ओनली ऑन FM 107। दिल से

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: यस, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और आज एस्केप रूम का चैलेंज भाई बड़ा कमाल का है, बड़ा स्वीट स्वीट सा है, लेकिन इस स्वीटनेस से आप बाहर निकल पाएंगे या नहीं? हाँ, बोले एक मैजिकल कैंडी शॉप में आज आप कैद हो गए हैं और यहाँ से निकलने के लिए तीन क्लूज आपको सॉल्व करने हैं। पहले क्लू का जवाब आपने दे दिया लॉलीपॉप, दूसरे क्लू को भी आपने सॉल्व किया चॉकलेट, और जब आपने दूसरा क्लू सॉल्व किया तो आपके सामने एक सफ़ेद चीनी या यूं कहें शुगर से बना एक बहुत बड़ा दरवाज़ा आ गया। ठीक है, उसमें हैंडल नहीं है। अब उसके पास एक लाल एंड सफ़ेद धारियों वाली स्टिक रखी है और यहीं पर आपका क्लू नंबर 3 आया। मैं एक सख्त कैंडी हूँ जिसकी शक्ल एक वॉकिंग स्टिक जैसी है, मुझ पर रेड और वाइट स्ट्राइप्स हैं और मेरा जायका जो है वो पेपरमेंट जैसा है। कम ऑन, मेरा नाम बताइए। और नाम क्या है? ये तीन नाम में से कोई एक है, कैंडी केन, कैंडी कोन, कैंडी स्टिक। एंड इफ आई सी ऑन माई स्क्रीन तो क्या जवाब मुझे मिले हैं? ज्यादातर लोगों ने कैंडी स्टिक लिखा है, उसके बाद कैंडी कोन और उसके बाद कैंडी केन। ऑलराइट, चलिए आपको अब सही जवाब बता ही देते हैं। तो सही जवाब है कैंडी केन। तो जिन्होंने भी सही जवाब दिया भाई मुस्कुरा दो फटाक से, क्योंकि आपने फाइनली इस मैजिकल कैंडी शॉप से एस्केप कर लिया है। तो कैसा लग रहा है कि अब फाइनली इस मिठास से निकलकर अब ये वीकेंड आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर पाओगे इस मीठे मीठे वीकेंड को? हाँ, वैसे कहते हैं ना कि जिंदगी की मिठास वही है जहाँ पर अपने साथ हो। हाँ, पर इसी बात पे आपको बता दें कि जिन्होंने कैंडी केन सबसे पहले कहा उनके नाम है यहाँ पर रहीम, ठीक है, अनवर, असलम, फैज और आरिफ। हाँ, कुछ ही हमारे लिसनर्स थे जिन्होंने सही जवाब दिया और इसी के साथ आज के लकी विनर कौन होंगे? हाँ भाई, हाँ ये बताना तो ज़रूरी है, जिन्होंने स्वीटनेस से अपने आप को बचाकर एस्केप कर लिया है तो उनका नाम है अनवर। भाई मुबारका मुबारका, कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया, कंग्रेचुलेशंस। आज के एस्केप रूम के आप लकी विनर हैं, मज़ा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी शिद्दत से हमारे साथ नॉन स्टॉप बने रहने के लिए, और हमारे सारे लिसनर्स जो हमेशा हमारे साथ जुड़ जाते हैं एस्केप रूम की शान को बढ़ाने के लिए, आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया। वेल, ऑन दिस नोट मैं कहूँगी भाई देखो वक्त हो गया मेरे जाने का, जाना होगा, अब आपकी मेरी मुलाकात होगी दो दिन के बाद। सीधा हम मिलेंगे अब संडे को दोपहर 1:30 बजे एस्केप रूम के एक नए चैलेंज के साथ। हाँ, लेकिन वो इतना मीठा नहीं होने वाला है, थोड़ा चैलेंजिंग ही होगा। तो अपने दिमाग को लगाने के लिए शुरू हो जाइएगा, बिल्कुल तैयार हो जाइएगा, और अभी के लिए अपना वीकेंड एंजॉय करें, गर्मी से थोड़ा बचाव करते रहें और मुझे दे दीजिए इजाज़त। और जाते जाते भाई ये कहना तो बनता है, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। और म्यूजिक भाई जो आपका रेडियो है ना उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, बहुत शानदार गाने आपके लिए लगा रखे हैं। स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम साथियों एंड वेलकम बैक टू इको स्विच विद सफा, जहां हम बात करते हैं उन हिडन एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स की जो हमारी डेली लाइफ की हैबिट्स से जुड़ी हुई होती हैं। भाई आज का टॉपिक एफएम 107 पर ये है कि रिड्यूसिंग ऑनलाइन पैकेजिंग वेस्ट, यानी जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसके साथ जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस, प्लास्टिक रैप्स, बबल रैप्स और फिलर्स आते हैं ना, उनको कैसे कम किया जाए। साथियों ऑनलाइन शॉपिंग कन्वीनियंस का सिंबल तो बन चुका है, लेकिन इस कन्वीनियंस के पीछे एक ग्रोइंग एनवायरमेंटल चैलेंज छुपा हुआ है। अब जरा सोचिए, आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है, सिर्फ एक फोन चार्जर ऑर्डर किया, डिलीवरी आती है और आपको एक मीडियम साइज बॉक्स मिलता है जिसमें चार्जर के साथ एक्स्ट्रा प्लास्टिक रैप, बबल रैप और फिलर्स होते हैं। आप सोचते हैं कि भाई सिर्फ एक छोटी सी चीज ही तो है, क्या ही जाएगा। या कभी कभी आप ये भी सोचते हैं कि भाई इतनी छोटी सी चीज के लिए इतनी सारी पैकेजिंग क्यों। देखें, इको स्विच यहाँ हमें बताता है कि लॉजिस्टिक्स कंपनीज कभी कभार आइटम्स को डैमेज से बचाने के लिए एक्स्ट्रा पैकेजिंग यूज करती हैं, लेकिन इसका रिजल्ट अननेसेसरी वेस्ट होता है। साथियों एक एस्टिमेट के मुताबिक ऑनलाइन शॉपिंग पैकेजिंग ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट का 15% तक कॉन्ट्रीब्यूट करती है, और वो भी इन अर्बन एरियाज में। अच्छा चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताती हूँ जो आपको शॉक कर देंगे। देखिए हर साल ग्लोबली बिलियंस ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरीज के लिए यूज होते हैं। एक एवरेज ऑनलाइन ऑर्डर 3 layers ऑफ पैकेजिंग जनरेट कर सकता है, आउटर बॉक्स, इनर रैप और प्रोटेक्टिव फिलर्स। बबल रैप्स को डिग्रेड होने में 100 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं साथियों। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीक सेल सीजन, जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई व्हाइट फ्राइडे या कोई फेस्टिव सीजन हो गया, उसमें पैकेजिंग वेस्ट 30-40% तक

0: स्पाइक कर जाता है। साथियों, यहाँ इको स्विच का आइडिया बड़ा सिंपल सा है। ऑनलाइन शॉपिंग को बंद नहीं करना बल्कि स्मार्टर बनाना है। जब हम पैकेजिंग अवेयर चॉइसेस लेते हैं तो हम वेस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ ई कॉमर्स कंपनीज अब मिनिमल पैकेजिंग ऑप्शन ऑफर करती हैं, जहां एक्स्ट्रा रैपिंग अवॉइड की जाती है। साथियों, एक स्टडी के मुताबिक अगर 1 मिलियन यूजर्स इको पैकेजिंग प्रेफरेंस सेलेक्ट करें तो थाउजेंड्स ऑफ टन्स प्लास्टिक और पेपर वेस्ट अवॉइड किया जा सकता है एनुअली। अच्छा, जरा सोचिए, एक हाउसहोल्ड में डेली 1 to 2 ऑनलाइन डिलीवरीज होती हैं, ग्रोसरीज, कपड़े या गैजेट्स। हर डिलीवरी के बाद बॉक्सेस क्या होते हैं, स्टोर रूम में जमा हो जाते हैं या आप कचरे में फेंक दिए जाते हैं। कुछ रिसाइकल होते हैं लेकिन बहुत सारे डायरेक्ट वेस्ट बिन में चले जाते हैं। इको स्विच के प्रस्पेक्टिव से ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हर ऑर्डर के साथ आप अपने घर में एक टेम्पररी लैंडफिल कॉर्नर बना रहे हो। चलिए साथियों, अब वक्त आ गया है कुछ प्रैक्टिकल टिप्स का। अब कुछ सिंपल इको स्विच टिप्स जो हर ऑनलाइन शॉपर फॉलो कर सकता है बहुत आसानी से। पहला, मिनिमल पैकेजिंग या इको पैकेजिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें जब भी अवेलेबल हो। दूसरा, मल्टीपल स्मॉल ऑर्डर्स के बजाय कंबाइंड ऑर्डर प्लेस करें। तीसरा, कार्डबोर्ड बॉक्सेस को रीयूज करें स्टोरेज या DIY पर्पसेस के लिए। चौथा, बबल रैप को प्लास्टिक फिलर्स को रिसाइकल करें जहां पॉसिबल हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोकल सेलर से परचेज करें ताकि शिपिंग डिस्टेंस और पैकेजिंग दोनों रिड्यूस हो। साथियों, इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग को स्लो और माइंडफुल बनाना। जब हम ऑर्डर प्लेस करते वक्त पैकेजिंग को कंसिडर करते हैं ना, तो हम अपने कंजम्पशन बिहेवियर को रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जो लोग इको शिपिंग ऑप्शंस चूज करते हैं वो ओवरऑल लेस इम्पल्सिव शॉपिंग भी करते हैं। मतलब अवेयरनेस स्पेंडिंग हैबिट्स को भी कंट्रोल करती है। आखिर में भाई, इको स्विच का सिंपल सा मैसेज है और वो ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग कन्वीनियंस जरूर है लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हर बॉक्स जो हम रिसाइकल या अवॉइड करते हैं वो एनवायरमेंट के लिए एक पॉजिटिव स्टेप होता है। तो भाई, अगली बार जब आप प्लेस ऑर्डर बटन दबाने लगे ना, तो एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन कर लीजिएगा अपने दिमाग में। डू आई रियली नीड दिस मच ऑफ पैकेजिंग। इसी के साथ साथियों, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107 कतर, जहाँ हर डिलीवरी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक एनवायरमेंटल चॉइस भी होती है।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज हम बात करेंगे फजूल खर्ची से बचने की अहमियत के बारे में। इस्लाम हमें एतदाल का दर्ज देता है, यानी हर काम में बैलेंस रखना। फजूल खर्ची ऐसी आदत है जो ना सिर्फ माल का ज़िया करती है बल्कि इंसान को गफलत की तरफ भी ले जाती है। अक्सर हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं या ऐसी जगहों पर पैसा खर्च कर देते हैं जहां उसकी असल में ज़रूरत नहीं होती। ये रवैया धीरे धीरे आदत बन जाता है और फिर इंसान को महसूस होता है कि बरकत कम हो गई है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपनी रिसोर्सेज को समझदारी से यूज़ करें और उन लोगों का भी ख्याल रखें जो मुश्किल में हैं। आज का अमल यह है कि अपने खर्चों का जायज़ा लें और कोशिश करें कि सिर्फ ज़्यादा ज़रूरी जगह पर ही पैसा यूज़ करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश, फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी। One step to
2: 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One step to 2030.
2: आज वन स्टेप 2030 यानी फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें जो है वो डोमिनेट करेंगी, किस तरह से हमें अभी से खुद को जो है वो प्रिपेयर करना है 2030 और उसके आगे के लिए, तो बस उसी हवाले से हमारा ये सेगमेंट खास है जहां हम आपके साथ नए फ्यूचरिस्टिक टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और आज मैं बात करने वाली हूँ पर्टिकुलरली क्लाउड सीडिंग पे। क्लाउड सीडिंग है क्या, कैसे काम करता है और कैसे आपको और हमें इसके बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है। देखिए, क्लाउड सीडिंग एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसका यूज़ बारिश को बढ़ाने या फिर कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी उन एरियाज में बड़ी यूजफुल होती है जहां पानी की कमी होती है या जहां ज्यादा बारिश की जरूरत होती है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए। तो आइए हम इसे समझते हैं कि ये है क्या। क्लाउड सीडिंग का मतलब है बादलों में कुछ स्पेशल पार्टिकल्स या फिर केमिकल्स डालकर बारिश को ट्रिगर करना या इंक्रीज करना। और आसान लफ्जों में अगर मैं आपको समझाऊं तो क्लाउड्स में ऑलरेडी पानी के छोटे छोटे कतरे, ड्रॉपलेट्स या फिर आइस पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन कभी कभी ये इतने छोटे छोटे होते हैं कि बारिश की फॉर्म में जमीन तक नहीं गिरते। अब क्लाउड सीडिंग का काम इन ड्रॉपलेट्स को बड़ा बनाना होता है ताकि वो हैवी होकर बारिश की शक्ल में गिर सके। क्लाउड्स का एक नेचुरल प्रोसेस है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नॉर्मल बारिश कैसे होती है। वैसे हमने और आपने ये तो पढ़ रखा है, फिर भी चलिए क्विक रिमाइंडर के तौर पे आपको बताती हूँ कि सन की गर्मी से, तपिश से पानी समंदर हो, दरिया हो, लेक से इवेपोरेट होता है और ये पानी हवा में जाकर वाटर वेपर बन जाता है। ठंडी हवा में ये वेपर कंडेंस होकर क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड्स में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं और जब ये ड्रॉपलेट्स मिलकर बड़े हो जाते हैं तो ग्रेविटी की वजह से खिंचते हैं और नीचे गिरते हैं बारिश की फॉर्म में। कभी कभी ड्रॉपलेट्स इतने छोटे रहते हैं कि वो गिर ही नहीं पाते। यहां क्लाउड सीडिंग का जो रोल है वो स्टार्ट हो जाता है। क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस तीन मेन स्टेप्स पर होता है। सबसे पहले सूटेबल क्लाउड्स का इंतखाब करना। जी हाँ, सूटेबल क्लाउड्स का इंतखाब करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट और जितने भी मेट्रोलॉजिस्ट हैं चेक करते हैं कि कौन सा क्लाउड सीडिंग के लिए सूटेबल है। हर क्लाउड पर सीडिंग काम नहीं करती। वो क्लाउड्स चाहिए होते हैं जहाँ मॉइस्चर यानी पानी की क्वांटिटी मौजूद हो, टेम्परेचर सूटेबल हो। अगर क्लाउड बिल्कुल ड्राई हो तो वहाँ सीडिंग का कोई फायदा नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है केमिकल्स या फिर पार्टिकल्स डालना। इस स्टेप में देखा जाए तो खास केमिकल्स या फिर पार्टिकल्स क्लाउड के अंदर डाले जाते हैं। ये काम यूजुअली प्लेन्स, ड्रोन्स या फिर ग्राउंड बेस्ड मशीन के जरिए होता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है ड्रॉपलेट्स को बड़ा करना। जब ये पार्टिकल्स क्लाउड के अंदर एंटर करते हैं तो पानी के छोटे ड्रॉपलेट्स इनके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन या फिर फ्रीजिंग, यानी पानी के कतरे इन पार्टिकल्स से चिपक जाते हैं। धीरे धीरे ये ड्रॉपलेट्स बड़े हो जाते हैं, फिर हैवी होकर जमीन पर गिरते हैं। यही बारिश होती है। वैसे क्लाउड सीडिंग के कुछ टाइप्स भी हैं। स्टैटिक क्लाउड सीडिंग, इसमें सिल्वर क्रिस्टल एक तरह का यूज किया जाता है जो कि आइस क्रिस्टल बन जाता है। कोल्ड क्लाउड्स में पार्टिकल्स जो है वो डाले जाते हैं, आइस क्रिस्टल्स बनते हैं और क्रिस्टल ग्रो करते हैं और फिर बारिश या फिर स्नो बन जाते हैं। वहीं दूसरा एक तो मैंने आपको बताया स्टैटिक क्लाउड सीडिंग है, दूसरा है डायनेमिक क्लाउड सीडिंग। इस मेथड में पूरे क्लाउड के सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की जाती है। एयर मूवमेंट क्रिएट किया जाता है, ज्यादा क्लाउड ग्रोथ होती है, ज्यादा बारिश जनरेट होती है। तो बस हमने और आपने समझा कि क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। देखिए क्लाउड सीडिंग का यूज कहाँ होता है, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो क्लाउड सीडिंग दुनिया के कई कंट्रीज में यूज किया जाता है। किया भी क्या है, उनके नाम तो क्या ही मैं मेंशन करूँ, लेकिन इन कंट्रीज में उसका फायदा भी हुआ है, कुछ नुकसान भी हुए हैं। बारिश को बढ़ाना जरूरी है क्योंकि कुछ कंट्रीज में सूखा, इसे कंट्रोल करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। स्नोफॉल इंक्रीज करने के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन हर चीज के फायदे और नुकसान तो होते ही होते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो भी हम समझते हैं। क्लाउड सीडिंग एक परफेक्ट सोल्यूशन है नहीं। अल्लाह ताला का जो निज़ाम है उसमें अगर हम अपनी अकल लगा के अपनी चीजें डालेंगे तो कुछ ना कुछ उसका नुकसान तो होगा, हर जगह काम नहीं कर पाता। अगर क्लाउड में मॉइस्चर ही ना हो तो सीडिंग बेकार है। वहीं कभी बारिश होती है कभी नहीं, यहाँ पे रिजल्ट्स जो है वो 100% रिलायबल नहीं होते। और एक और बड़ा ड्रॉबैक जो है वो है ये प्रोसेस अपने आप में बहुत महंगा है। क्लीन्स, केमिकल्स, मॉनिटरिंग, सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव। और एनवायरमेंटल कंसर्न ये तो बढ़ ही रहे, कुछ लोग कहते हैं कि इससे एनवायरमेंट को खतरा बढ़ता चला जा रहा है। और एथिकल और सोशल कंसर्न्स, ये अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है। देखिए फ्यूचर में क्लाउड सीडिंग जो है एडवांस हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है, इस पे काम भी जारी है। बेटर टेक्नोलॉजी यूज होगी, AI और सैटेलाइट से एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करवाई जाएंगी, एनवायरमेंट के इम्पैक्ट को भी कम किया जाएगा। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि इसको किस तरह से सेफली और इफेक्टिव इसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि क्लाउड सीडिंग एक इंटरेस्टिंग और पावरफुल टेक्निक तो है जिसमें इंसान क्लाउड्स को यूज करके बारिश को बढ़ाने की कोशिश करता है। ये प्रोसेस नेचुरल सिस्टम को सपोर्ट भी करता है, लेकिन इसको कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसको अगर हम समझें तो क्लाउड्स जो है या जो अल्लाह ताला ने टेक्निक और टेक्नोलॉजी हमारे लिए रखी है उसके खिलाफ जाके कुछ हम अलग से करने की कोशिश करें, पता नहीं उसका किस हद तक फायदा होगा। अगर सही प्लानिंग और रिसर्च के साथ किया जाए तो शायद क्लाउड सीडिंग दुनिया की वाटर प्रॉब्लम जो आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगी उसे सॉल्व करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ना। बस यही लाइन जो है वो मुझे थोड़ी सी तसल्ली देती है। फिलहाल इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज करते हैं, वापस आएंगे कल तो एक और नए फ्यूचरिस्टिक टॉपिक पे बात करेंगे। आप सुन रहे थे सेगमेंट वन स्टेप टू 2030। यहाँ पर 2030 से आगे की भी तैयारी जारी है। कोशिश ये है कि आप और हम मिलकर फ्यूचर को जो है वो समझ तो नहीं सकते, प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ खुद को फ्यूचर के लिए तैयार जरूर कर सकते हैं। तो बस ये तैयारी अभी वर्बली है, फिर आने वाले टाइम में थोड़ा सा और डिटेल में, और फिर आने वाले टाइम में इसे अडॉप्ट कैसे करना है इस पर भी बात होगी। फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
3: One step to 2030.
4: आप सुन रहे हैं FM 107
3: FM 107
0: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। आज हम जिल्द यानी स्किन की सेहत और रोजमर्रा देखभाल के आसान तरीकों पर बात करेंगे, क्योंकि सेहतमंद स्किन ना सिर्फ खूबसूरती के लिए बल्कि बीमारी से बचाव के लिए भी बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि हमें जो सनस्क्रीन है वो रोज़ाना इस्तेमाल करनी है, और SPF 30+ आप अगर इस्तेमाल करें तो वो बेहतर होगा। इसी तरह से जो सनलाइट है यानी आप जैसे बाहर निकलते हैं तो 11 बजे से 3 बजे का जो टाइम है यानी 11 AM to 3 PM आप अवॉइड कीजिए कि इस पूरे पीरियड में आप कम से कम सन सूरज में निकलें। इसी तरह से जो प्रोटेक्टिव लिबास है और हेड्स हैं वो आप इस्तेमाल कीजिए, और हाइड्रेशन अपनी स्किन की बहुत ज़रूरी है। इसमें माइल्ड जो क्लिनजर हैं वो आप यूज़ कीजिए, क्योंकि क्लीनिंग भी डेली आपको मस्ट करनी है। मॉइस्चराइज़र हैं वो डेली यूज़ करना है, और जो पानी है वो एक कम से कम 8 से 10 गिलास आप ज़रूर पीजिए। इसी तरह से जो हॉट शॉवर्स हैं उन्हें आप अवॉइड कर लीजिए। जो डाइट है वो भी बहुत अहम है, उसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, वाइटमिन्स और ऑक्सीडेंट्स उनमें होते हैं, और नट्स जो कि हमारे लिए बहुत अहम भी हैं उसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनसे हम दूर रह सकते हैं। बहुत सारे मसाइल जो स्किन के होते हैं उनसे ओमेगा 3 आपको अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करनी है, उससे जो बाज़ूकात हमारी स्किन जो है उसमें स्वेलिंग महसूस होती है या इन्फ्लेमेशन हो रही होती है तो उसे वो कम करते हैं, और जो ज़्यादा शुगर है एक्सेसिव जो शुगर है उससे दूर रहना है, और इसके साथ साथ जो फ्राइड चीज़ें हैं उन्हें भी आपने कम से कम करना है। और फिर जैसे ही मौसम बदलता है यानी जो सीजनल स्किन केयर हैं वो भी बहुत अहम है। जैसे अगर गर्मी का मौसम है तो उसमें पानी आप ज़्यादा पीजिए, और अगर आपको स्वेटिंग हो रही है तो उसकी मैनेजमेंट बहुत अहम है, और अगर सर्दियां हैं जैसे कि अभी सर्दियां शुरू हो रही हैं और उसमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है और अपनी स्किन को ड्राई नहीं रहने देना। इसी तरह से एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी है, 1 से 2 जो मर्तबा आप एक वीक में आप कर लीजिए। और जो हम ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, जैसे कि ओवर एक्सफोलिएशन कर देते हैं, स्किपिंग सनस्क्रीन की यानी सनस्क्रीन हम इस्तेमाल नहीं करते, कभी कर लेते हैं कभी नहीं, और इसी तरह से जो हार्श केमिकल्स हैं वो अपनी स्किन पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये सब नहीं करना है। और इसी तरह से जो अपना ख़ास ख्याल रखना है अपनी स्किन को बहुत ही खूबसूरत और हेल्दी बनाने के लिए, तो रोज़ाना के जो मामूलात हैं उनमें थोड़ी सी हमें तब्दीलियां करनी है, अपनी डाइट की तरफ ध्यान देना है कि वो बहुत अच्छी हो, और स्किन हमेशा सेहतमंद और फिर बहुत ही चमकदार और खूबसूरत रहेगी। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
3: दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रैवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर यूजर्स,

सीनियर सिटीजंस और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत के बारे में जो ना सिर्फ आसान है बल्कि सेहत के लिए बेहद फायदेमंद भी है, और वो है वॉक या चहलकदमी। बहुत से अफराद सेहतमंद जिंदगी गुजारने का इरादा तो करते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि आगाज कहाँ से करें। अगर हम या आप वर्जिश शुरू करना चाहते हैं तो वॉक या चहलकदमी बेहतरीन इंतखाब है। इसके लिए

0: ना किसी महंगी मेंबरशिप की जरूरत है और ना ही खास सामान की, सिर्फ आरामदेह जूते पहनिए और चलना शुरू कर दीजिए। वॉक करना दिल को मजबूत जो है वो बना देती है, इसी तरह हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रखने में मदद देती है, डायबिटीज या शुगर के खतरे को कम करती है, वजन को मतवाजन रखने में बहुत ही मददगार साबित होती है, और इसी तरह मेंटल हेल्थ जो कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें बेहतरीन एक इंतखाब है वॉक करना, उससे हम ज़हनी तौर पर जो ज़हनी दबाव होता है उसे कम करने में मदद मिलती है। रेगुलर वॉक नींद को बेहतर बनाने और हमारे जिस्म में तवानाई बढ़ाने में भी मददगार है, और अगर आपने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की तो एकदम ज़्यादा चलने की कोशिश ना कीजिए, आप इब्तिदा में सिर्फ 5 से 10 मिनट की वॉक कीजिए। हमारा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता किसी भी चीज़ का आदी होता है, तो जिस्म को नए मामूल का आदी होने में वक्त आप दीजिए। चंद दिन के बाद आप 15 मिनट तक अपनी वॉक जो है वो बढ़ा दीजिए, और इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता 30 मिनट रोज़ाना तक ले जाइए। वॉक के लिए ऐसा वक्त मुंतखब कीजिए जो आपके रोज़मर्रा मामूल के मुताबिक हो। कुछ अफराद सुबह की ताज़ा हवा में चलना बहुत पसंद करते हैं, जबकि कुछ अफराद शाम को वॉक करने के लिए वक्त निकालते हैं। अहम बात यह है कि आप एक वक्त मुकर्रर कर लीजिए और उस पर मुस्तकिल रहने की कोशिश कीजिए, यानी मुस्तकिल मिजाजी बहुत अहम है। इसी तरह वॉक शुरू करने से पहले हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करना बेहद मुफीद है, इससे हमारे मसल्स जो हैं वो वार्म अप होते हैं, और खुदा नहास्ता चोट कभी लगने का ख़तरा होता है तो चोट लगने का जो ख़तरा है वो कम होता चला जाता है। पानी पीना भी ना भूलिए, ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में, यानी पानी की एक बॉटल अपने पास रखिए, और बिल्कुल सिप्स आप लीजिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी जो है वो आप पी लें, ऐसा नहीं है। याद रखिए कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा कदम ही काफ़ी है, और आज और अभी हमें फैसला करना होगा, और हम फैसला करें और चंद मिनट की वॉक से अपनी सेहत का जो सफ़र है उसे शुरू कर दें।
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

0: FM 107. Time check.
1: हाँ जी, टाइम फॉर द टाइम चेक, एफएम 107 के स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 4:01. क्या है हाल चाल? उम्मीद है कि बेहतरीन होगा. फिलहाल आज का ये शो, यार ये वीकेंड इस बार वाला पता नहीं चला कब आ गया. आज थर्सडे, मुझे बहुत देर बाद

0: रियलाइज हुआ आज थर्सडे है. अरे वाह भाई वाह.
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
0: तो आज तो वो गाना चल जाना चाहिए जुम्मे की रात है बस इतना. मैं इसके आगे वाला मेरा बात मेरी लाइन नहीं है फिलहाल. 4:02 इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का एफएम 107 पे. ये शो द रिक्वेस्ट शो जहां पर आपके अपने मर्जी के गाने चलते हैं और आज है वीकेंड तो आपके अपने मर्जी के गाने तो और भी ज्यादा तगड़े बेहतरीन लाजवाब हो जाने चाहिए क्योंकि आज है तारीख 23. तो आज की थीम भी अलग होगी. वैसे उन लोगों के लिए जिनको पता है तो कोई मसला नहीं लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि ये शो में आपकी अपनी मर्जी के गाने चलते हैं लेकिन कैच है एक कैच ये है कि आपके मर्जी के गाने चलते हैं एक थीम के साथ. हर रोज़ एक थीम होती है जैसे कल शाहरुख थे परसों सलमान थे उससे पहले अलग तो आज भी जो थीम है वो थोड़ी सी अलग है. आज की थीम क्या है. आज है 23 तारीख और 23 तारीख को एक बेहतरीन एक्ट्रेस का जन्मदिन है. अच्छा मैं पूछना चाह रहा था यार मतलब मैं बताना नहीं चाह रहा था किसका बर्थडे है ये आप हमें खुद बताएं एफएम 107 के व्हाट्सएप नंबर पे 666-22-107. अगर आप सच्चे फैन हैं उनके तो आप बता पाएंगे कि आज किसका जन्मदिन है. ठीक है जी बता. चलो हमारा व्हाट्सएप नंबर 666-22-107. फिलहाल ये शो
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
0: अगर पता है तो बताओ नहीं पता है तो कोई मसला नहीं है. ऐसी कौन सी बड़ी चीज है तो आप बताइए कि किस दिन आज 23 जुलाई है किसी किसी बॉलीवुड का बॉलीवुड स्टार का जन्मदिन है क्या. तो अगर ऐसा हुआ तो अपन सेलिब्रेट करेंगे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं. अब ये इसके लिए होना चाहिए यार वो क्या कहते हैं उसे बड़ा वाला फैन भी होना चाहिए. फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ लेते हैं धीरे से हल्के से. 4:04 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और ये मैसेज है सलाम वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई क्या नाम है यूसुफ भाई का मैसेज है. हैप्पी थर्सडे इवनिंग. हैप्पी थर्सडे इवनिंग. आप फैन हैं या फिर आपने वो किया है जो करने से लोगों को जवाब मिल जाता है. रिसर्च किया है क्या. वैसे तो बहुत सारे हिट्स हैं मैं 3 सॉन्ग लिख रहा हूँ 1, 2, 3. ठीक है यूसुफ भाई इनमें से हम छानबीन कर लेंगे. अस्सलाम वालेकुम फजील भाई. वालेकुम अस्सलाम अजहर कैसे हैं. हैप्पी वीकेंड आपको भी. वीकेंड की बहुत मुबारकबाद भाई. तू ना जा मेरे बादशाह एक एक वादा तोड़ के. ओफो उस्मान और अक्सई साहब. तू ना जा मेरे बादशाह एक वादा. अरे यार इतने दर्द छुपा रखे हैं उस्मान साहब. सलाम अलैकुम. खुदा गवाह का ये सॉन्ग रिक्वेस्ट किया लेकिन माजरत के साथ आज की थीम जो है उसी पर हम आएंगे. एमडी हुसैन ने बिल्कुल सही जवाब बताया कि किसका बर्थडे है और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम भाईजान गुड इवनिंग कैसे हैं मैं बहुत अच्छा हूँ. और इन्होंने बताया है इकबाल ने बिल्कुल सही जवाब बताया है. सलाम भाई कैसे हो मैं बहुत अच्छा हूँ. मोहम्मद आप कैसे हैं. वैसे मैंने एक चलो अब बता देते हैं क्योंकि लोग सही जवाब बताने लग गए हैं. अजहर ने भी बिल्कुल सही जवाब बताया. यूसुफ भाई ने कहा है कि सर्च नहीं किया मुझे पता था सुबह से सुन रहा हूँ. ओ क्या बात है सही है. हाँ तो मतलब ऑब्वियसली यार बड़े स्टार हैं ये बॉलीवुड स्टार. हिशाम का सलाम है. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. रमेश ने कहा है अरे यार अपना अपने बीवी का बर्थडे भूल जाता हूँ हर साल लड़ाई होती है अब हीरोइन का कहाँ से याद रखूँ. यही मैं बताने जा रहा था कि मैंने थोड़ा सा गुमराह करने के लिए एक्ट्रेस बोला था लेकिन मुझे नहीं पता था लोग स्मार्ट हैं तो लोगों ने सही बताया. आज उस शख्स का है शख्स का मोहतरमा का नहीं है शख्स का बर्थडे है जिन्होंने जब हिट देना शुरू किया तो इतने हिट दिए हैं कि मतलब आप उंगलियों पर गिन नहीं सकते. हाइट थोड़ी सी कम जरूर है टोपी लगा के नाक से जो उन्होंने काम किया है भाई वो लाजवाब रहा है. ओ हुजूर से लेकर आए हाय या सताए तेरे एक से बढ़कर एक गाने चाहे वो सुरूर हो चाहे वो गाना हो सोनिए है ना, उसके अलावा शॉर्टकट रोमियो, एक से बढ़कर एक, समझो ना कुछ तो समझो ना, अरे क्या गाना था यार, एक से बढ़कर एक, लाजवाब। सो आज है हिमेश रेशमिया का जन्मदिन और आज हम उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। और आज जो तारीख है वो है 23 जुलाई, और 23 जुलाई को हिमेश रेशमिया का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे हिमेश रेशमिया, और आपके आज गाने हम सुनाएंगे एफएम 107 के लिसनर्स को और डेडिकेट करेंगे आपको और आपके चाहने वालों को। भाई अच्छा म्यूजिक प्ले करो, क्या बात है मोहम्मद भाई, यही तो सुनना था मुझे कि अच्छा म्यूजिक प्ले करो, कोई कह नहीं रहा था, वरना मैं इतनी मजबूरी थी बुरे गाने प्ले करने की मेरे कि अब मेरी मजबूरी खत्म करिए मोहम्मद भाई, मोहम्मद मोहम्मद भाई अच्छा लगा। फिर उसके बाद हुसैन भाई का मैसेज है, आशिक बनाया से प्रोग्राम का आगाज कर दिया जाए फिर भाई। हुसैन साहब हैं रंगीले हैं जी। सोनिया हीर ये सॉन्ग प्ले करो, ये हिमेश ने गाया, हिशीम कह रहा था मैं, हिमेश ने गाया भी है ये। मोहम्मद उस्मान का मैसेज है, तेरा नाम कंपोज बाय हिमेश, प्लीज उस्मान ने कहा है, प्लीज एक लाइन गा दो इन हिज स्टाइल। ओ हुजूर तेरा तेरा तेरा जोर, मेरी नाक इतनी है नहीं अच्छी वाली, उनकी नाक बहुत बड़ा है भाई, उनने जब गाया है तो आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। चलो तो हम हुसैन भाई की रिक्वेस्ट से शुरू करेंगे। आशिक बनाया आपने, ये गाना मिलना भी चाहिए ना, आशिक बनाया अपनी। तो ये गाना है हमारे पास 6 मिनट का गाना, हेट स्टोरी 4।

और 2018 का एक गाना है, अगर ये वही है तो अपन ये वाला गाना प्ले करेंगे। लेकिन एक आशिक बनाया है जो इसी मूवी का 2005 का ट्रैक है, तो मैं सोच रहा था और नए जमाने का प्ले करें, लेकिन सच बताएं जो असली जान है गाने में वो इस 6 मिनट वाले गाने में है, हिमेश और श्रेया घोषाल की आवाज में। इस गाने को एंजॉय करो। बाकी इस गाने के पीछे आपकी अपने मर्जी के जो गाने हैं मैं वो सर्च कर रहा हूं, थोड़ा सा वक्त लगेगा, और रिक्वेस्ट करते रहिए। नंबर है हमारा 666-22107, 6-6-6-2-2-107।

भाई यहीं तक सही है ये वाला। हावी भी श्रेया घोषाल, हिमेश रेशमिया की आवाज में आशिक बनाया आपने गाना, सुना आपने FM 107 पे। हिमेश भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत बहुत मुबारकबाद, और आशिक को इन्होंने इतना ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया है कि क्या ही बताएं। आशिक के नाम के बहुत गाने इन्होंने गाए। एक और गाना है आशिक में, आशिकी में तेरी, वो भी लाजवाब गाना है, आशिकी में तेरी। ये गाना है हिमेश और सुनिधि चौहान की आवाज़ में, ये भी आ रहा है। और फिर उसके बाद नाम है तेरा, तेरा नाम है तेरा, ये गाना भी बड़ा लाजवाब है, लेकिन सबसे पहले यही आएगा नाम है तेरा तेरा, क्योंकि फिर आशिके का एक गाना तो हो ही चुका है, तो थोड़ा रुक के ये गाना अपन प्ले करेंगे। फिर एक और भाई की रिक्वेस्ट थी, मैं वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन एक्चुअली में वो यही थी, आशिकी में तेरी, उसका एक लाइन इन्होंने बोला था, मैं समझ नहीं पाया था ये कहाँ से गाना गा दिया हिमेश भाई ने, लेकिन अपने को मिल गया लाए। फिर बाकी लोगों की रिक्वेस्ट पे अगर हम बढ़ें या मैसेज पे बढ़ें, तो कहते हैं यासिन भाई कि भाई ये अल्ताफ राजा का बर्थडे कब आ रहा है। भाई जिस दिन अल्ताफ भाई का बर्थडे आएगा भी, तो अपन सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। उनके 8-9 मिनट के गाने में, 3 गाने में अपना शो मुकम्मल हो जाएगा। ये मत करवाओ यार मेरे साथ। बॉडीगार्ड का ये गाना सुनना चाहते हैं, तेरी मेरी प्रेम कहानी। तेरी मेरी प्रेम कहानी बॉडीगार्ड का, ये गाना क्यों सुनना चाहते हैं आप? जहाँ तक मेरा जानना पहचानना है, ये गाना तेरी मेरी हिमेश ने तो नहीं गाया है कि गाया है क्या? अपने को तो नहीं याद आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे तो हिमेश बाबू यार, ये राहत फतेह अली खान साहब का, वही मैं कहूँ यार, कहाँ है हिमेश भाई, किधर आ गए, किस लाइन में आ गए हिमेश भाई? एहसान अली की ये रिक्वेस्ट थी, लेकिन माजरत के साथ। फिलहाल 2 रिक्वेस्ट पे आते हैं। ये पहली रिक्वेस्ट है, नाम है तेरा, ये अबू सिद्रा ने कहा है प्ले करने को।

और दूसरा है यूसुफ भाई की रिक्वेस्ट, आशिकी में तेरी, हाँ आशिकी में तेरी यूसुफ भाई की रिक्वेस्ट। एक रिक्वेस्ट और पूरी हो गई है जाने अनजाने, बहुत देर बाद इन्होंने मैसेज किया था तो मैंने कहा चलो ठीक है, आशिक बनाया ये गाना था, अजहर हुसैनी ने कहा था, लिख कर दिया था, फिर बाद में पता चला ये सुनना नहीं चाह रहा, कुछ और बात कहना चाह रहा जो मैं यहाँ कह नहीं सकता। आलम कहते हैं दिस इज आलम सॉन्ग प्लीज, मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तुझसे करता, अगर ये हेमेश भाई ने गाया होता पक्का मैं प्ले कर देता भाई। राइस कहते हैं ये नाक में गा गा के पूरे दिमाग की दीवा। अरे यार इसमें मेरे पास एक बहुत तगड़ी बात आई थी लेकिन कह नहीं पाऊंगा, कुछ लोग खाना खा रहे होंगे ना, मूड खराब हो जाएगा। बस आप प्ले करते रहो भाईजान, हम कोई रिक्वेस्ट नहीं करेंगे आज। रईस भाई बिल्कुल आज नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनके गाने हैं ही ऐसे, कोई भी बंदा अगर रिक्वेस्ट कर गए तो ऐसा गाना गाता है आदमी या गा के गया है कि मज़ा आ जाए। भाईजान का बर्थडे कब आ रहा है, फजील भाई का बर्थडे कब आता है कब जाता है फजील भाई को कुछ नहीं पता चलता, और फजील भाई एकदम ही सेलिब्रेट नहीं करते, जिस दिन होता है ना उसके एक दिन बाद पता चलता है अरे कल था, ले भाई निकल गया। ये दो तीन बार मेरे साथ हुआ है, मुझे एकदम ही शौक नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम फजील भाई कैसे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये आशिकी वाला गाना अच्छा था, कहाँ बंद कहाँ किया है, कह रहे हैं कि क्यों बंद किया है। शौकत साहब आप क्या इमेजिन कर रहे हैं भाई, थोड़ा दुनिया में रहो, आगे सामने देख के चलाना है ठीक है, कई बार आंखों के सामने कुछ ऐसी चीजें आने लगती कि आप भूल जाते हैं फिर कि सामने क्या है, वो अगर क्रॉस हो गई ना लाल बत्ती तो बहुत नुकसान होता भाई, क्योंकि अगर ये लाल बत्ती क्रॉस हुई तो अकाउंट भी लाल में दिखाएगा भाई। ग्रीन में पॉजिटिव दिखाता है अकाउंट और नेगेटिव दिखाता है रेड में, ठीक है तो नेगेटिव जहां हुआ बैलेंस लंबी चप जाएगी, ठीक है चुपचाप गाड़ी चलाओ, इधर उधर की बातें नहीं, ठीक है। शौकत साहब बड़े शौक हैं आपको, एक बार क्रॉस कर गए थे 3000 तो तब जब डिस्काउंट है, वैसे तो 6000 लेकिन ये है जल्दी करो, रमजान में एक बार क्रॉस करके था, अरे क्या बात कर रहे हैं शौकत भाई। फिर एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम भाई, लुट जाओ तेरी आशिकी में है, लुट जाओ तेरी आशिक में, कर्ज मूवी का हिमेश ने गाया क्या, हिमेश वाला चल रहा भाई आज, कर्ज का कोई गाना नहीं अपने पास, माजरत, हाँ कोई गाना नहीं है अपने पास कर्ज का, किसी और नाम से देख लो मतलब स्पेलिंग से, कर्ज कर्ज कर लेता हूँ भाई, कर्ज कर्ज का भी नहीं है। ओके फिर ये मैसेज किस बात का, फजील भाई प्लीज प्ले यही होता प्यार, भाई हिमेश ने गाया हो वो कहो, ये ऐसे गाने आप कहोगे प्ले हो नहीं पाएगा। हाँ ये वाला तो है डायलॉग के साथ है यही होता प्यार, दो गानों के बाद आएगा ठीक है ये वाला, चलो तो शुरू कर लेते हैं जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं। हिमेश बाबू की आवाज में जिनका है जन्मदिन, नाम तेरा तेरा नाम तेरा तेरा, FM 107 पे फजील के साथ है आप दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: नींद के बादलों के पीछे है मुस्कुराता हुआ कोई चेहरा, चेहरे पर बिखरी एक रेशमी लट, सरसराता हुआ कोई आंचल और दो आंखें हैरान हैरान सी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: वो कौन था जो कह रहा था कि अल्ताफ हर जगह वर्ड दिखा पाएगा? बिल्कुल फील आ गया नहीं अल्ताफ भाई वाला? यही होता प्यार डायलॉग के साथ कि गाना चल रहा है फिर बीच में डायलॉग आ गया एकदम से, फील तो आ गया ना अल्ताफ रजा का।
3: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: हां जी हबीबी, दिल से देसी। 4:34 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है और आपने हिमेश का ये गाना सुना तो बता दें कि आज है हिमेश का जन्मदिन और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके जन्मदिन को, इसलिए उन्हीं के गाने हम प्ले कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा लेट आई गेस हो गया है, क्योंकि अब हमारे पास ऑलरेडी 3 गानों की लिस्ट आ चुकी है। कौन कौन है जिन्होंने ये गाने की रिक्वेस्ट की है? हिमेश और हर्षदीप कौर का एक गाना है लुट जाऊं, कर्ज मूवी का है। मैं क्यू फॉर कर्ज ढूंढ रहा था लेकिन ये तो के फॉर कर्ज निकला तो इसलिए अब मुझे ये गाना जो है वो मिल गया है। ये गाने की रिक्वेस्ट की थी अरसलान बुखारी साहब ने, तो इनके गाने को सबसे पहले अपन प्ले करेंगे। और फिर जो दूसरा गाना है वो है मुझको या सदाए तेरी या सदाए, और उसके बाद वजाहत समीम जो इन्होंने अपना नाम लिखा है, ये याद सताए तेरी लिखने के बाद इन्होंने सिर्फ नाक बनाकर दे दी है इमोजी की, तो इससे पता चलता है कि ये हिमेश भाई की ही तारीफ कर रहे हैं ये तारीफ करने का जो तरीका ये थोड़ा कैजुअल है बट गुड। बाकी तलहा साहब है, मोहम्मद तलहा कहते हैं कि तंदूरी नाइट, अरे यार आज तो तंदूरी होना ही चाहिए क्योंकि आज वीकेंड है, आज बारबेक्यू तंदूरी नहीं चलेगा तो कब चलेगा बाबू तो सबसे पहले हिमेश और हर्षदीप कौर की आवाज में लुट जाऊं फ्रॉम द मूवी कर्ज, और फिर उसके बाद मुझको याद सताए तेरी हिमेश की आवाज, और तंदूरी नाइट्स में है सुनिधि चौहान एंड हिमेश। इन 3 गानों को बैक टू बैक एंजॉय करें। FM 107 पे वापस आते हैं तो फिर हम गेम खेलना शुरू करेंगे। उस गेम का नाम होगा पहचान कौन।

चिकन का क्या होता है? तंदूरी नाइट। हिमेश और सुनिधि जॉन की आवाज में गाना तंदूरी नाइट, तंदूरी नाइट। वीकेंड पर बीच में क्या होगा? चिकन

किसी को डिनर पे बुलाओ तो क्या खिलाओगे? क्या बात है हबीबी, 4:49 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। जल्दी से खेल लेते हैं, वक्त कम है, पहचान कौन गेम। लेकिन ये गाना भी बड़ा लाजवाब है भाई, कितना चला था तंदूरी नाइट्स, हर आदमी इस गाने को सुन रहा था भाई। एक ये गाना और एक वो इसी के कमंजन घिसे है पिया, भाई हर बारात में मुझे ये गाना सुनने को मिलता था। तो हमारा छोटा वाला शहर भाई, शहर भी ऐसा कि एक ही लाइन पे बसा हुआ है, तो वो गलियारे जैसा होता था। तो अगर 2 किलोमीटर दूर भी कोई बारात जा रही हो ना, तो वहां पर इसी के कमंजन घिसे है, तो पता चला वो यहां पर भी सुनाई दे रहा है 2 किलोमीटर दूर घर पे हमारे। हम लोगों को पता चल जाता था कि वो दूर के जो मिश्रा जी हैं उनके बेटी के बच्चे के खाला की शादी है। अरे भाई, मतलब एक तो छोटे शहर की सबसे बेस्ट बात जो होती है वो यही है कि कहीं पर भी शादी हो तो पता चल जाता है कि अरे वो फला जगह शादी है। तो ये जो गाना है ना तंदूरी नाइट्स, और उसके अलावा वो इश्क का मंजन बहुत चला भाई, बहुत ज़्यादा ही चला। अगर इंडिया में रॉयल्टी वाला हिसाब होता ना कि जहाँ जहाँ पर भी ये गाना चल रहा है रॉयल्टी, वैसे रॉयल्टी ऑब्वियसली इंडिया में है, लेकिन अगर ये होता कि पकड़ पकड़ के लेकर आते, तो भाई इस गानों के बाद से हिमेश भाई इतने अमीर हो जाते कि उनको जिंदगी भर गाना गाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब आ जाते पहचान कौन गेम की तरफ। दोस्तों आज क्योंकि हिमेश का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे हिमेश रेशमिया, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप ऐसे ही बेहतरीन गाने गाते रहें, लेकिन नाक छोड़कर असली वाले गाने गाएं तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। बट नाक वाले जो आपने गाए ना, असलियत में वही ज़्यादा मज़ेदार रहे हैं। आज के ज़माने वाले ओके ओके है, ठीक ठीक है। फिलहाल 3 गाने मैंने यहाँ पर निकाल लिए पहचान कौन।

फन गेम में, जहां पर लिरिक्स मैं प्ले करूंगा और आपको गाने का नाम बताना होगा। ये सारे गाने हिमेश के हैं, और या हिमेश के, या हिमेश के लिखे हुए हैं, या फिर उनकी कॉम्पोजिशन है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको बताना, कई बार हम म्यूज़िक भी एक बार हम म्यूज़िक भी प्ले करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे जो पहला गाना आ रहा है आप लोगों के लिए वो है ये।

बस इतना फेमस गाना अगर गा दिया हिमेश भाई ने और हो ही नहीं सकता है कि बाहर जो लोग सुन रहे हैं वो पहचान ना पाए इसको, पहचान लेंगे बहुत आसानी से। बताइए गाने का एक्चुअल नाम क्या है, गाने का एक्चुअल नाम क्या है। व्हाट्सएप की तरफ बढ़ते हैं 6622107 पे लोग मैसेज कर सकते हैं और करना शुरू भी कर दिया है। सबसे पहले जो गाना बताया फलक ने बिल्कुल सही जवाब बताया है, कैसर साहब ने भी बिल्कुल सही बताया, यूसुफ भाई ने, अरे यूसुफ भाई क्या हो गया, यूसुफ भाई मेरी चार उंगलियां उल्टी करके आपके माथों पर लगा के देखना चाह रहा हूँ, बुखार तो नहीं है, ये कैसे हो सकता है यार, गलत जवाब आपसे नहीं उम्मीद ना। जैसे अम्मा ही करती थी ना वो बुखार चेक करने के लिए चार उंगलियां माथे पे लगाती थी कि क्या हो गया मेरे बच्चे को, अल्लाह वैसे मैं भी लगा के, तो क्या हो गया यूसुफ भाई है, कैसे आपसे गलती गानों में, वो भी हिमेश, नहीं नहीं नहीं कोई और चला रहा है इनका मोबाइल, मैं बता रहा हूं छोड़ दो भाई, जिसने भी मोबाइल चुराया है यूसुफ भाई का। फिर दानिश भाई का मैसेज है बिल्कुल सही है, आयाज बलोच ने सलाम किया, वालेकुम असलम, गाना सुनकर मुझे पता चल गया तंदूरी नाइट है। आयाज बलोच कैसे हो सर, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाए मेरा भाई कैसे हैं अरबाज खान। फिर ये मैसेज है फजिल भाई, हमेश जी ने सिंगिंग छोड़ दिया है क्या, कोई न्यू सॉन्ग नहीं, देखिए मैंने कासिम छोड़ा तो नहीं है, नए नए आते रहते हैं लेकिन जो पुराने में मज़ा है वो एक्चुअली कहीं पर नहीं है। हेलो लिखा है उस्मान और अगजेना, हेलो मेरा भाई, तुम मेरा गाना शेयर नहीं करते भाई, मैं इसलिए क्योंकि आप गाने ही ऐसे कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस्मान भाई, तू ना जा मेरे बादशाह, ये हिमेश का गाना है, ऐसा गाना हिमेश का करिए जो लगे कि गाना गाए तो दिल खुश हो। फिर उसके बाद हिशाम ने भी सही जवाब दिया है, नाम है तेरा तेरा, ये गलत जवाब है मेरा भाई अजहर, आपसे ये गलती हो गई आज कुछ तो, दुआ ने सही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया है। एंड सैमसन कुछ सैमसन सैमसन, अच्छा इतना ज़्यादा स्पेलिंग करेक्ट हो गया क्या, बिल्कुल सही जवाब है। हुसैन भाई का भी बिल्कुल सही जवाब है। फिर उसके बाद यूसुफ भाई कह रहे फजील क्यों मुझसे गलती क्यों नहीं हो सकती, अरे बिल्कुल हो सकती है लेकिन आपसे हिमेश के गानों पे गलती नहीं हो सकती, मैं तो नहीं मानता। असली गाने का नाम दोस्तों बिल्कुल लोगों ने सही दिया है, जिन्होंने सही दिया है वो सुन लें और जिन्होंने नहीं सही दिया है वो भी सुन लें, गाना है ये

हाँ जी, कुछ तो समझो ना, ये आपने बिल्कुल सही बताया है। और अब जो दूसरा गाना है हिमेश का, वो जो पहचानना है वो है ये।

ये थोड़ा आसान है, थोड़ा मुश्किल है. जिन्होंने सुना है बहुत ज्यादा इस गाने के स्पेसिफिकली फैन हैं या हनी सिंह के फैन हैं तो उनको पता होना चाहिए. ऑल्दो ये हिमेश और हनी सिंह का गाना है, गाने का नाम बताइए 666-22107 पे. और एक्सपोज मूवी का ट्रैक बताया दानिश आजाद ने. ओके फिर हिशाम ने बिल्कुल सही जवाब बताया है, हैं फलक. आपका भी ऑटो करेक्ट है क्या? नहीं, ये ऐसा लग रहा है डिमांड कर रही हैं आप, आइसक्रीम लिखा हुआ है. फिर उसके बाद कैसर ने बिल्कुल सही जवाब बताया है और इमरान खान ने बिल्कुल सही जवाब बताया, क्या बात है, बहुत ही उम्दा. आकिब ने बिल्कुल सही जवाब बताया, ये गाना हिमेश का और हनी सिंह का है.

बिल्कुल सही, दानिश आजाद ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, फिर उसके बाद फलक ने सही जवाब दिया है, रवि, ओके ये सबसे पहले जो जवाब दिया रवि ने सही जवाब दिया है, हेशाम ने सही जवाब दिया, यूसुफ भाई ने भी सही जवाब दिया है, अब जाके आप सही पहचाने। गाना बिल्कुल सही पहचाना है लोगों ने, कैस ने सही पहचाना, कैसर भाई ने, ये गाने का नाम है एक

सही यार। बस बस अभी तो ना तो पता चल गया लोगों को, इतने ज्यादा तो स्मार्ट है ये। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे संडे को, और संडे आपको पता है शाम नहीं सुबह, यानी कि सुबह भी नहीं दोपहर को अपनी मुलाकात होगी, और दोपहर को स्पोर्ट्स की तमाम जानकारियों के साथ FM 107 पे फजील होंगे आपके साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, और वीकेंड को एंजॉय करिए तंदूरी नाइट की तरह, और मुझे इजाजत दीजिए। फिलहाल हिमेश की आवाज में गाना सुनते जाइए, झलक दे गला जा। आय हाय क्या बात है, FM 107 दिल से नहीं सी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका कैप्टन कबीर, दिस इज़ योर कैप्टन स्पीकिंग। हम दोहा से दूर, दोहा की ये दूरी दो घंटे में पूरी करेंगे, 5 बजे उड़ के 7 बजे पहुंच जाएंगे। हमारे जहाज़ के दो द्वार हैं, हमारे उल्टे पंख में थोड़ी सी दिक्कत है, तो उल्टा पंख टूटा हुआ है। ये जहाज़ सीधी तरफ की तरफ ज़्यादा उड़ेगा, इसलिए ध्यान दीजिए। हमारे जहाज़ में किसी किस्म के इमरजेंसी गेट नहीं है, तो आप हमारे साथ

ਸਿੰਘ ਮੈਗਾ ਜੀ ਹੈਪੀ ਵੀਕਐਂਡ लेकिन एनर्जी भरपूर है भाई, डबल ए बैटरी लगी हुई है आपके भाई में, दिक्कत को नहीं। बाकी मैसेज वैसेज आप करते रहे, बढ़िया मैसेज यहाँ आते के साथ ही। सैयद हमजा भाई कह रहे हैं हमारा भी यही हाल होता है जब क्या लाइन में खड़े रहने का सब्र खत्म हो जाता है। थैंक यू मेरा भाई। खादर भाई लिख रहे हैं एंटरटेनमेंट सिक्योरिटी गार्ड ऑन ड्यूटी। हाँ जी सर, ड्यूटी। वालेकुम अस्सलाम। और इनके बाद मैसेज क्या है, सलाम कैप्टन कबीर, हैप्पी वीकेंड जी। कैप्टन कबीर आपकी तरफ से बहुत खुश हैं। जुबेरा तिरन साहब वालेकुम अस्सलाम। एक भाई ने मैसेज किया है, गुड इवनिंग कबीर भाई, रोल नंबर 9। फिर आज अब जहाज में है मेरा भाई, आज अब जहाज में है एक बाल भाई। एक मैसेज है कबीर भाई, क्या लिख रहे हैं, ओपन द डोर आई वॉन्ट टू फ्लाई। मकसूद भाई वाले दोस्त बन रहे हैं वो आटो, जहाज तुम्हारा भाई चलाएगा आज। हाँ नहीं, हम ही पायलट हैं जहाज के। एक और मैसेज आया है, ये क्या है, यूसुफ भाई ने लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज एविएशन स्टोरी है वन ऑफ माय फेवरेट जॉनर। नहीं, आज एविएशन स्टोरी नहीं है, सिर्फ जहाज से एंट्री करी है मैंने। हिशाम साहब वालेकुम अस्सलाम। ये वाले लिखते हैं भाई मुबारक हो। अरे भैया यार ये कहाँ, मैं किधर भागू मैं। एक फिर से मुबारकबाद आ जा रही है। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, आई एम ट्रैवलिंग टू लखनऊ। मेरा भाई मत खून जलाओ यार, मत। अफजल उस्मानी भाई, ये कोई बात होती, पहला मैसेज आया भाई का, भाई ने जला दिया, लखनऊ जा रहा हूँ भाई। पहले तो लखनऊ जाके बहुत सारा प्यार, फोटो वोटो खींचना, और मेरा खून और जल। लखनऊ को देखे इतना टाइम हो गया, फोटो ज़रूर भेजना वहाँ जाके, ठीक है। और कुछ एक ही आना वहाँ से, खाली आता है ना, जहाज में ही चला रहा हूँ। अमर यासिर साहब वालेकुम अस्सलाम। खादर अब्दुल्लादी भाई कुछ और भी कह रहे हैं, कबीर भाई आप कैप्टन से एलिवेटेड हो गए हो, अब तो मेजर जनरल हो चुके। ना भाई, तब प्रमोशन नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम चाचू, अरे क्या क्या रिश्ते दो गए। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। एविएशन नहीं है, हाँ यूसुफ भाई एविएशन नहीं है, वो सिर्फ जहाज से एंट्री करी थी मैंने। क्या कहानी है बता दूँ मैं, सिर्फ आपको शीर्षक दूंगा मैं, शीर्षक मतलब टाइटल। तो आज की जो स्टोरी है, इट इज़ अ हॉरर मिस्ट्री, एक हॉरर मिस्ट्री है आज के दिन, वीकेंड स्पेशल कहानी है, बचा के रखी थी भाई मैंने आज की कहानी। और ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है, लेकिन ये बहुत बहुत मिस्टीरियस स्टोरी है, वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें होती आई हैं, देसी जनता की शायद तक नहीं पहुँची है, लेकिन हम पहुँचाएंगे भाई, हम पहुंचा देंगे, क्या दिक्कत आ रही है। एक और मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी आज से ड्यूटी ख़त्म हो रही है, मैं घर वापस लौट रहा हूँ हमेशा के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचू। मैं बढ़िया भाई। एक मैसेज है, दैट्स ऑल्सो माई फेवरेट जॉनर, ईगरली वेटिंग। इस भाई मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह, दैट्स व्हाट आई एम होपिंग फॉर। चलना है तो बताइए। अफजल उस्मानी भाई, जिस रास्ते जाना नहीं उसका आपने सवाल पूछ लिया है, अब जा भी नहीं पाएंगे। एक मैसेज और, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यासीन मुल्ला भाई, क्या चल रहा है। और एक भाई ने मैसेज और किया है, ये कह रहे हैं आपके क्या हाल है। मैं बढ़िया भाई, एकदम शानदार हूँ भाई। कुछ और बात कर लेते हैं, ये अफजल उस्मानी भाई मान नहीं रहे। पहले बोले लखनऊ जा रहा हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा खून जलाया। अब कह रहे हैं बारिश हो रही है वहाँ पे। गाड़ी का टेम्परेचर देखा आज, गाड़ी का टेम्परेचर अंदर बता रहा था 57। बारिश की बात करते हुए अफजल उस्मानी, तुमको शर्म नहीं आई। मोहम्मद भाई वालेकुम अस्सलाम। अरे किस बात का कांग्रेस चल रहा था। कबीर भाई को सलाम। वालेकुम सलाम भाई, हुसैन भाई वालेकुम सलाम। फोटो वोटो भेज रहे हैं, मज़े करो भाई। 11 मिनट और 2 सेकंड के बाद मिलते हैं, वरना ये पूरा का पूरा मुझे मौसम विभाग ला के रख देंगे अफजल उस्मानी भाई। एक मैसेज है, 7 बजे 10 किलोमीटर रन करने आ जाओ। ऐश भाई आप मुझे ना नया नया सुनना शुरू किया है आपने। अगर आप मुझे पहले से सुन रहे होते ना, तो आप ये बातें मुझसे नहीं कर रहे होते, जो मुझे सुनते आए हैं ना पिछले कई सालों से,

0: उनसे पूछो, आपको लगता है मैं कि रनिंग करने जाऊंगा आपके साथ 10 किलोमीटर वो भी? ये जो वहम है ना, इसे जो है कहीं फेंक के गोल्डन रिट्रीवर पाल लीजिए आप, मैं बताऊं ज्यादा काम आएगा आपके। ऐसे वहम मत पालिए, किसी काम का नहीं है ऐसा वहम। बताओ 10 किलोमीटर भागने की बातें कर रहे हैं, वो भी मुझसे। अल्लाह खैर करे। मिलते हैं 11 मिनट 2 सेकंड के बाद। स्टे ट्यून्ड।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अज़कार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین رب العالمین. السلام علیکم. میں دوحہ والا کبیر FM 107 پہ. And kya le aapke main jo hu na aaj bada hi mushkil qisam ka ek task dene wala hu aapko. ek message pad kar dun bro, aaj ki aur kal ki story bhej dena bhai. kal wali to mere call hai nahi bhai, aaj wali bhej dunga. khalil paraj bhai ne message kiya, assalam alaikum bhai. wa alaikum assalam. aur mohammad ishfaq bhai, wa alaikum assalam. lots of love mere bhai ko. aur inke baad aur ek message aaya hai. ये मैसेज किया है इन्होंने, कहा अस्सलाम वालेकुम भाई. मैं बढ़िया भाई. रिजवान भाई कैसे चल रहा है? सब बढ़िया. और ये भाई जो मुझे ऐश भाई कह रहे थे, कह रहे 10 किलोमीटर रनिंग करने आ जाओ मेरे साथ. भाई मजाक करने की हद होती है. एक मैसेज है भाई, आज तो ढोल बजवा देते भाई, आज तो बनता है भाई, आज तो बनता है. उसके बाद मैं जो है ना एक टास्क देने वाला हूँ लोगों, क्योंकि मेरे पास एक सिचुएशन है और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें मदद करें. सबसे पहले पब्लिक के लिए ढोल बजाया जाए भाई. हैप्पी वीकेंड. ਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈਪੀ ਵੀਕੈਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ. ਆਹੋ ਆਹੋ ਰਿਪਾ ਆਹੋ ਆਹੋ ਹੈਪੀ ਵੀਕੈਂਡ. अब जरा मुद्दे की बात कर लेते हैं. एक दो मैसेज पढ़ दूं मैं जरा. उस्मान भाई मैसेज कर रहे हैं, सलाम वालेकुम अस्सलाम. अच्छा एक सिचुएशन सुनिए. दरअसल एक बिल्कुल रियल कंडीशन है. आप मुझसे बोलेंगे तू मजाक कर रहा है भाई, झूठ बोल रहा है. मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा इस वक्त, कोई बनावटी बात भी नहीं कर रहा. एक रियल सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं. तो मेरा एक दोस्त इंडिया में काम करता है, वो नाम नहीं बताऊंगा, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा. तो वो जो है कंपनी में काम करता था, बहुत वक्त से कर रहा है उस कंपनी के साथ. तो हुआ ये कि बीच में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया. बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया. इतना बीमार कि उसने ऑफिस वालों को कहा कि मेरी ये कंडीशन है, मेरा ऑपरेशन वगैरह होना है, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा. ऑफिस वालों ने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो ले ले भाई ऑफ. उसको ऑफ दे दिया. ठीक है. अब उसको रिकवर होते होते होते होते होते 7-8 महीने लग गए और कंपनी उसे सैलरी देती रही. 7-8 महीने बाद उसको रिकवर हुआ. फिर उसने जो है वापस जो है कंपनी से कॉन्टैक्ट किया और उससे बोला कि मैं जो हूँ ना, मैं काम करना चाहता हूँ, तो मुझे बताइए मैं कब से ज्वाइन कर लूं. तो कंपनी के एचआर ने कहा ठीक है मैं आपको बताता हूं, ठीक है मैं आपको बताता हूं. इतना बोला फिर कोई बात नहीं हुई. 1 महीना निकल गया. उसने दोबारा ईमेल किया कि भाई बता दो, मैं वापस ज्वाइन कर लेता हूं. वी विल लेट यू नो. कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. फिर उसने वापस कॉल करी मैनेजर को अपने. उसने कहा मैं बात करके बताता हूं. ऐसे करते करते 5 महीने हो चुके हैं. कंपनी जो है पैसे दिए जा रही है, सैलरी बिल्कुल टाइम पे आ रही है, पर उसको बुला नहीं रही है काम पे. यार वो कह रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी क्या सलाह है उसके लिए? क्या करना चाहिए उसको भाई? इस सिचुएशन में क्या करे आदमी? है वो ऑफिस से कॉल करे जा रहा है, ऑफिस वाले उसे बुला नहीं रहे, फिर भी सैलरी दी जा रही है, दी जा रही है. क्या करे वो? प्लीज गाइड अस. एक कॉल आ रही है. अस्सलाम वालेकुम.
2: क्या हाल है कैप्टन साहब?

0: बढ़िया भाई, एकदम जहाज उड़ रहा है हवा में है भाई।
1: भाई जहाज जा कड़ा रहा, मना ये नहीं
0: तो भाई दोहा जा रहा है अभी, तो
1: इब तो दोहा जा रहा है, उसके बाद कड़ा जाएगा
0: इधर ही रहेगा भाई
1: भाई मैं तो नहीं सोचने लग रहा था, ये तो जा रहा है एनसीआर की तरफ।
0: नहीं मारे धुरे एयर ब्रेक, एयर ब्रेक है ना भाई, एयर ब्रेक गाल देंगे, यहीं रोक देंगे हवा में भाई
1: सही सही सही भाई।
0: हाँ तो भाई तो क्या हाल है
1: कैप्टन भाई, कुछ भी कर सका तुम तो।
0: हाँ भाई कुछ भी, मेरे हाथ में ना सब कुछ।
1: तो सही बात है कबीर भाई।
0: तो भाई आपने सवाल सुना गाबा भाई?
1: सवाल सुना, पहले मैं उससे पहले अपनी थोड़ी सी बात करूंगा कबीर।
0: बताओ बताओ बताओ।
1: जिस हिसाब से भाई आज आपने स्टार्टिंग में एनर्जी की आतिशबाजी के साथ में अपना प्रोग्राम शुरू किया है ना
0: जी
1: कबीर भाई,
0: जी भाई
1: मेरे को लगा जैसे मैं ना रॉकेट चला रहा हूँ और उसे देख के खुश हो रहा हूँ जब वो हवा में जाके करता है।
0: थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, बहुत बहुत प्यार भाई को, ये होना चाहिए ना भाई।
1: सच में यार कबीर भाई आपने इतनी एनर्जी के साथ बंदे आते, आप आते हो ना कबीर भाई, एंट्री आपकी यार बहुत मस्त होती है यार।
0: थैंक यू मेरा भाई, बहुत प्यार भाई को, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, बहुत सारा प्यार इस चीज के लिए दिल से।
1: तो और प्लस पॉइंट ये है कबीर भाई, जो आपकी एनर्जी स्टार्टिंग में होती है ना यार,
0: जी मेरा भाई,
1: थ्रू आउट द शो,
0: हाँ
1: स्टार्टिंग में भाई के आगे वो लास्ट के मिनट तक भी वही रहती है कभी
0: भाई, वही रखेंगे भाई, यही है अपना सब कुछ भाई, यही तो मौज आती है,
1: यही है अपना टैलेंट।
0: बिल्कुल भाई, एक ही काम आता है भाई, वो ढंग से करेंगे बस, साफ सीधी बात
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल भाई।
0: हाँ तो
1: सीधी बात, एवरीथिंग पास,
0: एवरीथिंग भाई, ओके रिपोर्ट है। अब बताओ क्या कहना चाहोगे जो आपने सुना।
1: अच्छा कबीर भाई, वो जो आपका दोस्त लगा हुआ है कंपनी में,
0: जी भाई,
1: उसने एग्रीमेंट वगैरह किया हुआ है उनके साथ
0: सब
1: में?
0: क्या हुआ भाई, एक साल पहले वो प्रॉपरली जाके काम भी कर रहा था मेरे भाई और
1: एमएनसी है या क्या है वो,
0: टेलीकॉम कंपनी है भाई, टेलीकॉम कंपनी है भाई, प्राइवेट है।
1: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कबीर भाई ये सिंपल सी बात है ना यार, अगर उसको पैसे आ रहे हैं फिर तो नहीं छोड़ना चाहिए यार, वो अपनी तरफ से तो अपना फर्ज निभा रहा है ना।
0: हाँ वो कह रहा है यार तो मैं जाना चाह रहा हूँ, कंपनी मुझे काम पे नहीं बुला रही मगर पैसे दिए जा रही है, ये बड़ा अजीब सा फिनोमेना चल रहा है। तो
1: यकीन मानिए ना, तो ये कभी मूवी में ऐसा सीन देखा है यार, ना किसी वेब सीरीज में देखा, ये जो सिचुएशन आपने अभी हमारे सामने खड़ी कर दी है
0: वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं खुद इतना हैरान हूँ और हमारी बातचीत उस दिन कहता भाई पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ, मैं तो खुद चल के कह रहा हूँ कि भाई मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, पर वही मुझे टाले जा रहे हैं, कोई मेल भी नहीं कर रहे और सैलरी टाइम पे आ रही है, एक बार भी लेट नहीं हो रही। इनफैक्ट उसका
1: तो आपको लग रहा है कबीर भाई,
0: क्या
1: आपको लग रहा है वो आपका दोस्त बिल्कुल सही बोल रहा है?
0: भाई एकदम सही बोल रहा है, क्योंकि वो भाई मेरे मोहल्ले का है, वो मुझे पता है सही बोल रहा है वो अच्छे से पता है।
1: अच्छा
0: तो वही है कि कुछ हो ही नहीं रहा, क्या करें,
1: वैसे समझ से बाहर है यार कबीर भाई, बस उसको बोलो एक काम करो, जो भी वो कंपनी से जब भी कॉन्टेक्ट करता है व्हाट्सएप पे, मेल पे, फोन पे, उसका प्रूफ रखे इन फ्यूचर अगर कोई उसके लिए
0: प्रूफ सारा है भाई, मेल पे मेल है भाई, प्रूफ सारे हैं भाई, मेल के सारे प्रूफ हैं।
1: बाकी यार कबीर भाई उसके तो बारे नहीं आ रहे हैं यार, दुआ करो ऐसी नौकरी हमें भी मिल जाए यार
0: भाई मैं भी उससे ही कह रहा हूँ ना भाई, ये तो मौज है भाई, उसको उल्टा कंपनी ने, क्योंकि वो जो बाय डिफॉल्ट होता है ना इंडिया में, सो कुछ 2-3% का इंक्रीमेंट भी आ गया उसका, जबकि उसने कुछ काम नहीं किया।
1: यार सोने पे सुहागे से ऊपर क्या होता है, इसको तो वही बोल सकते हैं कबीर भाई,
0: पंख लगे हुए भाई उसके, एकदम बढ़िया चल रहा है भाई का। तो
1: नहीं कबीर भाई, हाँ, अच्छा चक्कर पता क्या है, वो बंदा खुद भी कंसर्न है ना यार जॉब को लेके।
0: हाँ हाँ हाँ
1: वो सबसे बड़ी बात तो यही है ना, चलो उसको मिल रहा है ठीक है, वो भी परमानेंट तो चलो नहीं देंगे कंपनी वाले, उसमें भी कुछ ना कुछ ग्लिच वगैरह तो होगा ना।
0: हाँ
1: वो तो चलो अच्छी बात है, बाकी उसके अच्छे दिन चल रहे हैं, ऐसे अच्छे दिन भाई हर किसी के।
0: पर उसे पता है डर क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कंपनी कल को बोलते भाई तुम तो मतलब आए नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो हम कैसे तुम्हें हम निकालते हैं, उसका वो डर है, तो सोच रहा है मैं दूसरी कंपनी में अप्लाई करूं कि ना करूं, या ये पैसे आ रहे हैं तो आने दूं, आते रहे क्या जा रहा है वो वाली चीज़।
1: कबीर भाई वो किसी फिर सीनियर पोस्ट पे होगा जिस हिसाब से बात कर रहे हो आप।
0: भाई वो जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में देखा है आपने, जो मैनेजर्स होते हैं, जो स्टोर मैनेजर्स होते हैं, मैनेज करते हैं, वो है वो।
1: हाँ वही है, मैनेजमेंट में है ना।
0: हाँ मैनेजमेंट,
1: अगर दूसरी जॉब पे होता तो बंदा इजीली ढूंढ लेता है इंडिया में, नेक्स्ट डे ढूंढ लेता है ये जॉब तो।
0: एग्जैक्टली तो ये है
1: मैनेजमेंट में है,
0: चलो और सैलरी भी
1: अच्छा है यार कबीर भाई। मजे हैं उसके तो, और क्या कहेंगे
0: यही है भाई सीन, ऐसे ही चल रहा है भाई। गाओ भाई हैप्पी वीकेंड मेरे चंद, और बहुत बहुत शुक्रिया क्या आपने कॉल किया
1: भाई, एक वीकेंड कबीर भाई की तरफ पेंडिंग है यार।
0: भाई वो पूरा कर देंगे भाई, कोई टेंशन को नहीं भाई, ये वाला
1: अच्छा आप कहेंगे इंस्टा पे वो मैसेज आप सीन कर लोगे अगर मैं सेंड करूँ
0: भाई? बिल्कुल भाई, उसमें मैं भले ही एक्टिव नहीं, लेकिन मैं इंस्टाग्राम देखता प्रॉपरली हूँ भाई।

0: मैं सेंड करता हूँ, देखना अगर टाइम लगा तो आ जाना यार भाई,
1: बिल्कुल मारेंगे, बिल्कुल भाई मैसेज कर दो आप।
0: हाँ मैं इंस्टा पे करूंगा,
1: डन इंस्टा पे करो। और क्या, जब तक पैसे आ रहे हैं आने दो, मे बी देयर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट कोऑर्डिनेटिंग वेल, वही तो, बट सडनली इफ दे से कि अरे आपने तो बताया नहीं, फलाने किया, ढिमकाने नहीं किया, फिर क्या करेगा? अब्दुल करीम भाई वालेकुम अस्सलाम, हीरू भाई वालेकुम अस्सलाम, और ये जो भाई मुझे कॉल कर रहे हैं भाई, व्हाट्सएप पे कॉल करने का कोई फायदा नहीं है। एंड एक कॉल भी आ रही है, मैं जरा कॉल भी ले ही लेता हूँ, एक सेकंड भाई। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं कबीर भाई?
1: बढ़िया भाई, एक नंबर। आप सुनाइए, क्या हाल है भाई के?
2: भाई एक नंबर है, मजा आ रहा है पूरे।
1: हाँ तो भाई सुना आपने, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ?
2: ना सच में, बस जस्ट अभी मैंने रेडियो ऑन किया, तुम सोचो करो कॉल भी लगा लेता हूँ।
1: भाई तो हो यूं गया कि मारा एक भाई है भाई, ठीक है, और वो एक कंपनी में काम कर रहा है पिछले दो सालों से, तो एक साल तो लग के काम किया भाई ने, उसके बाद भाई की हो गई तबीयत डाउन एकदम, ऑपरेशन की हालत वालत हो गई, तो उसने कंपनी से 5-6 महीने का ब्रेक ले लिया, कंपनी ने भी दे दिया और सैलरी भी पूरी पूरी दी हर महीने। अभी क्या है, वो कंपनी से वापस कॉन्टैक्ट कर रहा है, कंपनी उससे कॉन्टैक्ट में कुछ जवाब ही नहीं दे रही, बोलती है बताएंगे बताएंगे बताएंगे, तो कंपनी भी नहीं जा पा रहा वो काम करने के लिए, और सैलरी भी पूरी आ रही है। अब उसे डर ये लग रहा है कि यार करूं तो क्या करूं, वो क्योंकि मेल भी करके देख चुका, सब कुछ अपनी तरफ से कर रहा है, क्या करें?
2: तैयारी करके रखे दूसरी, मतलब ऐसा नहीं, देखो मेरी बात सुनो।
1: हाँ
2: वैसे ये सिचुएशन हलाल मारी हराम मारी,
1: वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई क्या बोलूं मैं,
2: देखो।
1: हाँ
2: अभी मेरी बात सुनो, देखो अगर भाई इसको ऑपरेशन हुआ, कंडीशन उसकी अच्छाई नहीं थी और उसको पैसे की जरूरत थी, और कंपनी ने एक तरह से अगर उसकी हेल्प कर रही है तो वो तो फिर हलाल मारी है।
1: तो वही
2: समझ रहा हूँ ना।
1: हाँ मैं समझ गया, वहां तक ठीक है। उसके बाद भी तो भाई ने ईमेल किया, वो तो खुद चल के कह रहा है अरे मेरे को ले क्यों नहीं रहे तुम, मैं तो काम करने को तैयार हूँ, वो ले नहीं रहे पर सैलरी दी जा रहा है हर महीने उसको सोचो यार,
2: सैलरी भी अच्छी खासी आ रही
1: है, 82,000 के आसपास आ रही है कुछ।
2: अपने कतर में, इंडिया में?
1: इंडिया में भाई, यहाँ थोड़ी होगा ऐसा।
2: इंडिया में तो पॉसिबल है भैया, वहाँ वहाँ कुछ भी हो सकता है।
1: तो ये हो रहा है, तो वही मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये सवाल जरा पब्लिक से भी पूछा जाए कि इसमें बंदा करे तो क्या करे
2: भाई, ये तो वाली बात होगी, वो मुर्गी मिल गई, वो सोने का अंडा दे रही है, सिल्वर का अंडा दे रही है हर महीने।
1: हाँ वही तो, वो कह रहा है मैं घर में पड़े पड़े पागल हो गया हूँ मैं तो क्या करूँ। उसको हर महीने कंपनी मेरे ख्याल में 82,000-84,000 रुपए दे रही है, ठीक है
2: भैया। अपने सीधी सी बात है, जब ऐसा पैसा मिल रहा है तो अपनी नेक्स्ट जो भी उनकी जॉब वॉब अगर ढूंढनी है ढूंढ डांट के एकदम रेडी रखे, और जब लगे उनको कि भाई मामला बिल्कुल अब ऐसा हो गया कि कंपनी छोड़ने वाली, कंपनी हाँ, निकालने वाली या कुछ हाँ, भी होने वाला है ए टू जेड, बस अपना नेक्स्ट मूव करो।
1: प्लान भी तैयार रखिए, प्लान भी तैयार रखिए, कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं
2: आप। हाँ जी, मतलब प्लान भी अपना तैयार रखे,
1: ठीक है,
2: भरोसे ना बैठे,
1: ठीक है ये भी एडवाइस मैं चलो दे दूंगा, प्लान भी तैयार रखे। क्योंकि एक भाई ने मैसेज किया अभी आपके साथ जब मैं कॉल पे था, एक भाई हैं ये समर भाई, लिखते हैं कि भाई कंपनी में जाके विजिट करनी चाहिए, भाई कर चुके कंपनी में जाके भी विजिट कर चुके, कुछ ना हो रहा भाई
2: कंपनी भूल गई बंदे को पैसा रहा दबा के
1: मैं सही बता रहा हूँ, कंपनी भूल गई है उसको, मुझे भी ऐसे लग रहा है। एक भाई कह रहे हैं कौन सा डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट का नहीं है भाई, प्राइवेट कंपनी है, हैरत की बात तो यही है।
2: मैं गवर्नमेंट में तो अपने यहाँ ऐसा होता है, मैंने बहुत सारी ऐसी जॉब देखी है कि मतलब जैसे कि सुपरवाइजर और मैनेजर लेवल पे जो पोस्टिंग है, तो मतलब वो अपना महीने के लिए जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं और अपनी पूरी की पूरी सैलरी और ले लेते हैं, और जो बंदा उनका एक बंदा हायर करके रखते हैं वो, कि तुम जाओ
1: वो तो ठीक है, यहाँ तो कोई जा भी नहीं रहा, यहाँ तो कोई जा भी नहीं रहा, ऊपर से प्राइवेट कंपनी है मेरी जान, जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है ना हमारे यहाँ 2-3 टेलीकॉम कंपनियां, उनमें से एक है भाई।
2: देखो अब चलो ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, तो भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टेलीकॉम कंपनी जो है उसके पास पैसा अनलिमिटेड है और गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट है
1: और बंदे को भूल गई है कंपनी
2: और वो बंदे को भूल गया, पैसा जो है ना अकाउंट में धड़ाधड़ आ रहा है,
1: तो भाई को मजे करने देते फिर, मजे करने देते फिर, मजे करे भाई
2: भाई बिल्कुल फुल टू एंजॉय, उसको उसको बोलो भैया काहे को टेंशन ले रहा है, क्यों पागल क्यों हो रहा है, घर में क्यों पड़ा है, सीधा लद्दाख जा, हिमाचल जा, मनाली जा, ढूंढ घाम के आ भाई अगर तू नहीं जा रहा तो मुझे दे दे मैं चला
1: जाऊंगा सही है भाई एडवाइस टेकन ठीक है मैं यही मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगा यही उम्मीद थी मुझे पूछने के बाद ठीक है भाई ठीक है शुभ भाई थैंक यू सो मच
2: किसी को भी पकड़वा दे रिश्तेदार को भाई

0: मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, बहुत सारे आइडियाज आ चुके हैं। चलो वो भी आइडिया पढ़ लेता हूँ मैं। और बहुत बहुत शुक्रिया शिव भाई, बहुत प्यार भाई को।
1: ओके थैंक यू बहुत,
0: ठीक है मेरा भाई। और शिव भाई की बात, एक भाई ने मैसेज किया, इन्होंने तो कमाल की भाई गुगली फेंकी है। साजिद अहमद भाई लिखते हैं कि लेट हिम स्टार्ट विद अ न्यू कंपनी, कह रहे हैं डबल सैलरी आने दो, एक और कंपनी ज्वाइन कर लो। अरे पिछली कंपनी के डॉक्यूमेंट भी तो देने पड़ेंगे मेरी जान। एक मैसेज उनको बोलो कि गेमिंग कंसोल ले लें, चिल करें भाई। वो भी है, वो है भाई प्ले स्टेशन। मोमिन भाई, एम के भाई मैसेज कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कह रहे कौन से डिपार्टमेंट में है। वही भाई प्राइवेट है और वो मैनेजरियल पोस्ट टाइप का है। यूसुफ भाई ने मैसेज किया, यूसुफ भाई ने लिखा है आई वुड से वो बंदा कोई पर्सनली मिल ले। भाई मिल चुके मिल चुके, भगा दिया उसको। और अजीब बात यह है कि सैलरीज मिल रही हैं, ये तो पेरोल में कोई गलती हो रही है, उसका नाम पेरोल से नहीं निकाला। डिड ही इन्फॉर्म दैट ही इज गेटिंग सैलरी टू? यस यस ही डिड, बोला मेरे को आन दो भाई। इफ यस देन इट माइट बी मैनेजमेंट डिसीजन टू गिव हिम अप्रेजल अगेंस्ट हिज लॉयल सर्विसेज टू द कंपनी, बट व्हाट सर्विसेज? देयर आर नो सर्विसेज। और आगे लिखा है बट दैट टू अ स्पेसिफिक टाइम नॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। क्या हाल हो सकता है, समझ ही नहीं आ रहा है सिचुएशन। बेचारा बीच समंदर में फंस गया है, किनारा नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली मेरे भाई, तब बस मैं लिख रही हूँ अस्सलाम वालेकुम, इसमें क्या टेंशन है, बैठे बैठे सैलरी इंजॉय करें और क्या, जब तक पैसे आ रहे हैं आने दो। मे बी देयर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट कोऑर्डिनेटिंग वेल। अरे भाई एक और कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, कैसा मेरा भाई?
0: बस बढ़िया पार्टी, आप सुनाइए क्या हाल है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक यार। कहानी तो आज की बड़ी मजे की थी, लेकिन जब इसका बोरस निकला है तो वो बता देना
0: भाई। ये भी सच्ची कहानी है मेरी जान, यही तो मसला है, इतनी कमाल की चीज है ना। मैंने कहा नहीं भाई आज इसके बारे में तुम पब्लिक से बात करोगे भाई। मैं
2: तो वैसे एक तो अपना जनाब अपनी पार्टी वाला जो हिसाब है ना, के वहाँ पे जाते उसको बोला भाई ट्रेड निकाल, तो जो मुफ्त की सैलरियां खाई है ना उसके मतलब ट्रेड निकाल, ठीक है। उसके बाद एक ब्रादराना मशवरा जो आप पिछले दिनों बाद लेके चल रहे थे भाई, मशवरा दिया जबरदस्ती का वो वाला मशवरा।
0: तो क्या मशवरा क्या है आपका?
2: जब इतना सब कुछ मिल रहा है और उसको चीजों का डर भी है, ठीक है, अगली जॉब ढूंढेगा वो सारा सब कुछ क्लेरिफिकेशन वगैरह मांगेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है, पिछले का भी अच्छा है, तो इससे अच्छा छोटा छोटा बिजनेस डालेगा, उसको आगे की भी टेंशन ना हो कि ठीक है यार सही है, पैसा बनेगा डबल होगा।
0: ये वही हो गया ना कि ये गन्ना इधर से नींबू और पुदीना रख के डाला, दूसरी तरफ से रस निकल रहा है, निकलने दो, गन्ना का जूस पियो मजे करो, क्या टेंशन है।
2: देखो अब ऐसे जो है वो अपनी जगह सही है, उसने सब कुछ जगह ट्राई किया कि यार मैं वापस आना चाह रहा हूँ, मुझे आने दो वापस, लेकिन अगले नहीं मान रहे। तो अब भाई वो कहते है ना जब फल खोद कटने के लिए छुरी को पकड़ रहे तो छुरी क्या तकलीफ है कि नहीं काटे उसको,
0: ठीक है Advice taken भाई।
2: खरबूजा खुद आ रहा है कटने का,
0: लोट के आ रहा है खरबूजा, क्या मुझे तो चाकू चाहिए। तो ये है सीन भाई।
2: स्टोरी बड़ी मजे की थी भाई, मोरल आदमी बताना एंड द एंड क्या हुआ
0: भाई। भाई कुछ एंड नहीं है, तो अभी तो कहानी शुरू नहीं करी मैंने, ये तो रियल लाइफ हादसे हैं जो मैंने शेयर करे।
2: रियल लाइफ
0: हादसे का मैं कुछ सुनना चाहूंगा जब भी हो। बिल्कुल भाई, कुछ मैं अपडेटेड रखूंगा डेफिनेटली।
2: और उस भाई को बोलना कि भाई आपके लिए बहुत सी जनता परेशान बैठी है।
0: भाई वो सुन रहा है भाई, अभी तो सुनने उसे सुनने के लिए लगाया है मैंने, सुन रहा है इंडिया में बैठे बैठे।
2: दोस्तों बताना भाई कि आप बहुत जनता परेशान बैठी है, आप अकेले कैसे कर रहे हो, हमें भी एडवाइस चाहिए।
0: कैसे ये ग्लिच मनी ग्लिच निकला, ठीक है डन हो गया।
2: ये तो दुआ करता है कि भाई ये ग्लिच हमारे पास भी निकला भाई।
0: भाई भाई भाई भाई ये पता नहीं कैसे हुआ है, बट जो भी हुआ है
2: ऐसे लोग जिनको सोने का या गेम खेलने का शौक हो,
0: हाँ
2: वो कौन चाहेगा ड्यूटी पे जाने का भाई।
0: अरे इतना मत ललचाओ मेरी जान। ये एक ही के साथ हुआ है, ये वापस रिपीट होने वाला ग्लिच नहीं है। हाँ काश
2: वो कोरियन ड्रामे जो आते हैं ना,
0: हाँ
2: उनमें वो कहते हैं भाई हमें एक सिस्टम मिल गया, सिस्टम ने हमें ये दिया, सिस्टम ने हमें वो दिया, भाई के साथ वो हुआ है, भाई को मिल गया सिस्टम,
0: बस यही हुआ
2: है। उसको पैसे दे रहा भाई।
0: ये सिस्टम ही हैंग हो गया भाई, सिस्टम हैंग हो गया पूरा। ठीक है मेरी जान, देखते हैं बाकी रिसोर्स, मैं जल्दी से कहानी शुरू करता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मैं जल्दी से सारे मैसेज पढ़ दूँ, कल वाली स्टोरी भी कमाल वाली थी। क्या कहते हैं, थैंक यू सो मच मलिक वकास साहब। यूसुफ भाई ने मैसेज किया है, कबीर ये सभी जो कह रहे हैं कि सैलरी आ रही है तो मज़े करो, ऐसा नहीं है। एक दिन जब ये बात मैनेजमेंट को मालूम हो गई, भाई मालूम है उन्हें,

0: they might be sued to him to reimburse it all. But uske paas sare saboot hai with all the emails and everything. Baaki ek message, salam Kabir bhai. Ye aaj ka topic hai story. Bhai topic tha bhai. topic tha Abdullah bhai. साद नूर भाई ने लिखा है, मेरा नाम साद नूर है कबीर भाई. जब कंपनी को पता चलेगा कि इसने इतने मंथ तक सैलरी ली है तो उतने मंथ उसको कंपनी में फ्री में काम करना पड़ेगा. अभी तक तो ऐसा कुछ हालात बने नहीं है साद भाई, अभी तक एकदम स्मूथ जा रहे लाए. कह रहे भाई इसके पास ही माँ की दुआ है. ये मोहम्मद भाई ने मैसेज किया है. जसविंदर भाई कहते हैं, जनाब तुहाडा की हाल है? पास बस वीर जी चंगा सीगा, तुसी दसो. और राशिद भाई वालेकुम अस्सलाम, मानो या ना मानो एचआर की गलती है. एक भाई और कह रहे हैं, फैसल भाई फिर कह रहे हैं भाई एचआर में कोई इसका वेल विशर बैठा हुआ है. मुझे भी ऐसी लग रहा है भाई. थैंक यू फॉर शेयरिंग द स्टोरी. नो प्रॉब्लम शहजाद भाई, नो प्रॉब्लम. और एक ज़रा मैं लास्ट कॉल कर लूँ, उसके बाद कहानी सुनाऊंगा. आज की कहानी इज़ हॉरर. सिद्दीकी भाई ने मैसेज किया. सिद्दीकी भाई क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, सिद्दीकी भाई का मैसेज पढ़ा ही नहीं. अच्छा, उन्हीं का मैसेज था ये चार वेल विशर वाला. तो एक और ज़रा हम कॉल कर लेते हैं. किधर गया नंबर? ओके, मैं कर रहा हूँ कॉल एक हमारे भाई हैं जो बहुत प्रचलित हैं. सुबह बहुत आते थे, शाम में कभी भी आते हैं. मौसमी, अस्सलामुअलैकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: हाँ जी भाई, क्या हाल है भाई के?
1: ये प्रचलित क्या होता है पहले ये बताओ.
0: क्या क्या क्या
1: क्या बोला तुमने मुझे? ये भाई हमारे कौन कौन
0: प्रचलित प्रचलित प्रचलित बोले तो फेमस, बोले तो मशहूर.
1: अल्लाह रहम करे भाई. क्या मसला है तुम्हारे साथ?
0: मेरे साथ नहीं मसला है, जो मैंने मसला शेयर किया है वो भाई बहुत बढ़िया चल रहा है मसला. तो मैंने कहा पब्लिक से पूछूं.
1: बता रहा हूँ वाकई ये जन्नत की हवाओं में से एक हवा ले रहा है. बोलो आन दो.
0: तो क्या सलाह है
1: दरवाजे का भाई? कुछ नहीं कर रहे भाई, ठंड प्रोग्राम में मीठे चाल खत्म बात.
0: अच्छा, नथिंग टू डू
1: भाई. उसके बाद देखो मेरा यही चल रहा था दिमाग में, मैंने कहा अगर कंपनी को ले रहा है तो वो तो रिम्बर्स की डिमांड करेंगे, लेकिन अगर उसको एविडेंस देना सारे, अगर रियली में है
0: सारे ईमेल है सब कुछ है, ऑल द एविडेंस इज देयर. यस,
1: क्योंकि वो भाई तेरा दोस्त है, वो कुछ भी हो सकता है. पनौती समझ रहा ना भाई?
0: वो मेरा दोस्त है तभी तो चमत्कार है.
1: क्या मसला है ना ये हमारा? अब भी सुनो ये वाली बात, ये भाई कबीर के दोस्त हो तो भाई तुम्हारे से कुछ भी कभी भी कैसे भी हो सकता है. हाँ ठीक है, वो कब्बा बिरयानी खिला के तुम्हारे किडनी निकाल लेंगे, पता भी नहीं चलेगा.
0: भाई अगर आपकी दोस्ती तलावाई से है तो हथेली पे बाल भी आ सकते हैं, साफ बता दें आपको.
1: मैं बता रहा हूँ. अच्छा, हम पे डाल दी. भाई वाह,
0: आपके लिए सलाम भी आया है भाई. तला भाई को सलाम. ये मोहम्मद भाई कह रहे हैं.
1: भाई वालेकुम सलाम भाई. मैं बताओ दीजिए भाई सब कबीर यार, भाई प्लीज यार तू मुझसे आधी सैलरी ले ले.
0: हाँ.
1: वो 200-300 जो बनते हैं. हाँ. सुबह में आ जाए यार.
0: अच्छा, तो ये ऐसा सीन हो रहा है क्या?
1: अबे बोरियत चल रही भाई. सुबह में यकीन करो यार, मैं तो आज मैं घुसने वाला था अंदर.
0: वो सलमान खान का बिग बॉस डालोगे ना, आ जाऊंगा मैं अंदर.
1: नहीं नहीं, मैं बाबू भैया बन गया था सुबह में. रात फोन वाली कहानी हो रही थी. जज्बात से खेलते यार, कसम से यार, पूरे दिन को लेके यार.
0: मुझे लग रहा है बहुत लंबी कॉल सुन ली है आपने मुझे ऐसा.
1: भाई मैं बस नाखून नोचने, मैंने नाखून थक डिग्री दिया मैंने अपने आपको सुबह. मैंने क्यों करा ये, मैंने क्यों किया?
0: नाखून काटने के बाद भी नाखून टूट जा रहे हैं, बताइए. अलग ही डेस्परेशन चल रही है.
1: जड़ से निकाल दिए मैंने यार. मैं क्या दे चल रहा है यार, क्या चल क्या रही है?
0: अच्छा, ऐसा हो
1: गया. कहां से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग?
0: बहुत बहुत बहुत ज्ञान मिल गया क्या आपको?
1: भैया भैया बस यकीन करो, मैं सोना खरीदते रही है सुबह.
0: इसका एक इलाज ही ठंडा तेल आता है मार्केट में लाल रंग का.
1: पिलाओ इनको, जो सुबह है ना इनको पिलाओ, जहर मिला के पिलाओ उसको. सर पे नहीं लगाओ इनको, इनको पिलाओ. इनको अंदाजा होगा.
0: नहीं, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि सुबह का शो आफ्टर अगस्त शायद हो भी सकता है, क्योंकि टर्न आती रहती है किसी की, सो यू नेवर नो.
1: भाई पता नहीं है, जो मेरी टर्न आई है ना सुबह, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया जो मेरी टर्न आई है ना सुबह.
0: आज पहली मरतबा तला भाई की बात आवाज में दर्द नजर आ रहा है मुझे, मैंने कभी सोचा नहीं था.
1: भाई बहुत तकलीफ में हूँ भाई, एक दिन घर बैठा भी नहीं जा रहा, बहुत तकलीफ में हूँ.
0: अरे बाप रे यार, अगर तला भाई को टेंशन दे दी तो यार ये तो बहुत बड़ी
1: तीन घर में ईमेल करने वाला था आज सुबह तुम्हारे शो पे.
0: अच्छा,
1: ऑफिस पे है भाई, कबीर को बुलाओ सुबह में. हमें नहीं पता तुम्हारी.
0: नहीं नहीं, नहीं होगा होगा, वो भी होगा.
1: तुम्हारी कुत्ती को सलाम. मुझे नहीं पता कबीर को.

0: अभी टर्न आएगी मुझे लगता है,
1: पता नहीं कब आएगी भाई, दो दो महीने से,
0: तीन महीने का होता है ना, तीन महीने का साइकिल होता है, तीन महीने का साइकिल होता है, तो जून से अगस्त
1: तवादुन खराब हो जाएगा तीन महीने के अंदर अंदर भाई, नफ्सियात से खेल रहे हो हमारे तो।
0: अरे रे रे रे रे रे रे रे रे।
1: ये बेचारे मासूमों को चेहरा तुम्हारे आंखों के सामने नहीं आता कि सुन रहा तुम्हें
0: जभी तो मैंने कहा कि आपके चेहरे पे मुझे ऐसा जो है एकदम इरप्शन मैंने कभी सोचा नहीं था, तो वो आज सुनने को मिल रहा है
1: तो। और ये बात सुनो मेरी भाइयों जो भाई ने बोला ना, मैं इंस्टा पे मैसेज करूंगा भाई मिल लो जुम आपके वीक में, भाई ये आदमी जो है इससे मिलना है तुम्हें,
0: वो वीक याद है, वो वीक याद है कैसे गया था वो, एक सेकंड एक सेकंड, लॉर्डशिप लॉर्डशिप आपको वीक याद है वो कैसे गया था, एक ही सरकारी डिपार्टमेंट एक्टिव था पूरा हमारा, ठीक है, और जुमे को भी एक्टिव था, आपको याद होगा वो हफ्ता कैसा गया था।
1: भाई तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हें आज एक लड्डू खिलाऊंगा मैं।
0: अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा,
1: एक लड्डू खिलाऊंगा, दूसरा तुम खुद मंगाना,
0: ठीक है।
1: हाँ तो मैं एक पिक्चर भेजूंगा, तुम्हारे नंबर भेजूंगा, वरना सबको सबका मुंह खट्टा नहीं करना।
0: चलो ठीक है, भेजो, मैं भी कहानी की तरफ बढ़ रहा हूँ और कहानी सुन सको तो सुन।
1: तुम चलती पड़ती कहानी हो भाई।
0: थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके मेरा भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज। और भाई के बाद जल्दी से मैसेज पढ़ता हूँ, लास्ट कहानी के लिए लेट हो रहे हैं हम। रिजवान भाई ने मैसेज किया, भाई उसको बोलो एचआर को मिठाई और पिज्जा दे, साथ में अपना नंबर लिख के दे, वो भी लाजमी राबता करेगा। और मैसेज क्या है, यूसुफ भाई, इज इट हैपनिंग? यस इट इज़ अ रियल केस यूसुफ भाई, जो आज मैंने शेयर किया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, अनबिलीवेबल है, इसलिए ही मैंने शेयर किया, वरना ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं देता। और एक मैसेज आया है, सिद्रा बहन ने मैसेज किया है, हमारी सिद्रा बहन अस्सलाम वालेकुम लिखती है, अरे बिल्कुल अग्री, बहुत ही फारिक तरीन लोग आते हैं कभी कभी। हमजा भाई लिखते हैं, मैं तला भाई की बात से मुत्तफिक हूँ। अरे भाई हाँ भाई, सुबह में आ जाए कबीर भाई, ये भी कह रहे हैं, अरे बाप रे भैया, आप लोग जो है ना, आपकी मोहब्बत कमाल की है। इरफान भाई के बाद मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, एंड सारे मैसेज पढ़ दिया मैंने, ओके क्या है, उसकी छुट्टी हो सकती है 6 महीने की जगह में 1 साल भर दिया हो, ऐसा हो सकता है, मे बी। अब्दुल करीम भाई, आपका जवाब मुझे लॉजिकल लग रहा है, बट एनीवे देखो आज की जो स्टोरी है, मिस्ट्री और हॉरर का मिक्सचर है, इट इज़ नॉट आउट एंड आउट हॉरर, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, और आपको बहुत मज़ा आएगा, सो जस्ट बी रेडी। हो सकता है कि हर किसी के टेस्ट की कहानी ना हो, बट आई होप कि आपको अच्छी लगे। तो एक बस छोटा सा ब्रेक, एक दो प्रोमो, देन विल बी बैक, ओके, सो स्टे ट्यून्ड।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर, दिल से देसी।
3: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
2: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
3: गेम ऑन,
2: वॉल्यूम अप,
3: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
2: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
3: ओनली ऑन FM 107, दिल से।

वो थोड़ा सा मुझे डिप्रेस्ड और डिस्टर्ब्ड लग रहा है। एंड मिस्टर वेम्बली का शक सही था। जो वहां पे पुलिस वाले पहुंचे, उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने दरवाजे को तोड़ा और जब वो अंदर गए तो उनके सामने जमीन पे एक शख्स पड़ा हुआ था जिसके उल्टे हाथ से बहुत सारा खून निकल रहा था, उसकी कलाई से, और उसके सीधे हाथ में एक पेंट ब्रश था जो उसकी उंगलियों में फंसा हुआ था, और सामने उसके कैनवस था, एक तैयार पेंटिंग, और उस पेंटिंग के साइड में उसने एक टाइटल भी दिया था इस पेंटिंग को। टाइटल था द एंग्विश्ड मैन। ये जो पेंटिंग थी, पुलिस वाले बड़े हैरान थे कि बड़ी अजीब सी है। मैं इस पेंटिंग की डिस्क्रिप्शन आपको देता हूं। सो ये पेंटिंग में एक शख्स उसने ड्रॉ किया था रेड और ऑरेंज किस्म का कलर से। इस पेंटिंग में एक शक्ल थी जिसकी आंखें नहीं थी, बट आंखों के जो सॉकेट थे वो बने हुए थे। इस पेंटिंग में जो चेहरा बनाया था वो ऐसा लग रहा था कि चिल्लाते चिल्लाते टाइम में फ्रीज हो गया हो, उसकी शक्ल रुक गई हो, एंड उसके बाकी फीचर्स, नाक वगैरह नहीं थे। पुलिस को ये पेंटिंग देखने के बाद और उसकी हालत देखने के बाद एक चीज समझ में आई कि इस बंदे ने अपनी जान ले ली है, और दूसरी चीज, इसने अपने ब्लड से भी इस पेंटिंग को तैयार किया है। सो समवेयर डाउन द लाइन उसने अपने लेफ्ट नस पे मारा और ब्लड को पेंट में मिलाया, या ब्लड से पेंटिंग करी थोड़ी बहुत, वो क्लियर नजर आ रहा था। दे टुक हिम अवे, और ये पेंटिंग उसी अपार्टमेंट में काफी टाइम तक रही। मिस्टर वेम्बली वॉज फीलिंग वेरी वेयर्ड अबाउट ऑल दिस सिचुएशन। उन्हें वो सब कुछ याद आ रहा था कि इस आर्टिस्ट ने मुझसे कहा था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी पेंटिंग है, कहीं उसका मतलब ये तो नहीं था कि इस पेंटिंग के बाद वो जिंदा ही नहीं रहेगा। ही वॉज रियली रियली वरिड। उन्होंने कहा कि मैं इस पेंटिंग का पोजिशन चाहता हूँ। उन्होंने कानून से लड़के, जो ज्यादा मुश्किल नहीं था, उन्होंने वो पेंटिंग को अपनी तरफ ले गए। एंड ही फेल्ट रियली रियली वियर्ड अबाउट इट। उन्हें अजीब अजीब से ख्वाब आने लगे। ही वॉज फीलिंग एज इफ उन्हें कॉन्स्टेंटली कोई घूरता रहता है उन्हीं के घर में। और ये सब कुछ जो वो हो रहा था, तो उनका जो माइंड था वो उनके साथ ट्रिक कर रहा है कि उनके साथ हो रहा है। ही वॉज रियली रियली कन्फ्यूज्ड। एंड इवेंचुअली उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इन द मिड्स ऑफ एवरीथिंग उन्हें एक मरतबा हार्ट अटैक भी आया। एंड ही कुड नॉट एक्सप्लेन, क्योंकि वो बहुत हेल्दी रहते थे, भले ही वो अकेले रहते थे, बट ही वाज क्वाइट हेल्दी एंड वेल डूइंग, खुद खाना पकाने वाले, खुद सब कुछ करने वाले। अचानक से जो उनको हुआ तो किसी को भी हजम नहीं हुआ। हार्ट अटैक के तुरंत बाद उन्होंने किसी से कोई बात तो नहीं करी, लेकिन उस पेंटिंग को फौरन एक रिलीजियस कम्युनिटी को सौंप दिया। उस कम्युनिटी ने पूछा कि आप ये हमें क्यों दे रहे हैं, तो मिस्टर वेम्बली ने कहा कि प्लीज इस पेंटिंग को बाहर मत आने देना। और खुद उन्होंने ज्यादा कुछ बताया नहीं, बस इतना बोला कि प्लीज इसको आर्ट समझ के कहीं टांगिएगा नहीं, इसे कहीं रख दीजिए। इस रिलीजियस कम्युनिटी में एक खातून थी, और वो उनकी जो क्यूरियोसिटी थी, जो उनकी अंदर जानने की इच्छा थी इस पेंटिंग के बारे में, वो बहुत बढ़ती जा रही थी। एंड इवेंचुअली उन्होंने इस पेंटिंग को आगे फॉरवर्ड किया, लेकिन ये पेंटिंग वापस कैसे ना कैसे 20 की टाइमलाइन में वापस इस रिलीजियस कम्युनिटी में आती रही। अब आई विल टेक यू फास्ट फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे ले चलता हूं। इन द लेट 80s, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 1980s, इस वक्त एक शख्स था शॉन, और उसकी दादी जो थी वो रहती थी अकेले सबर्ब्स में। उनके हस्बैंड का इंतकाल हो चुका था, एंड शी वॉज लिविंग अलोन। और वो काफ़ी रिलीजियस थी, और वो भी एक रिलीजियस कम्युनिटी का हिस्सा थी, और उनके पास ये पेंटिंग पहुंची थी। शी बिलीव्ड कि ये पेंटिंग को अपने पास रखेंगी, और वो अपने पोते को और सबको बताया करती थी इस पेंटिंग की कहानी। उन्हें लगता था कि देर इज समथिंग रॉन्ग विद द पेंटिंग। कभी कभी उन्हें कोई अपने हॉलवे में चलता नजर आता था, तो कभी उन्हें लगता था कि धीरे धीरे उनके दरवाजे को कोई खोल रहा है। कभी ऐसा लगता था कि कोई उनके बिल्कुल पास में बैठा हुआ है। कभी ऐसा लगता था कि उनके पैर पे अचानक से, जब वो सोने

ये कोशिश कर रही है तो वजन रखा हुआ है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर हैपनिंग. और उन्होंने चुपचाप फिर उस पेंटिंग को बांध के कागज रखे.

शिकार हो गया। वो बच गई, उनके साथ साथ घर का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बचा और वो थी ये पेंटिंग, द एंग्विश्ड मैन। और दादी ने इसके बारे में जब रिसर्च करी, इस स्टोरी के बारे में पढ़ा, देन शी केम टू नो कि जो आर्टिस्ट है उसने पेंट ऑयल में अपना ब्लड भी मिलाया था। ये जो ग्रैंड मदर थी, जो दादी थी, इनका इंतकाल हुआ इन 1999 जब ये 96 साल की थी, 96 ईयर्स ऑफ एज। और उसके बाद कहानी पहुंचती है 2010 में, जब शॉन जो इनका पोता था वो बड़ा हो गया और उसने इस पेंटिंग को अपने पास रख लिया। शॉन लव्ड इट। शॉन इस पेंटिंग को देख के डरता जरूर था क्योंकि उसकी दादी ने बहुत सारी कहानी सुनाई थी, लेकिन वो रैशनलाइज करना चाह रहा था हर एक चीज को, वो जानना चाहता था कि ऐसा होता है क्या, एंड ही जस्ट वांटेड टू कीप इट। उसकी जो वाइफ थी वो नहीं मानने को तैयार थी, उसने वाइफ से बहस करी, दोनों की बहुत बहस हुई, उसकी वाइफ ने फाइनली कहा अच्छा ठीक है, बट हम अपने कमरे में नहीं रखेंगे, हम इसे स्पेयर रूम में रखेंगे। एंड उन्होंने इस पेंटिंग को अपने खाली रूम में, गेस्ट रूम में टांग दिया, जहां पर कोई आता जाता नहीं था, जिसकी वजह से देर रात इन्हें फुटस्टेप्स सुनाई देते थे। हर रात बीच में से दोनों उठ जाते थे, कभी कभी किसी के कोने में एक दबी भी आवाज में रोने की आवाज आती थी, कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई बहुत गहरी गहरी सांस ले रहा है इस पेंटिंग के पास से, एक मफल्ड आवाज में, जैसे कोई चिल्लाने की कोशिश कर रहा हो। एंड ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग। एंड फिर शॉन की जो वाइफ थी उसने बोला, शॉन मैं जानती हूं तुम भी पढ़े लिखे हो, मैं भी पढ़े लिखी हूं, बट आई रियली फील कि जब तुम यहां चले जाते हो, मैं किचन में होती हूं या फिर अपर फ्लोर पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे या तो साथ साथ कोई है या मेरे पीछे है या मुझे कोई घूर रहा है। एंड शॉन वॉज लाफिंग, शॉन वॉज थिंकिंग ये सब फालतू की बात है। बट देन एक रात शॉन चिल्लाते हुए उठा, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो उसने सपना देखा वो कितना सही और कितना सच था, क्या वो सपना था या वो सच था। ही वॉज रियली रियली कन्फ्यूज्ड, और इस कन्फ्यूजन में वो चिल्ला के उठा और पसीना पसीना हो चुका था। उसने अपनी बीवी को बताया कि उसने सामने एक फिगर देखा जो वो बता नहीं सकता कि वो सपने में था या सच में, पर उसके सामने बिल्कुल जो पेंटिंग में चेहरा बना था वैसा ही उसने फिगर अपने बिल्कुल बेड के पास देखा, जिसे वो रात भर उसे और उसकी बीवी को देख रहा था। एंड इसके बाद भी शॉन माना नहीं, शॉन ने कहा नहीं, ये हम दोनों का वहम है, शायद हमारा दिमाग हमारे साथ खेल रहा है, इट इज ट्रिकिंग ऑल ऑफ अस। और उसने वो पेंटिंग फिर भी रखी। शॉन का बेटा भी था और शॉन का बेटा सीढ़ियों से गिरा, एक नहीं छह बार। पहली मर्तबा ही उसने मां बाप को बोला कि किसी ने मुझे धक्का दिया, नहीं माने। दूसरी मर्तबा माने लेकिन लगा कि बच्चा भी इस कहानी में उलझ रहा है। तीसरी मर्तबा गिरा, इट वॉज रियली स्कैरी। एंड उसके बाद उन्होंने इस पेंटिंग को शिफ्ट करने की कोशिश करी बिना बंद किए, और उसके बाद भी इनका बच्चा गिरा। इट वॉज हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस फॉर द फैमिली। एंड वो कॉन्स्टेंट साउंड, वो हल्के हल्के चीजों का मूव होना, एंड द पेंटिंग इटसेल्फ वॉज वियर्ड। फिर एक सुबह उसकी वाइफ, सुबह सुबह जब ये किचन में था और वाइफ अपर रूम में थी, शी वॉज गेटिंग रेडी एंड शी शाउटेड, वो बहुत बहुत जोरों से चिल्लाई। वो एक ऐसी टेरेबल स्टेट में थी दैट शी नीडेड हेल्प, और वो ऐसी हेल्प थी कि किसी को ये बता देना, कह रहे सब ठीक है, कोई बात नहीं, बुरा सपना था, ये वैसा हाल नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा बुरा हाल था। शी नीडेड अ साइकियाट्रिस्ट। उसकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन खराब होती जा रही थी। एंड इवेंचुअली इस पेंटिंग को उसने बंद करके रख दिया, क्योंकि उसकी दादी ने कहा था कि इसे जलाओगे तो ये हो सकता है, इट वॉज जस्ट अ कन्फ्यूजन कि हो सकता है जलाने पे ये वायलेंट ना हो जाए। दे वर गेटिंग नोज ब्लीड्स, हर रात नाक से खून आ रहा था इनके। इट वॉज रियली रियली वेयर्ड। और ये पेंटिंग वापस भी ना तो कम्युनिटी लेने को तैयार थी और ना कोई इसे खरीदने के लिए तैयार था।

उसके बाद जब YouTube का जमाना आया, जब लोग वीडियोस अपलोड करने लगे, तो इसी सीरीज ऑफ वीडियोस में शॉन ने भी वीडियो अपलोड किए और बहुत सारे ग्रुप्स इसमें क्यूरियोसिटी जगा रहे थे कि वाह ये क्या है वो क्या है, एंड फिर कहानी इसकी इरप्ट होने लगी. एंड फिर शॉन को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि मैं किसी को क्यों दूंगा, किसी की जिंदगी क्यों बर्बाद करूं, आई विल कीप इट. और फिर फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, दो साल पहले ही एक वीडियो शॉन के बेटे ने बनाया. इस बार उसने पेंटिंग के ऊपर से कवर हटा दिया था. और फिर एक और वीडियो है जिसमें ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये वीडियो 2025 का है, महज एक साल पहले का. उसमें वो पेंटिंग बैक सीट पे गाड़ी की रखी हुई है और उस पर कैमरा फोकस्ड है. और फिर एक वीडियो में पेंटिंग को घर पे दिखाया गया है. वीडियो में सिर्फ उसने इतना बोला पहले तो कि अभी तक मेरे साथ इस पेंटिंग ने कुछ नहीं किया है. लेकिन इसके बाद शॉन के बेटे ने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया है अभी तक. देयर इज नो वीडियो. वो वीडियो भी बहुत अब्रप्टली खत्म हुआ है. और वो पेंटिंग और शॉन का बेटा और शॉन, नोबडी नोज कि कहां और किधर है. जब आप इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि किसी को भी पता नहीं है उस आर्टिस्ट का नाम जिसने इस पेंटिंग को बनाया है. बट ऑल ऑफ अस नो फॉर नाउ कि उसने एलिजिडली अपने ब्लड को पेंट में ऐड किया था और इसको बनाया था. पेंटिंग है द एंग्विश्ड मैन. ये कहानी आपके सेंस में शायद पूरी ना हुई हो और ये शायद कभी पूरी होगी भी नहीं. आई वुड लव टू ये कहानी किसी मुकाम पे पहुंचे और वो पेंटिंग के बारे में और पता लगे. बट एज इफ नाउ वी डोंट नो कि वो पेंटिंग कहां पर है, किसके पास है, शॉन के बेटे के पास है. अगर है तो उसके बाद से वीडियो क्यों नहीं आए हैं. इज ही ऑल राइट, इज ही सेफ, देयर इज नथिंग ऑन हिम. और ये थी वन ऑफ द मिस्टीरियस स्टोरीज अबाउट वन ऑफ द वियर्डेस्ट पेंटिंग्स एवर, द एंग्विश्ड मैन. अब आपके ऊपर, आप इसके बारे में पढ़ना चाहें, देखना चाहें, पेंटिंग इज अवेलेबल इंटरनेट पे है और जाके आप देख सकते हैं. कुछ लोगों ने इसी कॉपी बना के बेचने की भी कोशिश करी, बट क्लियरली दोज आर द कॉपीज एंड देर इज नो रिपोर्ट ऑफ अदर पेंटिंग्स बींग रियल. सो ऑल द बेस्ट. ये थी इस बार वीकेंड की स्टोरी आपके हवाले. 666-22-107 नंबर है, 666-22-107. आई वुड लव टू नो किस कहानी पे आपका क्या कहना है, इस पेंटिंग में आपका क्या कहना है. और अभी तक अगर आपने इस पेंटिंग को ढूंढ लिया है, देख तो लिया ही होगा, है ना खूबसूरत. बाकी रिस्पांस दे दीजिएगा 666-22-107 पर.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 Time Check.
1: आज ही तो 6:08 मिस्ट्री के साथ जीना पड़ेगा आपको, क्योंकि कुछ लोग की शिकायतें रहती है ना मुझसे, क्या एंडिंग कहाँ भाई, यो है रियल कहानी, इसमें ना होती पेंटिंग, सॉरी एंडिंग, पेंटिंग के ऊपर कहानी। बट हाँ, कुछ लोगों ने देखी और वो जैसे सात भाई ने मुझे बोला और उन्होंने बाकायदा पेंटिंग का स्क्रीनशॉट निकाल के कह रहे हैं कि भाई ये तो काफ़ी डरावनी। मैंने बोला ही था आपको द एंग्विश्ड मैन अगर ये देखना, अभी तक इस पर कोई मूवी शूवी नहीं है बट इट हैज़ इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ मूवीज। एक मैसेज आया है शॉन के बेटे को, जिन ले गया सर उनका नाम ले लीजिए, उस्मान खान फैसल साहब ने सुनी है कहानी अरबाज भाई के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों को सलाम और बहुत बहुत सारा प्यार। एक कॉल आ रही, कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
1: जी कादिर भाई, हाँ जी भाई,
2: इतना वो डर तो उसमें नहीं लग रहा था, वो स्टोरी में जितना ये पेंट देख के डर लगा मुझे।
1: चलो आपने देख
2: बात है कैसा पेंट, बहुत अच्छा माशाल्लाह स्टोरी। असल में एक बात और है कि स्टोरी सुनाने का तरीका जो आपका माशाल्लाह वो बहुत अच्छा है माशाल्लाह।
1: थैंक यू सो मच,
2: इसलिए कि हम पूरे उसमें गुम जाते हैं, गुम अंदर ही।
1: बहुत बहुत शुक्रिया,
2: बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। चलो ठीक है, बहुत
1: देख लिया पेंटिंग, देख ली
2: कसम से, देख के मुझे डर लगे इसलिए तो फोटो आपको सेंड किया जल्दी।
1: अच्छा नहीं नहीं सही सही,
2: चलो ठीक है इंशाल्लाह और भी कॉल करेंगे ना, अपना अपना वो राय देंगे अभी, लेकिन बेहतरीन
1: बहुत बहुत
2: कमाल की स्टोरी और माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया।
1: वालेकुम सलाम। तो ये उस्मान खान फैसल साहब और अरबाज भाई दोनों को बहुत सारा प्यार और बहुत बहुत शुक्रिया कहानी सुनने के लिए। खातिम भाई ने भी और तबसुम, मैंने वैसे ये कह रही स्टोरी काफ़ी कबीर भाई, इनफ फॉर द वीकेंड, इंटरनेट पे नहीं देखनी ये पेंटिंग, बहुत डर लग रहा है, लेकिन सोच रही हूँ एक बार देख लूँ क्या, एक बार आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम भाई, कलाकारी से दिल उठा रहे हो आप हमारा।
1: थैंक यू भाई। कैसे भाई?
3: अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा ऐसे कुछ लोग ना वाकई होते हैं जिनको ना अपनी जिंदगी तो अजाब लगती लगती, वो बोलते हैं हम तो डूबे हैं,
1: तुम को भी डूबेंगे, तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं।
3: तो भाई यार हमें जिंदगी अच्छी नहीं लग रही, हम तुम्हें भी नहीं लग देंगे, चलो हमारे साथ ही।
1: हाँ वैसे ही सीन है भाई, ये आर्टिस्ट ही वैसा था भाई।
3: और ये भाई ये ज्यादातर या तो शेरो शायरी वाले ऐसे होते हैं, वो दिखाओ साहब बेचारों का हाल क्या हो गया था, ठीक है, और या फिर ये पेंटिंग वाले,
1: अरे लपेट लिया सबको
3: भाई, अलग ही दुनिया होती है।
1: बेशक बेशक भाई, होती है भाई अलग दुनिया। और पता है एक मैं सही बताऊं, आर्टिस्ट का सनकी होना भी जरूरी है, ये भी जान लो आप, पता है आपको
3: वो तो बात है, लेकिन इतना भी होना जरूरी नहीं,
1: इतना नहीं कुछ ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, बट आर्टिस्ट का सनकी होना भी जरूरी है, ये मैं जरूर मानता हूँ, ऐसा तो जरूर होना चाहिए।
3: तो हाँ। वो सुना था ना, एक जहाँ बसता है सितारों के पास, हम वहीं रहते हैं, ये वो भी बंदा था।
1: हाँ एग्जैक्टली ये वही था भाई। ये मतलब जिनका दोस्त भी होगा उनकी तो मतलब हालत ऐड हो जाती होगी भाई, कैसी कैसी बहगी बहगी बातें करता था ये आदमी, तो मैं इम्प्रेस्ड भी हूँ और साथ में हैरान भी हूँ, दोनों चीजें हैं।
3: और अच्छा ये तस्वीर आई है, मुझे भी भेजना, मैं भी देखूं यार कैसी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, द एंग्विश्ड मैन है पेंटिंग का नाम, देखना।
3: आपके पास आ तो गई यार, मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी यार कभी।
1: अच्छा अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा अभी कुछ देर में, भेज दूंगा, भेजता हूँ, ठीक है।
3: बाकी बेस्ट ऑफ लक यार, लेकिन ये ना ऐसे कहानियां जो है बाकी ज्यादातर अंग्रेजों के पास हुई है, हमारे पास नहीं हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास मिले या तो पक्के ना कहा मासिक ले।
1: अरे हमें कहाँ डरा रही है पेंटिंग भाई, कैसी बातें कर रहे हो यार, कहाँ डरा रही है, ऐसे तो हम कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं जाएगा भाई, हम तो खट्टी टॉफी खाए कुछ है, देख लेंगे भाई। थैंक यू मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन गाने सुनने के लिए जज़ाकअल्लाह भाई, ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और कह रहे हैं एक भाई ने मैसेज किया, कबीर भाई पेंटिंग मुझे भी भेजिए, सब को आज पेंटिंग भेजो। ये लो यूसुफ भाई, देख लो पेंटिंग। यूसुफ भाई ने मैसेज किया है, क्या लिखा है उन्होंने, कबीर बहुत ही सस्पेंस मिस्ट्रीज हॉरर स्टोरी, मैं इसे गौर से सुन रहा था, एक एक सेकंड मिस हो जाए तो ना जाने क्या होगा, एंड तक सस्पेंस जबरदस्त, ऐसी स्टोरीज कहानियां एंड नहीं होता, सही है। मैं भी पेंटिंग देखी है अभी, कितनी डरावनी है, बहुत डर लग रहा है, वो बेचारा ये धीरे इसको कहीं डिस्ट्रॉय करता तो इतने लंबे दौर तक नहीं जाती, ट्रू। और हाँ कबीर, मैंने एक शॉर्ट फिल्म ऑल्टर पर देखी थी सिमिलर टू दिस पेंटिंग, बहुत ही हॉरर, मुझे देख के गूज़बम्स आ गए, गुड दैट यू स्टार्टेड वॉचिंग दैट चैनल यूसुफ भाई, उसमें बहुत सारी अमेजिंग स्टोरीज हैं, शॉर्ट हैं तो और भी आसानी रहती है। एंड ये सब के सब आज शाम को पेंटिंग नहीं, देखो भाई देखो जम के देखो। और बाकी जो मैसेजेस हैं मैं अभी पढ़ूंगा इंशाल्लाह,
4: सो इफ यू वॉन्ट मी टू सेंड इट, मैं कहानी भी भेज दूंगा कुछ देर में, मिल जाएगी आपको, तो टेंशन नहीं लेनी है. 666-22-107, बाकी कहानी के ऊपर आपका कुछ कहना है, कोई आपका मैसेज है, सो आई वुड लव टू हेयर इट. प्लीज़ प्लीज़ मैसेज कीजिएगा. याया भाई का पढ़ देता हूँ मैसेज जाने से पहले. कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, तुम्हें अब सब पेंटिंग पर फेयर डलवा दिया है, चिलिंग स्टोरी क्या हुआ ये पेंटिंग या फैमिली, ये जानने के लिए FM 107 ट्यून इन करते रहो. भाई मुझे नहीं पता भाई, मेरे वो मत डालो, मुझे क्या पता पेंटिंग कहाँ किधर है, जिसके पास है वो जाने भाई. अरे बाप रे, माहौल को चेंज करना पड़ेगा भाई, माहौल को चेंज करना पड़ेगा. एक ग्लास को ले लूँगा प्लीज़, एक कॉल ले लेता हूँ. अस्सलाम वालेकुम.
5: सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई के?
4: बढ़िया भाई, एकदम चंगा, आप सुनाएं.
5: आज मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे पेंटिंग क्यों पसंद नहीं है, इसी रीजन की वजह से मैं पेंटिंग पसंद ही नहीं करता कभी.
4: अच्छा, यही एक वजह है
5: ये? भाई साहब ने अपने खून से लिख दी, दूसरे को चिपका दिया भाई, और वो तहस नहस हो रहा है.
4: देखिए भाई साहब, यही तो होता है, वो इसे कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन या कुछ तो कहते हैं इसको. तो वहां देखो कहां से शुरू हुई है गाली, समझ रहे हो, कहां से.
5: हाँ.
4: तो ऐसा ही है भाई,
5: कहानी तो वैसे थी बहुत जबरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत मजा आ रहा था सुनने में.
4: थैंक यू भाई.
5: लेकिन यार पेंटिंग वाकई में वो बंदा है कि नहीं है, तो ये कहानी कैसे बनी होगी कबीर भाई, जैसे आपने सुनाई ये कहानी
4: बनी कैसे,
5: मतलब जिसके पास पेंटिंग रही होगी उसी ने तो लिखी होगी.
4: उसने लिखी विखी नहीं थी उसने कहानी, डॉक्यूमेंट्स हैं और अब उसको पीस टुगेदर करके मैंने उसे नैरेटिव फॉर्म में बनाया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें, आर्टिकल्स हैं, अखबार हैं, इंटरनेट पे, इट्स ऑल ओवर द प्लेस. तो उसने वीडियो भी अपलोड किया था 2024 में 2025 में, दो मरतबा वीडियो भी अपलोड किया था उसने. जो लास्ट वीडियो था वो पिछले साल ही आया था, और वो बहुत ही अब्रप्ट सा, बड़ा अजीब सा वीडियो, उसके बाद कोई वीडियो भी नहीं आया.
5: वही ना, 2025 में भी आपने बताया कि वो एक वीडियो, मतलब
4: हाँ,
5: किसी ने अपलोड की.
4: हाँ हाँ, उसके बाद
5: कोई भी वो पेंटिंग रियल पेंटिंग है.
4: यस, उसके बाद कोई भी इसका जवाब नहीं आया, किसी ने भी कुछ नहीं किया.
5: अल्लाह बचाए यार पेंटिंग. हाँ. आर्टिस्ट के पास ही रहे पेंटिंग, अच्छा है
4: भाई,
5: हमें ना चाहिए भाई.
4: ऐसा ये भाई, आर्टिस्ट लोग ऐसे ही होते हैं, आर्टिस्ट लोग ही सनक जाए तो फिर सनका देते हैं पूरी दुनिया की.
5: सही बात है, तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हो सकती.
4: एग्जैक्टली, वही सीन है. मगर शुक्रिया कि आपने सुनी मेरे भाई,
5: क्योंकि उनकी शायद उनको दिली तकलीफ हो गया हो, पेंटिंग नहीं बिक रही हो.
4: हाँ.
5: बस लोग आके मजाक उड़ा रहे हो, इस वजह से उसने सोचा होगा कि नहीं.
4: हाँ, इसीलिए मुझे भी लगता है वो जो इफेक्ट है वो रिजेक्शन की वजह से, वो इफेक्ट बहुत सालों से बन रहा होगा उसके.
5: नहीं कि एक बंदा, लोग उसको इतना तोड़ते हैं, इतना तोड़ते हुए इतना डीप चला जाता है, वही वाला हाल हो गया.
4: तो वही ना वो, और ये जिसको भी सर्च करेंगे, दो तीन लोग मुझसे पूछ चुके हैं, द एंग्विश्ड मैन नाम है, एंग्विश्ड मैं लिख के देता हूँ.
5: मैंने सर्च की थी अभी पेंटिंग वो एंग्विश्ड मैन की. हाँ. लेकिन कोई बच्चे की और किसकी पेंटिंग था मैं समझ नहीं पाया. मैं फिर जब फ्री हुआ ना तो मैं फिर से देखना चाहूंगा.
4: डन डन, द एंग्विश्ड मैन लिखना, आ जाएगा एंग्विश्ड मैन पेंटिंग, इट विल अपीयर, नो प्रॉब्लम.
5: एंग्विश्ड मैन,
4: हाँ एंग्विश्ड मैन, और देख लेना फिर मुझे बताना, ठीक है.
5: और ये अभी वीकेंड आ गया है तो कोई मूवी नहीं है हॉरर बेहतरीन
4: भाई इस हफ्ते जो है? मैं देखने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक, अभी इस हफ्ते मैंने कोई हॉरर देखी नहीं, पर इवल डेड बर्न जो है अच्छी गई है मैंने सुना है. तो अगर इवल डेड बर्न देखने जाओगे तो अभी थिएटर में भी लगी हुई है, और शायद उसका प्रिंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेबसाइट पर आ गया होगा.
5: इवल डेड वो जो पुरानी वाली इवल डेड है उसी का है?
4: हाँ उसी का पार्ट है ना, उसी का. हाँ पिछली बार इवल डेड राइज. और अगर आपने मैरियन नहीं देखी, मैरियन देखी आपने?
5: नहीं मैरियन नहीं देखी.
4: हाँ मैं मैसेज करूंगा आपको, आप मैसेज करना मुझे. मैरियन नाम की एक सीरीज है, छोटी सीरीज, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और एक ही सिंगल उसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि सीजन आया उसका, एक ही सीजन है.
5: अच्छा, अच्छा.
4: और मैरियन बहुत बढ़िया कहानी है भाई, बहुत बढ़िया.
5: चले भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. मैं तो सर भाई बॉलीवुड की मूवी जो अभी आई है सब देख देख के तो मन करता है कि मैं बिल्डिंग पे कूद जाऊं यार. पता नहीं क्या हो गया यार डायरेक्टर लोगों
4: को. नहीं नहीं नहीं भाई, अपने तरफ वाले डायरेक्टर्स उनके साथ पता नहीं, मुझे लग रहा है कि प्रोडक्शन हाउसेस का प्रेशर हमारी तरफ ज्यादा बढ़ गया है, तो लोग लिख तो पाते हैं बेचारे, लेकिन उसके बाद वो अजीब हो जाती है कहानी, अच्छी खासी चलते चलते।
5: हाँ, अच्छी खासी कहानी अजीब, पहले की मूवी थी, अभी जैसे वो लोग ला रहे धमाल फोर लाते हैं, ये धमाल फोर कोई मूवी है भाई?
4: सीक्वल से तो मैं भी तंग आ गया हूँ भाई, आई एम डन विद सीक्वल, बहुत हो गया भाई,
5: मैं तो आंख बंद करके भी ना देखूं वो मूवी यार।
4: तो गानों के भरोसे चल रही है भाई आजकल पिक्चरें भाई, ऑनेस्टली
5: कसम से, अब देखते हैं आवारापन बाकी उसमें क्या
4: वो है? तो भाई बायस्ड हूं मैं, तो वो तो देखने जाऊंगा ही जाऊंगा मैं, देखते हैं
5: भाई, वो तो कितने दिन से मैंने प्लान बना के रखा
4: है। हां भाई वो जरूर देखनी है, जरूर देखनी है, और थैंक यू,
5: चले भाई बढ़िया,
4: ओके
5: और भाई
4: बस भाई वीकेंड,
5: बस कहानी स्टोरी अच्छी थी भाई बस, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरे पिटिंग की शौक नहीं है।
4: ऐसे महंगी शौक पालना भी नहीं, सब बढ़िया है।
5: नहीं नहीं नहीं पालते भाई, अब मुझे नहीं चाहिए वो बटरफ्लाई पे पेंटिंग जो होती है ना, कौन कौन पिकासो।
4: नहीं नहीं भाई कोई पिकासो बनने जरूरत नहीं है, नींबू मिर्ची टांगो। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया,
5: शुक्रिया भाई,
4: ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़,
5: अल्लाह हाफिज़।
4: और भाई के बाद जो है मैं जरा एक कॉल और आ गई, उठाई लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप?
4: मैं बढ़िया भाई, आप सुनाइए।
6: सर मैं भी अच्छा हूँ
4: जी, आपका नाम?
6: सर बस छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी।
4: हाँ,
6: सर
4: ना।
6: सर मेरे बेटे का इनाम निकला था रमजान में, रमजान आया, ईद आए, बड़ी ईद।
4: हेलो, है लो, चलो इनकी तो कॉल, भाई देखो जिनका भी इनाम वगैरह है ना वो आप मैसेज उस नंबर पे करते हैं जिस नंबर से आपको मैसेज आया होगा, तो इस पे उसका डिस्कशन कुछ नहीं, वो अलग डिपार्टमेंट में फिर से बताना चाहूँगा, जो कुछ लोग इस पे कॉल कर देते हैं, जो आपके पास मैसेज आया होगा उसी पे आपको रिप्लाई करना है, एंड उसी पे अगर रिप्लाई नहीं आता फिर आप मुझे बताइए, देन वी कैन डू समथिंग अबाउट इट, मगर इस पे शो के टाइम में इट्स प्रॉब्लमेटिक। एक कॉल आई है तो जरा मैं उनको कॉल कर लेता हूँ। ये जो हमारे भाई हैं इनका, एक सेकेंड, ये माइकल भाई कॉल कर रहे हैं, माइकल भाई, केडी माइकल, केडी माइकल कॉल उठाओ, केडी माइकल, अस्सलाम वालेकुम
7: भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे बड़े भाई?
4: बढ़िया भाई, क्या हाल है भाई के?
7: बस भाई ठीक है भाई, झकास एकदम
4: जी। माइकल भाई क्या कहना है भाई का?
7: बस भाई, भाई मैं तो एक बात बोलूं भाई,
4: हाँ
7: जब जब सुनता हूँ आपको है ना भाई
4: जी, भाई
7: भाई खुशी से आकर फूले नहीं समाता भाई।
4: थैंक यू मेरा भाई, बहुत प्यार माइकल भाई को
7: भाई, क्योंकि भाई दिल्ली वाले हैं तो दिल्ली वालों को, दिल्ली वाले का अलग ही स्वैग होता है भाई।
4: थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत सारा प्यार भाई, स्वैग रखना ही पड़ता है भाई, यही तो हमारी वो है यूएसपी है, इसी को जिंदा रखने की जरूरत है भाई।
7: हाँ भाई।
4: और माइकल भाई क्या चल रहा है भाई?
7: बस अल्हम्दुलिल्लाह भाई सही चल रहा है भाई।
4: थैंक यू सो मच,
7: आप लोगों की दुआएं हैं
4: बस
7: भाई, अल्लाह मेहरबान तो करा पहलवान भाई।
4: बेशक भाई, बेशक बेशक बेशक, एकदम एकदम एकदम। मैं तो हाँ
7: एक आपको एक किस्सा सुनाना था, मैं अमेरिकन एम्बेसी में काम करता था।
4: अच्छा अच्छा,
7: दिल्ली में। तो उस वक्त 94 की बात है ये,
4: ठीक है।
7: तो मेरा जो बॉस था उसको आता है पेंटिंग का बहुत शौक था, उसको
4: बॉस को पेंटिंग का शौक था, ठीक है।
7: हाँ, वो पेंटिंग आकर पता नहीं कहाँ कहाँ से अमेरिका, पूरे यूरोप से लेके आता था,
4: ठीक है।
7: और मुझे बताता था कि माइकल ये डेट ये है $10,000 की, उस वक्त $10,000 की,
4: ठीक है।
7: मैंने भाई यहाँ पर आकर तू ऐसे शो मत करा कर, ठीक है ना भैया, किस दिन आकर तेरी चट्टी लग जाएगी और लेने के देने पड़ जाएंगे तेरे।
4: मुझे लगा कुछ और एडवाइस दियोगी, ये ऐसा मत किया कर।
7: फिर क्या हो? माना नहीं, नहीं सही में, सही में वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस है ना, वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस है नो माइक इज नॉट हैपनिंग इन इंडिया,
4: ठीक है।
7: आई बोर्न हियर सो आई नो इट वेरी वेल इन इंडिया, इट्स बेसिकली इन दिल्ली।
4: ओके ओके ओके,
7: तो मुझे बोलता, मुझे कहता है इट इज ट्रू, मैंने यस भाई साहब। उस दिन के बाद आकर उसने आकर अपने जितनी भी पेंटिंग थी ना सब कुछ थाले में बंद करके रख दिया।
4: ये कैसा डराया भाई, मुझे लग रहा
7: है क्यों। हाँ, उसके आकर दो दिन बाद ही हमारे अमेरिकन एम्बेसी की गाड़ी, ठीक है जी, वो कहीं गई लाजपत नगर वगैरह कहीं गई थी, वो ब्रेकडाउन हो गई।
4: अच्छा,
7: ब्रेकडाउन हो गई तो गाड़ी वहीं पर छोड़ के आ गए, और भैया चारों के चारों टायर गायब।
4: भाई मेरे हमारे घर के पास हो चुका है, सुबह सुबह मालिक ने अपनी गाड़ी देखी, बोले ये क्या हुआ, टायर गायब भाई, गाड़ी अपनी जगह पर एकदम सही खड़ी है।
7: और भाई बिलीव करो मर्सिडीज बेंज था, मर्सिडीज बेंज बोला तो एक रॉयल, मतलब एक फील आता था यार। उसमें उस समय आकर मर्सिडीज बेंज आकर मतलब बोला तो आकर जिन्हें चुने एम्बेसियों में थी।
1: हाँ हाँ मैं जानता हूँ भाई, वो बहुत एपिक टाइम था भाई उस टाइम भाई।
7: हाँ तो उसने बोला कि भाई ये भाई एम्बेसी ये गाड़ी है, उसका सीडी नंबर सारा है।
1: हाँ,
7: तो वैसे एम्बेसी की गाड़ी नहीं छोड़ी।
1: हाँ,
7: तो भैया ये पेंटिंग कहाँ छोड़ेंगे।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है।
7: उसने आगे सारी आगे पेंटिंग वेंटिंग सारी आकर उठा के लॉकर में बंद कर दी। मैं गया, अब सैटरडे संडे तो ऑफ रहता है।

0: मंडे में गया तो जैसे मैं घर पे घुसा कोठी में घुसा तो मैं उसे बोला बॉस वेयर डिड ऑल पेंटिंग्स कहता आई क्लोज
1: आई क्लोज अरे ले लेते यार एक तो पेंटिंग उससे इतना लाड में इतनी बात आपकी मान ही रहा है तो एक आध पेंटिंग ले लेते भेज बाज देते कहीं पे और गया पर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल करी माइकल भाई कॉल का काइंड टाइम थोड़ा कम है क्योंकि अभी अजान का वक्त होने वाला है तो फिर मैं आपसे इंशाल्लाह बाद में बात करता हूं पर शुक्रिया किस्सा शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ओके मेरा भाई
0: मैं निजामुद्दीन से हूं वैसे मैं
1: अच्छा निजामुद्दीन से हैं आप
0: बढ़िया
1: पास में ही है फिर तो आप पास में ही है
0: भाई
1: ठीक है मेरा
0: भाई
1: खुदा हाफिज़ भाई खुदा
0: हाफिज़
1: यू टू मेरा भाई हैप्पी वीकेंड हैप्पी वीकेंड और माइकल भाई के बाद इत्तफाकन गाना भी
2: आ गया मैं हाँ जल्दी से कर दो अब लाइट्स कैमरा एक्शन
1: सीधा माइकल जैक्सन
2: जमा कर दो जैसे मैं माइकल जैक्सन
1: सीधा माइकल जैक्सन बंट आएगी पब्लिक हैप्पी वीकेंड क्या जैक्सन
2: अगले दोस्त एक महीना के गायब था कौन बनाना है किसको करना बोल ये बोल के पलटे हमको

हाँ जी, हैप्पी वीकेंड जूमे जो पठान। 666-2107 नंबर एंड मैसेज जरूर करते रहना।

शिव में जो पठान, सारे चीज इनकी आवाज में जू में जो पठान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। और एक बहुत ही मोहब्बत भरा मैसेज किया मोहम्मद भाई ने, लिखते दो 20 मिनट बाद फिर से हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट 2 दिन तक खत्म हो जाएगी। डोंट वरी, इसका इलाज मैं करूंगा मेरे भाई। सोशल मीडिया पे आ जाओ, वहाँ पे बहुत जल्दी इसका पूरा इलाज दिया जाएगा। तो दोहा वाला कबीर .fm107 ये इंस्टाग्राम और अपना टिकटॉक पे आ जाओ। फ़ायदे का सौदा है, फ़ायदे में रहोगे, मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है।

0: जी समाजी और साथ में हैप्पी वीकेंड। मैं क्या जी सबको जो ट्रैफिक में फंसे हैं सबको सारे नु हैप्पी वीकेंड। हाँ जी एक सेकंड, अब जरा मैं कुछ मुद्दे की बात कर लें। बहुत सारी खबरें कुछ मैसेज आए हमारे पास। एक भाई लिखा है चाचू भाई क्या हो गया, चाचू क्यों बना दिया मुझे। मोहम्मद भी कह रहे हैं हाँ जी मैं इंस्टाग्राम डाउनलोड करूंगा। हमजा भाई थैंक यू सो मच, नाइस स्टोरी। एक भाई लिखा है असरा बहन मैं भेजूंगा अभी आपको। और हुसैन भाई थैंक यू सो मच, कह लिखते हैं भाई वो पेंटिंग वो नहीं बता सकता मैं। दिस विल बी अ लिटिल ऑफ ट्रैक, एक कॉल आ रही है उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: सलाम वालेकुम कबीर भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम।
0: एक नंबर मेरा भाई, आप सुनाएं।
1: हाँ जी ठीक हूँ जी,
0: बताओ भाई।
1: मैंने सोचा आपको कॉल कर ही लेता हूँ आज।
0: कर लेनी चाहिए भाई, रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल। ये इतने दिनों से अमन भाई गायब हैं यार, मतलब हद हो गई आपकी प्रेजेंस।
1: जी एक्चुअली मैं हमेशा स्टोरी अटेंड करता हूँ, हमारी टाइमिंग ऐसी हो गई कि मैं 6 बजे गाड़ी में बैठता हूँ।
0: अरे अरे अरे टाइमिंग का कुछ करो मेरे भाई, टाइमिंग का कुछ करो प्लीज।
1: हाँ जी टाइमिंग का मैं कुछ करता हूँ, अभी मैं मेरी फ्लाइट है ये वीक के लास्ट में, लेकिन ये क्या हो रहा है आजकल।
0: कहाँ पे अभी आप कहीं जाने वाले हो क्या?
1: मैं हाँ जी वेकेशन है, इंडिया जाऊंगा।
0: ओहो क्या बात है, कितने महीने?
1: मैंने तो आपको बताया था ना कि मैं मलेशिया सिंगापुर में भी जाऊंगा।
0: वाह वाह वाह भाई साहब, बड़े हाँ लोग भी हमें सुनते हैं, ऐसी बात नहीं।
1: बड़े लोग बड़े आपके आपके जैसे बड़े लोगों से दोस्ती भी है ना
0: भाई। थैंक यू सो मच। ये भाई हम बड़े नहीं है भाई, हम तो बहुत ही मासूम किस्म के, बहुत ही मासूम सादे किस्म के इंसान है मेरे भाई।
1: जी जी पहले बहरेन 24 घंटे की स्टे है बहरेन में, फिर वहां से इंडिया जाऊंगा, लेकिन अभी ये हालात मालूम नहीं कैसे होंगे, पता चलेगा वीक के लास्ट में।
0: नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे हालात, उम्मीद है पूरी की पूरी।
1: जी कबीर भाई, और दूसरा आज का टॉपिक क्या था
0: भाई? आज का टॉपिक तो कब का हो लिया, वो पूरा किस्सा था, वो अभी उसको बताने का भी टाइम नहीं है, वो बहुत लंबा किस्सा था।
1: हाँ जी इसीलिए एक बार बात, नो प्रॉब्लम। और प्लीज स्टोरी सेंड कीजिए, नहीं सुन पाया अभी। कल नहीं, कल तो वीकेंड आया कि संडे से ट्राई करता हूँ।
0: डन मेरा भाई,
1: 5 बजे जाने।
0: डन डन डन डन डन बिल्कुल।
1: और सब ठीक है जी कबीर भाई?
0: सब बढ़िया भाई, एकदम भला चंगा।
1: ओके टेक केयर, सुन रहा हूँ आपको।
0: थैंक यू मेरा भाई, ऑल्सो टेक केयर, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ओके हैव अ नाइस डे।
0: यू टू मेरा भाई, ख्याल रखिए। तो भाई ने तो कॉल करके अपनी बात कह दी, अब जी जरा मैं कुछ बातें कह देता हूँ आपको, क्योंकि बड़ी जरूरी जरूरी बातें हो रही हैं।

चेयरों की तरफ से कुछ खबरें आ रही हैं। तो सबसे बड़ी खबर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से, जिन्होंने अनाउंस किया है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज जो हैं वो फ्राइडे यानी कि कल के दिन जुलाई 24 को टेम्परेरली सस्पेंडेड रहेंगी इंडिविजुअल्स और एम्प्लॉयज़ पोर्टल के लिए। तो आप देख रहे होंगे कुछ बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे पोर्टल्स अभी बंद हैं। मिनिस्ट्री ने इस बारे में इन्फॉर्मेशन दी है सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, और उन्होंने बताया है कि जो सिस्टम मेंटेनेंस है वो जारी है। तो सुबह के 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक चलेगा ये, उसके बाद फिर इंशाल्लाह अपडेटेड हो जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जो कमिटमेंट है वो जारी है स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने की और इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज को और भी ज़्यादा स्मूथ बनाने की। सो दिस इज़ गोइंग ऑन रियली रियली वेल। इसके अलावा एक स्कूल से जुड़ी हुई खबर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन ने अनाउंस किया है रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन है ग्रेड इंप्रूवमेंट सर्विसेज के लिए, ताकि सक्सेसफुली जनरल सेकेंडरी स्कूल के सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स तक पहुँच सकें फ्रॉम 2025-2026 अकेडमिक ईयर के लिए, और दे कैन अलाउ एलिजिबल स्टूडेंट्स टू सिट फॉर सेकेंड राउंड एग्जामिनेशन फॉर टू इम्प्रूव देयर फाइनल अकेडमिक एवरेज। तो ये भी है। इसके बाद मिनिस्ट्री ने एप्लीकेशन का जो सिस्टम है उसे बाकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए बताया दैट इट विल रिमेन ओपन अनटिल जुलाई 25th 2026। इसके लिए जो पोर्टल है मारीफ पब्लिक सर्विस पोर्टल वो ओपन रहेगा, तो इस बात का ज़रा ध्यान रखिए। बाकी डिटेल्स आप पोर्टल पे जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए भी सब कुछ बताया है। एंड अभी मौसम भाई बताने की ज़रूरत तो है नहीं, मैं सीधा ये बोल दूँ गर्मी है, इतना भी काफ़ी होगा, फिर भी कितनी है और कितनी रहने वाली है ये भी बताना ज़रूरी है। सो अभी 41 डिग्रीज, कल से कहीं ज़्यादा, कल मेरे ख्याल में इस वक्त मैंने आपको 34 या 35 बताया, तो 6 डिग्री ज़्यादा, और हाईएस्ट टेम्परेचर 47-48 तक है, लोएस्ट टेम्परेचर 34 होता ही नहीं है, वो रात को हो जाए तो हो जाए। बाकी आज की ह्यूमिडिटी का लेवल कम है, 18% है, सो इसी वजह से मेरे चश्मे में फॉग नहीं आ रही है, आई एम रियली हैप्पी। जो चश्मे पहनने वाले भाई वही इस दर्द को समझ सकते हैं, आप नहीं समझेंगे इस दर्द को। बाकी ट्रैफिक का हाल बताइएगा, 666-22-107 नंबर है, 666-22-107। बागी चंडीगढ़ भाई साहब आशिकी करने निकल रहा है।

आभासी मिलेगी, पूरी मिलेगी। और जो कहानी है, अगर आपको म्यूजिक के साथ चाहिए तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। बाकी तो अभी कुछ दिन है जो इंटरनेशनली मार्क किए गए हैं ऑन द कैलेंडर, और कुछ दिन होते हैं जिनसे हमारा मतलब होता है, कुछ दिन होते हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आज है वैसे वेनिला आइसक्रीम डे, वेनिला आइसक्रीम डे। भाई कुछ लोग आइसक्रीम के इतने जानकार होते हैं, मेरा एक दोस्त है वो आता जाता रहता है सऊदी अरब में रहता है, जब भी वो आता है वो ऐसे बात करता है आइसक्रीम को लेके जैसे बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो। ओके, इसमें ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, ना जाने क्या क्या बोल देता है वो। फिर सामने जब वो आइसक्रीम तैयार करके देते हैं ना, बाप रे, ये सब भी कमाल की, ये भी आर्ट है ये सब कुछ याद रखना। और स्पेशली उन दुकानों पे जाना जहाँ पे एक सैंडविच बनाने के लिए ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। भाई सीधा ब्रेड में लगा के दे दो ना, कौन सी ब्रेड चाहिए, अरे ये वाली ब्रेड चाहिए, अच्छा इसमें कौन सी ब्रेड चाहिए, धनिया बो देते हैं लोग यार। आज है वैसे एक और दिन स्प्रिंकल डे, और इसके बाद है रिफ्रेशमेंट डे, और कॉमिक कॉन भी ऐसे शुरू होता है। एक दो मैसेजेस मेरे पास आए हैं, क्या लिखा है, ब्रो मैसेज मिस कर दिया। केड़ा मैसेज? नहीं जी भाजी, मैं मिस नहीं किया जकी भाई, वालेकुम अस्सलाम, मैं आपको ज़रूर भेजूंगा कहानी, टेंशन नहीं लो आप। और एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ये मैसेज क्या सलमान भाई ने, सलमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपको मैसेज करने के लिए। क्या मैसेज किया कबीर भाई, सोच रहा था एक बार इस पेंटिंग का फोटो कॉपी निकाल कर अपने कमरे में लगा कर देखूं। क्यों क्यों मेरा भाई, क्यों क्यों हरकतें करनी है ऐसी? भाई सोनू ऐसा मत करो मेरा भाई, बहुत अच्छे आदमी हो तुम। सोनू भाई कह रहे हैं इस पेंटिंग है, एक बार मैं प्रिंट आउट निकाल के देखूंगा घर पे लगा के। ये एक्सपेरिमेंट क्यों करने हैं, हैं क्यों करने हैं, और कुछ काम नहीं है, कुछ काम दे दूं मैं अपनी तरफ से आपको। हद हो गई यार। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, आज की कहानी बहुत अच्छी लगी एंड प्लीज़ सेंड कर दीजिएगा, मैं जरूर भेजूंगा। स्टोरी विद म्यूजिक, म्यूजिक चाहिए तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मिस द शो बट कैच यू ऑन संडे इंशाल्लाह। वेज भाई वालेकुम अस्सलाम, नो प्रॉब्लम मेरे भाई। और एक वॉइस नोट है, जो वॉइस नोट तो अभी मैं कुछ देर में सुनूंगा, नॉट ए प्रॉब्लम। बाकी मैं जी दुआ वाला कबीर आपके साथ हूँ। और क्या चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है? पहले तो मुझे ये बताओ क्या प्लान है वीकेंड के, प्लान नहीं बनाए हैं तो भी चलेगा, मेरा कोई प्लान नहीं है भाई, जीरो प्लानिंग के साथ चलता है भाई आपका, जीरो प्लानिंग एकदम। बाकी 666-22-107 नंबर है। और एक मैं ढूंढ रहा था गाना, मेरे सामने ही लगा हुआ था, मैं सोचता था ये चलाया जाए कि ना चला जाए, कोई बात नहीं रुको मैं एक सेकेंड, ना कीबोर्ड की आवाज़ आ रही होगी आपको लगातार। 666-22-107 पे अभी मैसेज कर सकते हैं, कहीं ट्रैफिक वगैरह लो तो बताइए। हमजा भाई ने कुछ मैसेज किया, हमजा भाई क्या कह रहे हैं भाई, ढोल नहीं बजाया ना अभी, अभी कुछ देर पहले तो बजाया ढोल, एक डीपी लगाने का सोच रहा हूँ लेकिन फिर डर गया। मोहम्मद कह रहे हैं मैं तो सोच रहा था डीपी भी लगा ली जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। नहीं भाई क्यों, कोई ज़रूरत नहीं है डीपी लगाने की, ये सब नहीं करो ठीक है, मजे लो बस कहानी के, इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, और जब ह्यूमिडिटी आएगी तब हम ये चला देंगे सब कुछ। धुंधला है तलविंदर पाजी और

648 बोलिए भाई। और जकी भाई ने मैसेज किया, जकी भाई बहुत प्यार लिखते हैं कि ब्रो आप रैप ट्राई करो, सूट करेगा आप पे। भाई रैप मैं करता था शो में और मैं लाइव रैप बहुत सारे किए भर भर के, पर अभी क्या थोड़े सा वो प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना पड़ता है, तो भी मनाही है, वरना आपका भाई बहुत बढ़िया रैप करता है। प्रोमो में भी रैप बनाया ना आपके भाई ने, ये वाला जो रैप है ये आपके भाई की आवाज़ में, यार कैसी बात कर रहे हो।

शाबाश दीजिए जकी भाई ने। जकी भाई थैंक यू सो मच, वो कह रहे हैं यही रैप सुनकर कहा मेरे भाई बहुत प्यार आपको दिल से। किसी को सपोर्ट करने में आजकल लोगों की जान जाती है और आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार। मोहम्मद भाई कहते हैं ढांडा नंबर भाई, ढांडा भाई इससे बढ़िया रैप कोई कर नहीं सकता, अभी बढ़िया चल रहा है उनका मामला। बाकी घड़ी की तरफ मैं देख रहा हूँ तो मेरे जाने का भी वक्त हो गया, इजाजत चाहूँगा आपसे। आई विश 2-3 घंटे और आपके साथ रह सकता, मुझे बहुत मज़ा आता। बट अभी मिलते हैं, फिर सीधा वीकेंड के बाद आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, सीधा संडे को मिलेंगे, शाम 5 बजे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए किस्से के साथ, स्टोरी वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। और आज के किस्से मैं भेजता हूँ, कोशिश करूँगा कि म्यूज़िक के साथ भेज दूँ, नहीं भेज पाया म्यूज़िक के साथ तो जो मैंने रॉ रिकॉर्डिंग है उसकी वो मैं आपको भेजने की पूरी कोशिश करूँगा। जितने भी लोग सुन रहे हैं जस्ट हैव अ वंडरफुल वीकेंड, जो दिल में आया करें आप बस खुश रहें एंड ड्राइव सेफली विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट फॉर नाउ 7 बजे न्यूज़ बुलेटिन एंड दिस इज़ दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, वेरी हैप्पी वीकेंड, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मां सलामा।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, एंड वेलकम बैक टू इको स्विच विद सफा, जहां हम बात करते हैं उन हिडन एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स की जो हमारी डेली लाइफ की हैबिट्स से जुड़ी हुई होती हैं। भाई आज का टॉपिक FM 107 पर ये है कि रिड्यूसिंग ऑनलाइन पैकेजिंग वेस्ट, यानी जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसके साथ जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस, प्लास्टिक रैप्स, बबल रैप्स और फिलर्स आते हैं ना, उनको कैसे कम किया जाए। साथियों, ऑनलाइन शॉपिंग कन्वीनियंस का सिंबल तो बन चुका है, लेकिन इस कन्वीनियंस के पीछे एक ग्रोइंग एनवायरमेंटल चैलेंज छुपा हुआ है। अब जरा सोचिए, आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है, सिर्फ एक फोन चार्जर ऑर्डर किया, डिलीवरी आती है और आपको एक मीडियम साइज बॉक्स मिलता है जिसमें चार्जर के साथ एक्स्ट्रा प्लास्टिक रैप, बबल रैप और फिलर्स होते हैं। आप सोचते हैं कि भाई सिर्फ एक छोटी सी चीज ही तो है, क्या ही जाएगा। या कभी कभी आप ये भी सोचते हैं कि भाई इतनी छोटी सी चीज के लिए इतनी सारी पैकेजिंग क्यों। देखें, इको स्विच यहाँ हमें बताता है कि लॉजिस्टिक्स कंपनीज कभी कभार आइटम्स को डैमेज से बचाने के लिए एक्स्ट्रा पैकेजिंग यूज करती हैं, लेकिन इसका रिजल्ट अननेसेसरी वेस्ट होता है। साथियों, एक एस्टिमेट के मुताबिक ऑनलाइन शॉपिंग पैकेजिंग ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट का 15% तक कंट्रीब्यूट करती है, और वो भी इन अर्बन एरियाज में। अच्छा चलिए, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताती हूँ जो आपको शॉक कर देंगे। देखिए, हर साल ग्लोबली बिलियंस ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरीज के लिए यूज होते हैं। एक एवरेज ऑनलाइन ऑर्डर 3 layers ऑफ पैकेजिंग जनरेट कर सकता है, आउटर बॉक्स, इनर रैप और प्रोटेक्टिव फिलर्स। बबल रैप्स को डिग्रेड होने में 100 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं साथियों। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीक सेल सीजन, जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई व्हाइट फ्राइडे या कोई फेस्टिव सीजन हो गया, उसमें पैकेजिंग वेस्ट 30-40% तक स्पाइक कर जाता है। साथियों, यहाँ इको स्विच का आइडिया बड़ा सिंपल सा है, ऑनलाइन शॉपिंग को बंद नहीं करना बल्कि स्मार्टर बनाना है। जब हम पैकेजिंग अवेयर चॉइसेस लेते हैं तो हम वेस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ ई कॉमर्स कंपनीज अब मिनिमल पैकेजिंग ऑप्शन ऑफर करती हैं, जहां एक्स्ट्रा रैपिंग अवॉइड की जाती है। साथियों, एक स्टडी के मुताबिक अगर 1 million यूजर्स इको पैकेजिंग प्रेफरेंस सेलेक्ट करें तो थाउजेंड्स ऑफ टन्स प्लास्टिक और पेपर वेस्ट अवॉइड किया जा सकता है एनुअली। अच्छा जरा सोचिए, एक हाउसहोल्ड में डेली 1-2 ऑनलाइन डिलीवरीज होती हैं, ग्रोसरीज, कपड़े या गैजेट्स। हर डिलीवरी के बाद बॉक्सेस क्या होते हैं, स्टोर रूम में जमा हो जाते हैं या आप कचरे में फेंक दिए जाते हैं। कुछ रिसाइकल होते हैं, लेकिन बहुत सारे डायरेक्ट वेस्ट बिन में चले जाते हैं। इको स्विच के प्रस्पेक्टिव से ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हर ऑर्डर के साथ आप अपने घर में एक टेम्पररी लैंडफिल कॉर्नर बना रहे हो। चलिए साथियों, अब वक्त आ गया है कुछ प्रैक्टिकल टिप्स का। अब कुछ सिंपल इको स्विच टिप्स जो हर ऑनलाइन शॉपर फॉलो कर सकता है बहुत आसानी से। पहला, मिनिमल पैकेजिंग या इको पैकेजिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें जब भी अवेलेबल हो। दूसरा, मल्टीपल स्मॉल ऑर्डर्स के बजाय कंबाइंड ऑर्डर प्लेस करें। तीसरा, कार्डबोर्ड बॉक्सेस को रीयूज करें स्टोरेज या DIY पर्पसेस के लिए। चौथा, बबल रैप को प्लास्टिक फिलर्स को रिसाइकल करें जहां पॉसिबल हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोकल सेलर से परचेज करें ताकि शिपिंग डिस्टेंस और पैकेजिंग दोनों रिड्यूस हो। साथियों, इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग को स्लो और माइंडफुल बनाना। जब हम ऑर्डर प्लेस करते वक्त पैकेजिंग को कंसिडर करते हैं ना, तो हम अपने कंजम्पशन बिहेवियर को रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जो लोग इको शिपिंग ऑप्शंस चूज करते हैं वो ओवरऑल लेस इम्पल्सिव शॉपिंग भी करते हैं। मतलब अवेयरनेस स्पेंडिंग हैबिट्स को भी कंट्रोल करती है। आखिर में भाई, इको स्विच का सिंपल सा मैसेज है और वो ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग कन्वीनियंस जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हर बॉक्स जो हम रिसाइकल या अवॉइड करते हैं वो एनवायरमेंट के लिए एक पॉजिटिव स्टेप होता है। तो भाई, अगली बार जब आप प्लेस ऑर्डर बटन दबाने लगे ना, तो एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन कर लीजिएगा अपने दिमाग में। डू आई रियली नीड दिस मच ऑफ पैकेजिंग। इसी के साथ साथियों मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन एफएम 107 कतर, जहां हर डिलीवरी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक एनवायरमेंटल चॉइस भी होती है।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: दोस्तों, ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है, खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास। ड्राइवर्स को रोड मार्किंग्स जैसे लेन्स और स्टॉप लेन्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये रूल्स न सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए हैं, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए भी बुनियादी अहमियत रखते हैं। स्कूल्स के आसपास ट्रैफिक स्लो होना चाहिए और ड्राइवर्स को स्टूडेंट्स के क्रॉसिंग के वक्त रुकना चाहिए। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स और स्कूल साइंस की रेस्पेक्ट करना और स्पीड लिमिट का ख्याल रखना एक्सीडेंट्स और चोटों से बचाता है। हर एक शख्स का फर्ज है कि वो इन रूल्स की पाबंदी करे। पेरेंट्स, टीचर और लोकल कम्युनिटी सब मिलकर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को बढ़ावा दे सकते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम ट्रैफिक रेगुलेशंस फॉलो करें तो स्कूल के आसपास का माहौल ज्यादा सिक्योर और स्टूडेंट्स के लिए सेफ बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: आज वन स्टेप 2030 यानी फ्यूचर में क्या क्या चीजें जो है वो डोमिनेट करेंगी, किस तरह से हमें अभी से खुद को जो है वो प्रिपेयर करना है 2030 और उसके आगे के लिए, तो बस उसी हवाले से हमारा ये सेगमेंट खास है जहां हम आपके साथ नए फ्यूचरिस्टिक टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और आज मैं बात करने वाली हूँ पर्टिकुलरली क्लाउड सीडिंग पे। क्लाउड सीडिंग है क्या, कैसे काम करता है और कैसे आपको और हमें इसके बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्लाउड सीडिंग एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसका यूज बारिश को बढ़ाने या फिर कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी उन एरियाज में बड़ी यूजफुल होती है जहां पानी की कमी होती है या जहां ज्यादा बारिश की जरूरत होती है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए। तो आइए हम इसे समझते हैं कि ये है क्या। क्लाउड सीडिंग का मतलब है बादलों में कुछ स्पेशल पार्टिकल्स या फिर केमिकल्स डालकर बारिश को ट्रिगर करना या इंक्रीज करना। और आसान लफ्जों में अगर मैं आपको समझाऊं तो क्लाउड्स में ऑलरेडी पानी के छोटे छोटे कतरे, ड्रॉपलेट्स या फिर आइस पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन कभी कभी ये इतने छोटे छोटे होते हैं कि बारिश की फॉर्म में जमीन तक नहीं गिरते। अब क्लाउड सीडिंग का काम इन ड्रॉपलेट्स को बड़ा बनाना होता है ताकि वो हेवी होकर बारिश की शक्ल में गिर सके। क्लाउड्स का एक नेचुरल प्रोसेस है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नॉर्मल बारिश कैसे होती है। वैसे हमने और आपने ये तो पढ़ रखा है, फिर भी चलिए क्विक रिमाइंडर के तौर पे आपको बताती हूँ कि सन की गर्मी से, तपिश से पानी समंदर हो, दरिया हो, लेक से इवेपोरेट होता है और ये पानी हवा में जाकर वाटर वेपर बन जाता है। ठंडी हवा में ये वेपर कंडेंस होकर क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड्स में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं और जब ये ड्रॉपलेट्स मिलकर बड़े हो जाते हैं तो ग्रेविटी की वजह से खिंचते हैं और नीचे गिरते हैं बारिश की फॉर्म में। कभी कभी ड्रॉपलेट्स इतने छोटे रहते हैं कि वो गिर ही नहीं पाते। यहाँ क्लाउड सीडिंग का जो रोल है वो स्टार्ट हो जाता है। क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस तीन मेन स्टेप्स पर होता है। सबसे पहले सूटेबल क्लाउड्स का इंतखाब करना। जी हाँ, सूटेबल क्लाउड्स का इंतखाब करना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट और जितने भी मेट्रोलॉजिस्ट हैं चेक करते हैं कि कौन सा क्लाउड क्लाउड सीडिंग के लिए सूटेबल है। हर क्लाउड पर सीडिंग काम नहीं करती। वो क्लाउड्स चाहिए होते हैं जहाँ मॉइस्चर यानी पानी की क्वांटिटी मौजूद हो, टेम्परेचर सूटेबल हो। अगर क्लाउड बिल्कुल ड्राई हो तो वहाँ सीडिंग का कोई फायदा नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है केमिकल्स या फिर पार्टिकल्स डालना। इस स्टेप में देखा जाए तो खास केमिकल्स या फिर पार्टिकल्स क्लाउड के अंदर डाले जाते हैं। ये काम यूजुअली प्लेन्स, ड्रोन्स या फिर ग्राउंड बेस्ड मशीन के जरिए होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है ड्रॉपलेट्स को बड़ा करना। जब ये पार्टिकल्स क्लाउड के अंदर एंटर करते हैं तो पानी के छोटे ड्रॉपलेट्स इनके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन या फिर फ्रीजिंग, यानी पानी के कतरे इन पार्टिकल्स से चिपक जाते हैं। धीरे धीरे ये ड्रॉपलेट्स बड़े हो जाते हैं, फिर हैवी होकर जमीन पर गिरते हैं। यही बारिश होती है। वैसे क्लाउड सीडिंग के कुछ टाइप्स भी हैं। स्टैटिक क्लाउड सीडिंग, इसमें सिल्वर क्रिस्टल एक तरह का यूज किया जाता है जो कि आइस क्रिस्टल बन जाता है। कूल क्लाउड्स में पार्टिकल्स जो है वो डाले जाते हैं, आइस क्रिस्टल्स बनते हैं और क्रिस्टल ग्रो करते हैं और फिर बारिश या फिर स्नो बन जाते हैं। वहीं दूसरा एक तो मैंने आपको बताया स्टैटिक क्लाउड सीडिंग है, दूसरा है डायनेमिक क्लाउड सीडिंग। इस मेथड में पूरे क्लाउड के सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की जाती है। एयर मूवमेंट क्रिएट किया जाता है, ज्यादा क्लाउड ग्रोथ होती है, ज्यादा बारिश जनरेट होती है। तो बस हमने और आपने समझा कि क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। देखिए, क्लाउड सीडिंग का यूज कहाँ होता है, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो क्लाउड सीडिंग दुनिया के कई कंट्रीज में यूज किया जाता है, किया भी क्या है, उनके नाम तो क्या ही मैं मेंशन करूँ, लेकिन इन कंट्रीज में उसका फायदा भी हुआ है, कुछ नुकसान भी हुए हैं। बारिश को बढ़ाना जरूरी है क्योंकि कुछ कंट्रीज में सूखा, इसे कंट्रोल करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। स्नोफॉल इंक्रीज करने के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन हर चीज के फायदे और नुकसान तो होते ही होते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी हम समझते हैं। क्लाउड सीटिंग एक परफेक्ट सॉल्यूशन है नहीं। अल्लाह ताला का जो निज़ाम है उसमें अगर हम अपनी अकल लगा के अपनी चीज़ें डालेंगे तो कुछ ना कुछ उसका नुकसान तो होगा। हर जगह काम नहीं कर पाता। अगर क्लाउड में मॉइस्चर ही ना हो तो सीडिंग बेकार है। वहीं कभी बारिश होती है कभी नहीं। यहाँ पे रिजल्ट्स जो है वो 100% रिलायबल नहीं होते। और एक और बड़ा ड्रॉबैक जो है वो है ये प्रोसेस अपने आप में बहुत महंगा है। क्लीन्स, केमिकल्स, मॉनिटरिंग सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव। और एनवायरमेंटल कंसर्न ये तो बढ़ ही रहे। कुछ लोग कहते हैं कि इससे एनवायरमेंट को खतरा बढ़ता चला जा रहा है। और एथिकल और सोशल कंसर्न्स ये अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है। देखिए फ्यूचर में क्लाउड सीडिंग जो है एडवांस हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। इस पे काम भी जारी है। बेटर टेक्नोलॉजी यूज होगी। AI सैटेलाइट से एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करवाई जाएंगी। एनवायरमेंट के इम्पैक्ट को भी कम किया जाएगा। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि इसको किस तरह से सेफली और इफेक्टिव इसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि क्लाउड सीडिंग एक इंटरेस्टिंग और पावरफुल टेक्निक तो है जिसमें इंसान क्लाउड्स को यूज करके बारिश को बढ़ाने की कोशिश करता है। ये प्रोसेस नेचुरल सिस्टम को सपोर्ट भी करता है लेकिन इसको कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसको अगर हम समझें तो क्लाउड्स जो है या जो अल्लाह ताला ने टेक्निक और टेक्नोलॉजी हमारे लिए रखी है उसके खिलाफ जाके कुछ हम अलग से करने की कोशिश करें तो पता नहीं उसका किस हद तक फायदा होगा। अगर सही प्लानिंग और रिसर्च के साथ किया जाए तो शायद क्लाउड सीडिंग दुनिया की वाटर प्रॉब्लम जो आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ेगी उसे सॉल्व करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ना। बस यही लाइन जो है वो मुझे थोड़ी सी तसल्ली देती है। फिलहाल इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज करते हैं। वापस आएंगे कल तो एक और नए फ्यूचरिस्टिक टॉपिक पे बात करेंगे। आप सुन रहे थे सेगमेंट वन स्टेप टू 2030। यहाँ पर 2030 से आगे की भी तैयारी जारी है। कोशिश ये है कि आप और हम मिलकर फ्यूचर को जो है वो समझ तो नहीं सकते, प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ खुद को फ्यूचर के लिए तैयार जरूर कर सकते हैं। तो बस ये तैयारी अभी वर्बली है, फिर आने वाले टाइम में थोड़ा सा और डिटेल में और फिर आने वाले टाइम में इसे अडॉप्ट कैसे करना है इस पर भी बात होगी। फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
0: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi.

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain. FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website, urduradio.qa or download the app, QMC Now.
4: दोस्तों, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आम हिफाजत के तरीकों की पाबंदी करना आपके शऊर का इजहार करती है और सिक्योरिटी में इजाफा करती है। कौमी हदूद और रेगुलेशन की पाबंदी करें और अदब का ख्याल रखें। पेडेस्ट्रियन रोड पर धीरे चलें और होशियारी से ड्राइव करें। बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें अपनी नजर में रखें। आसपास जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं उनसे फैमिलियर रहिए। दूसरे अशखास को धक्का देने या भीड़ भाड़ करने से बचिए। ये इकदाम आपको और दूसरों को खुद को सेफ रखने में मदद देते हैं और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए आपको तैयार रखते हैं। अगर हर शख्स इन रूल्स पर अमल करे तो हम सब मिलकर अपनी और दूसरों की हिफाजत कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी।
5: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी
1: अलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज एक और मोटर स्पोर्ट रैली ड्राइवर्स के बारे में मैं बात करूंगा। उनका नाम है आदिल हुसैन अब्दुल्ला। आदिल हुसैन अब्दुल्ला कतर के सबसे कामयाब और मशहूर क्रॉस कंट्री रैली ड्राइवर्स में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, हिम्मत और लगन के जरिए मोटर स्पोर्ट की दुनिया में एक ऐसा मकाम हासिल किया है जो हर कतरी एथलीट के लिए फख्र का सबब है। ऑफ रोड रैलिंग दोस्तों एक इंतहाई मुश्किल खेल है जहां ड्राइवर्स को रेगिस्तान, पथरीले रास्तों और सख्त मौसमी हालात का सामना करना पड़ता है। आदिल हुसैन अब्दुल्ला ने इन तमाम चैलेंजेस को कबूल करते हुए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी 2016 में आई जब उन्होंने FIA वर्ल्ड क्रॉस कंट्री रैली चैंपियनशिप के T2 कैटेगरी का वर्ल्ड टाइटल जीतकर तारीख रच दी और इस शानदार कामयाबी ने उन्हें दुनिया के बेहतरीन ऑफ रोड ड्राइवर्स की सफ में ला खड़ा किया और कतर का नाम बैनुल अक्वामी मोटर स्पोर्ट में रोशन कर दिया। दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियन बनना किसी भी ड्राइवर का ख्वाब होता है और आदिल ने इस ख्वाब को हकीकत में बदलकर अपनी काबिलियत साबित की। आदिल हुसैन अब्दुल्ला ने सिर्फ रीजनल और इंटरनेशनल रैलीज में मुसलसल बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दी बल्कि उनका ये तजुर्बा और कामयाबियां कतर के नए रैली ड्राइवर्स के लिए रहनुमाई का जरिया बने। एंड दैट इज व्हाट एवरीबॉडी लुक्स फॉरवर्ड टू, दीज काइंड ऑफ मोटर स्पोर्ट रैलीज। ना सिर्फ साले अलतिया हर कोई जानता है और ये जितने भी ड्राइवर्स हैं ये ऑफ रोड में ज़्यादातर ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ऑफ रोड ड्राइविंग काफ़ी डिफिकल्ट है दोस्तों, कोशिश मत करिएगा, यू नीड टेक्निकल गाइडेंस एंड सपोर्ट। आज आदिल हुसैन अब्दुल्ला कतर के मोटर स्पोर्ट के एक नुमाया हीरो के तौर पर पहचाने जाते हैं। उनकी कहानी मेहनत और जज्बा की मिसाल है जो दिखाती है कि कतरी एथलीट्स दुनिया के सबसे सख्त मुकाबलों में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
2: एब्सोल्यूट सिनेमा,
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
0: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नेहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें, और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
3: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
0: ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत के बारे में जो ना सिर्फ आसान है बल्कि सेहत के लिए बेहद फायदेमंद भी है, और वो है वॉक या चहलकदमी। बहुत से अफराद सेहतमंद जिंदगी गुजारने का इरादा तो करते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि आगाज कहाँ से करें। अगर हम या आप वर्जिश शुरू करना चाहते हैं तो वॉक या चहलकदमी बेहतरीन इंतखाब है। इसके लिए ना किसी महंगी मेंबरशिप की जरूरत है और ना ही खास सामान की, सिर्फ आरामदेह जूते पहनिए और चलना शुरू कर दीजिए। वॉक करना दिल को मजबूत जो है वो बना देती है, इसी तरह हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रखने में मदद देती है, डायबिटीज या शुगर के खतरे को कम करती है, वजन को मतवाजन रखने में बहुत ही मददगार साबित होती है, और इसी तरह मेंटल हेल्थ जो कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें बेहतरीन एक इंतखाब है वॉक करना। उससे हम ज़हनी तौर पर जो ज़हनी दबाव होता है उसे कम करने में मदद मिलती है। रेगुलर वॉक नींद को बेहतर बनाने और हमारे जिस्म में तवानाई बढ़ाने में भी मददगार है, और अगर आपने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की तो एकदम ज़्यादा चलने की कोशिश ना कीजिए। आप इब्तिदा में सिर्फ 5 से 10 मिनट की वॉक कीजिए। हमारा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता किसी भी चीज़ का आदि होता है, तो जिस्म को नए मामूल का आदि होने में वक्त आप दीजिए। चंद दिन के बाद आप 15 मिनट तक अपनी वॉक जो है वो बढ़ा दीजिए, और इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता 30 मिनट रोज़ाना तक ले जाइए। वॉक के लिए ऐसा वक्त मुंतखब कीजिए जो आपके रोज़मर्रा मामूल के मुताबिक हो। कुछ अफराद सुबह की ताज़ा हवा में चलना बहुत पसंद करते हैं, जबकि कुछ अफराद शाम को वॉक करने के लिए वक्त निकालते हैं। अहम बात यह है कि आप एक वक्त मुकर्रर कर लीजिए और उस पर मुस्तकिल रहने की कोशिश कीजिए, यानी मुस्तकिल मिजाजी बहुत अहम है। इसी तरह वॉक शुरू करने से पहले हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करना बेहद मुफीद है, इससे हमारे मसल्स जो हैं वो वार्म अप होते हैं, और खुदा नखास्ता चोट कभी लगने का ख़तरा होता है तो चोट लगने का जो ख़तरा है वो कम होता चला जाता है। पानी पीना भी ना भूलिए, ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में, यानी पानी की एक बॉटल अपने पास रखिए, और बिल्कुल सिप्स आप लीजिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी जो है वो आप पी लें, ऐसा नहीं है। याद रखिए कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा कदम ही काफ़ी है, और आज और अभी हमें फैसला करना होगा, और हम फैसला करें और चंद मिनट की वॉक से अपनी सेहत का जो सफ़र है उसे शुरू कर दें।
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
4: Mixing in the house.

0: been a victim to. Thank you.
1: That's very important. Thank you, John, for sharing such amazing information with us. And thank you for taking out this time and talking to us. Thank you once again.
0: It's a pleasure to be here. Thank you very
1: much. Pleasure to have you here.
0: Thank you.
1: इसी के साथ दोस्तों अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का. इंशाल्लाह नए एपिसोड में नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
2: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।
1: कानून हमें तहफ्फुज़ देता है और वज़ारते दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
2: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से।

0: कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने हियरिंग इंपेयरमेंट से मुतासिर लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। उनकी मदद के लिए मिनिस्ट्री ने डेफ इमरजेंसी सर्विस शुरू की है, जो उनकी इमरजेंसी कॉल्स का जवाब देने के लिए 24/7 दस्तयाब है। ये सर्विस उन लोगों के लिए है जो सुन नहीं सकते और जो अपनी इमरजेंसी सिचुएशंस में आसानी से मदद चाहते हैं। डेफ इमरजेंसी सर्विस एक एडवांस्ड और मॉडर्न सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिसके जरिए लोग अपनी इमरजेंसीज रिपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें फौरी तौर पर मदद मिलती है। सिर्फ एक सिंपल कॉल 992 से आप इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि स्पेशली डिजाइंड है हियरिंग इंपेयर्ड इंडिविजुअल्स, यानी वो लोग जो सुन नहीं सकते। ये सर्विस उनकी जरूरत के हिसाब से उनको इमरजेंसी रिस्पांस देती है और उनके लिए सेफ्टी को इंश्योर करती है। यानी अगर आप या आपके आसपास कोई शख्स हियरिंग इंपेयरमेंट से मुतासिर है तो 992 का नंबर याद रखें और इस सर्विस का फायदा उठाएं। ये इनिशिएटिव सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि एक अहम कदम है उन लोगों की मदद करने के लिए जो अक्सर अपने हक में मदद हासिल करने में मुश्किलात का सामना करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ये एफर्ट्स ये दिखाती हैं कि हर शख्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी उनकी पहली प्रायोरिटी है, चाहे उन्हें सुनाई ना दे। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो हियरिंग इंपेयरमेंट से मुतासिर है, उन्हें ये सर्विस जरूर बताएं। ये सर्विस उनके लिए एक नया रास्ता है अपने इश्यूज को सॉल्व करने का और इमरजेंसी सिचुएशंस में मदद लेने का। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्कप्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूर हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
3: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज की नशिस्त में हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं जो हमारी पूरी जिंदगी का एक अहम मसला और सेंट्रल इशू, कोर इशू है। ये मौजू है दिल। समीन, हम जहां भी जाएं, जिस हाल में भी हों, हमारा दिल मुसलसल काम कर रहा होता है। हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जहन सोचता है, लेकिन इन सब के पीछे एक अंदरूनी मरकज भी काम कर रहा होता है। वही मरकज हमारी नीयत बनाता है, हमारे रवैये को डायरेक्शन देता है और अक्सर हमारे फैसलों के रुख भी वही तय करता है। इसीलिए दिल के बारे में गुफ्तगू कोई सिर्फ जज्बाती गुफ्तगू नहीं, ये हमारी पूरी शख्सियत, हमारे किरदार, हमारे ताल्लुकात, हत्ता कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों से जुड़ा हुआ मौजू है। आज हमें ये समझना है कि दिल पर कौन सी चीज़ें मुस्बत तासीर या पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं और कौन सी चीज़ें उसे कमज़ोर या बीमार करती हैं, दिल कैसे संवरता है, दिल कैसे बिगड़ता है, और सबसे अहम बात, कुरान और सुन्नत में इंसानी दिल की तारीफ किस तरह की गई है। सामने कलाम, आमतौर पर जब हम हर्ट कहते हैं तो फौरन जिस्म के अंदर मौजूद उस अज़ू का ख्याल आता है जो ब्लड पंप करता है, लेकिन कुरान जब कल्ब की बात करता है तो सिर्फ बायोलॉजिकल हर्ट नहीं बल्कि उस इनर सेंटर की बात कर रहा होता है जहाँ ईमान, नीयत, मोहब्बत, खौफ, इखलास, हसद, कीना, उम्मीद और यकीन जैसे जज्बात और कैफियत जन्म लेती हैं। यानी दिल सिर्फ जिस्म का हिस्सा नहीं बल्कि इंसान की मॉरल और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी का मरकज भी है। इसीलिए अगर दिल दुरुस्त हो तो सोच दुरुस्त होती है, सोच दुरुस्त हो तो रवैया दुरुस्त होता है, रवैया दुरुस्त हो तो ज़िंदगी दुरुस्त होती है, और अगर दिल में ख़राबी आ जाए तो वो ख़राबी आहिस्ता आहिस्ता ज़बान, किरदार, ताल्लुकात और फ़ैसलों में ज़ाहिर होने लगती है। सामने कराम, आज की गुफ्तगू की असल अहमियत यही है कि दिल हमारी दुनिया और आखिरत दोनों का फ़ैसला कर सकता है। अल्लाह ताला सूरह शुआरा में फरमाता है, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم। यानी वो दिन जब न माल फायदा देगा और न औलाद, मगर वो शख्स कामयाब होगा जो अल्लाह के हुजूर कल्ब सलीम लेकर आएगा। और कीजिए, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि जो बहुत

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोस्तों गाड़ी चलाते वक्त तेज रफ्तार से परहेज करना सिर्फ एक एहतियात नहीं बल्कि एक जिम्मेदार ड्राइवर की पहचान भी है। जब आप अपनी गाड़ी को हद से ज्यादा तेज चलाते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि रास्ते पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान को भी खतरा लाहक होता है। सड़क पर हमेशा मोहतात और एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं ताकि हर किसी की हिफाजत हो सके। एक्सेसिव स्पीड में ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर रखें, ट्रैफिक साइंस और सिग्नल का एहतराम करें और सड़क की हालत को मद्देनजर रखते हुए सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस इख्तियार करें। याद रखें आपकी छोटी सी एहतियात से न सिर्फ आपकी जिंदगी महफूज होती है बल्कि आप अपने फैमिली और मुआशरे की भी हिफाजत करते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि सड़क पर एहतियात और सब्र से चलिए, अपनी और दूसरों की हिफाजत को पहली तरजीह दीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है।

0: इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। आज एक और मोटर स्पोर्ट रैली ड्राइवर्स के बारे में मैं बात करूंगा। उनका नाम है आदिल हुसैन अब्दुल्ला। आदिल हुसैन अब्दुल्ला कतर के सबसे कामयाब और मशहूर क्रॉस कंट्री रैली ड्राइवर्स में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, हिम्मत और लगन के जरिए मोटर स्पोर्ट की दुनिया में एक ऐसा मकाम हासिल किया है जो हर कतरी एथलीट के लिए फख्र का सबब है। ऑफ रोड रैलिंग दोस्तों एक इंतहाई मुश्किल खेल है, जहां ड्राइवर्स को रेगिस्तान, पथरीले रास्तों और सख्त मौसमी हालात का सामना करना पड़ता है। आदिल हुसैन अब्दुल्ला ने इन तमाम चैलेंजेस को कबूल करते हुए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। या उनकी सबसे बड़ी कामयाबी 2016 में आई, जब उन्होंने FIA वर्ल्ड क्रॉस कंट्री रैली चैंपियनशिप के T2 कैटेगरी का वर्ल्ड टाइटल जीतकर तारीख रच दी। और इस शानदार कामयाबी ने उन्हें दुनिया के बेहतरीन ऑफ रोड ड्राइवर्स की सफ में ला खड़ा किया और कतर का नाम बैन अक्वामी मोटर स्पोर्ट में रोशन कर दिया। दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियन बनना किसी भी ड्राइवर का ख्वाब होता है और आदिल ने इस ख्वाब को हकीकत में बदल कर अपनी काबिलियत साबित की। आदिल हुसैन अब्दुल्ला ने सिर्फ रीजनल और इंटरनेशनल रैलीज में मुसलसल बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दी, बल्कि उनका ये तजुर्बा और कामयाबियां कतर के नए रैली ड्राइवर्स के लिए रहनुमाई का जरिया बने। एंड दैट इज व्हाट एवरीबॉडी लुक्स फॉरवर्ड टू, दीज काइंड ऑफ मोटर स्पोर्ट रैलिस्ट। ना सिर्फ साले अलतिया, हर कोई जानता है। और ये जितने भी ड्राइवर्स हैं कि ऑफ रोड में ज़्यादातर ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ऑफ रोड ड्राइविंग काफ़ी डिफिकल्ट है दोस्तों, कोशिश मत करिएगा, यू नीड टेक्निकल गाइडेंस एंड सपोर्ट। आज आदिल हुसैन अब्दुल्ला कतर के मोटर स्पोर्ट के एक नुमाया हीरो के तौर पर पहचाने जाते हैं। उनकी कहानी मेहनत और जज्बा की मिसाल है, जो दिखाती है कि कतरी एथलीट्स दुनिया के सबसे सख्त मुकाबलों में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
2: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
0: ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: दोस्तों, गाड़ी चलाते वक्त तेज रफ्तार से परहेज करना सिर्फ एक एहतियात नहीं बल्कि एक जिम्मेदार ड्राइवर की पहचान भी है। जब आप अपनी गाड़ी को हद से ज्यादा तेज चलाते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि रास्ते पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान को भी खतरा लाहक होता है। सड़क पर हमेशा मोहतात और एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं ताकि हर किसी की हिफाजत हो सके। एक्सेसिव स्पीड में ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर रखें, ट्रैफिक साइंस और सिग्नल का एहतराम करें और सड़क की हालत को मद्देनजर रखते हुए सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस इख्तियार करें। याद रखें, आपकी छोटी सी एहतियात से ना सिर्फ आपकी जिंदगी महफूज होती है बल्कि आप अपने फैमिली और मुआशरे की भी हिफाजत करते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि सड़क पर एहतियात और सब्र से चलिए, अपनी और दूसरों की हिफाजत को पहली तरजीह दीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत के बारे में जो ना सिर्फ आसान है बल्कि सेहत के लिए बेहद फायदेमंद भी है, और वो है वॉक या चहलकदमी। बहुत से अफराद सेहतमंद जिंदगी गुजारने का इरादा तो करते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि आगाज कहाँ से करें। अगर हम या आप वर्जिश शुरू करना चाहते हैं तो वॉक या चहलकदमी बेहतरीन इंतखाब है। इसके लिए ना किसी महंगी मेंबरशिप की जरूरत है और ना ही खास सामान की, सिर्फ आरामदेह जूते पहनिए और चलना शुरू कर दीजिए। वॉक करना दिल को मजबूत जो है वो बना देती है, इसी तरह हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रखने में मदद देती है, डायबिटीज या शुगर के खतरे को कम करती है, वजन को मतवाजन रखने में बहुत ही मददगार साबित होती है, और इसी तरह मेंटल हेल्थ जो कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें बेहतरीन एक इंतखाब है वॉक करना। उससे हम ज़हनी तौर पर जो ज़हनी दबाव होता है उसे कम करने में मदद मिलती है। रेगुलर वॉक नींद को बेहतर बनाने और हमारे जिस्म में तवानाई बढ़ाने में भी मददगार है, और अगर आपने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की तो एकदम ज़्यादा चलने की कोशिश ना कीजिए। आप इब्तदा में सिर्फ 5 से 10 मिनट की वॉक कीजिए। हमारा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता किसी भी चीज़ का आदी होता है, तो जिस्म को नए मामूल का आदी होने में वक्त आप दीजिए। चंद दिन के बाद आप 15 मिनट तक अपनी वॉक जो है वो बढ़ा दीजिए, और इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता 30 मिनट रोज़ाना तक ले जाइए। वॉक के लिए ऐसा वक्त मुंतखब कीजिए जो आपके रोज़मर्रा मामूल के मुताबिक हो। कुछ अफराद सुबह की ताज़ा हवा में चलना बहुत पसंद करते हैं, जबकि कुछ अफराद शाम को वॉक करने के लिए वक्त निकालते हैं। अहम बात यह है कि आप एक वक्त मुकर्रर कर लीजिए और उस पर मुस्तकिल रहने की कोशिश कीजिए, यानी मुस्तकिल मिजाजी बहुत अहम है। इसी तरह वॉक शुरू करने से पहले हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करना बेहद मुफीद है, इससे हमारे मसल्स जो हैं वो वार्म अप होते हैं, और खुदा नखास्ता चोट कभी लगने का ख़तरा होता है तो चोट लगने का जो ख़तरा है वो कम होता चला जाता है। पानी पीना भी ना भूलिए, ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में, यानी पानी की एक बॉटल अपने पास रखिए, और बिल्कुल सिप्स आप लीजिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी जो है वो आप पी लें, ऐसा नहीं है। याद रखिए कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा कदम ही काफ़ी है, और आज और अभी हमें फैसला करना होगा, और हम फैसला करें और चंद मिनट की वॉक से अपनी सेहत का जो सफ़र है उसे शुरू कर दें।
0: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
1: ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, एंड वेलकम बैक टू इको स्विच विद सफा, जहां हम बात करते हैं उन हिडन एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स की जो हमारी डेली लाइफ की हैबिट से जुड़ी हुई होती हैं। भाई आज का टॉपिक एफएम 107 पर ये है कि रिड्यूसिंग ऑनलाइन पैकेजिंग वेस्ट, यानी जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसके साथ जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस, प्लास्टिक रैप्स, बबल रैप्स और फिलर्स आते हैं ना, उनको कैसे कम किया जाए। साथियों, ऑनलाइन शॉपिंग कन्वीनियंस का सिंबल तो बन चुका है, लेकिन इस कन्वीनियंस के पीछे एक ग्रोइंग एनवायरमेंटल चैलेंज छुपा हुआ है। अब जरा सोचिए, आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है, सिर्फ एक फोन चार्जर ऑर्डर किया, डिलीवरी आती है और आपको एक मीडियम साइज बॉक्स मिलता है जिसमें चार्जर के साथ एक्स्ट्रा प्लास्टिक रैप, बबल रैप और फिलर्स होते हैं। आप सोचते हैं कि भाई सिर्फ एक छोटी सी चीज ही तो है, क्या ही जाएगा। या कभी कभी आप ये भी सोचते हैं कि भाई इतनी छोटी सी चीज के लिए इतनी सारी पैकेजिंग क्यों। देखें, इको स्विच यहाँ हमें बताता है कि लॉजिस्टिक्स कंपनीज कभी कभार आइटम्स को डैमेज से बचाने के लिए एक्स्ट्रा पैकेजिंग यूज करती हैं, लेकिन इसका रिजल्ट अननेसेसरी वेस्ट होता है। साथियों, एक एस्टिमेट के मुताबिक ऑनलाइन शॉपिंग पैकेजिंग ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट का 15% तक कॉन्ट्रीब्यूट करती है, और वो भी इन अर्बन एरियाज में। अच्छा चलिए, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताती हूँ जो आपको शॉक कर देंगे। देखिए, हर साल ग्लोबली बिलियंस ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरीज के लिए यूज होते हैं। एक एवरेज ऑनलाइन ऑर्डर 3 लेयर्स ऑफ पैकेजिंग जनरेट कर सकता है, आउटर बॉक्स, इनर रैप और प्रोटेक्टिव फिलर्स। बबल रैप्स को डिग्रेड होने में 100 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं साथियों। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि पीक सेल सीजन, जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई व्हाइट फ्राइडे या कोई फेस्टिव सीजन हो गया, उसमें पैकेजिंग वेस्ट 30-40% तक स्पाइक कर जाता है। साथियों, यहाँ इको स्विच का आइडिया बड़ा सिंपल सा है, ऑनलाइन शॉपिंग को बंद नहीं करना बल्कि स्मार्टर बनाना है। जब हम पैकेजिंग अवेयर चॉइसेस लेते हैं तो हम वेस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ ई कॉमर्स कंपनीज अब मिनिमल पैकेजिंग ऑप्शन ऑफर करती हैं, जहां एक्स्ट्रा रैपिंग अवॉइड की जाती है। साथियों, एक स्टडी के मुताबिक अगर 1 मिलियन यूजर्स इको पैकेजिंग प्रेफरेंस सेलेक्ट करें तो थाउजेंड्स ऑफ टन्स प्लास्टिक और पेपर वेस्ट अवॉइड किया जा सकता है एनुअली। अच्छा जरा सोचिए, एक हाउसहोल्ड में डेली 1-2 ऑनलाइन डिलीवरीज होती हैं, ग्रोसरीज, कपड़े या गैजेट्स। हर डिलीवरी के बाद बॉक्सेस क्या होते हैं, स्टोर रूम में जमा हो जाते हैं या कचरे में फेंक दिए जाते हैं। कुछ रिसाइकल होते हैं, लेकिन बहुत सारे डायरेक्ट वेस्ट बिन में चले जाते हैं। इको स्विच के प्रस्पेक्टिव से ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हर ऑर्डर के साथ आप अपने घर में एक टेम्पररी लैंडफिल कॉर्नर बना रहे हो। चलिए साथियों, अब वक्त आ गया है कुछ प्रैक्टिकल टिप्स का। अब कुछ सिंपल इको स्विच टिप्स जो हर ऑनलाइन शॉपर फॉलो कर सकता है बहुत आसानी से। पहला, मिनिमल पैकेजिंग या इको पैकेजिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें जब भी अवेलेबल हो। दूसरा, मल्टीपल स्मॉल ऑर्डर्स के बजाय कंबाइंड ऑर्डर प्लेस करें। तीसरा, कार्डबोर्ड बॉक्सेस को रीयूज करें स्टोरेज या DIY पर्पसेस के लिए। चौथा, बबल रैप को, प्लास्टिक फिलर्स को रिसाइकल करें जहां पॉसिबल हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोकल सेलर से परचेज करें ताकि शिपिंग डिस्टेंस और पैकेजिंग दोनों रिड्यूस हो। साथियों, इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग को स्लो और माइंडफुल बनाना। जब हम ऑर्डर प्लेस करते वक्त पैकेजिंग को कंसिडर करते हैं ना, तो हम अपने कंजम्पशन बिहेवियर को रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जो लोग इको शिपिंग ऑप्शंस चूज करते हैं वो ओवरऑल लेस इम्पल्सिव शॉपिंग भी करते हैं। मतलब अवेयरनेस स्पेंडिंग हैबिट्स को भी कंट्रोल करती है। आखिर में भाई इको स्विच का सिंपल सा मैसेज है, और वो ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग कन्वीनियंस जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हर बॉक्स जो हम रिसाइकल या अवॉइड करते हैं वो एनवायरमेंट के लिए एक पॉजिटिव स्टेप होता है। तो भाई अगली बार जब आप प्लेस ऑर्डर बटन दबाने लगे ना, तो एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन कर लीजिएगा अपने दिमाग में। डू आई रियली नीड दिस मच ऑफ पैकेजिंग। इसी के साथ साथियों, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107 कतर, जहाँ हर डिलीवरी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक एनवायरमेंटल चॉइस भी होती है।
2: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107, FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज हम बात करेंगे फजूल खर्ची से बचने की अहमियत के बारे में। इस्लाम हमें एतदाल का दर्ज देता है, यानी हर काम में बैलेंस रखना। फजूल खर्ची ऐसी आदत है जो ना सिर्फ माल का ज़िया करती है बल्कि इंसान को गफलत की तरफ भी ले जाती है। अक्सर हम अपनी

0: जरूरत से ज्यादा चीजें खरीद लेते हैं या ऐसी जगहों पर पैसा खर्च कर देते हैं जहां उसकी असल में जरूरत नहीं होती। ये रवैया धीरे धीरे आदत बन जाता है और फिर इंसान को महसूस होता है कि बरकत कम हो गई है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपनी रिसोर्सेज को समझदारी से यूज करें और उन लोगों का भी ख्याल रखें जो मुश्किल में है। आज का अमल यह है कि अपने खर्चों का जायजा लें और कोशिश करें कि सिर्फ ज्यादा जरूरी जगह पर ही पैसा यूज करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी. One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नासिया.
3: One Step to 2030.
2: आज वन स्टेप 2030 यानी फ्यूचर में क्या क्या चीजें जो है वो डोमिनेट करेंगी, किस तरह से हमें अभी से खुद को जो है वो प्रिपेयर करना है 2030 और उसके आगे के लिए, तो बस उसी हवाले से हमारा ये सेगमेंट खास है जहां हम आपके साथ नए फ्यूचरिस्टिक टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. और आज मैं बात करने वाली हूँ पर्टिकुलरली क्लाउड सीडिंग पे. क्लाउड सीडिंग है क्या, कैसे काम करता है और कैसे आपको और हमें इसके बारे में जानना इम्पोर्टेंट है. देखिए, क्लाउड सीडिंग एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसका यूज बारिश को बढ़ाने या फिर कंट्रोल करने के लिए किया जाता है. ये टेक्नोलॉजी उन एरियाज में बड़ी यूजफुल होती है जहां पानी की कमी होती है या जहां ज्यादा बारिश की जरूरत होती है.

0: से एग्रीकल्चर के लिए। तो आइए हम इसे समझते हैं कि ये है क्या। क्लाउड सीडिंग का मतलब है बादलों में कुछ स्पेशल पार्टिकल्स या फिर केमिकल्स डालकर बारिश को ट्रिगर करना या इंक्रीज करना। और आसान लफ्जों में अगर मैं आपको समझाऊं तो क्लाउड्स में ऑलरेडी पानी के छोटे छोटे कतरे, ड्रॉपलेट्स या फिर आइस पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन कभी कभी ये इतने छोटे छोटे होते हैं कि बारिश की फॉर्म में जमीन तक नहीं गिरते। अब क्लाउड सीडिंग का काम इन ड्रॉपलेट्स को बड़ा बनाना होता है ताकि वो हेवी होकर बारिश की शक्ल में गिर सके। क्लाउड्स का एक नेचुरल प्रोसेस है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नॉर्मल बारिश कैसे होती है। वैसे हमने और आपने ये तो पढ़ रखा है, फिर भी चलिए क्विक रिमाइंडर के तौर पे आपको बताती हूँ कि सन की गर्मी से, तपिश से पानी समंदर हो, दरिया हो, लेक से इवेपोरेट होता है और ये पानी हवा में जाकर वाटर वेपर बन जाता है। ठंडी हवा में ये वेपर कंडेंस होकर क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड्स में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं और जब ये ड्रॉपलेट्स मिलकर बड़े हो जाते हैं तो ग्रेविटी की वजह से खिंचते हैं और नीचे गिरते हैं बारिश की फॉर्म में। कभी कभी ड्रॉपलेट्स इतने छोटे रहते हैं कि वो गिर ही नहीं पाते। यहाँ क्लाउड सीडिंग का जो रोल है वो स्टार्ट हो जाता है। क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस तीन मेन स्टेप्स पर होता है। सबसे पहले सूटेबल क्लाउड्स का इंतखाब करना। जी हाँ, सूटेबल क्लाउड्स का इंतखाब करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट और जितने भी मेट्रोलॉजिस्ट हैं चेक करते हैं कि कौन सा क्लाउड सीडिंग के लिए सूटेबल है। हर क्लाउड पर सीडिंग काम नहीं करती। वो क्लाउड्स चाहिए होते हैं जहाँ मॉइस्चर यानी पानी की क्वांटिटी मौजूद हो, टेम्परेचर सूटेबल हो। अगर क्लाउड बिल्कुल ड्राई हो तो वहाँ सीडिंग का कोई फायदा नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है केमिकल्स या फिर पार्टिकल्स डालना। इस स्टेप में देखा जाए तो खास केमिकल्स या फिर पार्टिकल्स क्लाउड के अंदर डाले जाते हैं। ये काम यूजुअली प्लेन्स, ड्रोन्स या फिर ग्राउंड बेस्ड मशीन के जरिए होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है ड्रॉपलेट्स को बड़ा करना। जब ये पार्टिकल्स क्लाउड के अंदर एंटर करते हैं तो पानी के छोटे ड्रॉपलेट्स इनके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन या फिर फ्रीजिंग, यानी पानी के कतरे इन पार्टिकल्स से चिपक जाते हैं। धीरे धीरे ये ड्रॉपलेट्स बड़े हो जाते हैं, फिर हैवी होकर जमीन पर गिरते हैं। यही बारिश होती है। वैसे क्लाउड सीडिंग के कुछ टाइप्स भी हैं। स्टैटिक क्लाउड सीडिंग, इसमें सिल्वर क्रिस्टल एक तरह का यूज किया जाता है जो कि आइस क्रिस्टल बन जाता है। कूल क्लाउड्स में पार्टिकल्स जो है वो डाले जाते हैं, आइस क्रिस्टल्स बनते हैं और क्रिस्टल ग्रो करते हैं और फिर बारिश या फिर स्नो बन जाते हैं। वही दूसरा एक तो मैंने आपको बताया स्टैटिक क्लाउड सीडिंग है, दूसरा है डायनेमिक क्लाउड सीडिंग। इस मेथड में पूरे क्लाउड के सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की जाती है। एयर मूवमेंट क्रिएट किया जाता है, ज्यादा क्लाउड ग्रोथ होती है, ज्यादा बारिश जनरेट होती है। तो बस हमने और आपने समझा कि क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। देखिए क्लाउड सीडिंग का यूज कहाँ होता है, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो क्लाउड सीडिंग दुनिया के कई कंट्रीज में यूज किया जाता है, किया भी किया है। उनके नाम तो क्या ही मैं मेंशन करूँ, लेकिन इन कंट्रीज में उसका फायदा भी हुआ है, कुछ नुकसान भी हुए हैं। बारिश को बढ़ाना जरूरी है क्योंकि कुछ कंट्रीज में सूखा, इसे कंट्रोल करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। स्नोफॉल इंक्रीज करने के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन हर चीज के फायदे और नुकसान तो होते ही होते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो भी हम समझते हैं। क्लाउड सीडिंग एक परफेक्ट सोल्यूशन है नहीं। अल्लाह ताला का जो निज़ाम है उसमें अगर हम अपनी अकल लगा के अपनी चीजें डालेंगे तो कुछ ना कुछ इसका नुकसान तो होगा। हर जगह काम नहीं कर पाता। अगर क्लाउड में मॉइस्चर ही ना हो तो सीडिंग बेकार है। वहीं कभी बारिश होती है, कभी नहीं। यहाँ पे रिजल्ट्स जो है वो 100% रिलायबल नहीं होते। और एक और बड़ा ड्रॉबैक जो है वो है ये प्रोसेस अपने आप में बहुत महंगा है। क्लीन्स, केमिकल्स, मॉनिटरिंग, सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव। और इन्वायरमेंटल कंसर्न ये तो बढ़ ही रहे। कुछ लोग कहते हैं कि इससे इन्वायरमेंट को खतरा बढ़ता चला जा रहा है। और एथिकल और सोशल कंसर्न्स, ये अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है। देखिए फ्यूचर में क्लाउड सीडिंग जो है एडवांस हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। इस पे काम भी जारी है, बेटर टेक्नोलॉजी यूज होगी, AI और सैटेलाइट से एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करवाई जाएंगी, एनवायरमेंट के इम्पैक्ट को भी कम किया जाएगा। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि इसको किस तरह से सेफली और इफेक्टिव इसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि क्लाउड सीडिंग एक इंटरेस्टिंग और पावरफुल टेक्निक तो है जिसमें इंसान क्लाउड्स को यूज करके बारिश को बढ़ाने की कोशिश करता है। ये प्रोसेस नेचुरल सिस्टम को सपोर्ट भी करता है, लेकिन इसको कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसको अगर हम समझें तो क्लाउड्स जो है या जो अल्लाह ताला ने टेक्निक और टेक्नोलॉजी हमारे लिए रखी है उसके खिलाफ जाके कुछ हम अलग से करने की कोशिश करें तो पता नहीं उसका किस हद तक फायदा होगा। अगर सही प्लानिंग और रिसर्च के साथ किया जाए तो शायद क्लाउड सीडिंग दुनिया की वाटर प्रॉब्लम जो आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगी उसे सॉल्व करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ना। बस यही लाइन जो है वो मुझे थोड़ी सी तसल्ली देती है। फिलहाल इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज करते हैं, वापस आएंगे कल तो एक और नए फ्यूचरिस्टिक टॉपिक पे बात करेंगे। आप सुन रहे थे सेगमेंट वन स्टेप टू 2030। यहाँ पर 2030 से आगे की भी तैयारी जारी है। कोशिश ये है कि आप और हम मिलकर फ्यूचर को जो है वो समझ तो नहीं सकते, प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ खुद को फ्यूचर के लिए तैयार जरूर कर सकते हैं। तो बस ये तैयारी अभी वर्बली है, फिर आने वाले टाइम में थोड़ा सा और डिटेल में और फिर आने वाले टाइम में इसे अडॉप्ट कैसे करना है इस पर भी बात होगी। फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
1: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। हाल हबीब, इस्तकबाल है आप सभी का इस शो में जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस। और हर हफ्ते हम बात करते हैं एक नए फ्रॉड के बारे में शो में, जहां पर आपको पता चलता है कि जमाने में किस तरीके के फ्रॉड्स आ चुके हैं। वेल, आज जिसके हम बारे में बात करने वाले हैं उससे पता चलता है कि फ्रॉडस्टर जो हैं वो अब आपके ख्वाहिशों से ज्यादा आपकी जरूरत, आपकी नीड पर ज्यादा फोकस करते हैं कि कैसे वो आपकी नीड यानी कि आपकी जरूरत पे वार कर सकें और आप वहां पर स्कैम हो जाए लोगों से। वेल, आज हम बात करने वाले हैं स्कूल्स को लेकर, बच्चों को लेकर किस तरह से स्कैम्स चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये स्कूल का जो स्कैम है ये काम कैसे करता है? कुछ स्कैमर्स होते हैं जो अपने आप को एजेंट्स या बड़े स्कूल्स का इंसाइडर कहते हैं। वो ये बताते हैं कि थोड़े से अमाउंट में, बहुत ही कम फीस में, ऑफिशियल फीस में आपका जो बच्चा है वो आपके मुल्क के टॉप स्कूल में एडमिशन ले सकता है। और आपको लगता है कि वाह, ये तो बेस्ट हो गया। और आपके पास इस तरह के सोशल मीडिया पे या आपके पर्सनल चैट पे फोटोज या मैसेजेस आते हैं और आपको ऐसे में भरोसा होता है, क्योंकि ये आपका नंबर आपके सोशल मीडिया से निकाल लेते हैं, क्योंकि आप गाड़ी बेचने के लिए और तमाम चीजों के लिए अपने फोन नंबर आम कर चुके होते हैं और ऐसे में ये आपको सबसे पहले आपके अपने पर्सनल चैट पे मैसेज करते हैं, फिर आपसे कोशिश करते हैं कि आप कॉल करें, फिर आपको फोटो एक दिखाई जाती है जिसमें सब लिखा होता है कि कम पैसे में आपके बच्चे का टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आपको कॉल भी करते हैं और आपको लगता है कि ये जेन्युइन हो सकता है। ये अर्ली बर्ड और स्कॉलरशिप डील के बारे में आपको बताते हैं और आपको फेक लेटर भी और वाउचर भी जो है वो शेयर करते हैं, और ऐसे में आपको एहसास होने लगता है कि ये तो बहुत ही उम्दा बात हो जाएगी। और अच्छा, ये सीजनल वाले स्कैम्स हैं, जैसे कि अभी स्कूल खुल रहे हैं, है ना, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जनवरी और फरवरी के वक्त पे बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, क्योंकि एडमिशन के जो वक्त हैं वो थोड़े से करीब आते हैं। तो और आपको लगता है कि ये जो लेटर है, ये जो वाउचर है और ये जो मैसेजेस है, इसके अकॉर्डिंग बहुत ही सस्ते में एडमिशन मिल जाएगा और मेरा बच्चा, मेरा लाडला एक अच्छे और बड़े स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, वो पढ़ाई कर सकता है। और फिर यहाँ से डिटेल आगे बढ़ती है, ट्रैप कैसे होते हैं आप? वेल, ये विक्टिम को एक प्रोसेसिंग फी के बारे में बताते हैं कि अगर आपको रिजर्व करनी है सीट, एक प्रोसेसिंग फी लगेगी या सीट रिजर्वेशन जिसे कहते हैं, और एक एडिशनल चार्ज लगेगा यूनिफॉर्म का, बुक्स का और आईडी कार्ड का। बस आप इतना सा पेमेंट करिए, अब वो हो सकता है 400 रियाल, 500 रियाल, या अगर आप अपने मुल्क में हैं तो वो रुपए में या पाकिस्तानी रुपीज में या बांग्लादेशी टके में बात करते हैं कि इतना मुझे पैसे चाहिए और आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको एक लेटर मिलेगा, वो लेटर आप स्कूल में ले जाके दिखाइए और फिर आपके बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन यही तो होता है फुल गेम। आप उसे पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट कर देते हैं, आपको वो एक फेक लेटर देता है, कभी तो वो लेटर भी नहीं आता है। और हो सकता है कि आपको ये लगे कि अभी 2 महीने बाद स्कूल खुलेगा, अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, जब ये छुट्टियां खत्म होंगी तब मैं अपने बच्चे को लेकर जाऊंगा, एडमिशन मिल जाएगा। वेल, मैं आपको बता दूं, ये कुछ ऐसे रियल स्टोरीज भी हुई हैं। लंदन में इस तरह के रियल स्टोरीज हुई हैं जहां पर फेक लेटर्स लोगों को दिए गए हैं पैसे के एवज में, और जब ये लेटर्स लेकर स्कूल पहुंचे हैं पेरेंट्स, तो वहां पर उनके साथ स्कैम हो चुका था। वेल, आपको बता दें कि प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं अपने आप को, उसके मुतालिक जरा बात करते हैं। वेल, वेरीफाई करने के लिए स्कूल में कॉल कर सकते हैं, इन पर्सन विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा एक्रेडिटेशन को चेक करिए या स्कूल की बोर्डिंग लिस्ट को भी चेक करें। किसी भी तरह के पेमेंट को इनफॉर्मल चैनल से पे ना करें, हमेशा एक पर्सनल बैंक अकाउंट हो या मोबाइल वॉलेट के थ्रू, ऐसा जो पूरी तरह से वेरीफाई हो, जो अकाउंट वेरीफाई हो सके उसके थ्रू पेमेंट करें। लेकिन वैसे भी जब इस तरह की डील आए तो ज्यादा बेहतर है कि इन पर्सन विजिट करें और रेड फ्लैग्स को देखने की कोशिश करें। कई लोग होते हैं ना जो गलत तरीके से बात कर रहे होते हैं, यानी कि वो प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं होती है, अर्जेंसी बहुत ज्यादा दिखाते हैं ऐसे लोग कि रिजर्वेशन कर लीजिए वरना चला जाएगा ये मौका, या फिर वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाते। वेल, अब तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी बहुत प्रॉपर तरीके से बना लेते हैं, क्योंकि AI जो

0: तो ऐसे में आपको बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना है. FM 107 इस तरह के फ्रॉड अवेयरनेस के बारे में बात करता रहेगा, लेकिन चालाकी और होशियारी से आप अपने बैंक अकाउंट में डाका डलने से बचा सकते हैं. फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक इसी शो में और हम बात करेंगे एक नए फ्रॉड के बारे में. दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट. आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। हम बात करेंगे अब्दुल्ला अल खुलैफी के बारे में। अब्दुल्ला अल खुलैफी कतर के उभरते हुए मोटर स्पोर्ट्स सितारों में से एक नाम माना जाता है। उन्होंने कम उम्र से ही रेसिंग और हाई स्पीड कॉम्पिटिशन में दिलचस्पी दिखाई और अपनी मेहनत के जरिए मुल्क की और बैनुल अक्वामी सतह पर पहचान बनाई। उनकी ड्राइविंग स्टाइल में रफ्तार के साथ स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन भी नजर आता है, जो उन्हें मुश्किल ट्रैक्स पर भी मजबूत मुकाबला करने के काबिल बनाता है। कतर में मोटर स्पोर्ट्स की तरक्की के साथ अब्दुल्ला अल खुलैफी जैसे ड्राइवर्स ने टैलेंट के लिए मिसाल बन रहे हैं। वो ट्रेनिंग, फिटनेस और टेक्निकल समझ पर खास तवज्जो देते हैं, क्योंकि मॉडर्न रेसिंग सिर्फ तेज गाड़ी चलाने का नाम नहीं बल्कि प्रेसिशन और टीम कोऑर्डिनेशन भी बहुत अहम होता है। मुख्तलिफ चैंपियनशिप में शिरकत करते हुए उन्होंने कतर का परचम फख्र से बुलंद किया और मोटर स्पोर्ट्स के शौकीन नौजवानों को इंस्पायर किया। उनका सफर ये साबित करता है कि लगन, मेहनत और मुस्तकिल प्रैक्टिस से मुश्किल मैदानों में भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। अब्दुल्ला अल खुलैफी का मकसद सिर्फ रेस जीतना नहीं बल्कि कतर में मोटर स्पोर्ट्स की मकबूलियत को मजीद बढ़ाना और अगली जनरेशन के ड्राइवर्स के लिए नए मौके पैदा करना भी है। उनकी कहानी हौसले और जज्बे की एक बेहतरीन मिसाल है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: दोस्तों अपने पर्सनल डेटा को फिशिंग से बचाने के लिए इन टिप्स पर अमल कीजिए। अननोन सोर्सेज से आने वाले मैसेजेस का जवाब देने को अवॉइड कीजिए। कभी भी जाती मालूमात या डेटा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर मत कीजिए। सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों की आइडेंटिटीज को वेरीफाई करें और सिर्फ उन लोगों से बातचीत करें जिन्हें आप जानते हैं। इस बात को भी यकीनी बनाएं कि आपकी फैमिलीज के नौजवान यूजर्स के लिए कंटेंट कंट्रोल रिस्ट्रिक्टेड हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि ब्रेकफास्ट हमारी तवानाई और मेटाबॉलिज्म पर कैसे असरअंदाज होता है। मेटाबॉलिज्म तो आपको पता है उस अमल को कहते हैं जिसके जरिए हमारा जिस्म खुराक को तवानाई में तब्दील करता है। रात भर सोने के बाद जिस्म की तवानाई कम हो जाती है और सुबह का जो नाश्ता है वो मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है और जिस्म को दिन भर काम करने के लिए ईंधन फराहम करता है। जो अफराद नाश्ता नहीं करते वो अक्सर सुबह के वक्त सुस्ती, कमजोरी और तवज्जो की जो कमी है वो महसूस करते हैं। इसके बरक्स जो अफराद जो अच्छा नाश्ता करते हैं तो मतवाजन नाश्ता करने में खून में शुगर की सतह को मतवाजन रखने यानी उसका जो बैलेंस है उसे रखने और फिर हमारे जिस्म को मुसलसल जो एनर्जी है या तवानाई फराहम करने में मदद देता है। बहुत सारी रिसर्चेज जो हैं वो की जा रही हैं कि नाश्ता जो है कितना हेल्पफुल है, तो तहकीकात से ये भी साबित हुआ है कि ब्रेकफास्ट वज़न को भी बैलेंस में रखता है और बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। जब आप दिन का आगाज़ एक अच्छी ग़िज़ा से करते हैं तो बाद में गैर ज़रूरी भूख ठी या चिकनाई वाली अशिया खाने की ख्वाहिश कम हो जाती है। सेहतमंद नाश्ते के लिए जैसे कि बोरेज है या जो होल ग्रेन ग़िज़ा है वो आप लीजिए। ताज़ा फल, अंडे, लोबिया और दालें उसमें आप ले सकते हैं और इसी तरह लो फैट जो मिल्क है या योगर्ट है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। सुबह के वक्त ज़्यादा मीठी अशिया जैसे केक है, पेस्ट्री है या मीठे मशरूबात हैं उनसे ज़रा दूर रहिए, क्योंकि ये वक्ती तवानाई तो देते हैं लेकिन बहुत जल्द थकन और कमजोरी का एहसास भी हो सकता है। पानी पीना नहायत जरूरी है। दिन का आगाज एक गिलास पानी से कीजिए ताकि जिस्म जो है वो हाइड्रेट रहे। अगर आपको सुबह नाश्ते करने की आदत नहीं तो इब्तदा किसी हल्की ग़िज़ा जैसे कि एक केला है, एक कप दही है या चंद बादाम है उनसे कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता ये आदत आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। याद रखिए, सेहतमंद नाश्ता दिन भर की तवानाई, बेहतर मेटाबॉलिज्म और अच्छी सेहत की बुनियाद है। सेहतमंद रहिए, मतवाजन ग़िज़ा खाइए और अपने दिन का आगाज एक बहुत ही अच्छे से नाश्ते से कीजिए।
0: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamualaikum everyone. मैं हूँ ज़फ़ा और आप सुन रहे हैं Eco Switch on FM 107 Qatar. देखिए भाई, हर एपिसोड में हम बात करते हैं उन छोटी छोटी हैबिट्स की जो हमारी लाइफ को भी बेटर बनाती हैं और हमारी अर्थ को भी बेटर बनाती हैं। तो भाई आज का टॉपिक है इको फ्रेंडली एप्स। अच्छा, अब नाम सुनते ही शायद आप भी भाई यही सोचेंगे कि भाई सफा आप भी तो बचा सकती हैं एनवायरमेंट को, और जवाब है बिल्कुल भाई। देखिए, मैं भी बचा सकती हूँ, मैं भी सुपर सफा हूँ आखिर, बिल्कुल ये काम कर सकती हूँ। क्योंकि आजकल हमारा स्मार्टफोन सिर्फ फोन नहीं रहा, ये हमारा वॉलेट भी है, डायरी भी है, कैमरा भी है, शॉपिंग असिस्टेंट भी है, कभी कभी तो ये हमारा बेस्ट फ्रेंड भी बन जाता है। तो फिर अगर ये इतने सारे काम कर सकता है तो एनवायरमेंट के लिए ये कुछ क्यों नहीं कर सकता? जरा सोचिए, आप सुबह सुबह आंख खुलती है आपकी और सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? उठते पानी का ग्लास पीते हैं? नहीं, मसवाक करते हैं? शायद उस पे भी नहीं। फोन का अलार्म बंद करते हैं, अपने मैसेजिंग की एप्स चेक करते हैं, फिर कभी कभी तो वेदर भी देख लेते हैं। वेदर ना भी देखें तो सोशल मीडिया तो जरूर, एक आंख से एक आंख बंद होगी और एक आंख खुली भी होगी, और उससे हम अपना फोन चेक कर रहे होते हैं, है कि नहीं? मतलब हमारी सुबह

जो है वो हमारे फोन से शुरू होती है और रात भी हम इसी फोन पर ही खत्म करते हैं अपनी। तो भाई अगर हम हर रोज इतना टाइम अपने फोन के साथ गुजार रहे होते हैं तो क्यों ना इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया ना बनाया जाए, एक ऐसा हेल्पर बना दिया जाए जो हमारी एनवायरमेंट को फ्रेंडली चॉइसेस हमारी करने में मदद करे, हमें सिखाए। तो भाई एक बात बताएं, फोन की बैटरी जब आपकी 15% होती है या 20% होती है तो क्या होता है, हलचल मच जाती है ना। अचानक से हर इंसान क्या करने लगता है, स्विच ढूंढने लगता है कि भाई मैं अपना मोबाइल चार्जिंग पे कहाँ लगाऊं। कोई कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पावर बैंक लेकर साथ में घूम रहे होते हैं, बहुत ही कोई ऊंची चीज होते हैं वो कि उनको ये होता है कि एक सेकंड भी हमारा फोन के बगैर ना गुजरे। तो भाई इसी के बरक्स अगर देखा जाए तो जब घर की लाइट्स बिना जरूरत के जल रही होती हैं, या एसी खाली रूम में चल रहा होता है, या फ्रिज का खाना एक्सपायर होकर डस्टबिन में चला जाता है, तब हम इतना पैनिक क्यों नहीं करते, कभी सोचा है? शायद इसीलिए क्योंकि हमें उस वक्त कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता। इको फ्रेंडली एप्स असल में वही नोटिफिकेशन बन जाती हैं साथियों। ये हमें याद दिलाती हैं कि सिर्फ फोन की बैटरी नहीं, अर्थ की एनर्जी भी इम्पोर्टेंट है। तो भाई आज टेक्नोलॉजी बहुत स्मार्ट हो चुकी है, ऐसी एप्स अवेलेबल हैं जो आपको ये बताती हैं कि आप कितना फूड वेस्ट कर रहे हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, या रोजाना ट्रैवल करते हुए कितना कार्बन इमिशन क्रिएट कर रहे हैं। जरा सोचिए, जब नंबर्स हमारे सामने आते हैं तो आदमी खुद ही सोचने लगता है कि भाई चलो इस बार कुछ थोड़ा सा बेटर कर लेता हूँ। इसीलिए कहते हैं भाई कि अवेयरनेस ही चेंज का पहला और सीधा रास्ता होती है। अच्छा अब अगर देखा जाए तो ग्रोसरी शॉपिंग की बात करते हैं, ठीक है? मुझे यकीन है बहुत से लोगों के साथ ये मामला होता होगा या ये हुआ होगा कि मार्केट से आप दही लेकर आए हैं और घर आकर पता चलता है कि भाई फ्रिज में पहले से ही एक डब्बा रखा हुआ है। ये मेरे साथ भी एक दो दफा हुआ है। फिर कुछ दिन बाद एक्सपायरी डेट गुजर जाती है और सीधा क्या होता है, वो डब्बा हमें फेंकना पड़ जाता है, कहाँ, डस्टबिन में। पैसा भी गया और खाना भी वेस्ट हुआ। तो भाई आजकल फूड मैनेजमेंट एप्स आपको ये याद दिलाती रहती हैं कि घर में ज्यादा चीज ऑलरेडी मौजूद है और किस चीज को पहले यूज करना चाहिए। कुछ एप्स तो रेसिपीज भी सजेस्ट कर देती हैं। भाई मतलब फ्रिज में जो आपका खाना बचा हुआ है ना, उसी से आप नया खाना और बना सकते हैं। एनवायरमेंट भी खुश रहेगी और आपका वॉलेट भी इससे बचा रहेगा भाई। और जब बात ट्रैवल की हो तो टेक्नोलॉजी वहाँ भी काम करती है। भाई देखें, हम अक्सर शॉर्टेस्ट रूट चूज करते हैं, लेकिन हर शॉर्टेस्ट रूट फ्यूल इफेक्टिव नहीं होती। देखें कुछ नेविगेशन एप्स ना ट्रैफिक को देखते हुए ऐसी रूट्स सजेस्ट करती हैं जहाँ गाड़ी कम रुकती है। जब गाड़ी कम रुकेगी तो फ्यूल भी कम जलेगा और पोल्यूशन भी कम होगा। और कुछ एप्स कार पूल ऑप्शंस भी दिखाती हैं। सोचिए अगर चार लोग अलग अलग गाड़ियों के बजाय एक ही गाड़ी में ऑफिस जाएं तो कितना फ्यूल बचेगा, ज्यादा ही बचेगा ना। अब अगर रिसाइकलिंग की बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में पुरानी बैटरीज, चार्जर्स या ब्रोकन इलेक्ट्रॉनिक्स जमा हो जाते हैं और फिर हमें उनका समझ में नहीं आ रहा था कि उनका करना क्या है। हमने होता क्या है, डस्टबिन में फेंक देते हैं या उन्हें हम संभाल कर रख लेते हैं। देखिए इको फ्रेंडली रिसाइक्लेबल एप्स जो होती है ना, इसी कंफ्यूजन को दूर करती हैं। ये बताती हैं कि कौन सी चीज रिसाइकल हो सकती है और उसे कहाँ जमा करवाया जा सकता है। जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो सही डिसीजन लेना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है भाई। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, एक और इंटरेस्टिंग चीज एनर्जी मॉनिटरिंग एप्स हैं। अगर आप स्मार्टफोन डिवाइसेस यूज करते हैं तो ये एप्स आपको बताती हैं कि घर में इस वक्त सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है और कौन सा अप्लायंस सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। कभी कभी हमें ये लगता है कि हम बहुत ज्यादा केयरफुल चल रहे हैं, लेकिन जब हम असली फिगर्स देखते हैं ना तो फिर जाके पता चलता है कि एसी या कोई और अप्लायंस अननेसेसरीली चल रहा है। भाई इसका रिजल्ट ये होता है कि भाई अवेयरनेस के बाद ना इंसान नेचुरली अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करता है और सिर्फ अर्थ का ही नहीं अपने फोन का भी ख्याल रखता है। देखिए साथियों अक्सर औकात तो ये होता है कि हम इतनी सारी एप्स इंस्टॉल कर लेते हैं कि आधी एप्स का तो हमें नाम भी याद नहीं होता। बहुत सी एप्स बैकग्राउंड में बैटरी और इंटरनेट कंज्यूम करती रहती हैं, इसीलिए हर कुछ महीनों बाद फोन का क्लीनअप जरूर करें। जो ऐप यूज नहीं करते उन्हें डिलीट कर दें, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद कर दें और जितना हो सके

0: डिजिटल नोट्स और डिजिटल बिल्स का इस्तेमाल करें। पेपर कम यूज होगा तो भाई ट्रीज भी इनडायरेक्टली बेनिफिट ही करेंगी ना उससे। चलिए हम चलते हैं आज के इको से चैलेंज की तरफ। ठीक है, आज सिर्फ 10 मिनट अपने फोन को देखिए। ठीक है, देखिए कितनी सारी एप्स ऐसी हैं जो सिर्फ स्टोरेज खा रही हैं आपका। उन्हें डिलीट कर दें, मेहरबानी करके उनकी जगह कोई इको फ्रेंडली ऐप इंस्टॉल कर लें। चाहे वो रिसाइक्लेबल गाइड हो, चाहे वो फूड रिमाइंडर हो, चाहे वो एनर्जी मॉनिटर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लानर हो। सिर्फ एक ऐप भी आपकी डेली रूटीन में पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकती है साथियों। तो भाई साथियों, अगली बार जब आप अपने फोन को अनलॉक करें ना, एक बार जरूर सोचिएगा, क्या ये डिवाइस सिर्फ मेरी लाइफ को इजी बना रहा है या मेरी अर्थ को भी थोड़ा सा बेहतर बनाने में मेरी मदद कर रहा है। इसी के साथ मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सिंपल प्रैक्टिकल और ग्रीन आइडिया के साथ। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज हम बात करेंगे रिश्तेदारों से ताल्लुक मजबूत रखने के बारे में। रिश्तेदारों से ताल्लुक बनाना और उनका ख्याल रखना इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से एक है। ये सिर्फ एक सोशल ड्यूटी नहीं बल्कि सवाब का जरिया भी है। अक्सर बिजी रूटीन की वजह से हम अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि उनसे राब्ता बरकरार रखें, उनका हाल पूछें और ज़रूरत पर उनकी मदद करें। यह अमल रिश्तेदारों में मोहब्बत और इत्तेहाद पैदा करता है और जब रिश्ते मजबूत होते हैं तो ज़िंदगी ज़्यादा आसान और खुशगवार होती है। आज का अमल ये है कि किसी एक रिश्तेदार को कॉल करें या मैसेज भेजें और उनसे राब्ता बरकरार रखें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश, फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: और दोस्तों, आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही जबरदस्त से टॉपिक पे। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत एक्साइटिंग भी, और आपको और हमारा इस टॉपिक को जानना जरूरी भी है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है AI गवर्न्ड सिटीज। देखिए, AI गवर्न्ड सिटीज यानी ऐसे मुस्तकबिल के शहर जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हर चीज को मैनेज करेगी, ट्रैफिक से लेके हॉस्पिटल से लेके स्कूल से लेके सिक्योरिटी। वैसे आज के दौर में भी स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन फ्यूचर में ये और एडवांस्ड होकर पूरा जो शहर है वो एक इंटेलिजेंट सिस्टम की तरह काम करेगा जो रियल टाइम डेटा देखकर डिसीशंस लेगा। अब AI गवर्न सिटीज है क्या? AI गवर्न सिटीज असल में एक तरह की स्मार्ट सिटीज का अपग्रेडेड वर्जन होगा। स्मार्ट सिटीज में सेंसर्स, कैमरास, इंटरनेट यूज होते हैं, लेकिन AI गवर्न सिटीज में सिस्टम खुद ब खुद डिसीशंस लेगा। यहाँ हर जगह सेंसर्स लगे होंगे रोड्स पर, बिल्डिंग्स में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, और ये सब डेटा AI सिस्टम को देते रहेंगे, फॉरवर्ड करते रहेंगे, पास ऑन करते रहेंगे। AI फिर इस डेटा को एनालाइज करके खुद ब खुद फौरन से फैसला करेगा। मिसाल के तौर पे अगर ट्रैफिक जाम हो रहा हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली सिग्नल चेंज कर देगा। इस तरह शहर एक लिविंग सिस्टम बन जाता है जो हर वक्त सिचुएशन को समझकर एडजस्ट करता रहेगा। अब ट्रांसपोर्टेशन में AI का रोल किस तरह का होगा? दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूचर सिटीज का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आज भी दुनिया के बहुत से शहरों में AI यूज हो रहा है, ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर और बहुत सारी चीजें। AI ट्रैफिक सिग्नल को रियल टाइम कंट्रोल करता है। अगर किसी रोड पे ज्यादा कार्स हैं, तो ग्रीन सिग्नल ज्यादा देर तक जो है वो रहेंगे। अगर रोड खाली हो जाए तो सिग्नल जल्दी चेंज अपने आप हो जाएंगे, इससे ट्रैफिक जाम नहीं होगा और लोगों का टाइम भी बच जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं AI सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, तो फ्यूचर में गाड़ियां खुद चलेंगी यानी सेल्फ ड्राइविंग कार्स होंगी। इन गाड़ियों में AI सेंसर्स और कैमरास होते हैं जो रोड सिग्नल और दूसरी गाड़ियों को देखकर डिसीजन लेते हैं। ये सिस्टम एक्सीडेंट्स को भी कम करेगा क्योंकि AI थकता नहीं है और हर वक्त फोकस में रहता है। वहीं पर अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट

0: क्या से होगा ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फास्ट और रिलायबल हो जाएगा वहीं अगर हम एआई हेल्थ केयर की बात करें तो इस सेगमेंट पे क्यों बात करें अगले सेगमेंट पे बात करते हैं फिलहाल यहां पर मैं आपसे इजाजत लूंगी और कल वापस आऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि एआई का रोल हेल्थ केयर सिस्टम में किस तरह का होगा क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है स्मार्ट सिटीज के बारे में तो हम और आप अच्छे से जानते ही जानते हैं लेकिन अब जानना है एआई गवर्न्ड सिटीज के बारे में जो फ्यूचर को डोमिनेट करेंगी तो कल यानी जब वापस इस सेगमेंट में आपकी हमारी मुलाकात होगी तो इस टॉपिक पे डिटेल में बात करूंगी आज थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया कल आऊंगी तो बात करेंगे हेल्थ केयर के रोल के बारे में फिलहाल अभी के लिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी One step to 2030.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: FM 107
3: दिल से देसी

सामान रखा जाए और वो भी ठीक तरीके से। अगर वायरिंग या इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स छत पर हैं, तो उनको भी चेक करना लाजमी है, क्योंकि पुरानी या खराब वायरिंग से भी स्पार्क होकर आग लग सकती है। रेगुलर इंस्पेक्शन एक ऐसी आदत होनी चाहिए जो हर बिल्डिंग मैनेजमेंट या हर फर्द अपने घर पर लाजमी बनाए। महीने में कम से कम एक मर्तबा अपनी छत को जरूर चेक करें। सामान की सफाई करना और किसी भी अनयूजुअल स्मेल, वायर या गर्म होने वाले इक्विपमेंट्स को देखना बहुत मददगार साबित होता है। एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये भी बात याद रखें कि एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये इंश्योर करें कि फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेसिबल हो, उसकी एक्सपायरी डेट चेक हो और हर वक्त काम करने की पोजीशन में हो। ये सब छोटी छोटी एहतियात आपकी और आपके आसपास रहने वालों की जिंदगी को महफूज बनाती हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सोशल जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आपकी एहतियात से दूसरे लोग भी महफूज रहते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।

हमने इंसान को हिदायत की कि वो अपने वालिदैन के साथ नेक बर्ताव करे। उसकी माँ ने मुशक्कत उठाकर उसे पेट में रखा और मुशक्कत उठाकर ही उसको जना और उसके हमल और दूध छुड़ाने में 30 महीने लग गए, यहाँ तक कि जब वो अपनी पूरी ताकत को पहुंचा और 40 साल का हो गया तो उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता फरमाई, और ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो और मेरी औलाद को भी नेक बनाकर मुझे सुख दे। मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूं और ताबे फरमान यानी मुस्लिम बंदों में से हूं। इस तरह के लोगों से हम उनके बेहतरीन आमाल को कबूल करते हैं और उनकी बुराइयों से दरगुजर कर जाते हैं। ये जन्नती लोगों में शामिल होंगे उस सच्चे वादे के मुताबिक जो इनसे किया जाता रहा है। और जिस शख्स ने अपने वालिदैन से कहा, उफ, तंग कर दिया तुमने, क्या तुम मुझे ये खौफ दिलाते हो कि मैं मरने के बाद कब्र से निकाला जाऊंगा, हालांकि मुझसे पहले बहुत सी नस्लें गुजर चुकी हैं, उनमें से तो कोई उठकर ना आया। माँ और बाप अल्लाह की दुहाई देकर कहते हैं, अरे बदनसीब, मान जा, अल्लाह का वादा सच्चा है। मगर वो कहता है, ये सब अगले वक्तों की फरसूदा कहानियां हैं। ये लोग हैं जिन पर आजाब का फैसला चिस्पा हो चुका है। इनसे पहले जिनों और इंसानों के जो टोले इसी कुमाश के हो गुजरे हैं, उन्हीं में ये भी जा शामिल होंगे। बेशक ये घाटे में रह जाने वाले लोग हैं। दोनों ग्रोहों में से हर एक के दर्जे उनके आमाल के लिहाज से हैं, ताकि अल्लाह उनके किए का पूरा पूरा बदला उनको दे। इन पर जुल्म हरगिज ना किया जाएगा। फिर जब ये काफिर आग के सामने ला खड़े किए जाएंगे तो इनसे कहा जाएगा, तुम अपने हिस्से की नेमतें अपनी दुनिया की जिंदगी में खत्म कर चुके और उनका लुत्फ तुमने उठा लिया। अब जो तकब्बुर तुम जमीन में किसी हक के बगैर करते रहे और जो नाफरमानियां तुमने की, उनकी पादाश में आज तुमको जिल्लत का अजाब दिया जाएगा।

था। इस तरह हम मुजरिमों को बदला दिया करते हैं। उनको हमने वो कुछ दिया था जो तुम लोगों को नहीं दिया है। उनको हमने कान, आंखें और दिल सब कुछ दे रखे थे, मगर न वो कान उनके किसी काम आए, न आंखें, न दिल, क्योंकि वो अल्लाह की आयात का इनकार करते थे और उसी चीज के फेर में वो आ गए जिसका वो मजाक उड़ाते थे।

तुम्हारे गिर्दोपेश के इलाकों में बहुत सी बस्तियों को हम हलाक कर चुके हैं। हमने अपनी आयात भेजकर बार बार तरह तरह से उनको समझाया, शायद कि वो बाज आ जाएं। फिर क्यों ना उन हस्तियों ने उनकी मदद की जिन्हें अल्लाह को छोड़कर उन्होंने तकर्रुबे इल्लाह का जरिया समझते हुए माबूद बना लिया था, बल्कि वो तो इनसे खोए गए। और ये था उनके झूठ और उन बनावटी अकीदों का अंजाम जो उन्होंने घर रखे थे। और वो वाकया भी काबिले जिक्र है, जब हम जिनों के एक ग्रोह को तुम्हारी तरफ ले आए थे ताकि कुरान सुने। जब वो उस जगह पहुंचे जहां तुम कुरान पढ़ रहे थे तो उन्होंने आपस में कहा, खामोश हो जाओ। फिर जब वो पढ़ा जा चुका तो वो खबरदार करने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ पलटे। उन्होंने जाकर कहा, ऐ हमारी कौम के लोगों, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई है, तस्दीक करने वाली है अपने से पहले आई हुई किताबों की, रहनुमाई करती है हक और राह रास्त की तरफ। ऐ हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल कर लो और उस पर ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा और तुम्हें आजाब अलीम से बचा देगा। और जो कोई अल्लाह के दाई की बात न माने, वो न जमीन में खुद कोई बलबूता रखता है कि अल्लाह को जिच कर दे और न इसके कोई ऐसे हामी और सरपरस्त हैं कि अल्लाह से उसको बचा ले। ऐसे लोग खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। और क्या इन लोगों को ये सुझाई नहीं देता कि जिस खुदा ने ये जमीन और आसमान पैदा किए और उनको बनाते हुए वो न थका, वो जरूर इस पर कादिर है कि मुर्दों को जिला उठाए। क्यों नहीं, यकीनन वो हर चीज की कुदरत रखता है। जिस रोज ये काफिर आग के सामने लाए जाएंगे, उस वक्त इनसे पूछा जाएगा, क्या ये हक नहीं है? ये कहेंगे, हाँ हमारे रब की कसम, वाकई ये हक है।